हो सकते हैं। कई भाई बहनों का ये प्रश्न होगा कि मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? तो उत्तर है, वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हर दम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल व स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रिय से कर्म करो। बल स्थूल कर्मेंद्रिया कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। मम्मा कहे, आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रिय को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुक्रूर है, जहां एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है तो याद सहज हो जाएगी, याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप दादा के साथ द्वारा, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी उसका विनाश हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीन बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। साधारणपन को
श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। 6,

जानते हैं। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया। मन सुने तो कितने आश्चर्यचकित होंगे कि क्या कोई ऐसे भी मनुष्य हैं, क्या कोई ऐसे भी महामानव हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आता हो। और जब भगवान टीचर बनकर आएगा तो सोच ले वो क्या पढ़ाएगा। वो सब कुछ नहीं पढ़ाएगा जो संसार में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाएगा जिसकी मनुष्य को जरूरत है, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, माया का ज्ञान, पाप और पुण्य का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान। यही ज्ञान आकर उसने हम सबको दिया है। और जैसे हम जानते हैं, ज्ञान से विवेक का निर्माण होता है, ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि की स्थिति ज्ञान से बनती है। ऐसे ही कह सकते हैं कि ज्ञान ही बुद्धि का निर्माण करता है। हम सभी को दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई है। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? जिस बुद्धि में प्योरिटी हो, जिस बुद्धि में बहुत खुशी, शांति और ईश्वरीय नशा हो, जिस बुद्धि में निरंतर ईश्वरीय ज्ञान ही समाया रहता हो, जिस बुद्धि ने स्वयं की पूरी तरह सफाई कर दी हो, जिस बुद्धि में कोई भी गंदगी, किसी के प्रति परचिंतन, वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बदले की भावना, ये सब न रहा हो, तो हमें अपनी बुद्धि को ऐसा ही दिव्य बनाना है जिसमें ज्ञान के सिवाय कुछ भी न रहे, जिसमें सद्विवेक और दिव्य विवेक के अलावा अन्य किसी चीज को स्थान ही न हो। जब हमारी बुद्धि ऐसी बन जाती है तब उस बुद्धि

धरती में निवास करते हैं स्वयं दिव्य बुद्धि के दाता, स्वयं परम पिता, अर्थात हमारा योग सरल हो जाता है। जिन लोगों का योग नहीं लग रहा है उन्हें समय लेना चाहिए, उन्होंने अपनी बुद्धि को डिवाइन नहीं किया है। उनकी बुद्धि में वही पुराना ज्ञान है, वही पुरानी मान्यताएं हैं। उनको हटाकर सद्विवेक और दिव्य विवेक अपनी बुद्धि में नहीं भरा है। जिन लोगों का योग नहीं लग रहा है अर्थात जिनकी बुद्धि स्थिर और एकाग्र नहीं होती है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी बुद्धि में गंदगी भरी है। बुद्धि ऐसी स्वच्छ चीज है कि गंदगी आते ही वो विचलित हो जाती है, उसकी शांति और खुशी नष्ट हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को हम वैसा भोजन खिला दें जो उसकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत हो तो उसकी मनोस्थिति कैसी होगी। ऐसे ही बुद्धि का भोजन तो सात्विकता है, प्योरिटी है, प्रेम है, सद्भावनाएं हैं, ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन है। उसके अलावा यदि हम अपनी बुद्धि में और कुछ भरते हैं तो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। इसलिए जिसे ना हो उसे अपनी बुद्धि को अब डिवाइन करना ही चाहिए। और याद रखेंगे संगम युग पर जिसने अपनी जैसी बुद्धि का निर्माण कर दिया वही जन्म जन्म उसके साथ चलेगी। जो व्यक्ति यहाँ बुद्धिमान हो गया वो जन्म जन्म बुद्धिमान रहेगा। और याद कर ले बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एक शिव बाबा पर एकाग्र कर सके। बुद्धिमान वही है जो संगम युग पर वो प्राप्त कर ले जो केवल अब ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धिमान वही है जो अपना सर्वस्व बलिहार कर दे अपने परम पिता पर। बुद्धिमान वही है जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी बन जाए, जो स्वर्ग का राज भाग्य प्राप्त कर ले। बाकी तो सभी अलग अलग बुद्धि से संपन्न है। तो आइए आज हम सभी अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखते हुए बुद्धि के दाता, दिव्य बुद्धि के दाता से योग युक्त रहेंगे, इस संकल्प के साथ कि वो दिव्य बुद्धि का दाता है। परम धाम में उसके स्वरूप को निहारेंगे, बहुत डिवाइन, जिसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, उसको मोस्ट ब्यूटीफुल एक एंटिटी के रूप में देखेंगे, जिसको हम देखते ही रहें, जिसको देखने में परम आनंद है। बस आज सारा दिन उसको देखने का आनंद लेंगे। ओम।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। चार्ल्स कैटरिंग ने कहा है, वह समस्या जिसकी व्याख्या सही तरीके से हो चुकी है तो उस समस्या का आधा हल भी निकल चुका है। अगर आप अपनी हर परेशानी को कागज में लिखकर उसकी सूची बनाएंगे तो जरूर कुछ विशिष्ट घटता है। इसका असर कुछ वैसा ही है कि जैसे आप अपने प्रिय मित्र को अपनी समस्या के बारे में बताने के बाद जिस शांति का अनुभव करते हैं, आपके कंधों से बोझ हट जाता है, आप हल्का, शांत और स्वतंत्र अनुभव करते हैं। हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनने के साथ साथ सबसे बुरा दुश्मन भी बन सकता है। अगर आप अपनी परेशानियों के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो थोड़ा समय बाद यह पाएंगे कि आप उनके अलावा कुछ और भी नहीं सोच रहे हैं। मन एक आश्चर्यजनक जीव है। आप जिस बात को याद रखना चाहते हैं वह भूल जाता है और वह जो भूलना चाहते हैं वह याद रखता है। अपने उन दिमागी कोलाहलों से जो हमारी कठिनाइयों को बढ़ा रहे हैं छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी कठिनाइयों की एक सूची बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वे आपके मन को कुंठित नहीं करेंगे और नहीं आपको शक्तिहीन बनाएंगी। यह सरल अभ्यास आपको यह भी अनुमति देगा कि अपनी परेशानियों को एक दृष्टिकोण में रखें और उनको तरीके से क्रम अनुसार और योजना अनुसार सुलझा सकें। अनेक सफल लोग जिन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है, उनमें से मार्शल कला के गुरु ब्रूस ली और विंस्टन चर्चिल जैसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है, करीब आधा दर्जन परेशानियां जो मुझे चिंतित कर रही हैं उनको लिख कर रखना अपने आप में फायदेमंद साबित होता है। दो समस्याएं अपने आप गायब हो जाती हैं, दो के बारे में कुछ किया नहीं जा सकता और उनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, और दो को शायद सुलझाया जा सकता है। तो कहने का भाव यही है कि आप अपनी हर परेशानियों को एक कागज में लिख दें। जैसे ही आप उसे लिख देंगे आपका आधा बोझ तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर शांति से उसमें से चिंतन करें कि कौन सी परेशानियों को आप सुलझा सकते हैं और किसे सुलझाना अनिवार्य नहीं है। जो परेशानियां सुलझाई नहीं जा सकती उन्हें वहीं पर छोड़ दीजिए और बाकी जो सुलझाई जा सकती है उसका

सारे ड्रामा में सृष्टि में एक वही थी जिसने ज्ञान को अपने जीवन में ऐसा अपनाया जो प्रैक्टिकल देखने में आया, ये माँ है। हर एक के मुख से निकले ये माँ है, हैं? बाद में भी नए नए जिज्ञासु आए वो भी कहे माँ है। उसको निमंत्रण देते थे तो जो निमंत्रण पत्र लोग भेजते थे, माँ तेरी मीठी छाँ, ये वो क्या क्या शब्द लिखते थे, तू पवित्रता की देवी है। और हर एक को ऐसा महसूस होता था कि और तो छोड़ दो, अगर मम्मा स्पर्श भी कर दे थोड़ा तो विकार हमारे भाग जाएंगे, इतनी पवित्र है वो। जैसे मैग्नेट में असर होता है इस ढंग से है, पवित्रता उसमें रच गई थी एक प्रकार से, दृष्टि में, वृत्ति में, स्नेह में, उसका

बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि हमें आगे क्या करना है। कार्य कुशलता इसमें है कि कैसे करना है, और विशिष्टता उसे करने में है। डेविड स्टार जॉर्डन का यह कहना था। हम में से ज्यादातर लोगों को यह मालूम है कि हमें अधिक खुश रहने, स्वस्थ रहने और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। वास्तविक परेशानी इस बात में है कि हम इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि हम क्या जानते हैं। अनेक वक्ताएं कहते हैं कि ज्ञान में बल है। ज्ञान में शक्ति नहीं है, ज्ञान सिर्फ ठोस बल है। यह शक्ति में तब बदलता है जैसे ही हम निर्णायक रूप से इसे प्रक्रिया में ढाल लेते हैं। एक बलवान चरित्र का मापदंड सिर्फ चीजों को मजे के लिए करने में या आसान चीजें करने में नहीं है। एक गहन नैतिक प्रभुत्व उस इंसान में प्रदर्शित होता है जो लगातार वह करता है जो उसके लिए जरूरी है और उसे करना चाहिए, न कि जो उसका मन कहता है। एक ईमानदार चरित्र का इंसान अपना समय सही चीजें करने में बिताता है। ऐसे इंसान में अपने पूरे दिन की थकान के बाद 3 घंटे टेलीविजन देखने के बजाय यह हिम्मत होती है कि वह सोफे के आराम से उठकर अपने बच्चों को कुछ पढ़कर सुनाए। उन सर्दियों की ठंड सुबह में ऐसा व्यक्ति अपने आत्म अनुशासन की स्वाभाविक संचित शक्तियों का प्रयोग करके बिस्तर से उठकर दौड़ने के लिए जाता है। और जैसे कि प्रक्रिया एक आदत है, जितनी ही सकारात्मक क्रियाएं हम करेंगे उतनी ही इसकी आदत बनती जाएगी। अनेक बार हम अपने सामने एक आदर्श रास्ते के आने का इंतजार करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि रास्ते चलने से बनते जाते हैं, इंतजार करने से नहीं। सपने देखना अच्छा है, परंतु सिर्फ बड़ी चीजों के बारे में सोचना बड़ी योजनाएं शुरू नहीं कर सकता। आपके बिल का भुगतान नहीं कर सकता और नहीं आपको वह व्यक्ति बना सकता है जो आपका दिल जानता है कि आप बन सकते हैं। थॉमस कारिल के शब्दों में अगर हम कहें कि इंसान का अंतिम ध्येय कर्म में है, विचार में नहीं। चाहे विचार कितने भी तेजस्वी क्यों न हो, बिना संपादन के व्यर्थ है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आपसे कोई पूछे कि यह क्यों जरूरी है कि आप अपने उद्देश्य तक पहुंचे, तो उनका जवाब आपसे शायद यही मिलेगा, क्योंकि जो आप चाहते हैं अगर आपको मिल जाए तो आपको खुशी होगी। हालांकि इस जवाब में एक सच्चाई का अंश है। अगर हमें अपनी चाही हुई चीज मिल जाए तो वह हमारे जीवन में अत्यधिक खुशी लाती है, जिसको नापा नहीं जा सकता है। अपने उद्देश्य निश्चित करने और उन तक पहुंचने का असली महत्व इसमें नहीं है कि आपको उसके बदले में क्या पारितोषिक मिला है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने में आपको जो अनुभव हुए और आपने उनसे जो सीखा वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सरल मंत्र से अपने जीवन की यात्रा का आनंद लेने में आपको और मदद मिलेगी और साथ ही आप अपने व्यक्तिगत उद्देश्य पर केंद्रित हो पाएंगे। इमर्सन ने कहा है, किसी कार्य को अच्छी तरह करने का पुरस्कार उसे संपूर्ण करने में है। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वह लक्ष्य चाहे बेहतर नेता बनने का हो या बेहतर अभिभावक बनने का, आप इस प्रक्रिया में एक तरह की परिपक्वता का अनुभव करते हैं। अक्सर आपको इस विकास की प्रक्रिया का पता नहीं चलता है, परंतु यह निश्चित रूप से स्थान ले चुकी होती है। जो पुरस्कार आपको अपनी उपलब्धि पर मिलते हैं, सिर्फ उनका स्वाद लेने के बजाय आपको उस प्रक्रिया का जश्न मनाना चाहिए जिसके द्वारा आप उस मंजिल तक पहुंचे और जिसने आपको एक बेहतर इंसान बना दिया है। आपने आत्म अनुशासन का निर्माण, अपने विलक्षण गुणों की खोज और अपनी काबिलियत का सफल प्रदर्शन किया है। यह अपने आप में सबसे बड़ा पारितोषिक है। आप कभी भी उस कमजोरी को खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं। अपनी नकारात्मक आदत से छुटकारा पाने का सबसे पहला कदम है उसकी ओर जागरूकता। एक बार अगर आप यह समझ जाते हैं कि आपको अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाना है, तो आप अपने आप ही उस दिशा की ओर निर्देशित हो जाते हैं जो आपके लिए बेहतर साबित होगी।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

यह बात कितनी हास्यजनक है कि जब हम लोगों को यह कहते सुनते हैं कि अगर उनके पास थोड़ा और समय होता तो वे वक्त को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपना बचा खुचा समय भी इसी तरह नष्ट कर देते हैं। समय जीवन में महान संतुलन लाता है। हम सबको एक दिन के 24 घंटों का समय एक समान मिला हुआ है। महान लोगों का जीवन एक साधारण दौड़ में शामिल होने वाले लोगों के जीवन से भिन्न होता है, क्योंकि वे अपना संपूर्ण समय का सदुपयोग करते हैं। हम में से अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं जिसे कार्य हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास असीमित समय है। इसी वजह से हम अपने सपनों को हासिल करने की प्रक्रिया को प्रतीक्षा में रखकर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। अगर आप ऐसा करते रहें तो जीवन में अवश्य पछतावा करेंगे। एक उपन्यासकार पॉल बाउल्स ने लिखा था, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि हम कब मरेंगे, हम सोचने लगते हैं कि यह जीवन कभी खत्म नहीं होने वाली अंतहीन प्रक्रिया है। इसलिए जो कुछ भी होता है वह बहुत कम बार होता है। कितनी बार आपको अपने जीवन की वह दोपहर याद होगी जिसकी यादों के बिना आप अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकते? शायद 4 या 5 बार भी नहीं। कितनी बार जीवन में ऐसा होगा कि आप पूरे चांद को देख सकें? शायद सिर्फ 20 बार। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि समय असीमित है। अपने आप से वादा करिए कि आप पूरी तरह से समय का सदुपयोग करेंगे। अपने आप में समय के महत्व के बारे में एक तीक्ष्ण जागरूकता का विकास कीजिए। किसी भी व्यक्ति को इस सबसे बहुमूल्य वस्तु को बर्बाद न करने दें और उन्हीं प्रतिक्रियाओं में लगाएं जो वास्तव में करना जरूरी है। तो समय के महत्व को समझें, उसे बर्बाद न होने दें और अपने समय को एक सही दिशा में सही लक्ष्य निर्धारित करके उसकी प्राप्ति की ओर लगाएं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर

0: हम।
1: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। हम में से बहुत सारे लोग जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसे गाड़ी की तरह हांकते रहते हैं और कभी किसी रोज वो गाड़ी कहीं अटक जाए या शुरू होने में तकलीफ देने लगे तो तब हम ध्यान देने लगते हैं कि ओह हो, गाड़ी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। या आप में से बहुत सारे लोग जो कार या टू व्हीलर चलाते होंगे या साइकिल भी चलाते होंगे, आप सभी ये ध्यान न रखें कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराई जानी चाहिए, कभी कभी ग्रीस चेक कर लेना चाहिए, पहिया ठीक है या नहीं, हवा ठीक है या नहीं, ये चेक किए बगैर अगर आप चलते हैं तो एक न एक दिन सुबह उठ के आप देखते हैं तो गाड़ी पंक्चर है या गाड़ी में कोई खराबी है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हम अपने इस गाड़ी के बारे में यानी अपने शरीर के बारे में ध्यान रखें और अगर इस गाड़ी में कोई गड़बड़ियां हैं तो होने से पहले ही उसे ठीक करने के प्रयास करें। और सहज स्वास्थ्य में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिससे हमें ये बात समझ में आए कि हम अपनी गाड़ी की मरम्मत समय रहते कर लें, गाड़ी में खराबियों को होने न दें और इस गाड़ी का ध्यान रखें। प्रायः व्यक्ति जब गाड़ी खराब होती है तो इस शरीर के लिए लोग वैद्यों के पास जाते हैं, चिकित्सकों के पास, डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही चिकित्सक हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी गाड़ी का ख्याल बेहतर रख सकें और चिकित्सकों के ऊपर जो ऑलरेडी वर्कलोड बढ़ा हुआ है उसको हम कम कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां से वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, ये बात सोचने और समझने वाली है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई गाड़ी खराब हो जाए तो तब हम गैरेज में ले जाएं, मगर हम ये भी चीजें जानते हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो सभी कहते हैं कि भाई समय रहते सर्विसिंग भी करा लेना चाहिए, गाड़ी का ध्यान भी रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, ऑयलिंग व्हीलिंग कर लेनी चाहिए। ये हम अपने दो पहिए और चार पहिए या जितने पहिए की भी गाड़ी है उसके बारे में हम ध्यान रखते हैं, मगर इस शरीर रूपी गाड़ी के बारे में क्या हमें ऐसा ख्याल रखने की जरूरत है?
1: जरूर है। जिस तरह से गाड़ी रेगुलर सर्विस चाहती है उसी तरह शरीर भी रेगुलर सर्विस चाहता है। और मैंने ये अपने प्राकृतिक चिकित्सालय में ये अनुभव करना शुरू किया है। पहले मरीज हमारे यहाँ महीने दो महीने रहता था, पर अब वो 7 दिन रहता है और बॉडी सर्विस करा के चला जाता है। पहले पुराने मरीज एक बार आते थे, 2-3 महीना रह के पारिवारिक संबंध बना के चले जाते थे। अब ऐसे मरीज हैं जो हर 6-8 महीने पे आते हैं और अपनी बॉडी की सर्विस कराते हैं और चले जाते हैं। ये हमारे रेगुलर पेशेंट है। आज ही हमारे चिकित्सालय में कोटा से एक दीदी और उनकी माता जी आई हैं और ये दोनों जन ही हमेशा गाड़ी से ड्राइव करके आते हैं और दोनों लोग हर साल हमारे यहाँ करीब 3 हफ्ते का समय बिताते हैं। और ये देखने में आया है कि अब लोग अपने शरीर और साथ साथ मन दोनों का सर्विस करा रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूं कि आप अपने घर पे भी हों, और हमने जो पुराने एपिसोड्स में बात किया कि थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत प्राणायाम, थोड़ा बहुत फास्टिंग, थोड़ा बहुत भोजन पे कंट्रोल, ये करते रहिए कि बॉडी अपने टॉक्सिन्स निकाल पाए। और जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर में भर गए हो, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर अपने पूरे शरीर को साफ कर लीजिए। ये बॉडी सर्विस स्टेशन है।
0: ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि हमें अपने शरीर की ये सर्विसिंग भी करानी जरूरी है, और ये करने के तरीके कितने आसान हैं ये भी आपने बताया। थोड़ा बहुत व्यायाम, थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत आहार के प्रति सजगता, थोड़ा बहुत फास्टिंग, उपवास इत्यादि करके हम अपने शरीर को सर्विसिंग कर सकते हैं, उसको ठीक रख सकते हैं और इससे मन भी अच्छा रहता है। कल हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब कि शरीर के लिए विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। आजकल जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो विटामिन्स की आवश्यकता को समझते हैं। बहुत सारे लोग विटामिन्स की दवाइयां लेने लगे हैं, विटामिन्स के टैबलेट्स भी खाने लगे हैं। आपने कल की बातचीत में ये बताया कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो प्रकृति से हमें निशुल्क रीति से मिल रहा है, उसके लिए हमें कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ता। सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ते ही हमारे जिस्म में वो चीज बनने लगती है, और ज्यादा समय भी नहीं, दिन में 5-7 मिनट अगर हम शरीर को सूरज की रोशनी में देते हैं तो ये अपने आप बनने लगता है, ये आपने बताया। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये विटामिन डी आवश्यक क्यों है, क्या काम ये करता है, ये भी तो समझा जाए।
1: इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि हमारे में विटामिन डी की कमी हो रही है। सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है कि महिला या पुरुष जब रात में सोने जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं या सोचते हैं कि जो उनका पार्टनर है, पुरुष ये सोचते हैं कि महिला मेरा थोड़ा सा पैर दबा दे, या महिला ये सोचती है कि पुरुष थोड़ा सा मेरा पैर दबा दे, या प्लीज मेरे पैर के ऊपर पैर रख के सो जाओ। ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग मिलती है इन यंगस्टर्स, यंगस्टर्स मतलब 30 प्लस की उम्र के लोगों में, अबव 60, 60 साल के ऊपर हमेशा ये होता है कि बहू आई है और 2 दिन हमारा पैर दबाई है और हमको बड़ा अच्छा लगा, या जो ओल्ड या जो महिला है या पुरुष है वो कहते हैं जब तक पैर दबाती है बड़ा अच्छा लगता है और जैसे ही वो छोड़ देती है वापस दर्द करने लगता है। तो ये सब बिना कोई जांच किए, बिना कुछ किए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर दबाया जाए और आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, आपकी हड्डियां रो रही हैं। और जब हम विटामिन आपको कोई भी शरीर का अंग दबाते हैं तो जो हमारी हड्डी है उसके ऊपर का कैल्शियम कंप्रेस होता है हल्का सा। मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि एक साधारण बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं। आप जैसे ही वो हड्डी को थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है आदमी को बहुत अच्छा लगने लगता है। और ये क्रूडेस्ट टेस्ट है, सबसे सिंपल टेस्ट है बताने के लिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है। इसको सिर्फ हड्डी से जोड़कर पहले देखा जाता था, पर अब ये आपको बहुत सारी समस्याएं अगर हो रही हैं तो आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है।
0: मैं अक्सर ये चीज देखता था, आज भी ये चीज होता है कि घर में अगर थोड़े बड़ी आयु के लोग हैं, दादा दादी के उम्र के लोग हैं, और घर में अगर बच्चे हैं तो वो यही कहते थे कि भाई मेरे पैर पे थोड़ा चल लो तुम। और मैं सोचता था कि ये चलवा क्यों रहे हैं किसी को अपने ऊपर। और वैसे भी हम भारत में तो ये मान्यता है ही कि अगर बड़ों को हमारे पैर लग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पैर नहीं लगने चाहिए, उनका आदर सत्कार होना चाहिए, हमसे गलती हो जाती है छोटे होने के नाते बड़ों को हमारे पैर लगे। मगर यहाँ जब बड़े खुद कह रहे हैं तो मैं हमेशा सोचता था आखिर ये क्या है, क्या इसमें आनंद आ रहा है जो ऐसे चलवा रहे हैं। आप पता चल रहा है कि ये तो
1: विटामिन डी की कमी है भैया। कमर का दर्द, मतलब सबसे पहले मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा है, या वो कहते हैं ना सवेरे तो एकदम ठीक था पर शाम होते होते बहुत थक जा रहे हैं, मेरी कमर में दर्द होने लग रहा है, और उसका वो कि कोई छोटा बच्चा मेरे कमर पे चल देता है या कमर पे पैर रख देता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगता है। भैया अब विटामिन डी को मैजिकल विटामिन इसीलिए बोला जाता है कि इसको पहले से दर्द के साथ देखा जा रहा था, अब ये तक देखा जा रहा है कि जिनको डिप्रेशन हो रहा है, जो इरिटेटेड रहते हैं, जो जिनका मूड थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, थोड़ा दुखी फील कर रहा हूं, अगर उनको भी विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में, यहां तक कि अब तो ये कहा जाता है कि पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी अगर हो रही है पुरुषों की वजह से, तो उसमें भी अब विटामिन डी के रोल की बात की जा रही है। तो अगर जो श्रोतागण हमें सुन रहे हैं अगर वो थके थके महसूस कर रहे हैं, कमर में उनके दर्द हो रहा है, हाथ पैर दबवाना उन्हें पसंद है, तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है। कुछ लोग की हड्डियां अगर बार बार टूट जा रही हैं, थोड़ा सा झटका लगा और हड्डी क्रैक कर जा रही है, टूट जा रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है।
0: ये तो बात समझ में आ रही है कि विटामिन डी की कमी को कैसे हम परख सकते हैं कि हाँ ये अगर हो रहा है तो ये मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी जब नहीं होता है तो शरीर में क्या रोग पैदा होते हैं, उससे क्या चीजें होने लगती हैं शरीर में, वो भी चीज समझा जाए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो दर्द तो बहुत समय से हो रहा है, कई चीजों को तो हम ऐसे इग्नोर करते चले जाते हैं, अरे हाथ पैर तो दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत सारे उम्र दराज लोग तो ये कह देते हैं कि भाई अब तो उम्र हो गई, ये तो दर्द होना स्वाभाविक है। ऐसा भी कई लोग कहने लगते हैं, आज हमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया, इसलिए भी दर्द हो रहा है, ये कहते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में क्या चीज है, विटामिन डी की कमी होने के कारण क्या चीजें हो सकती हैं शरीर में?
1: अगर हम लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होगी तो सबसे पहले हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी तो उन्हें रिकेट्स नामक एक बीमारी हो सकती है जिसमें उनके पैर टेढ़े हो सकते हैं और हड्डियां टूट सकती हैं। और बड़े वयस्क लोगों में अगर विटामिन डी की कमी लंबे समय तक हुई तो उन्हें ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, जिसको ब्रिटल बोन्स कहा जाता है, उनकी हड्डियां एकदम भुरभुरी हो जाती हैं और हड्डियां जो है वो जल्दी टूट जाती हैं। ये समस्या हड्डियों को रिलेटेड है। दूसरा, लंबे समय तक अगर विटामिन डी कम रहेगा तो आदमी बहुत थका हुआ महसूस करेगा, मतलब कहते ना इच्छा ही नहीं हो रही है, बड़ी थकान हो रही है यार, काम करने में मन नहीं लग रहा है। इवन कुछ महिलाओं और पुरुषों में जो बाल गिरने का कारण है उसमें भी विटामिन डी का रोल माना जाता है कि अगर विटामिन डी कम हो रहा है तो शरीर में कोलेजन कम होने लगता है, और जब वो कोलेजन कम होता है तो वो हमारे बालों को भी इफेक्ट करता है और हमारा हमको हेयर फॉल भी होता है। तो इसीलिए अगर किसी को बहुत थकान, कमर में दर्द, हड्डियां कमजोर ये महसूस हो रहा है तो प्लीज विटामिन डी के लिए जरूर सोचें, कहीं ये आपकी समस्या है विटामिन डी की वजह से तो नहीं हो रही।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि विटामिन डी की कमी से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और जैसे आपने इसको मैजिक विटामिन कहा, ये भी बात समझ में आ रही है कि हाँ इसकी अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब विटामिन डी की कमी को पूरा करने की बात आती है तो लोग कैसे इस चीज को पूरा करें, क्योंकि जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि आजकल लोग बहुत सारे टैबलेट्स खा रहे हैं, मल्टी विटामिन खा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा, ये हम हर दिन खा रहे हैं ये भी लोग कहने लग गए हैं, तो क्या ये सही तरीका है या विटामिन डी को पूरा करने के कुछ और भी तरीके हैं?
1: सबसे पहले हम ये समझ लें कि विटामिन डी हमारे शरीर में बनता कैसे है और इसमें किस किस अंग का रोल आता है या किस किस अंग की सहभागिता होती है। सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा के ऊपर पड़ता है तो जो सब डर्मल फैट है, मतलब जो त्वचा के नीचे का हमारा जो वसा है, उससे रिएक्शन होता है और वो एक 7-dehydroxy कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। फिर ये हमारे लिवर में जाता है, वहां इसे एक एंजाइम मिलती है जो इसको 25-hydroxy कोलीकैल्सिफेरॉल बनाती है, और फिर ये हमारी किडनी में जाता है, और फिर फाइनली ये जो कैल्सिरॉल है, जो इसका एक्टिव फॉर्म है, उसमें ये उसके वो बनता है और फिर वो हमारे शरीर में ये काम करता है। कॉमन भाषा में ये समझा जाए, विटामिन डी है वो मजदूर है, वो हमारे खून में से कैल्शियम निकाल के हमारी हड्डियों को चिपकाता है और वो कोशिश करता है जहां भी कैल्शियम चल रहा है उसको उठा के ले आए, हमारी आंतों में, हमारी किडनी से, मतलब वो हर जगह से कैल्शियम लेके आता है। और सिर्फ कैल्शियम नहीं, ये हमारे शरीर में फॉस्फोरस को भी लेके आता है, तो ये दो मिनरल्स को लेकर ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये देखिए कि इस विटामिन के लिए हमको सूर्य का प्रकाश, हमारी त्वचा, हमारी लिवर और हमारी किडनी, ये चारों चीज चाहिए। फैट सॉल्युबल है तो थोड़ा सा फैट भी चाहिए, तो इतनी चीज है। और अगर इन चीजों में कुछ भी गड़बड़ हुआ, हम सूर्य का प्रकाश नहीं लिए, हमारी लिवर खराब हो गई, हमारी किडनी खराब हो गई, या हम अपने भोजन में फैट नहीं ले रहे हैं, जिन लोग का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो फैट मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो या एक और चीज, आजकल बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी करा रहे हैं, जिनमें वो अपनी आंतों को काट के छोटा कर दे रहे हैं, अपने पेट को छोटा करवा दे रहे हैं, तो इन सब कारणों से हमारे शरीर में विटामिन जो डी है उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा इफेक्ट हो जा रहा है, और जब वो इफेक्ट हो जा रहा है तो हमारे शरीर को पूरा कैल्शियम नहीं दे पा रहा है।
0: अब ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन डी का कैल्शियम के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, और जैसे आपने ये भी बताया कि शरीर के जो ये अलग अलग अंग हैं, हमारी किडनीज हैं, लीवर है, इन सब का भी इसका कनेक्शन है, और लोगों को इन सारे कनेक्शंस को समझने से इसकी अहमियत समझ में आती है और क्यों ये शरीर के लिए आवश्यक है ये बात पता चल जाती है।
1: भैया पहले, अब तो भारत में नमक में आयोडीन मिलने लगा, नहीं तो पहले औरतों को घेंगा हो जाता था जिसको थायराइड की बीमारी कहते थे, और थायराइड के ऊपर छोटी सी ग्लैंड्स है जिनको पैरा थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, उसमें पैरा थायराइड हार्मोन निकलता है, वो भी विटामिन डी के साथ जुड़कर हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप देखिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, उसके कितने सारे अंगों की जरूरत है। ये हमारे शरीर की सुंदरता है कि बहुत सारे अंग मिलकर एक काम कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर सुंदर और सुडौल बना रहता है।
0: आजकल मैं समझता हूं कि लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में ज्यादा बिजी हैं, सुडौल बनाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तब तक नहीं सोचते जब तक कोई चीज अकड़ नहीं जाती कि भाई मेरे से झुका नहीं जा रहा, मेरा हाथ नहीं उठ रहा या पैर नहीं उठ रहा। मगर ये आज की त्रासदी है, और जब हम ऐसे चिकित्सकों से इन चीजों के बारे में सुनते हैं तब हमारी जागरूकता आती है, तब हम समझते हैं कि हाँ, हमें इन चीजों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में भी ये बात बताई थी कि विटामिन डी को लेने के लिए बहुत सारे विदेशी सैलानी भारत या भारत जैसे वो देश जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं वहां पर पहुंचते हैं, और काफी दिनों तक वो बीच स्पेस सागर किनारे अपनी पीठ सूरज की ओर करके पड़े रहते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई चलो हमारा विटामिन डी की कमी हम पूरी करें क्योंकि हमारे देश में ये चीज नहीं मिलती। और भारत में रहने वाले लोगों को या ऐसे उष्णकटिबंध में रहने वाले लोगों को इस चीज की जानकारी ना हो तो ये बहुत ही बड़ा नुकसानदायक चीज समझ में आ रही है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, क्या हम भी बीच पर जाएं अभी, या हर दिन के लिए कोई चीज ऐसा इख्तियार कर लिया जाए कि भाई हाँ, विटामिन डी की कमी ना हो हमारे पास?
1: सबसे पहला हमको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए 15 मिनट दिन में जरूर से, अगर 30 मिनट तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो मांसाहारी हैं वो लोग मछली और कुछ लिवर का पार्ट खा के अपने विटामिन

0: के रूप में भी मिलता है। और मैं एक नेचुरोपैथ होकर और एक एलोपैथ होकर एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर होकर जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है, जिनका लेवल बहुत कम है, उनको मैं रिकमेंड जरूर करता हूं कि आप प्लीज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की जो गोली है वो प्लीज हफ्ते में एक बार करीब 8 से 12 हफ्ते तक ले लीजिए। अगर ये आप ले लेंगे तो आपको 6 से 8 महीने की छुट्टी हो जाएगी। गोली लेने का ये मतलब नहीं है कि हम धूप में जाना नहीं जाएंगे, हमने तो गोली ले ली हम नहीं जाएंगे। प्लीज गोली आपको एक बूस्टर डोज की तरह दी गई है, पर धूप में जाने का जो अपनी आदत है उसको डालिए। प्लीज 15 मिनट अपनी पीठ को धूप की तरफ जरूर करिए। तो सबसे अच्छा तरीका विटामिन डी लेने का है कि 15 मिनट धूप सेका जाए।
1: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है कि लोग पैसा खर्च करके विटामिन डी के दूसरे पर्याय खोजने में लगे रहते हैं, मगर जो प्रकृति से प्रदत्त चीज है, जो सबसे आसान भी है और मुफ्त में मिल रही है, और वही एक शाश्वत तरीका है कि हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को ना होने दें और सूरज की रोशनी से हम उस चीज को हासिल करें। दोस्तों, आज की बातचीत में यही विराम लेना होगा, घड़ी इशारा करती है, मगर आज जो चीजें हमने समझी हैं कि विटामिन डी के कमी से हमारे शरीर में क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, शरीर के अलग अलग अंगों के साथ विटामिन डी का जो कनेक्शन है वो भी आज समझ में आया है, और इस विटामिन डी को आप सभी सीरियसली लेंगे और आप सभी अपने शरीर में इस विटामिन की कमी को ना होने दे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, ऐसी शुभ आशाएं हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को, अपने समाज को, परिवार को और अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वस्थ विश्व की कामना करते करते यह भी ध्यान रखें कि भाई अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो रही है तो हम प्रकृति से मिल रही चीजों का सही सेवन नहीं कर रहे हैं। तो विटामिन डी के लिए खास तौर पर आप सभी सूर्य की रोशनी में 15-20 मिनट बैठें और शरीर पर सूर्य की किरणों को पड़ने दें। आज की बातचीत से यही संदेश आप सबके लिए। फिर मुलाकात होगी सहज स्वास्थ्य में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं?

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोशिश मुझे लगती थी कि कर सकती हूँ, और एक थॉट ही तो बदलना है, हर चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले लें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पॉजिटिव थिंकिंग में कर पाऊंगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया कि नहीं, उसके पहले ज़रूरी ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जा रही है, हर रोज़ की जो जानकारी मेरे पास आती है, मेरे जो आसपास का माहौल है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें कैसे फिल्टर करना है वो मेरे हाथ में है। सिचुएशंस, इन्फ्लुएंसेस, लोगों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जानकारी मैं लेना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन से स्टेप्स होंगे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ या अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर पाऊँ। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी में अगर हम देखें तो एक होमवर्क हमारे साथ था कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो मुझे गवर्न कर रही होती है। और हमने ये समझा था कि हर थॉट, मेरी सोच जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो जाती है जिस तरह की जानकारी जा रही है।
1: अभी क्या होता है, सुबह उठे नहीं कि यू नो माय फर्स्ट अब्सॉर्प्शन जो होती है, जो ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन है उस पे फर्स्ट चीज जो अब्सॉर्ब करते हैं दैट इज द फर्स्ट पेज। मतलब मेजॉरिटी के तो हम देखते बेड में ही न्यूज़पेपर आता है, तो फर्स्ट पेज एक क्लीन माइंड के ऊपर क्या छाप दिया सुबह सुबह। फिर अब उसके बाद बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, then we are looking for something very difficult. फिर आपको मेहनत ज़्यादा, result कम, क्योंकि आपने foundation तो negative information का create किया है, लेकिन अब आप सारा दिन मेहनत ये करने वाले हैं कि positive thought create करनी है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ step नहीं लिया जाएगा, let us not expect miracle. और इसीलिए हो रहा है कि इतना सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उस पर जो थोड़ा सा परिवर्तन, और हमने बहुत भाई बहनों से मिले हैं जिन्होंने सिर्फ ये किया है अभी, और ज़्यादा तो किया ही नहीं है कुछ, उसके बाद कुछ नहीं किया है मेहनत, उसके बाद सिर्फ इतना किया कि सुबह सुबह अखबार पढ़ना बंद कर दिया, दे आर फाइंडिंग अ चेंज।
0: इन फैक्ट नो, आई विल टेल यू, बिकॉज मैंने भी जब शुरू में किया, आप बहुत लाइट रहते हैं।
1: अगर हर एक अपने आप को सिर्फ अपने जीवन को रिवाइंड करे थोड़ा सा, लास्ट कब बैठ कर एफर्ट करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी थी अपने अंदर, व्हेन वाज दैट द लास्ट टाइम, तो हमें याद नहीं आएगा। तो जो चीज़ भरी नहीं वो क्रिएट कहाँ से होगी। फॉर एग्जांपल, आज मेरे घर पे कोई लेट आए शाम को, तो एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये जो नेगेटिव नेचुरल हम कहेंगे नेचुरल आ जाता है, ये नेचुरल इसलिए आता है क्योंकि सुबह मैंने वही भरा था। आप थोड़े 2 महीने के लिए सुबह वो भरना बंद करें और सुबह सुबह ये भरें जो परमात्मा के महावाक्य हैं कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा, आप कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, आपके साथ क्या गलत होगा। अब रात को देखो अगर कोई लेट आता है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट दैट टाइम। अभी तो पॉजिटिव उस टाइम बोलेंगे, उस टाइम तो याद नहीं रहेगा कि पॉजिटिव सोचना है, उस टाइम तो वो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, यू नो ड्रेनिंग योर सेल्फ आउट, तो ये उस टाइम नहीं एफर्ट हो सकता कि हाँ नाउ समवन हैज कम लेट नाउ और हैज नॉट रीच्ड नाउ आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। ये तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, बिकॉज अगेन थिंकिंग हैज बिकम वेरी ऑटोमेटिक। लेकिन हमें इसलिए सिक्योर रहेंगे क्योंकि हमें पता है भरा ही क्या था, और ये प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। सेकेंड चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी, वो है साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। अगेन detached word sunte hi it will I see your face only how it has become
0: because it becomes like you know it is a feeling lot of people say ki detachment kehte hi ho to aisa lagta hai ki cold there is a coldness which sets in matlab aisa lagta hai ki bilkul har cheez se hum pare ho gaye to wo usse dar lagta hai logon ko lagta hai ki hum dur ho jayenge apno se hum apno se pyar hi nahi kar payenge aur koi mujhse detached ho gaya to wo mujhse dur chala jayega।
1: डिटैचमेंट को तो हम समझेंगे ही वो क्या है, लेकिन फर्स्ट वे सेइंग डिटैचमेंट मीन्स डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि एक परिस्थिति को एक साक्षी दृष्टा होकर देखने से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। व्हाई डू आई नीड टू सी इट, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द वन थिंग ओवर लास्ट फ्यू डेज कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, नाउ आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, तो उस पर तो हम आ गए। लेकिन सेल्फ को मैनेज करने के लिए मुझे उससे एक स्टेप पीछे होकर उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा, ताकि परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से दूर हो जाती हूँ. डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, किसी को बीमार होना हो, किसी को दर्द हो रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स नॉट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस लाइक यू से. इट्स नॉट हार्डनेस ऑल्सो. कई लोग समझते बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कड़क हो गए हैं, दैट इज इनसेंसिटिव. वो इनसेंसिटिव है. उल्टा जो डिटैच्ड होगा, सही मायने में डिटैच्ड होगा, वो तो और भी कंसर्न्ड होगा. क्योंकि डिटैच्ड अगर हम होंगे तो मैं दर्द में नहीं गई, और अगर मैं दर्द में नहीं गई तो मैं आपके लिए तो और भी कर सकूंगी. आपके लिए जो कंसर्न है, आपको अगर मदद करनी है तो मैं और भी ज़्यादा कर सकूंगी. बट माय सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट. दैट इज इनसेंसिटिव, दैट इज अनकंसर्न्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल. दैट्स नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर रिलेशनशिप्स. डिटैचमेंट मतलब एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पॉज एंड स्टेप बैक, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो, जिसको कहते हैं ना सोच समझ कर फिर बोलना या सोच समझ कर करना, दैट इज डिटैचमेंट. कि टेक दैट वन मोमेंट टू पॉज, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा. मतलब एक
0: नपातुला होगा.
1: मेजर नपातुला, यस राइट. मतलब एक आई नो व्हाट आई एम रिस्पॉन्डिंग. बट अगर डिटैच नहीं होते तो इट इज अ रिएक्शन,
0: और वो फैलता है. फिर वो
1: दैट इज मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हैबिचुअल रिएक्शन हो गया ना, वो मेरा रिएक्शन हो जाता है. डिटैचमेंट मतलब रिस्पॉन्ड करना. और पहले हम क्या करते थे, हम दूसरे के, जैसे सपोज अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं अपने बारे में, आपकी लाइफ में ये हुआ या ये है ये है, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट as a detached observer and then understanding it, I would get sucked into it. And to kya hota tha ki agar aap dard mein hain to aap ro rahe hain andar se ya bahar se jo bhi, and very soon you will find ki main bhi aapke sath ro rahi hu,
0: kyunki aap uske sath hi merge ho gaye na, main usme
1: bhi. You get sucked into the emotions of somebody else. So detachment is just that one moment, ek moment us taraf se. Jaise ki suppose agar hum stage par hain तो हम पूरे प्ले को उतनी ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑडियंस है वो ऑडियंस उस प्ले को बहुत अच्छी तरह से देख सकती है. तो जब मैं परिस्थिति में हूँ तो मुझे परिस्थिति राइट पर्सपेक्टिव में नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं परिस्थिति को सिर्फ अपनी साइड से देख रही हूँ. मैं आपकी साइड से या किसी और साइड से तो उसको देख ही नहीं पाती, बिकॉज आई एम स्टक टू माई पोजिशन. पोजिशन कुड बी माई आइडिया. सपोज मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हैं. दिस इज अटैचमेंट टू माई आइडिया ऑफ बीइंग राइट. तो मैं अपने राइट के आइडिया से इतनी अटैच्ड हूँ कि आपका आइडिया तो देखने का मेरे पास कोई मार्जिन ही नहीं है. सो अनलेस आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई अटैचमेंट ऑफ अ राइट आइडिया, हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड यू. एंड जब तक मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो जो परिस्थिति है वो राइट पर्सपेक्टिव में मुझे कहाँ दिखाई देगी? इट्स नॉट पॉसिबल. तो डिटैचमेंट मतलब स्टेज से हटकर एक मिनट ऑडियंस की तरफ से देखें.
0: लोगों का एक और इस पे आता है कि हम कब तक करते रहे.
1: हाँ, वो तो जब तक आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं. सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम कुछ भी किसी और के लिए नहीं कर रहे. हम ये समझते हैं कि आपने गुस्सा किया और मैं चुप रही, ये आपके लिए किया, आपके लिए नहीं किया. हम ये प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है, मैंने सहन किया आपके लिए किया. ना ना, किसी और के लिए तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. इट इज ओनली टू बी डन फॉर माई सेल्फ. हाँ, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली औरों को होता जाएगा, लेकिन हम जो भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं. एंड ये हर एक कर रहा है, विद द ज्ञान और विदाउट द ज्ञान. दैट इज डेफिनेटली, भले हमें ऊपर ऊपर से पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज हैपनिंग सो फास्ट, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं. आज अगर मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ? हमें लगता है वो मैं आपके फायदे के लिए कर रही हूँ, आपको सुधारने के लिए कर रही हूँ. नहीं नहीं, उसके लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. गुस्सा मैं इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो मेरे अटैच्ड आइडियाज ऑफ राइट में नहीं फिट होता है. एंड दैट इज व्हाई आई एम रिएक्टिंग. इट इज बिकॉज आई एम हर्ट, सो आई हैव रिएक्टेड. इट्स नथिंग टू डू विद यू.
0: मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा हूँ. अपने जॉब में मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि मेरा परिवार कैसे चलेगा, या मैं एक रिश्ते में जिसमें हूँ तो उसमें बच्चा. बहुत सी आज
1: कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो रहा है? स्टेबल रहकर वी आर टॉकिंग कॉम्प्रोमाइज. हम कॉम्प्रोमाइज बाहर तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? अंदर. तो वी आर टॉकिंग कि सिचुएशन कोई भी होगी, क्या हम अपने आप को उस सिचुएशन में स्टेबल रख सकते हैं और उसके लिए मुझे क्या करना है. एंड उसमें ये जो अगर हम प्रैक्टिस करें, दिस विल अगेन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. कि सिचुएशन है आपके सामने, अभी आज आप अपनी सारी 1-2-3 सिचुएशंस लिख लीजिए, जो जो आपकी परिस्थितियां हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, चाहे वो जॉब की जो प्रॉब्लम है. अब इसको अपनी जगह से हटकर इस पोजीशन को देखने की कोशिश करें और कोशिश करें दूसरे के दृष्टिकोण से देखने के लिए. बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज आल्सो राइट, बट इट्स ओनली राइट फ्रॉम द अदर साइड.
0: It's so difficult.
1: It's not right from my side.
0: लेकिन it is so difficult. Another thing जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार हम ये कह तो रहे हैं कि अंदर से करें, लेकिन सिस्टर शिवानी आज ऊपर से ही मेंटेन कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब रिश्तों की बात घर में.
1: ऊपर से मेंटेन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम ऊपर से मेंटेन कर रहे हैं,
0: अंदर से कर ही नहीं रहे.
1: दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन, अंदर तो फाउंडेशन पूरा गड़बड़ हो गया, ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो हर थोड़े दिन के बाद वो आपकी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है. और हम कहते हैं हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आर रिलेशनशिप्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स, व्हाट्स द फाउंडेशन. तो फाउंडेशन पर क्योंकि टाइम नहीं है या इंक्लिनेशन नहीं है या पता ही नहीं है कैसे करना है फाउंडेशन पर, तो सारी मेहनत हो रही है उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में. आई वॉन्ट टू बिल्ड माई रिलेशनशिप एंड एवरी फ्यू डेज दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स.
0: ऑफ कोर्स
1: दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स, देन अगेन आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बट आई एम जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन, जस्ट नॉट वर्किंग. इज इट पॉसिबल फॉर वन डे? और उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है थॉट प्रोसेस को. कि जैसे ही कोई परिस्थिति में हम आते हैं, और ये तब हो पाएगा अगर हमने मॉर्निंग के टाइम पर वो थोड़ा सा साइलेंस एक्सपेरिमेंट किया.
0: सिचुएशन ऐसी लें कि हस्बैंड आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बहुत घरों में ये होता है कि, और सेम सिचुएशन ही हो जाती है, उसी सिचुएशन पे बार बार लड़ाई होती जाती है और दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि वो गलत है या वो. वैसे ही बॉस और सबॉर्डिनेट का भी सिचुएशंस अगर देखें तो मैक्सिमम टाइम वही होती है. उसकी आदत हमारे, हमें सबकॉन्शियस में जो भी है वो ऐसी हो चुकी होती है कि जैसे ही वो सिचुएशन आई मेरा रिएक्शन वही हो रहा होता है.
1: आपने अभी कहा कि हम वो कोशिश कर रहे होते हैं ढूंढने की कि वो गलत है या वो गलत है, बट एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. कौन गलत है दोनों में से? Which one of the two is ever wrong? Have you been able to find out? अगर आप logically decide करने की कोशिश करेंगे तो आपका answer हमेशा एक ही होगा कि मैं right हूँ, आप गलत है. इसीलिए तो हम, मैं जो कह रही हूँ वो तो right ही, मैं wrong थोड़ी बोलूँगी. That is the same way I will have to understand कि सोच समझ कर अपने दृष्टिकोण से मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो मेरे हिसाब से उस समय वो right है. And same goes for you. I may look at it and say it's wrong, but for you, it's right.
0: लेकिन मैं तो सोच समझ के बोल रही हूँ, वो तो सोच समझ के बोल ही नहीं रहे.
1: ये किसने बताया?
0: यही तो हम कहते हैं हर बार.
1: आपने कभी खुद ये गलत है ये सोचकर ऐसा किया? This is wrong. Now come, let me do it. ऐसा आपने कभी? Even if let's say I'm going to tell a lie, yeah, I am going to give a bribe, or I'm going to take a bribe, or whatever, anything.
0: But this is a need of the hour.
1: Whatever. तो सारी logic है ना उसके पीछे कि ये नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, फिर वो government office में मेरा काम रुक जाएगा. तो logic तो दे देंगे ना उसको अपने आप को. और जैसे ही logic दिया, मतलब क्या कहने की कोशिश की?
0: It's justified. It's okay.
1: तो it's right. मेरे लिए वो right है, भले even the law of the country says that it's wrong. But मेरे लिए उस समय वो राइट है. हमें कई अपने कर्म थोड़ी देर के बाद लग सकता है कि ये गलत थे, लेकिन जिस क्षण हम वो कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, उस क्षण हमें वो राइट ही लगते हैं. कभी भी सोच समझ के कोई गलत नहीं करेगा. उसके पीछे उसके पास लॉजिक होगा कुछ ना कुछ करने के लिए. लेकिन बट द सेम अप्लाइज टू एवरीवन एल्स. एंड जिस समय, लेकिन आपका राइट देखने के लिए मुझे इस कुर्सी से उठकर उस कुर्सी पर आना पड़ता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन वो देखने के लिए मुझे अपनी सिचुएशन से, अपनी साइड से, अपने आइडिया से डिटैच होना पड़ेगा. तो डिटैचमेंट डजंट मीन यू नो कट ऑफ या बीइंग इनसेंसिटिव. इट मींस बीइंग एब्सोल्युटली देयर, लेकिन डिटैच्ड मतलब उस सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड.
0: जो हमने कहा
1: सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड, सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड. कुछ लोग क्या होते हैं, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएंगे, चलो ये मेरे से नहीं हो रहा फॉर फेस, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड, और डिटैच्ड मतलब स्टेबल. सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, जो वो हमने कहा नदी फिर, तो फिर कभी दर्द भी होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड मतलब पेनलेस एग्जिस्टेंस. नाउ इफ आई वांट टू लिव अ पेन फ्री लाइफ, दैट्स माय चॉइस, इट्स नॉट कोल्डनेस. और जितना पेन फ्री मैं हूँ, दर्द के बिना हूँ, उतना मेरा औरों के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. तो कई लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब फिर ये तो परिवार में
0: डजंट वर्क,
1: बट एक्चुअली वो रिश्ते और भी
0: स्ट्रांग
1: होते जाएंगे. से समथिंग टू मी राइट नाउ विच इज लाइक वेरी इंसल्टिंग, इफ आई एम वेरी अटैच्ड, मेरे को कह दिया ऐसा, आई विल गो इनटू सो मच पेन, उसके बाद मैं चार दिन आपसे चाहे बात ही ना करूँ या जो भी करूँ. लेकिन यू आर राइट वट एवर यू आर सेइंग, बट आई स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करना शुरू कर दूँगी. लेकिन दर्द में गई, फिर उस प्रोसेस से गुजरी, फिर अपने आप को ठीक किया, कितना टाइम बीता.
0: लेकिन वो इतनी जल्दी मैं आपसे बात करना शुरू कर पाऊँगी,
1: वो तो कितना टाइम लेकर आता है.

0: कितना टाइम हम लगाते हैं टू गेट ओवर दैट व्हाटएवर, बिकॉज क्रिएट भी हमने किया, अब उसको गेट ओवर भी हमने ही करना है. हाउ मच टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन अगेन मी, नॉट ऑन यू, नॉट ऑन यू. तो जितना जल्दी आई विल बी एबल टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम माय आइडिया ऑफ व्हाट इज, दिस इज माइन, दिस इज व्हाट आई थिंक इज राइट, आई विल बी एबल टू सी योर पर्सपेक्टिव. और इस तरह अगर हम सारा दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड है ना हल्का रहता है. नहीं तो सबकी बहुत सारी क्लटर जो है वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, एक इंटरनल चैटर जो है ना वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है. और फिर साइलेंस प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा दिन अगर बहुत सीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो अगर मॉर्निंग में साइलेंस में बैठने की भी कोशिश करेंगे अपने आप को देखने की, लेकिन वो सारा दिन जो नॉइज़ क्रिएट की थी वो ही वापस रिप्ले होने लगती है. तो साइलेंस सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, वॉचिंग योर थॉट्स सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, लेकिन सारा दिन, सारा दिन कि इस परिस्थिति को साक्षी होकर जिसको देखना, एंड साक्षी मीन स्टेबल स्थिति में. तो लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, सो वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड कि लेट मी फर्स्ट लुक एट द सिचुएशन. अब उस समय ये नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि जैसे ही सिचुएशन आए अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम कर नहीं सकते. हम ये कर सकते हैं जो सिचुएशन गुजर गई है, लेट से
1: उसको एनालाइज कर लें
0: ताकि वो मेरा लर्निंग, नॉट उसके दर्द में चले जाए. दैट इज अगेन वेरी
1: इंपॉर्टेंट. वो तो हम जाते ही हैं, वो तो चलते ही रहता है हमारे साथ. कुछ हमारे साथ हो गया, किसी ने कल कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हो गया, वो दर्द तो कंटिन्यूस प्रोसेस हम अपने साथ रखते हैं.
0: फिर वो डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब दर्द नहीं. लेकिन अगर हमें पास्ट के सिचुएशन से कुछ सीखना है तो हम एक पल के लिए उस सिचुएशन को वैसे का वैसे सामने लाएं, लेकिन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, अगेन ऑडियंस में बैठकर कि वो सिचुएशन मुझे कैसी दिखाई देती है, ताकि उसमें आप सिर्फ, मैं अपना रोल नहीं लेकिन आपका रोल भी उतना ही इक्वली बैठकर देखूं, तो शायद मुझे उस सिचुएशन में क्लैरिटी और आती जाएगी. लेकिन सिर्फ अपने रोल पर देख रहे हो और आपके रोल को तो बिल्कुल दूसरी साइड से देख रहे हो कि ये तो है ही गलत सारा कुछ, देन आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन, एंड देन माई माइंड इज फिल्ड विद सो मच ऑफ बिटरनेस, सो मच ऑफ पेन द होल डे. फिर क्लैरिटी और स्टेबिलिटी ये पॉसिबल
1: और सेल्फ को लेके जो सेल्फ पिटी वाला एस्पेक्ट है कि मेरे साथ गलत हुआ, बट जब भी मैं एनालाइज करने लगती हूँ अपने साथ जो सिचुएशन हुई होती है, चलिए खुद अंदर भी एनालाइज कर रहे हैं, तो हर बार मुझे नजर आता है कि मेरे साथ गलत हुआ. मैक्सिमम लोग यही सोच पाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, तो एक साक्षी भाव यानी कि मैं अपने आप से भी परे हूँ.
0: यस,
1: और उससे भी परे हूँ.
0: यस, और उसमें जो हम आगे देखेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो है डिटैचमेंट कि मैं कौन हूँ. ये सब तो मेरे रोल्स हैं, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब मेरे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ. वो मैं जब इस पूरे ड्रामा को देखेगा तो वो ड्रामा को उसके सही परिपेक्ष में देख पाएगा, नहीं तो इट गेट्स सक्ड इन टू द ड्रामा. You know, it just gets consumed by the whole scene, and then it can't see the scene in its right perspective. तो इसको अगर हम सारा दिन में, मुझे अगर रोज़ की अपनी तैयारी करनी है तो इसकी प्रोग्रामिंग मुझे सुबह से शुरू करनी पड़ती है. तो इसको हम आज तो 2 मिनट के लिए अभ्यास भी करेंगे, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल एक दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे 24 आवर्स. आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कल जब आप फिर प्रोग्राम देखेंगे आप तब तक अपनी चेकिंग करेंगे कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक प्रैक्टिस करनी है कि वो हर सीन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, हर डायलॉग इंटेंगलमेंट जैसे जैसे होती जा रही है, एक दिन के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको देखने की कोशिश करें, रादर देन गेटिंग कंज्यूम्ड इनटू द ड्रामा. इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे इन अ वेरी ईजी मैनर, बिकॉज हमें आदत पड़ी हुई है उस सीन के अंदर जाने की. तो डिटैच्ड होने के लिए शुरू में, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हमें उसी सीन के अंदर 2 मिनट साइलेंस कर लेना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, एवरीवन इज गोइंग इनटू केओस, क्या होगा कैसा होगा, जस्ट 2 मिनट स्टेप बैक एंड ट्राई एंड लुक एट द सीन. आपको वो सीन बहुत बड़ा पता चलेगा कि इतना बड़ा है नहीं. जैसे ना कभी कंपनी में होता है प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ओ यू विल फाइंड दैट इट जस्ट गोज इनटू केओस, क्या किया तुमने, नहीं किया ऐसा, नहीं हो, स्टेप, स्टॉप बैक 1 मिनट, तो जैसे ही आप ये स्टेप बैक अगर कल प्रैक्टिस करेंगे, यू विल रियलाइज वेरी सून एक बहुत वंडरफुल चीज, और वो ये कि मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में,
1: क्योंकि मैं कर पाई।
0: Yes.
1: Even step back में तो मैंने अपने आप
0: डिसाइड किया। मैंने तो किया अपने आप। सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे करना है, एंड भले थोड़े दिन अटेंशन से करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम वेरी इजी टू डू, कि देन वी विल रियलाइज कि परिस्थिति ने क्रिएट कर रही है ये सारा जो हम क्रियोस क्रिएट कर रहे थे, ये जो मैं अभी तक शोर मचा रही थी इस तरह से, ये मैं खुद ही बना रही थी, परिस्थिति तो वैसे की वैसे है। एंड धीरे धीरे वो रियलाइजेशन, जो ज्ञान समझ में आ गया है कि परिस्थिति नहीं स्थिति क्रिएट करती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, वो परिस्थिति में हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। विल यू ट्राई टुमारो?
1: वेरी ट्रू।
0: यस, लेट्स डू 2 मिनट्स मेडिटेशन। इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आज सारा दिन जैसे जैसे मैं अपना रोल प्ले करती जाऊं, तो मुझे सिर्फ एक स्मृति रखनी है, मैं एक्टर हूं, ये मेरा रोल है, और मुझ एक्टर को इस रोल को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और मुझ एक्टर की विशेषता है, I am a powerful being. मैं शक्तिशाली हूँ, और इस शक्ति के साथ मैं हर रोल प्ले करने वाली हूँ आज। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मेरे चारों तरफ कुछ भी हो जाए आज सारा दिन, I am a powerful being. I'm the master of the situation. जैसे ही मैं ये परिस्थिति में ये स्मृति रखती हूं, तो परिस्थिति छोटी होती जाती है। Just one thought to take with me today the whole day. I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। And I am master of every situation. परिस्थिति मेरी रचना है। अगर आप सुबह कुछ देर, ये तो हमने बहुत, but this is a conversation. This is a mental programming that I am doing. Now I will do this again tomorrow morning. And कल की अपने दिन को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि नॉर्मली पता होता है आज सारा दिन में क्या क्या सीन्स आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड अपने आप को उन सब सीन्स में देख लीजिए ऑलरेडी कि यू आर गोइंग टू रिमेन स्टेबल। सो दिस इज अ सीन, यू नो दिस इज अ सजेशन विच आई एम ऑलरेडी टेलिंग माई सेल्फ कि दिस इज योर कैपेसिटी, तुम ये कर सकते हो। क्यों? बिकॉज यू आर अ पावरफुल बींग। लेकिन अगर मैंने अपने आप को थोथ दिया, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, that will be the result.
1: Mm-hmm.
0: The thought is creating destiny, right? So just the thought, I am a powerful being. Paristhiti is here, I am here. Paristhiti mere upar nahi, main apni sthiti se paristhiti ko parivartan karti hu. Start the day, un thoughts ke saath. Aur phir jaisa hum har baar karte hain, har ek ghante ke baad ek minute, beech mein, that's very important. Kyunki thoughts for kai baar कहाँ कहाँ चली जाती है और फिर पता ही नहीं चलता, तो इसलिए बीच में रुक कर कल एक ही थॉट लेते हैं सिर्फ, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ। और हर एक घंटे के बाद उसे एक ही थॉट को ही लेना है, लेट्स नॉट डू टू मच हार्ड वर्क, एक थॉट, आई एम अ पावरफुल बींग। वो एक थॉट मुझे सारी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाता है बिल्कुल। So let's try that out tomorrow.
1: And we should all try actually. Sister Shivani, thank you so much. आज जो हमने बात की, और यहीं से positive thinking क्या positive life शुरू हो सकती है, you know, क्योंकि यहीं से thought जो है वो मेरी positive destiny बनता जाएगा. Thank you so much. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: कोई सवाल कोई बात आपके पास है, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999 3445, 0999 3446, 0987366655, 9999744555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन जिस पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस पर हम चल रहे हैं वो हमारा अपना अनुभव हो सकता है। हर रोज़ का अनुभव, हर रोज़ का होमवर्क हमें मिल रहा है जो कि हमें एम्पावर करेगा, हमें वो खुशी देगा जिसे हम शायद सिचुएशंस में भूलते जा रहे थे, उसके अंदर सक्ड इन होते जा रहे थे। तो अब हम सिचुएशन से ऊपर हो जाएंगे, ये हमें एक एश्योरेंस मिल रही है। आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। ओम शांति।

हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन, मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार धरें।

0: ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर।

वो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर, हर तरफ हर जगह

दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर, रोशनी का कोई

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे? है कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशय करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। आज मम्मा डे के दिन विशेष कार्यक्रम शांतिवन के डायमंड हॉल में रहा, जहां पर सबको फल और भोग का पैकेट दिया गया, जिसमें बहुत ही सुंदर मम्मा के अनुभव सुनाया दीदी ने और सभी को जो है संबोधित करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अभी हम पहुँचे हैं आपके पास तो आइए अवधनम सीता रमन विशेष इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर में। और ब्रह्मा कुमारीज के विशेष जगदम्बा सरस्वती मम्मा जी के बारे में भी कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी अगर उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से हम बताते रहते हैं, तो आप ज़रूर उनके बारे में जानते ही होंगे। 24 जून आज का तारीख है और ये ख़ास दिन है, जो ख़ास 24 जून को मनाया जाता है। तो मम्मा जो विशेष फाउंडर मेंबर में से एक थे, उनके अव्यक्ति दिवस को विशेष रूप से मनाया जाता है। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बोलिए गुड़ीलाल जी।
1: आज है ना
0: जी मम्मा
1: गणेश जी का बार
0: जी,
1: तो वो शंकर जी का डमरू बाजे और पार्वती का नंदन बाजे, वो सब लगा दो अच्छा लगेगा हमारे को भी को मेरा क्या तार
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कोई बात नहीं
0: जी।
1: सभी को प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक रहेगा, यूँ अच्छा लगता है मिलती है तो हमारे दिल के अंदर शांति नहीं मिलती
0: है।
1: आपके साथ में आपकी हमारे हो जाएगी तो मजा आ जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए, ये थे हमारे गुड़ीलाल जी जो अपने हंसी के साथ कार्यक्रम में अपनी शिरकत की। और आइए बात करते हैं शंकर जी का डमरू बाजे ये गीत आपने सुना ही होगा और बड़ा ही प्यारा सा गीत है और आनंदित और उल्लास कर देने वाला ये गीत अभी आपको सुनाते हैं। और मम्मा जी के बारे में भी आपको सुनाएंगे कुछ बातें उनके जीवन कहानी से जुड़ी हुई। मम्मा कौन थी, अगर ये सवाल आपके अंदर आती है तो आध्यात्मिक माँ कह सकते हैं। मम्मा ब्रह्मा कुमारीज में मातेश्वरी के रूप में बहुत ही अच्छी पॉपुलर रही। उन्हें ज्ञान, पवित्रता और मातृत्व की साक्षात मूर्त माना जाता है और वे ब्रह्मा कुमारी संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका थी। और मम्मा बहुत निर्भीक, शक्तिशाली और सदा योग में स्थित रहने वाली आत्मा थी। उनका मुरली सुनाने का तरीका अत्यंत ही प्रभावशाली, एकाग्र करने वाला था, जिसके लिए आज उनको याद किया जाता है उनके इस स्मृति दिवस पर। आइए एक दोस्त और जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार।
2: सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शांति,
0: सुरेश जी स्वागत है, बताइए कैसे हैं आप।
2: बहुत अच्छे हैं। पहले तो हमारे जो मातेश्वरी जगदम्बा
0: जी जी जी
2: हमारी तरफ से चरण में नमस्ते हैं,
0: नमस्ते,
2: नमस्कार हैं, श्रद्धांजलि देते हैं मातेश्वरी मम्मा को। और कई सारी बातें हम सुनते रहते हैं और हमें पाठशाला में भी आज कार्यक्रम रखा गया है मम्मा के बारे में।
0: अरे वाह,
2: और हमारे तो ऐसा कार्यक्रम हर रोज होता है, जो जानकी दीदी का होता है,
0: तभी
2: जो हमारे वहाँ रुखसत हुए हैं उसका सबका दो दिन जाते हैं और सबको अच्छा रहता है बात सुनने में। तो आज मम्मा को वो मंडली के नाम से ही जाना जाता था पहले,
0: क्योंकि
2: पहले शुरुआत की थी हमारे मम्मा जी ने कि वो मंडली से शुरुआत की थी, छोटा छोटा सा जो गांव में रहते थे। और कहते हैं ना जो भी लोग भजन करते हैं ऐसे भजन करते थे मम्मा जी, और बाद में धीरे धीरे उसको थोड़ा मंडल बढ़ा और धीरे धीरे
0: जी जी
2: तो अच्छा ओम मंडली का नाम रखा गया।
0: बिल्कुल
2: और
0: बिल्कुल,
2: जगदम्बा मातेश्वरी मम्मा देवी के नाम से जाना जाता है। तो शुभकामनाएं देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। मम्मा का तो कई सारे गाने हैं, आप उसकी पसंद का सुना देना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है, नमस्ते।
0: नमस्ते, ओम शांति, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए अब समाचारों की तरफ चलते, पहले आपको समाचार सुना देते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे।
3: वाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की है। कतर के अमीर ने रविवार को रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति को रोका और इंटरनेट भी वहां बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
4: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
3: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को और आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इससे पहले श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मैच में आज ग्रुप के में कोलंबिया और कांगो के बीच मुकाबला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अगले 3 दिन तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, आध्यात्मिक गीत। इसके साथ ही आइए, मैं बात कर रहा था अवध नाम सीता रमन के बारे में, और विशेष रूप से इनके बारे में। भारतीय लेखक और पत्रकार थे, साहित्यिक और सांस्कृतिक त्रैमासिक त्रिवेणी जैसे अंग्रेजी और तेलुगु प्रकाशन में इन्होंने विशेष योगदान दिया था। तो लंदन और अलग अलग जगह पे इनकी पत्रिका द स्टूडियो में एक कला सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया था। आइए अब बात करते हैं मम्मा के बारे में। जैसे मम्मा के बारे में हमने बातें की और सुरेश जी ने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई। उनके यहाँ विशेष आज सेलिब्रेशन यानी एक दिन मनाया जाता है और काफ़ी लोग आएंगे, वहाँ प्रसाद भी होगा और मम्मा के जीवन कहानी से जुड़ी हुई बातें भी सुनाएंगे। तो मम्मा का विशेष योग और ध्यान पर काफ़ी आकर्षण था। और जिस दिन सभी ब्रह्म आज के दिन विशेष ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर सुबह ये ध्यान मेडिटेशन का कार्यक्रम होता है। मम्मा के जीवन से प्रेरक प्रसंगों को, शिक्षाओं को, गुणों का याद किया जाता है और मातेश्वरी जी की याद में विशेष आध्यात्मिक गीत भी गाए जाते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किया जाता है। मम्मा का पूरा जीवन स्वपरिवर्तन के लिए स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन इस सिद्धांत पर समर्पित था। उनके जीवन का मुख्य संदेश यही था कि हर व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में लाकर एक शांत और दिव्य जीवन जीना चाहिए। तो इन्हीं शिक्षाओं के लिए वो काम करती रहीं, लोगों को बताती रहीं और ये ज्ञान उन्हें परमात्मा से प्राप्त हुआ और उनसे ही वो ये सारी बातें। उनका एक निश्चय था कि एक बाबा दूसरा न कोई, और इसी पदचिन्हों पर वो चलकर अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिक देवी के रूप में लोगों को साक्षात्कार कराते रहे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तनमन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, मम्मा दिवस पर मम्मा दे की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहे थे। और मम्मा ब्रह्मा कुमारी में मातेश्वरी नाम से जानी जाती थी, और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता था तो उनका ही होकर रह जाता। कई बार ऐसे शुरू शुरू में जब संस्था शुरू हो गई थी तो लोग जो है, कुछ लोगों को कोई भी नई चीज़ आती, जैसे आप भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ गई, स्मार्टफोन आ गया, तो कुछ लोग अभी तक स्मार्टफोन नहीं यूज़ करते, उनको जमता नहीं वो चीज़ें, या वो अपने मन को समझाते नहीं हैं कि ये ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ लोग, जैसे ब्रह्म कुमारी संस्था इस्टेब्लिश हो गई, लोग वहाँ जुड़ने लगे, तो कुछ लोग अलग थे कि ये क्या है नया प्रकार, तो वो उसके एंटी थे। ऐसे लोग भी जब मम्मा से मिलते तो वो आकर मम्मा से मिलने के बाद बिल्कुल माँ माँ कह के चले जाते थे। माना वहाँ पहुँचते ही मम्मा के सामने उनकी दृष्टि पड़ती ही इनके अंदर एक परिवर्तन सी बात आ जाती थी, और उनको लगता था ये मेरी माँ है। तो ये जो फीलिंग है उनके द्वारा उनको मिल जाती थी, उनका तपस्या का और उनकी तप का कमाल था, उनका ज्ञान का प्रकाश का कमाल था। तो आइए, अभी हमारे साथ कमलेश जी आ गई हैं, एक बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाने वाली हैं। और 9:30 हो रहे हैं, आप हो हमारे साथ नई किरण कार्यक्रम में। जी कमलेश
1: जी, नई किरण कार्यक्रम सुनने वालों को कमलेश की प्यार भरी नमस्कार। और रमेश भाई जी, आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: तो मैं आपको गीत सुनाने लगी हूँ जो कि बहुत पुराना गीत तो नहीं है, लेकिन अपने समय का बहुत ही मशहूर गीत है।
0: जी जी जी,
1: ये गीत फिल्म अखियों के झरोखों से, और आपको पता ही होगा कि उस समय लोग इस गीत को बहुत सुनते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हम लोग भी कॉलेज टाइम में बहुत गाते थे इसको। तो वो दिन याद आ गए मेरे को जब मैंने इस गीत को देखा। गीत है

0: रमेश जी इसके गीतकार रविंदर जैन और हेमलता जी ने बहुत ही खूबसूरत आवाज में इसको गाया। रविंदर जैन जी का ही संगीत रहा और मूवी थी अखियों के झरोखों से।
1: अच्छा,
0: 1979 में ये फिल्म आई थी और बहुत चली थी अपने समय की ये फिल्म। गीत भी बहुत मकबूल हुआ था। तो अभी कुछ नया आप अपने सुनने वालों के लिए लेके आ रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत के बारे में बातें करेंगे और मम्मा के भी कुछ अनुभव अगर आपके पास हो एक हाथ जो आपको अच्छा लगता हो तो जरूर बताइए।
0: मैं पहले ही बताने वाली थी
1: जी।
0: तो गीत शुरू हो गया थोड़ी जल्दी में, तो उसके लिए माफी। और मम्मा के बारे में तो बात करना हर दम हर पल ही हमारे मन में रहना चाहिए। आज उनका खास स्मृति दिवस है, उनको याद किया गया और मधुबन में इतने ज्यादा जो है बाबा के बच्चे थे आज जिन्होंने मम्मा के गुणों को सुना। और मम्मा ने कहा कि कोशिश में रहो कि जो गुण धारणी आत्माएं हैं, हम सभी जो बाबा के बच्चे बन गए उनमें ये ताकत है कि हम गुणों को धारण कर सकते हैं। तो मम्मा जो है लगन से प्यार से साकाश देती थी आने वालों को मिलने वालों को, और बाबा की बड़ी आज्ञाकारी रही क्योंकि बाबा पर उन्हें बहुत विश्वास था। जो बाबा कहते थे वही वो, किंतु परंतु नहीं, कोई सवाल नहीं, बस उनको करना है और चुपचाप उस काम को समय पर करके बता देना है कि ये बाबा ये काम हो गया।
1: बिल्कुल,
0: तो ये भरोसे का रिश्ता है जी। और बाबा और मम्मा का ये रिश्ता जो बहुत प्यारा रिश्ता रहा, जिन्होंने करोड़ों आत्माओं को बचाया, करोड़ों आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ने की उनमें ताकत रही, तो उनको नमन है हमेशा ही हृदय से दिल से। मम्मा जो जीवन भर इस काम में इस कार्य में लगी रही और उन्होंने समय के पाबंद होकर समय के साथ सब काम किए। और आप देखिए कि उनको बहुत बड़ा पेपर आया उनके जीवन में जब वो थोड़ा सेहत के पक्ष से बीमार थोड़ा आगे पीछे रही, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि ये बाबा की मर्जी है। तो उन्होंने उस समय को इतनी दृढ़ता से उसका सामना किया, इतनी मजबूती से उसका सामना किया जो हमारे लिए मिसाल है। तो हम छोटी छोटी बातों पर जो घबरा जाते हैं या डोल जाते हैं, तो उन चीज़ों को हमें सीखना चाहिए कि मम्मा ने हमें इतनी बड़ी जगह दी है जहां हम, ख़ास करके मैं बहनों को कहूंगी कि उनको जो महत्व दिया गया है संस्था के द्वारा कि उनमें शक्ति है, वो शिव शक्ति हैं, शिव जी को भी उनसे शक्ति मिलती है और ये शक्ति को वो संभाल कर रखे और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को आने वाली बहनों को समझाएं कि दृढ़ता से मजबूती से लगन से मेहनत से ईमानदारी से आत्मिक तौर पर जब वो आगे बढ़ेंगी तो समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो मम्मा को नमन है, उनकी श्रद्धा हम सुमन उनको अर्पित करते हैं, वो हमारी यादों में बसी हुई हैं, वो जो है हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं, उनके गुण जो हम धारणी करने और धारण करने के लिए अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: श्रद्धा सुमन भेंट है उनको हमारे। और आज बाबा के बच्चे इतने ज्यादा मधुबन में जैसे पक्षी होते हैं ना, सफेद घूम रहे थे उड़ते पंछी, हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है, हर बाबा का बच्चा लगन से काम कर रहा है। इतना ज्यादा हमें खाने पीने की मौज और इतना माहौल कूल और शांत है, वातावरण इतना शांत है कि पता ही नहीं चलता कि इतने बाबा के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सब उनका ही आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, बाबा का और मम्मा का। तो उनको साथ लेके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को हेलो जी नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार, आपके बहुत खूबसूरत विचारों को और बहुत अच्छी बातें की, सबको नमस्कार करते हैं, रेडियो मधुबन को, नवे किरण को और रमेश जी को और हमारे कमला बहुत बहुत
0: उनके नाम से भी कमला ही निकलता है, नया नाम रख दिया इन्होंने।
2: आज मैं सुबह सुबह निकला था
0: जी,
2: तो स्कूल के जब बच्चे निकलते हैं चाहे बड़े हो या छोटे हो, मुझे वो रोड वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगता है कि वो बच्चे के अंदर खुशी और खेलने का होता है।
0: बिल्कुल,
2: सुबह स्कूल जाते हैं जब भी और शाम को आते हैं जब भी, तो मैं उन बच्चों को देख के बड़ा आज खुश हुआ था और सभी के बचपन को याद कर रहा था। तो फिर वो गाना याद आया, रे जा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर मैंने बोला बच्चे यहाँ हिंदुस्तान में है या अमेरिका में है कहीं भी है, बच्चे बच्चे ये जहाँ वो बच्चे हैं वहाँ अच्छा ही। तो जी और हम ये कहेंगे और बच्चे के ऊपर और भी सुनाएंगे आज सुप्रभात और ओम शांति। और हमारे जी भैया कई डॉक्टर साहब और बातें करते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं सभी के लिए। और अभी सुन रहे हैं नवी किरण को और रात को सुना था आदियाना भी, बहुत अच्छा लगा। और क्या कहेंगे बच्चे के बारे में, और गाना गाएंगे याराना फिर का है चूम के गाओ संग संग दुनिया चूमे किशन चाचा तुम बड़ी ला ला ला ला ला ला
1: वाह बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और ममता की मूर्त मम्मा की बातें चल रही थी, उनका ही एक बहुत ही प्यारा सा श्रीमती गीत आपको सुनाते हैं।
0: माँ जगदम्बा माँ सरस्वती का रूप

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:46 हो रहे हैं और मम्मा की बातें चल रही थी और बहुत ही प्यारा सा मातृत्व प्यार से भरा हुआ गीत आप सुन रहे थे। आइए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब उनके जन्म लोगों का जो जन्मदिन है जिनका भी, और आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में भी जिनका भी जन्मदिन है, तो हमें फ़ोन करके 9414151415 इस नंबर पे आप बताइए कि आज इनका जन्मदिन है तो हमें बेहद खुशी होगी। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: हेलो जी नमस्कार, भाई जी नमस्कार।
0: जी जी जी,
1: आज कृष्णा कपूर का जन्मदिन है।
0: इसका है
1: कृष्णा कपूर का
0: कृष्णा। अच्छा अच्छा,
1: हाँ तो हीरो नंबर वन इसका गाना भी है। तू मेरा हीरो नंबर वन।
0: ठीक है ठीक है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपने याद कराया उन्हें, बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो आइए आज जैसे कि भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 1937 में जगन्नाथ मिश्रा जी का भी जन्मदिन आज ही के दिन हुआ, और अंग्रेजी साहित्य की बहुत ही पॉपुलर लेखिका है अनिता देसाई, और 1937 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ओमकारनाथ ठाकुर। इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1897 को हुआ था। और प्रसिद्ध राजनीतिक तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह, 1885 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक थे दामोदर हरी चापेकर, 1869 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय लेखक, इतिहासकार, वक्ता और विद्वान थे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, 1863 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो और मम्मा भी आज ही के दिन, उनका अव्यक्त दिवस था, जन्मदिन नहीं था लेकिन उनको याद किया जा रहा है। तो चलिए जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को आप हमारी ओर से, रेडियो मधुबन की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और मम्मा का गीत आपको सुनाना चाहूँगा और मम्मा के खूबसूरत गाने आप सुनी रहे थे और निश्चित तौर पे जब हम लोग उनकी जीवन कहानी को देखते हैं सुनते हैं तो एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में बताते हुए भी आनंद आता है और उनको जिन्होंने देखा है वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने माँ मम्मा को देखा है। तो मम्मा पर बहुत सारे गीत बने हुए हैं और हर गीत में कहीं ना कहीं उनकी जो है जगदम्बा अम्बे माता शक्ति के रूप में, एक देवी शक्ति के रूप में याद किया जाता है और जहाँ भी वो जाती थी तो लोग पहले से ही उनके इंतज़ार में खड़े होते थे और जब भी उनके द्वारा जो भी प्रवचन सुनाए गए या बातें बताई गई हैं लोग उनको सुनते ही रह जाते थे क्योंकि एक उनकी प्रभा अलग चलती थी और एक शक्ति स्वरूपा के रूप में उनका जो गायन है उसी तरह का वाणी उनका चलता था और सटीक एकदम से बोल देती थी और उनका पूरा विश्वास था हुक्म ही हुक्म चला रहा है, अब कुछ नहीं बननी नाए जिसका गम हो। कहने का भाव यह है कि हुक्म ही हुक्म बना, जो संसार के रचयिता है वो अपना काम कर रहा है, उसने रचना रची है, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है उनको पता है, तो हम बीच में परेशान हो रहे हैं फुकट में, है ना। तो ये बात उनके अंदर पक्का था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तुम बस उस अपने आप से कोई गलती ना करें, हाँ हुक्म पे रहो और एक इंसानियत की जो सौम्यता है, सभ्यता है, दिव्यता है उसको पकड़े रहो। आज क्या हो गया संसार में, लोग जो है सौम्यता सभ्यता संस्कार को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं जिसके वजह से वो दुखी भी हो रही हैं और परेशान भी हो रही हैं। तो अब फिर से परमात्मा जो है हमें आकर ये बढ़िया सा भारत का प्राचीन राजयुग का शिक्षा देकर हमें फिर से सौम्य संस्कारी और सभ्य बनाने की प्रयास में लगे हुए हैं। तो जब कोई चीज़ बनना शुरू हो जाता है तो उसमें लोग जुड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी अगर इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जीवन में भी एक सुंदरता आती रहेगी, जीवन जो है बेहतर बनता जाएगा।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में, और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ममता की मूर्त मम्मा को याद करते हुए शक्ति अनुभव करें और कृतज्ञता अपना बनाए रखें। इस संसार में रह रहे हैं तो संसार को और संसार बनाने वाले के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने जीवन को बेहतर बेहतर बनाएं।

ममता की मूर्ति त्याग की पहचान थी। ममता की मूर्ति त्याग की पहचान थी। सादगी और सेवा की वो महान मिसाल थी। जगदम्बा माँ की जयंती पर करे नमन बार बार। जगदम्बा माँ की जयंती पर करे नमन बार बार। उनके आदर्शों से महके जीवन का हर द्वार। उनके आदर्शों से महके जीवन का हर द्वार। आज जगदम्बा माँ का जयंती दिवस है, तो इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। ईश्वर के दरबार में कभी भी स्वयं को मालिक मत समझिए, हमेशा दास बनकर चलिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर जंगों में दर्द है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय बताने वाली हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी देने वाली हूँ जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ढोकले। लेकिन किसके बने हुए वो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, ईश्वर के दरबार में कभी भी स्वयं को मालिक मत समझिए, हमेशा दास समझ करके चलिएगा। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रहे थे। एक विशाल नदी जो कि सदाबहार थी, उसके दोनों तरफ दो सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव मंदिर बना हुआ था। नदी के इधर एक राजा था। राजा को बड़ा अहंकार था, कुछ भी करता तो अहंकार का प्रदर्शन करता। वहाँ एक दास भी था, भक्त, बहुत ही विनम्र और सज्जन। एक बार राजा और दास दोनों नदी के वहाँ गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। दो नावें थी, रात का समय था। एक नाव में राजा सवार हुआ और दूसरे में वो भक्त सवार हुआ। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार न पहुंच पाया और सूर्योदय हो गया। तो राजा ने देखा कि दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। दास आया और देव मंदिर का गुणगान करने लगा। राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे? दास ने कहा कि हाँ। और राजा जी, क्या मनोहर देव प्रतिमा थी, वाह क्या बात है, मैं तो बहुत धन्य धन्य हो गया दर्शन करके, पर आप क्यों नहीं आए? अरे मैंने तो रात भर चप्पू चलाया। पर गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, वत्स बताओ कि राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर फिर भी उस पार क्यों नहीं पहुंचा, ऐसा क्यों हुआ जबकि उस पार पहुंचने में एक घंटे का समय ही बहुत है। शिष्य ने कहा, हे नाथ, मैं तो आपका बहुत सेवक हूँ, मैं क्या जानूँ, आप ही बताइए, कृपा करिए और आप ही बताइए। ऋषिवर ने कहा कि हे वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया पर उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। और इसी तरह लोग जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। हे वत्स, जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये न कहो कि ये मैंने किया, ये नहीं कहना है कि ये मेरा है, यह कहो कि जो कुछ भी है वो सदगुरु का है, समर्थ सत्ता का है, ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी का है। स्वयं को सामने मत रखो, समर्थ सत्ता को सामने रखो और समर्थ सत्ता या तो सदगुरु है या फिर अपने इष्ट देव। यदि ईश्वर के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम नहीं चलेगा, वहां तो दास बनकर रहोगे तभी कोई मतलब है। जो अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में ही रहता है। इसलिए कहा गया है, ईश्वर के दरबार में कभी राजा नहीं दास बनकर रहना है। और ये सिर्फ एक गुरु शिष्य की कहानी नहीं है, हम सभी के ऊपर लागू होती है कि हमें भी ईश्वर के समक्ष कैसे रहना है, दास बन करके या राजा बन करके, वो अब सभी को स्वयं सोचना है। और आइए अब फिर से एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।
2: प्रार्थना है, हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं, माई तो बचपन से गाती आ रही है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जंगों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, जांग में दर्द है तो आप एक चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच घी मिला करके खाइए सुबह सुबह खाली पेट, ठीक है, काफ़ी राहत मिलेगी। जंगा में दर्द है तो एक चम्मच अदरक का रस में एक चम्मच घी मिलाकर सुबह सुबह खाइएगा, भले इसको चाटिएगा भले पीजिएगा, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और भी आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रही हूँ। घुटनों का दर्द हो तो क्या करेंगे? घुटनों का दर्द दूर करने के लिए भोजन में खीरा ज़्यादा खाइए, ठीक है। अगर घुटनों का दर्द है तो भोजन में खीरा ककड़ी को शामिल करिए, खीरा ककड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा। दूसरा उपाय है घुटने के स्लेश कला शोथ सूजन में इस जोड़ में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो कच्चे आलू को पीस करके लगाइए, काफ़ी राहत मिलेगी। कच्चे आलू को पीस कर इसकी लुगदी बना करके लगाने से काफ़ी राहत मिलेगी। और भी जान लीजिए उपाय, घुटनों में दर्द नया हो या बहुत पुराना, मोठ के लड्डू खाइए, इसे शीघ्र ठीक हो जाएगा। घुटनों में दर्द नया नया ही शुरू हुआ हो, ठीक है, तो मोठ के लड्डू बनाकर खाइएगा, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। फिर देखिए, कमर दर्द है तो क्या करेंगे? आज मैं आपको मिक्स नुस्खे बता रही हूँ। मेथी

कच्चे आलू की पुलटिस बना करके लुगदी बना करके कमर में बांधिएगा तो कमर दर्द में राहत मिलेगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, आप चाहे तो आजमा सकते हैं और घुटने का कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके फायदे और नुकसान दोनों ही बताइएगा। तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब कृष्णमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आज का है जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइए नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण भी सिखाएंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है, उसके फायदे और नुकसान दोनों ही बताना है थोड़े थोड़े शॉर्ट रूप में, ठीक है? तो खुशनुमा जीवन के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, विषय को भी स्पष्ट कर सकते हैं। भाई क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ व्यस्त हो गए, अभी तो बारिश भी नहीं है, शादी ब्याह तो चल रहे हैं खैर, लेकिन कंटिन्यू तो होते नहीं है, गैप भी मिलता है, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो
1: दादी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल अच्छे जी, अच्छे तो दीदी रहना ही चाहिए। देखो हर रोज सुबह हमसे आपसे हम बात करते हैं, जिस तरह की बात सुनते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते हैं जी। और बस आराम से काम करते हैं, टाइम सर काम करते हैं, टाइम सर खाना खाते हैं, टाइम सर सो जाते हैं, बस वही तो चाहिए, और क्या चाहिए दीदी।
0: जी, जी, जी
1: जीवन तो यही का, इसका नाम तो जीवन है दीदी, वरना तो कहते न कोई उठल बाथल करता है, यानी कि कोई ऐसा खर्च कर देता है, खर्चा कर देता है, कोई काम धंधा नहीं करता है दीदी, उसको तो दिक्कतें रहेंगी हरदम
0: जी।
1: दिक्कत तो किसको रहती है, काम नहीं करता है, घूमता रहता है, एक दूसरे का जो एक दूसरे का जो लड़ता है झगड़ता है, उसकी उसकी मुसीबत रहेगी, लेकिन हमको तो कोई मुसीबत रहेगी नहीं
0: जी।
1: बस बहुत अच्छे है, काम कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, आज मम्मा का स्मृति दिन है तो हमारी तरफ से श्रद्धा से मनाती करते हैं दीदी
0: जी।
1: अच्छा ही सवाल आपने, अच्छा ही खुशनुमा जीवन की जो बात की है दीदी, एक बार दोहरा दीजिए।
0: हाँ जी, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइए नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। कहते हैं ना परिवर्तन आपको सफलता भी दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण भी सिखाएंगे।
1: जिंदगी का नाम तो दीदी परिवर्तन है, और परिवर्तन तो होता ही रहता है जीवन में। देखो हम छोटे हैं, छोटे होते हैं तब क्या होता है, थोड़ा बड़े होते तो थोड़ा सा बदल जाता है, उम्र होती है जिंदगी भी बदल जाती है, तो जिंदगी तो बदलती रहेगी, और ऐसे तो घबराना नहीं है जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा दीदी, सब कुछ आएगा, तो इससे कोई हारना नहीं है। देखो हम भी पहले बहुत ऐसे परेशान थे, सबक छोटे थे सब, ऐसा कई सारा ऐसा प्रॉब्लम आया, लेकिन हारना नहीं है दीदी, कभी हमने आदमी मानी, आज तक नहीं मानी और मानेंगे भी नहीं
0: जी,
1: क्योंकि परिवर्तन तो दीदी होता रहता है जीवन में, किसी के दिन अच्छा रहता है, किसी के दिन कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, किसी के दिन कोई, लेकिन हमको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है दीदी तो हमको कुछ सिखाते जाता है
0: जी, जी।
1: ऐसा नहीं कि भाई चलो भाई हम से कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हम घबरा जाएंगे अब क्या होगा, नहीं, इससे तो हम कुछ सीख पाते हैं, कई सारी बातें सीख पाते हैं
0: जी।
1: किसी को हाँ, किसी को कोई ऐसा ऐसा हो गया जीवन में, कोई सारा नुकसान हो गया तो भी दीदी हम कुछ सीख पाते हैं, चलो भाई इस रास्ते से अब नहीं जाना है, तो इससे कई सारा हमको भी नॉलेज मिलता है, लेकिन हम तो ऐसा करेंगे दीदी जीवन में परिवर्तन आएगा, जिंदगी परिवर्तन आएगा तो उससे घबराना नहीं है, अच्छा हो तो अच्छा है, वरना कोई ऐसी भी कई सारी परिस्थितियां जीवन में बदलती रहती है दीदी
0: जी,
1: तो बस हमने तो कभी आते हार मानी नहीं और मानेंगे दीदी, चलते रहते हैं हमारी गाड़ी अच्छी तरह से, चाहे दुख हो या सुख हो, बस चलते ही रहना है
0: जी। ओके नमस्ते, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जुड़नाना से, बहुत ही सुंदर आपने भी विषय को स्पष्ट किया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415, विषय बहुत ही सुंदर है, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल विषय है, आप जुड़ करके अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। देखिए आप अपने बचपन के दिन याद करिए और आज के दिन को आप याद करिएगा, कितना आपको परिवर्तन लगा होगा, है ना। एक समय था कि इतने साधन सुविधाएं नहीं थी, और आज देखे साधन सुविधाएं भरपूर है। तो परिवर्तन ही, वो कहते हैं ना कि जीवन का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन से ही इंसान आगे बढ़ता है, सीखता जाता है, स्वयं को चेंज करता जाता है और अपने मुकाम तक पहुंचता है। हम बचपन की बातें करें तो कहते हैं देखो पहले 25 पैसे चलते थे, 10 पैसे चलते थे, 5 पैसे चलते थे, फिर धीरे धीरे 5 पैसे बंद हुए, 10 पैसे बंद हुए, फिर धीरे धीरे 25 पैसे बंद हुए, फिर 50 पैसे बंद हुए, फिर 1 का सिक्का, फिर 5 का सिक्का, और आज 500 की नोट, बीच में तो 1000 की भी चली थी, वो बंद हो गई, बात अलग है। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। इतने चीज़ें कहाँ मिलती थी पहले, ड्राई फ्रूट भी घर में बड़ी मुश्किल से आते थे, शादी ब्याह में बड़े बड़े प्रोग्राम में ही आते थे, बाकी नॉर्मल वे में घरों में फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट इतने नहीं आते थे। और आज देखे ड्राई फ्रूट खराब हो जाते हैं तो फेंकने की नौबत आ जाती है। तो ये सब क्या है, परिवर्तन ही तो है ना, परिवर्तन है ये सभी। कि कहाँ हर चीज़ का क्रेज था और आज कोई भी चीज़ आप पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात हो गई। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और सब कुछ मिलेगा। पहले पैसा होने के बावजूद भी कहाँ सुविधाएं थी, कहाँ इतने सारी फैसिलिटीज़ थी, नहीं थी, लोग शांति से रहते थे और हाँ कुछ करने की कोशिश करते थे। आज हम वैज्ञानिकों को देखते हैं कितने रिसर्च करते रहते हैं, अगर वो भी सोच ले कि क्यों हमें परिवर्तन की पड़ी है, भाई दुनिया चल रही है ऐसे चलने दो, हम भी आराम से जिए और बैठ जाए, तो क्या इतना विकास हो पाता। आज हर चीज़ की मशीन है, जिसका नाम सुनो अच्छा उसकी मशीन ले आते हैं। अरे भाई सब चीज़ों की मशीन है, पोछा लगाने की मशीन, बर्तन मांजने की मशीन, हर एक चीज़ की, कहाँ ये सब कुछ था। देखते ही देखते देखते ही देखते कितना बदलाव आ गया, कितना बदलाव आ गया। पहले गिनी चुनी ट्रेन होती थी, बच्चे देखने के लिए दौड़ते थे, अरे ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, चलो रे चलो, भगो भगो भगो, और सब जाते थे देखने के लिए कि भाई हाँ ये ट्रेन का टाइम होता और पहुंच जाते बच्चे लोग ट्रेन देखने के लिए। और आज ट्रेन की भी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू मतलब बोले तो आज कोई बड़ी बात नहीं है, आज कोई भागता नहीं है देखने के लिए। कोई साइकिल चला लेती लड़की तो लोग देखने के लिए जाते, अरे देखो देखो फलानी लड़की साइकिल चला रही है। हेलो
2: हेलो उषा भाई बोल।
0: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई, कैसे हो आप?
2: बस बहन जी नमस्कार नमस्कार, सुप्रभात
0: सुप्रभात
2: जी। आज तो खेती का भी काम करना पड़ता है, गोबर का खाद डालना पड़ता है, खेड़ाई भी करनी पड़ती है, अब खेत तैयार करने पड़ते हैं तो खेतों में भी जाना पड़ता है।
0: जी जी अच्छा ये बताइए कंचन भाई, अभी आपके खेत पर पहले क्या चड़स चलती थी, वो बेल को लेकर के पानी निकालते थे, कुआं है आपके खेत पर?
2: हाँ कुआं था, मैंने चलाया भी है बैलों से, जो पोस्ट बोलते हैं।
0: जी जी जी हाँ शब्दों का फेर है, और शब्दों का फेर है, बेलों को लेकर के चलाते थे और पानी वो काले काले कलर के वो बड़े बड़े से बंधे हुए होते थे, उसमें से पानी गिरता था अंदर से भर के।
2: हाँ अंदर से भर के, कोई तो चमड़ी का था और कोई था जो पोस्ट बोलते थे ना हमारे
0: जी,
2: तो ये लोखंड का भी था, ये दोनों का था। तो हम चलाते थे इधर से दूर, लेके रस्सी बांधे हुई थी, बैलों को लेके जाते थे और हवाड़ा बोलता था ना वहाँ ये होता था और
0: जी,
2: फिर
0: जी,
2: फिर
0: जी।
2: वापिस आते थे।
0: अभी पानी मोटर से आता होगा है ना, स्विच ऑन किया और
2: अभी तो जी। काफी परिवर्तन आ गया बहन जी,
0: जी।
2: जैसे जैसे परिवर्तन, जीवन एक परिवर्तन है, पर इसका हमें उपयोग करना चाहिए, हमें एक ही पकड़ के नहीं रहना है। क्या है कि पहले तो ये था नहीं, तो ये सब करते थे, हमने भी किया है, ये चलाया है, बैलों को लेके पानी निकाला है, लेकिन अब तो इंजन आया फिर बाद में क्या हुआ डीजल इंजन, तो डीजल इंजन से भी हमने ये किया खेतों का काम और ये किया और उपज ली। फिर आई लाइट, तो लाइट से ये पंप आया
0: जी
2: लाइट का, तो इसका उपयोग हमने किया, तो ये अभी चल रहा है लाइट का
0: जी।
2: ठीक है, हाँ, ये परिवर्तन है बेंदी
0: जी,
2: तो ये हमें परिवर्तन जैसे जैसे परिवर्तन आए ऐसे ऐसे हम ये थोड़ा ये करें। हमारे सिलाई की काम का बात करें तो सिलाई पहले मोटर नहीं थी, तो पहले पैदल और मशीन भी ऐसा था जो
0: जी
2: ऑयल वाला नहीं था, वो सादा था, तो
0: जी
2: लाइट भी नहीं थी, तो लालटेन यहाँ रख के भी हम काम करते थे
0: जी।
2: लेकिन जब जब परिवर्तन आया, लाइट आई, ये सब आया, तो ये मोटर आई लाइट से चलने वाली
0: जी।
2: पहले कोयले से गर्म करते थे कैसे के पहले, तो अब खाली ये लगा देते हैं तो गर्म हो
0: जी।
2: तो ये परिवर्तन जब जब परिवर्तन आया इसका हमने एक किया
0: जी। देखते ही देखते तो, बदलाव आ रहा है। बदलाव कौन ला रहे हैं? हम ही ला रहे हैं, इंसान ही ला रहे हैं।
2: हाँ इंसान ला रहे
0: जी। तो बदलाव जरूरी है या नहीं है, या फिर जहाँ बैठे
2: है
0: वही
2: बिल्कुल जरूरी है बेटी, बदलाव जरूरी है, ये ही पकड़ के नहीं रहना है पहले वाले, तो ये सब पहले था नहीं, तो हमें ऐसे ही काम करते थे, लेकिन अब तो बदलाव आ गया। तो पहले जो गेहूं निकालते थे तो बैलों को गोल गोल गोल गोल फिरा के हमें गेहूं निकालते थे
0: जी,
2: अब तो ट्रैक्टर से ये निकालते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आई, ये सब आया, तो हमें इसका उपयोग करते हैं, तो झड़प भी हमारे ये होती है। पहले तो काफी समय तक खेतों में पड़ा रहना पड़ता था
0: जी,
2: ऐसा था
0: अनाज
2: को लेके
0: जी जी।
2: तो ये जब जब ये परिवर्तन आया इसका हमने किया, और ये जरूरी परिवर्तन
0: जी।
2: और अभी करवाया है हमारे स्पेशल रेडियो सुनने के लिए ही करवाया है हमारा नेशनल
0: जी,
2: तो आज करवाया है, तो अब तो हम बात करेंगे सुनेंगे भी।
0: अच्छा, अरे वाह,
2: का जवाब तो हम देते
0: जी। ठीक है,
2: अभी तो आपको नमस्कार।
0: हाँ जी, हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
3: जय माता
2: दी, जय श्री हरि। जी जय श्री हरि, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामना।
2: जी, आज के विषय आपके समक्ष रख रही हूँ, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। और आज का प्रश्न है वज्रासन।
3: प्रश्न तो बाद में।
2: चलो ठीक है।
3: जिंदगी में परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है
2: जी,
3: तब कितना प्यारा होता है
2: जी।
3: तो जैसे जैसे जन्म लेता है, उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसके शरीर में भी परिवर्तन होता है
2: जी।
3: आप जैसे आचरण दोगे और आचरण में भी परिवर्तन होता है
2: जी।
3: तो उसी तरह ही जिंदगी है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ आपको तुरंत ही ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएंगे और कुछ मतलब आपको नीचे भी ला सकते हैं, और आप कुछ आपको मेहनत करने के बाद भी आगे ले जाएंगे
2: जी।
3: तो परिवर्तन तो एक जिंदगी का नाम है। मतलब जिंदगी वो ही जी सकते हैं जिनके जिंदगी है, मतलब जीवन में परिवर्तन होते हैं। बाकी तो जिंदगी क्या है, फिर एक रुक जाएगी तो फिर खटारा नहीं बनेगी। जिंदगी में परिवर्तन तो होना ही चाहिए ना
2: जी,
3: तभी तो रंग भरेंगे ना, नहीं तो फिर वो खटारा हो जाएगा ना।
2: बेरंग
3: क्या काम का फिर
2: जी।
3: हाँ, क्योंकि परिवर्तन होंगे तभी निर्धन है तो वो करोड़पति बनेगा, और करोड़पति निर्धन भी बन सकता है परिवर्तन के साथ। तो आपको बस जिंदगी में परिवर्तन होते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मगर आपको अपने निरंतर अपने मार्ग पे कोशिश करनी है, आप क्रम करने हैं बस
2: जी।
3: तो आप में बस अच्छे परिवर्तन होते रहेंगे और आप एक सफल इंसान बनोगे
2: जी।
3: ठीक है, क्योंकि शरीर भी परिवर्तन होता रहता है, बचपन आता है, बूढ़ा युवा आता है, किशोरी अवस्था, फिर युवा, फिर बुढ़ापा भी आता है, और एक दिन अपन जीवन छोड़ के भी जाते हैं, तो परिवर्तन होता रहता है
2: जी। चलिए, बहुत अच्छा है, आज के प्रश्न का जवाब देंगे।
3: ऑब्वियस,
2: ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है। प्रश्न को दोहरा रही हूँ, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हाँ, भूरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
2: राम राम भूरा राम जी, कैसे हो? अरे भूरा राम जी, मैं बात कर रही हूँ, फिर से आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, काटिएगा नहीं, हम लगे हुए हैं। हेलो,
5: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
2: हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, हम अच्छे हैं, आप बताइए सुभाष भाई कैसे हैं आप?
5: बहुत जी बढ़िया हूँ, और कल का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, आज का भी बहुत अच्छा हो रहा है, और विषय भी बहुत अच्छा है, कि परिवर्तन जरूरी है, वो जिंदापन की निशानी है, पर कई कई परिवर्तन से अगर अपना नुकसान हो रहा है, सभी का खुशी गायब हो रही है, तो परिवर्तन में बदल कर रहना है, परंतु परिवर्तन ये अच्छा ही है, उमंग उत्साह बढ़ा के खुश रहना है, आगे बढ़ना है। और सवाल जो है दीदी, वो शायद वज्रासन है, अन्न पचन के लिए वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जॉइंट्स पेन है और वजन ज्यादा है तो श्वास का तकलीफ हो सकता है, इसीलिए संभाल के करना है, तुरंत नहीं, जरा अच्छी तरह से हलवार करना है वज्रासन। थैंक यू, सभी को नमस्कार, ओम शांति।
2: चलिए, बहुत बहुत आभार सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और बहुत ही सुंदर विषय है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, बैठ कर किया जाने वाला आसन मतलब कौन सा है, भोजन के उपरांत कौन सा आसन किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये आज का प्रश्न है। विषय भी बहुत ही सुंदर है, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। बहुत सुंदर विषय है। कितनी बार हम परिवर्तन के चक्कर में असफल भी होते हैं, फिर स्वयं की चेकिंग करते हैं, पता चलता है हाँ कहाँ गलती हुई, फिर उस गलती को सुधार करके हम सफल बन जाते हैं। ऐसा ही होता है, कोई भी नया काम हम शुरू करेंगे तो एक ही बार में तो सफलता नहीं मिलेगी ना, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत जाने सुझाग, तो वही अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी ही।
4: Hello.
2: हाँ जी, नमस्ते सगुना बहन।
4: नमस्ते, ओम शांति।
2: ओम शांति जी, कैसे हो?
4: बहुत अच्छे
2: जी।
4: आज क्या प्रश्न का जवाब दूं?
2: दे दीजिए।
4: भोजन के तुरंत बाद आसन जो करना है वो है वज्रासन। वज्रासन,
2: अच्छा, फायदे नुकसान भी बताइएगा।
4: फायदे तो उसके गैस जो होता है हमको, और खाना हजम नहीं होता है, इसके लिए है।
2: अच्छा,
4: हेलो,
2: ठीक है, अब देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम अंत में जवाब। हाँ जी, विषय है जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए, क्या कहेंगे आप?
4: हाँ तो जिंदगी हमारा परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे में तो एहसास नहीं होगा ना, जिंदगी में परेशानी आएगी हमको तो ही सुख दुख का अनुभव होगा ना हमको। हाँ, तकलीफ नहीं आएंगी तो हमें क्या पता चलेगा, तो कोई भी परिस्थिति आए तो घबराना नहीं है। हाँ, बाबा की याद में रहना है तो हमको शक्ति मिलती है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है
2: जी।
4: आज तो मम्मा रहे हैं
2: जी,
4: बहुत अच्छा दिन है हमारा, तो मम्मा की याद में, बाबा की याद में रहते हैं आज पूरा दिन।
2: बिल्कुल, मम्मा का स्मृति दिवस है आज।
4: हाँ, और अभी जितना हो सके उतना कम बोलना है
2: जी,
4: ऐसे तो रोज कम ही बोलना है, काम के बगैर कोई बात नहीं ज्यादा करनी है किसी से
2: जी।
4: हम तो थोड़ा थोड़ा तो नियम पालन करते ही है।
2: बिल्कुल, और इस तरह के दिन आते हैं तो पूरा अटेंशन हमारा उधर जाता है।
4: हाँ, और अभी तो देखो 8 दिन का जो सामान होता है ना स्वरूप का
2: जी,
4: वो कल से हमने शुरू किया है देवी स्वरूपा का।
2: अच्छा,
4: हम रोज सामान लेते हैं उसके स्वरूप होने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा दिख जाता है हमारे, उम्मीद याद रहती है, और कोई भी ऐसी बात आती है तो हमको ऐसे टेंशन नहीं आता है, खुश रहते हैं हम।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बहुत आभार सगुना बहन, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप भी जुड़िएगा और कोशिश करिएगा आज के प्रश्न का जवाब देने की, आज के विषय में अपने राय व्यक्त करने की। क्योंकि देखिए, खुशनुमा जीवन का भी विषय के लिए जो टाइम है वो एक टाइम लिमिटेशन रहती है ना, तो वो पूरी हो जाएगी फिर हमारे श्रोता बंधु जुड़ते हैं तो उनको रोकना बड़ा भारी पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हमारे श्रोता बंधुओं को रोकना पड़े, वो बोले लेकिन समय को देखते हुए जुड़े, ठीक है, अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर कहना पड़ता है बस टॉपिक चेंज। भाई अब आपको रेसिपी सिखा रहे, रेसिपी में आप खुशनुमा जीवन की बात करेंगे तो कहाँ काम चलेगा। इसलिए समय के अनुसार आप जुड़िएगा। और परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है, देखते ही देखते इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि देखिए आज कहाँ पहले लाइटें नहीं थी, आज कोई कमी नहीं, गर्मी लगती है तो एसी, कूलर, क्या क्या सुविधाएं नहीं जुटाई, सब कुछ मिला है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए और इतने आविष्कार हो चुके कि आज तो पहले के समय की और आज की तुलना करें तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और आज के बदलाव को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में कितना ज़बरदस्त बदलाव आया है। तो घबराना नहीं है, बदलाव तो स्वाभाविक है। कितनी बार क्या है लोग स्वीकार नहीं कर पाते। एक माताजी, उनको मैंने बोला कि माताजी मतलब बहुत चौथे पोछे पाँचवें फ्लोर पर जाना था, तो उनको बोला कि आप लिफ्ट सीख जाइए, सीढ़ियाँ चढ़ के मत जाइए, सुविधा है तो यूज़ करिए, नहीं है तो फिर अपने पैर तो है ही है। लेकिन माताजी को डर लगता है, बोले नहीं नहीं बेटे मैं कैसे लिफ्ट में जाऊँ, लिफ्ट कही गिर गई तो। मैंने कहा अरे इतने जा रहे तब तो नहीं गिरे, आप अकेले जाओगे कैसे गिर जाएगी। नहीं नहीं बेटा बहुत डर लगता है, जब वो माताजी अकेले जाते हैं किसी को कहते नहीं है और जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ करके जाते और सीढ़ियाँ उतरते हैं, लिफ्ट यूज़ नहीं करते कि नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना है, मैं गिर जाऊँगी लिफ्ट में। डर को भगाना होगा, डर नहीं भागेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना सिंपल है, उनको बोला कि देखो खाली बस जीरो दबाओ तो ग्राउंड फ्लोर पर, और एक दो तीन चार पढ़ना तो आता ही है, चौथे फ्लोर पर जाना हो तो चार पे दबाओ, ऊपर पहुंच जाओगे, ऑटोमेटिकली लिफ्ट है, न खोलना न कुछ करना, बंद करना अपने आप खुलेगी, अपने आप बंद करो। अरे मैं तो फंस जाऊँ तो, कहीं नहीं खुली तो देखिए बदलाव से डरना नहीं है भाई, आप रिस्क लेंगे नहीं तो कैसे आपको कामयाबी मिलेगी। सिखाने वाले हमें सिखा देते हैं लेकिन कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। और सिखाते समय बड़ी घबराहट सी होती है, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे सीखूंगी क्या करूंगी। लेकिन जब हम खुद कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और उसको दो बार खोला, दो बार किया, फिर आता है तो बड़ी खुशी होती है कि अरे हमने तो सीख लिया, कितनी खुशी होती है। तो यही बात है ना सभी के ऊपर। हमने कहा उनको कि अरे लिफ्ट में ऐसे करिए, आप हमारे साथ चलिए, तो उनको साथ चलते समय बताते देखिए अब या आप खुद अपने हाथ से दबाओ, जाते समय कहते खुद अपने हाथ से दबाओ, उस समय दबा देते चल पड़ते हैं, अकेले पड़ते और पता नहीं क्या होता है लिफ्ट में नहीं जाते और सीढ़ियाँ ही चढ़ते हैं। तो भाई बदलाव आया है तो हमारे को भी बदलना है। अभी जैसे समय के साथ बदलाव आया, पहले एक समय था कि बहू आती थी तो सासुए रुआब झाड़ती थी और सासूपन दिखाते थे, पहले बहुओं के साथ बहुत अन्याय होता था। और आज के बदलाव में काफ़ी भिन्नता नज़र आई है, कहीं कहीं पर बहुएँ हावी हो जाती है लेकिन सास एकदम ठंडी ठीर हो रहती है। तो इतना बड़ा बदलाव आया है तो बदलाव से डरना नहीं है और बदलाव का गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना है, ठीक है। बहू भी अपनी मर्यादा में रहे, सास भी अपनी मर्यादा में रहे, प्यार से एक दूसरे से रिश्ता बनाए रखे, प्यार से एक दूसरे के बाद साथ बातें शेयर करते रहे तो इस तरह के झगड़े बगड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो बदलाव खुद के हाथ में है, बदलाव खुद को लाना है और बदलाव हो रहा है उसमें घबराना नहीं। लोग निंदा करने बैठ जाते, अरे देखो देखो फलाने को देखो, ये देखो वो देखो, अरे भाई क्यों देखना है, खुद को देख लीजिए ना, खुद को देखने का भी टाइम नहीं है, हम दूसरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो जैसे चल रहा है उनको चलने दीजिए, आप शुभ भावना रखिए स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी, तो शुभकामनाएं ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए बस कहने का भाव यही है, जीवन परिवर्तनशील का नाम है, परिवर्तन तो होना ही है। तो आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है। ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो अब फिर से अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
6: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
7: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि ढोकला। लेकिन किसका ढोकला बनाएंगे? जी हाँ, सूजी का। सूजी का ढोकला क्या है, नुकसान नहीं करता है, और जब चाहे आप फटाफट बना सकते हैं। बच्चे जैसे ही चिल्लाए ढोकला खाना, ढोकला खाना, तो आप फटाफट उनको बोलो कि 15 मिनट में अभी बना के खिलाते हैं। तो इंस्टेंट ढोकला, ठीक है। सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। आप सूजी लीजिएगा, अपने घर के सदस्यों के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। फिर दही लेना है, खट्टा वाला। स्वाद के अनुसार नमक लीजिएगा। राई लेना है, इनो ले लीजिएगा। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लेना है। धनिया की चटनी लीजिएगा और तेल लेना है। सजावट के लिए ले सकते हैं टमाटर, खीरा और कसा हुआ नारियल, मतलब कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, अपने डायरी में नज़र डाल दीजिएगा। सूजी ले लीजिए, दही लेना है, राई लीजिएगा, इनो लीजिएगा, और अदरक और हरी मिर्च लीजिएगा। धनिया की चटनी लेनी है, नमक लीजिएगा अपने स्वाद के अनुसार, और तेल लेना है। सजावट के लिए टमाटर, खीरा, कद्दूकस किया हुआ नारियल, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखाने जा रही हूँ। आप क्या करेंगे, सूजी को मतलब पहले तो छान लीजिए। छान करके दही के अंदर कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए, ठीक है। फिर आप कढ़ाई में तेल गरम करिए और राई और उड़द की दाल को भूनिएगा। आप अदरक हरी मिर्च ली है, धुलाई करके इसकी पेस्ट कर लीजिए और ये पेस्ट डालिएगा। पेस्ट फ्राई करने के बाद आप नमक डालिएगा और अब एक कटोरी पानी और सूजी मिक्स कर दीजिए दूसरी तरफ, ठीक है। कुकर में पानी डाल करके ढोकला गरम कर लीजिए और तेल लगा कर उसकी 2 प्लेट डिश तैयार कर लीजिए। सूजी के घोल में इनो डाल करके अच्छी तरह फेंट लीजिए और तुरंत तैयार डिश में, जो प्लेट हमने तैयार की ना, तेल लगा करके उसमें डालिएगा। और ये प्लेट कुकर में रखी है, भले कुकर में रखने के बाद आप इस मिश्रण को डालिएगा और ऊपर मतलब आप कुकर बंद कर दीजिए। फिर लगभग 15 मिनट तक इसको पकाइए। फिर आप गैस बंद करके निकाल दीजिए प्लेट को बाहर और ठंडा होने दीजिए। एक प्लेट में पहले एक बेस को रखिए, उस पर चटनी लगाइए, फिर दूसरे बेस रखिए, किनारा छोड़कर चटनी लगाइए। टमाटर, खीरा और कच्चे नारियल से आप गार्निश करिए और हरी चटनी या नारियल चटनी के साथ सर्व करिए। तो ये बन गया सूजी का ढोकला। अब मैं फिर से एक बार विधि दोहरा रही हूँ, आप अच्छी तरह सुन करके बनाइएगा। सूजी को छानिएगा और दही में इसको भिगो दीजिए, ठीक है। भिगो कर रख दीजिए कम से कम 4-5 घंटा, इसको दही में रहने दीजिएगा, भिगने दीजिएगा। और अब आप अदरक हरी मिर्च की पेस्ट करिएगा, राई उड़द की दाल को भून लीजिएगा गरम करके, और फिर अदरक हरी मिर्च की पेस्ट करनी है, ठीक है। फिर एक कटोरी पानी आप डाल करके, मतलब दही में तो सूजी भीगी हुई है, अब आवश्यकता के अनुसार पानी डालिए, ज़रूरत पड़े तो एक कटोरी, ज़रूरत पड़े तो और भी डाल दीजिए। और सूजी को अच्छी तरह इसका घोल तैयार करिएगा, मिश्रण तैयार करिएगा, ठीक है। और इसमें जब अच्छी तरह आप हिला लो, तुरंत ही इसमें आप इनो डाल दीजिएगा। इनो डाल करके आप जल्दी से हिला करके कुकर का, इडली वाला कुकर लीजिए, उसमें प्लेटें भी होती है, प्लेट में आप तेल लगा दीजिए, प्लेट के कुकर में पानी डाल दीजिए, पानी गर्म कर लीजिए और कुकर के प्लेट में तेल लगा करके आप रखिएगा और इस मिश्रण को उसमें उड़ेलिएगा, ठीक है। अगर 2 प्लेटें एक साथ में रखना चाहे तो ऊपर नीचे रख सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको इनो डालना है, ठीक है। और अब इसको 15 मिनट तक उबलने दीजिए। 15 मिनट उबल जाए तो फिर आप ढक्कन हटाकर प्लेटें बाहर निकाल दीजिए, फिर दूसरी प्लेटें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक प्लेट में पहले एक बेस को रखिए,
उस पर चटनी लगाइए, फिर दूसरा बेस रखिए, किनारा छोड़कर चटनी लगाइएगा। फिर आप टमाटर, खीरा और कच्चे नारियल से गार्निश करिए और हरी चटनी या नारियल की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह ढोकला तैयार हो चुका है। मन चाहे आकार में इनको काट लीजिए और अलग अलग प्लेटों में डालिए। आप एक में जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर सजा दिया, फिर वो हमने मसाला बना रखा है राई उड़द की दाल का, अदरक हरी मिर्च के पेस्ट, तो इसको आप एक प्लेट पर ये लगा दीजिएगा और पहले काट लीजिए, फिर निकाल ये लगा दीजिए सब, और हरा धनिया ऊपर से डाल दीजिए और फिर आप पीस निकाल करके रख सकते हैं। अपने जो भी खाना चाहे उनको सर्व कर सकते हैं। और भले आप नारियल की चटनी के साथ, भले हरी चटनी के साथ, दोनों ही चटनी है तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो भी सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा, ठीक है। तो इस तरह सूजी वाले ढोकले बनाए जाते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है बैठ कर किए जाने वाला आसन तो आपको सिखाया ही है, पर ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके फायदे और नुकसान दोनों ही बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे बहुत ही अच्छे दिए हैं। जनरल नुस्खे घुटने दर्द, जांघ का दर्द, कमर दर्द, तो इन उपाय को आप आजमा सकते हैं। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको सूजी का ढोकला बनाना सिखाया है, बच्चे बेहद पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी आराम से खा सकते हैं, नुकसान भी नहीं करेगा सूजी के है इसलिए, तो ज़रूर बना करके इसका भी आनंद लीजिएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि भाई ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके फायदे और नुकसान क्या है। तो देखिए हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने वज्रासन कहा, वज्रासन एकदम सही जवाब, आधा जवाब तो सभी का सही है। इसलिए मैं पहले तो ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी। अब वज्रासन के फायदे और नुकसान जान लीजिए, फिर मैं आपके नाम सुनाऊंगी। वज्रासन का फायदा है, इस आसन से जंग और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है, और यह आसन पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके नुकसान यह है कि बवासीर के मरीजों को इस आसन को नहीं करना है, परहेज रखना है। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित लोगों को भी इस आसन से परहेज करना है, ठीक है। और अब नाम सुनाना चाहूँगी जिन्होंने भी जवाब दिया है। सुरेश भाई झोटाना से आपका जवाब एकदम सही है। अलका जी काबरा आपने आधा जवाब दिया है। दीपा जी सोमानी कपासन से आपने भी आधा जवाब दिया है। प्रेम गोड़ उदयपुर से आपका जवाब एकदम सही है। संगीता जी

0: फिर मिलेंगे एक नई पहेली के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। ज्ञान की गंगा बहाने वाली, प्रेम का दीप जलाने वाली, ज्ञान की गंगा बहाने वाली, प्रेम का दीप जलाने वाली, अंधकार में भटकी राहों को सच्ची मंजिल दिखाने वाली। मधुर मुस्कान सरल स्वभाव, मधुर मुस्कान सरल स्वभाव, चेहरे पर दिव्यता की छाया, जिसने भी उनका सानिध्य पाया, जीवन में सुख और शांति पाया। मातेश्वरी तुम ममता की मूरत, मातेश्वरी तुम ममता की मूरत, त्याग और तपस्या की पहचान, बाबा के संग चलकर तुमने झक्को दिया नया वरदान। नहीं था कोई भेदभाव मन में, नहीं था कोई भेदभाव मन में, सबको अपना माना था, प्रेम धैर्य और सेवा का पाठ जीवन भर सिखलाया था। आज भी तेरी यादों से मन में उमंगे जगती है, आज भी तेरी यादों से मन में उमंगे जगती है, तेरे श्रीमत के दीपक से जीवन राहें जगमगाती है। हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना, सत्य प्रेम और पवित्रता की राह पर सदा हमें चलाए रखना, सदा हमें चलाए रखना। तेरा जीवन एक संदेश है, तेरा हर कर्म मिसाल, मातेश्वरी तुझको नमन है, शत शत वंदन बारंबार, शत शत वंदन बारंबार।
1: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: नमस्कार श्रोता मित्रों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम द्वारा हिंसा को नो कार्यक्रम में दोस्तों, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक व पारिवारिक मानदंड के अनुसार देखते हैं तो हर क्षेत्र में महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है। वैसे तो अक्सर सुनने में आता है कि लेडीज फर्स्ट, परंतु जब महिला अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है तो समाज से सहा नहीं जाता। तो आज ऐसा ही एक नाटक सुनेंगे जिसमें महिलाओं को कैसे पीछे रखा जाता है।
1: आज आपको ले चलते हैं आबू के आंचल में एक छोटा सा गांव है जहां तीन सहेलियां रहती हैं, जिनका नाम आशा, रजनी और सरला है। तीनों ही अच्छी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की होती हैं। सरला की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में है। रजनी को अपनी सहेली आशा के यहाँ जाना है, परंतु मम्मी अकेली भेजने के लिए तैयार नहीं है बेटी को। तो आइए क्या होता है आगे देखते हैं।
2: रजनी, या तू तैयार वेन कटे जा रही है?
3: मम्मी, मारी फ्रेंड आशा का पापा रिटायर्ड हुआ है, तो हवन और भजन संध्या राखी और एक छोटो सो भोजन समारोह भी राखियो, तो मैं वटे जा रही हूँ।
2: हाँ भले जा, रजनी का पापा थे बैंक जा रहे हो ना, तो रजनी ने आशा का घरे छोड़ दीजो और आता टाइम पे लेता आजो।
3: मैं कोई छोटी बच्ची को नहीं जो मन छोड़वा आनो पड़े, मैं चली जाऊं मारी रीतु। मम्मी आप कोई चिंता मत करो।
2: मैं क्यों के छोरिया ने ज्यादा पढ़ानो को नहीं, पढ़ावा तो एड़ो जवाब मिली। छोरिया ने पढ़ावो तो भी चोको चुल्लो तो संभालनो इस पड़ी, पर थारा पापा है के माने को नहीं मारी बात। देख रजनी, लड़की अगर घर से बाहर जावे तो के पिता के भाई के पति कोई ने कोई तो साथ में होनो ही चाहिए, समझी?
4: ओफो, थारी माँ है कि बात कटे हूँ कटे लेन परीगी। चाल रजनी, मार लारे परी चाल, मुँह तने छोड़ दे। थारी माँ से बेस करवा कोई फायदो को नहीं।
1: सांस्कृतिक मान्यता भी कैसी होती है कि लड़की भले बड़ी और समझदार हो गई है, फिर भी वह घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती। खैर, आशा के घर पर क्या होता है आइए देखते हैं।

0: अरे रजनी, आओ आओ, तू तो घणी लेट होगी भजन में। भजन तो पूरा हो गया, अब हवन की तैयारी हो रही है। चल आपा भी हवन में बैठा।
1: सॉरी आशा, थोड़ी लेट होगी, चल बेटा।
2: सेठानी जी, यजमान कटे है, पूजा में लेट हो रही है, हवन बुलाओ।
3: पंडित जी पूजा चालू करो, सेठ जी तो आवता इस वही।
2: राम राम राम राम राम, पूजा तो पहले पुरुष द्वारा ही शुरू होवे न, सेठ जी का बिना पूजा क्या शुरू करा।
3: पंडित जी पूजा चालू करो, अबे तो सेठ जी भी आ गया।
2: सेठ जी आप आगे बैठो, सेठानी जी आप पाछे बैठो। हाँ तो पूजा शुरू करू सा। गणपति बेगा पधार जो, रिद्धि सिद्धि के संग आय बिराजो, पूजा में थारो कार्य सार, अक्षत समर्पयामी। सेठानी जी आप थोड़ा रुको, चला सेठ जी ने अक्षत समर्पण करवा दो, पछे आप।
0: पंडित जी कुछ ज्यादा ही नहीं कह रहे रजनी, हर बात में पुरुष पहले और महिला बाद में, ऐसा थोड़ी होता है।
1: तू सही कह रही आशा, मैं तो आज सुबह से यो ही देखती आ रही हूँ।
4: तो देखा, सामाजिक मान्यता के अनुसार पूजा में भी महिला या तो बगल में बैठेगी या पीछे बैठेगी। शादी में पुरुष आगे चलेगा, महिला पीछे चलेगी। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नारी का सम्मान करो, क्या इस तरह सम्मान होता है? चलिए अभी एक और परिवार में चलते हैं, वहां यह सरला रो क्यों रही है जरा देखते हैं।
0: हेलो रजनी, अपनी सहेली सरला आई है ससुराल से, तो मिलवा चालू, तू तैयार है ना? मैं लेवा आ रही हूँ।
1: हाँ आशा, मैं तैयार हूँ।
0: अरे सरला, थारी तो नई नई शादी हुई है और तू उदास लाग रही है, कई बात है?
5: मारा तो किस्मत ही फूट गया।
0: अरे सरला, तू रो क्यों रही है? ले पानी पी, तुझे शांति हूँ, सारी बात बता के कई हुए।
5: काहे बताऊं मैं, थारा जीजा जी शराब पीवे और सास झगड़ालू स्वभाव की, मैं तो दुखी होगी बटे जान।
0: सरला, थने तो अंकल जी अत्रो दहेज दी दो, फिर भी एड़ा लोग मिलिया, अंकल आंटी से बात की दी तू?
5: हाँ सा, सारी बात की दी, पर वाकाऊ बात करवारो कोई फायदो कोनी, उल्टा मने ही डांट रिया।
1: अरे थारी तो कोई गलती कोनी, फिर भी थने डांटिया क्यों?
5: मम्मी का ही क्यों जो सुन।
6: देख सरला, थारी सगले बात सुनी, पर मारी बात तो ध्यान से सुन। हारा में थोड़ो घणो तो सहन करनो ही पड़े। मने देख, जद में पढ़नी नानी घर में आई तो मने घणो दुख उठानो पड़ियो। सगला ही विचित्रा, पर समय का लारे सब ठीक हो गयो और आज मैं खुश हूँ। तो बेटा शुरू शुरू में सहन कर ले तो पचे सब ठीक हो जाए। शुरू शुरू का 5 साल थोड़ा मुश्किल का निकले, ये 5 साल सहन कर लो तो पचे अपने ही चाले घर में।
5: मम्मी भविष्य ने कौन देखियो, बात तो अबानो वर्तमान की है। ये शराब पीन गाली गलौज करे या बात मने बिल्कुल पसंद कोनी। शादी का बाद दूसरी बार मैं ससुराल गई, नहीं नहीं फिर भी शर्म कोनी, पुरानी ब्याह बात कई शर्म आए, मैं 18 साल इंतजार कोनी कर सकूं।
6: सरला थार दिमाग खराब हो गयो, समाज में बात जाए तो अपनी इज्जत की धज्जा उड़ जाए। तू तो एड़ी बात करके जाने थने ससुराल में मार रहा है। सरला का पापा सुन रहा था कि बेटी की बात?
7: मैं सब सुन रही हूँ। सरला तू खाई चिंता मत कर, मैं बात करूँ वे लोगा सु, अगर वे नहीं सुधरे तो पछे आगे देखा काई करनो, थने ससुराल भेजने को नहीं भेजनो। एक बार तू जा हावरे, और हाँ बेटा सुन, तू एक बार सगला जनाने समझान देख, फिर भी वे कोनी सुधरे तो तू जो भी डिसीजन ले मैं थरे साथ हूँ।
5: थैंक यू पापा।
0: अंकल जी भी एड़ी बात करी, ये तो सोदो हो गयो। हावरा वाला सुधर जाए तो बेटी ससुराल में रही, नहीं सुधरी तो बेटी मायका में रही। बेटिया को जीवन तो एक कठपुतली की न्यान हो गयो, जो लोग नचावे व्यान नाचनो।
4: पारिवारिक मान्यता भी बड़ी अजीब होती है, पीड़ित खुद दुखी है लेकिन वो अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि माता पिता को समाज में बदनामी का डर है। इन्हीं कारणों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है और पीड़ित अंदर ही अंदर घुट करके या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। खैर, कुछ समय रहकर सरला अपने ससुराल चली जाती है। सरला अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। सरला के व्यवहार से ससुराल वालों में परिवर्तन आने लगता है और एक दिन अचानक फोन आता है सरला के पियर से। आधी रात को फोन क्यों आया देखते हैं।
6: हेलो सुन सरला, तू जल्दी आ, तारा पापा के कहीं हो गयो है, हॉस्पिटल लेन जा रहा, तू जल्दी आओ जी बेटा।
5: मम्मी मम्मी।
7: सरला तू चिंता मत कर, फटाफट एक दो जोड़ी कपड़ा ले ले और आपा चला।
5: अरे ये सब चढ़ा बेला क्यों हुआ है, काई हुए हमारा पापा के?
8: बेटा थारा पापा आने दुनिया में को नहीं रहा, और तू भी रोई तो थारी मम्मी ने कौन हमारी, आगे की सोच काई करनो, बाए तो तारे है कोनी, मुखाग्नि कौन दी?
9: अरे इन्हें काई पूछनो, मुखाग्नि तो मारो बेटो जगदीश दे।
5: नहीं बड़ा पापा, मारा पापा मने कदी बेटी समझिया कोनी, हमेशा बेटा की न्याय नहीं रखी, और बेटो नहीं है तो काई बेटी मुखाग्नि नहीं दे सके, मारा पापा ने मुखारंगनी मैं ही देऊंगा।
9: ठीक है बेटा, जेडी थारी मर्जी।
4: अक्सर लोगों का कहना होता है कि अगर पिता को मुखाग्नि बेटा देता है तो उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटियां भी अपने पिता को मुखाग्नि दे सकती हैं, जैसे कि सरला ने किसी की परवाह नहीं की और एक बेटे का रोल अदा किया। तो इस तरह हम पारिवारिक बदलाव ला सकते हैं।
10: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: तो सुना दोस्तों आपने तीन सहेलियों की कहानी, जिसमें तीनों की अलग अलग कहानी है, परंतु सरला ने पुरानी परंपराओं को तोड़ करके एक नया इतिहास बनाया है। तो अंधविश्वास को कटाक्ष करता हुआ इस नाटक को आपने सुना है। अगर आपने भी समाज में इस तरह की बातें देखी है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप भी रेडियो मधुबन के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारे है 94-1415-1415। आज का विषय भी नाटक का बहुत ही अच्छा था कि सामाजिक परिवेश, संस्कृति व पारिवारिक मानदंड के अनुसार देखते हैं तो हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार की हिंसा होती है। तो इस कार्यक्रम को आप सुन करके जो भी आपको महसूस हुआ हो तो आप फोन कॉल्स कर सकते हो, हमें बता सकते हो। तो यहीं पर हम आपसे अनुमति चाहेंगे और अगली बार लेकर के आएंगे और भी नया नाटक एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
12: अपनी खुशी ने कोनी दबानो है, दबानो है, समझदारी सु एक दूजा को साथ निभानो है। अपनी

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ कार्यक्रम हमराही लेकर के। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और कार्यक्रम हमराही के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम दिव्यांग साथियों की जिंदगी पर आधारित है और किस प्रकार उनको अपने सामाजिक विकास में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार और उन चुनौतियों से हमारे साथी पार पाते हैं, समाज का, परिवार का, उनके जीवन साथी को ढूंढने में क्या योगदान रहता है, तो यही सब जानने समझने का प्रयास हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे मेहमान हैं श्रीमान कैलाश मालविया जी और उनकी धर्मपत्नी लीना जी। तो आइए आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के हमराही की कहानी कैसी है। कैलाश जी और लीना जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। धन्यवाद सर।
0: जी जी जी। तो कैलाश सर, हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि जरा आप अपने बारे में बताएं।
1: जी सर, जी सर। पहले तो मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्लब का और स्वयं संदीप सर का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और मुझे चुनने के लिए हम दोनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
0: धन्यवाद।
1: और रिकॉर्डिंग क्लब एक ऐसी संस्था है, वैसे मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा हूँ, परंतु ये एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग जनों को उनकी क्षमताओं से अवगत कराता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर नए नए कुछ न कुछ, या जैसे ये कहूँ कि रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है। एक सुना होगा आपने, पाठ था हम लोगों के एमपी में उपमन्यु तीसरी या चौथी में
0: जी, जी।
1: उसमें ये था कि वो उसमें शुरू में लिखा था, बहुत मैं बताऊंगा कि प्राचीन काल में एक धौम्य नाम के महान ऋषि रहा करते थे जो अपने शिष्यों को पढ़ाई के साथ साथ में जीने की कला भी सिखलाते थे
0: जी।
1: तो ऐसे ही जीने की कला रिकॉर्डिंग क्लब भी हमारे दिव्यांग साथियों को सिखाता है। कंपटीशन के इस युग में एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ता और कंपटीशन करवाने का जो एक अनोखा रचनात्मक कार्य करता, उसके लिए मैं पुनः हम दोनों, मैं और वाइफ की तरफ से संदीप सर का, रिकॉर्डिंग क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
0: जी जी जी, बहुत धन्यवाद कैलाश जी। हमारा प्रयास यही है और रेडियो मधुबन का इस के साथ मिलकर के हमारा यही प्रयास है कि हम हमारे दिव्यांग साथियों की आवाज को मुख्य धारा के लोगों तक लेकर के जाएं। तो हम चाहेंगे,
1: बहुत दिन से चाह रहे थे कि ये एक ऐसा प्रोग्राम शुरू हो जिससे एक दूसरे को सुनने, समझने और सीखने का एक मौका मिले। हमारे इंदौर में पहले एक हमराही कार्यक्रम चलता था जिसमें हमको भी मौका मिला था आकाशवाणी के माध्यम से, वो भी एक अनूठा प्रोग्राम था। ये आपने हाई लेवल पे जो चालू किया, इसके लिए पुनः बधाई के पात्र सर।
0: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी जिंदगी के बारे में जरा बताएं, आपकी शिक्षा वर्तमान में क्या कर रहे हैं और कौन सी दिव्यांगता से ग्रसित हैं आप?
1: जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैलाश मालवी इंदौर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पे एक श्रीखंडी गांव नाम का एक छोटा सा कस्बा है, मुश्किल से 100-200 घर होंगे वहाँ पे
0: जी।
1: तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 1978 में और 3 वर्ष की उम्र में मुझे चेचक हुआ, छोटी माता जिसको बोलते हैं
0: जी, जी।
1: उसमें मेरे अलावा 2 मेरी काका की लड़कियां और 2 मेरी बुआ की लड़कियां, ऐसे 5 लोगों को हमको चेचक निकला और उसका जो भार पड़ा वो सारा भार मुझ पे पड़ गया और उन चारों बहनों को तो अच्छा हो गया और मैं बाद में डॉक्टरों के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गए
0: जी।
1: तो ये सब चीज देखने के बाद में परिवार के लोग निरक्षर तो थे, पिताजी किसान थे तो कुछ समझ नहीं पाते थे। तो एक सर थे हमारे यहाँ, एक स्कूल चलता था हमारे यहाँ, एक चेतमल सर थे, तो वो स्कूल में पढ़ाते थे। वो हमारे जो प्रिंसिपल जो रिटायर्ड है IP पाटीदार साहब, उनके साथ में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे वो
0: जी।
1: तो उन्होंने ये कहा कि यार एक स्कूल है वहाँ पे इंदौर में, मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, उसमें इसको भर्ती करवा दो इस बच्चे को। अच्छा, उस बीच ये हुआ कि मेरी माँ का भी देहावसान हो गया था
0: डाइट
1: होने के बाद में।
0: अच्छा।
1: तो जी जी, तो उसके अलावा फिर मेरे जीजाजी थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, MPB में थे, उनका एक भतीजा था मांगीलाल, तो वो उनके साथ में दिव्यांग साथी थे श्री आधार सिंह चौहान जी, वो
0: जी
1: गुजराती कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने अवगत कराया बताया कि इस तरह से ब्लाइंड पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो जीजा जी ने मुझे 1984 में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में एडमिट करा दिया पहली कक्षा में।
0: जी
1: मुश्किल से 5 या 6 साल की उम्र रही होगी,
0: जी
1: और पढ़ते पढ़ते परिसर की कमी थी, तो 1-1.5 साल बाद इंदौर में प्रकाश नगर स्थित नौलखा के पास में डॉक्टर हेलन केलर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक स्कूल था,
0: जी
1: वहाँ उस परिसर में हमको शिफ्ट कर दिया। उस
0: जी
1: शिफ्ट के दौरान मैंने दूसरी पास करी और गर्मी की छुट्टी में मैं गया घर में अपने, 30 अप्रैल को पालक डे हुआ हमारा, और हमें छुट्टी दे दी 2 महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टी, पहले 2 महीने की छुट्टी देते थे। तो उस बीच 3 मई को पूर्ण दृष्टिहीन तो था मैं, शनिवार का दिन था, सायं 5-5:30 बजी होगी तकरीबन, तो एक ऐसा कुछ मालिक का कर्म हुआ या विधि का विधान हुआ, वो उसकी वो ही जाने, आप हम तो नहीं समझ पाते, पर क्या हुआ कोई कुछ हम समझ नहीं पाए उस चीज को। और एक एक ऐसा मेरे जिंदगी में दौर आ गया कि कम से कम 25-30 फीट गहरा कुआ था,
0: ओहो,
1: उस कुएं में मैं गिर गया।
0: अरे बाप रे बाप।
1: जब उस कुएं में गिरा तो सूखा कुआ था वो,
0: जी
1: तो उस कुएं में ऐसा गिरा कि मेरे आंखों में चोट आई, दांत टूट गए 3-4, होंठ में
0: ओहो,
1: चोट आई, पेट में चोट आई। 1 महीने तक हमारे MYH हॉस्पिटल है इंदौर में,
0: जी
1: उसमें मुझे एडमिट किया गया, और साधन तो कुछ थे नहीं, बड़ी मुश्किल से किया। एक डॉक्टर MV शिडोनकर हमारे संस्थापक थे, जब वो उस समय वहाँ सर्विस करते थे ये MY हॉस्पिटल में,
0: जी
1: और एक डॉक्टर हमारे एक वार्डन थे HL खरे साहब, उन्होंने मुझे उस समय 5 बॉटल खून दिया।
0: ओ
1: तो मुझे कोई पूछता है संदीप, ईमान से संदीप साहब मैं बताना चाहूंगा, ये मन की आवाज है, यदि मुझसे कोई पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 4 जुलाई से बताने से पहले मैं उससे यही बताता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 मई है। तो उस 3 मई का मुझे पुनः जन्म हुआ
0: एक
1: मेरा।
0: तरह से आपका पुनर्जन्म हुआ वो।
1: अच्छा, ये जो मेरे जी, ये जो मेरा नाम जो आप कैलाश जान रहे ना, ये इसकी भी एक कहानी है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसको भी सुनाऊं। ये मेरा नाम असली नाम नहीं है मेरा, ये
0: जी
1: दूसरे का नाम का उपयोग कर रहा हूँ मैं।
0: जी जी
1: इस
0: जी
1: नाम का भी क्या था, इसमें भी ऐसा था कि हम 5 भाई और 5 बहनें थी,
0: जी
1: तो उसमें जो कैलाश था एक भाई मेरा, मेरे से बड़ा, वो गांव की जैसे मैं कुएं में गिरा और मैं बच गया,
0: जी
1: वो होदी में गिरा और वो डूब गया और मर गया।
0: ओ
1: उसके बजाय मुझे नाम उसका कैलाश था, तो उसके नाम से मुझे बुलाते, मेरा तो शायद मोहन या और कुछ भी होगा, मैं इतना नहीं जान पा रहा हूँ, परिवार से चर्चा करना पड़ेगी, और उसका उसका नाम धारण किया है मैंने आज, तो वो मुझे मिल रहा है। तो ऐसी संघर्ष की और दुख भरी कहानी मेरी चलती रही, 8वीं तक मैं पढ़ता रहा डॉक्टर हेलन केलर दृष्टिहीन माध्यमिक विद्यालय में, और मैं मालवा का और इंदौर का इतना आदी था कि बाहर कहीं जाना नहीं चाहता था। 8वीं के बाद में हमारे पास कोई ये इंदौर में कोई ऐसी संस्थाएं भी नहीं थी 8वीं के बाद पढ़ने के लिए, तो मुझे मजबूरी में भोपाल जाना पड़ा 9वीं कक्षा पढ़ने के लिए।
0: जी
1: दृष्टिहीन कल्याण संघ 1250 शिवाजी नगर में स्थित है भोपाल में संस्था, वहां मुझे जाना पड़ा 9वीं में। परंतु वहां पे भी कुछ इस तरह से रहा कि वहां के पानी में थोड़ा कैल्शियम की कमी है, तो मुझे वो सूट नहीं हुआ और आए दिन मैं बीमार होता रहा। बीमार होने के साथ साथ मैं वहां 1 साल ही पढ़ पाया और वापस इंदौर आ गया। फिर मैंने बंगाली स्कूल में एडमिशन लिया 10वीं में, और 10वीं तक का स्कूल था वो, इसलिए मुझे 11वीं 12वीं नूतन स्कूल से पढ़ना पड़ी, और धीरे से फिर कॉलेज में आया आर्ट एंड कॉमर्स में। तो पढ़ाई में मेरा कोई ज्यादा विशेष मन नहीं लगता था, और मेरी कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं थी और कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मुझे IAS अधिकारी बनना, मुझे तो एक रोजी रोटी मिल जाए, क्योंकि परिवार का कोई ऐसा इतना वो नहीं था, सब लोग घर में
0: मतलब कुल मिलाकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी
1: टेलीफोन का
0: आपकी।
1: माहौल था। हाँ, और जो मैंने मांगा सच्ची श्रद्धा से मालिक से वो मुझे मिल गया। मेरे घर में हमेशा शुरू से मैंने टेलीफोन के डिब्बे ही देखे, तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, क्योंकि भाई और मामा और भी भाई जितने परिवार सब लाइनमैन थे टेलीफोन डिपार्टमेंट में ही, तो मैं उससे टेलीफोन ऑपरेटर बन गया। और टेलीफोन ऑपरेटर की भी थोड़ी सी ऐसी कहानी है कि मैं करता रहा, पढ़ता रहा, ट्रेनिंग वगैरह करी और ट्राई करा, मैंने 97 में इंदौर भोपाल एक किया, राजधानी भोपाल है हमारे MP की, तो वल्लभ भवन में सचिवालय माना जाना एक पद सिलेंडर किया, उसका क्या बोलते हैं LDC का, वो टेलीफोन ऑपरेटर का पद मांगा। इसमें भी हरिओम पंडित जी का बड़ा सहयोग रहा, मैं बड़ा एहसान बद्ध हूँ सबका, सबका ऋणियों क्या पता किसे का कब ऋण चुका पाऊँ नहीं चुका पाऊँ, परंतु एहसान बद्ध हूँ। उन्होंने भी मुझे सर्विस के दौरान बहुत योगदान रहा। तो 12 अक्टूबर 1999 को वाणिज्य कर विभाग, जिसको आज GST डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में
0: जी।
1: और फिर रोजी तो मिल गई पर रोटी नहीं मिली। तो रोटी केस में थोड़ा सा था कि यार कोई हमराही ऐसी मिले जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरा सर ओवर कॉन्फिडेंस था, नौकरी में तो नहीं था पर इसमें हमराही में ओवर कॉन्फिडेंस था, कोई अच्छी आंख वाली मिले, बढ़िया गाड़ी पे घुमाए ले चले थोड़ा बहुत इधर उधर, हाँ इस टाइप का था। तो सर उसमें क्या मालिक ने सुनी भी ना, तो 19 फरवरी 2000 को क्या हुआ कि मैं पहले ये कहा करता था राष्ट्रीय दृष्टि संघ को, हमारे MP वेलफेयर को, सबको कहा था कि यार हमारे भाइयों को शादियां करना रहती है, परिवार के लोग तो ध्यान देते नहीं है, आप लोग को ऐसे सम्मेलन वगैरह करो या कुछ करो। अच्छा गांव के लोग क्या बोलते थे सर, मेरे मामा वगैरह सब बोलते थे यार हमने सुनी भाई वो स्कूल वाला सब तुमके पढ़ावेगा लिखावेगा साथ में फिर नौकरी भी देगा। मैंने कहा हाँ मामा, तो बोले नौकरी के साथ में फिर ब्याह भी बीच कराए। मैंने हाँ हाँ ब्याह भी बीच कराएगा, तुमके कोई चिंता फिक्र कहीं नहीं करने, सब ब्याह भी बीच कराएगा और नौकरी भी बीच देगा और पढ़ाएगा लिखाएगा
0: सारा काम कर देगा वो, चिंता ना करो। हाँ
1: सारा काम बीच करेगा, तुमके कोई कहीं नहीं करनो है, सब बीच करेगा। तो संघ वालों ने सर कुछ सुनी नहीं, वो कुछ दृष्टिहीन कल्याण संघ भोपाल वालों को कुछ बात जम गई, वो कुछ लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने 19 फरवरी 2000 को एक सम्मेलन कर डाला, परिचय सम्मेलन। परिचय सम्मेलन क्या, विवाह सम्मेलन हो गया, परिचय वरिचय तो कुछ नहीं हुआ, विवाह सम्मेलन। क्योंकि वो भी बेचारे उत्साही लाल थे और हमको तो जरूरत थी सही। तो उसमें
0: नहीं, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा
1: जी जी जी।
0: ये कहानी जो है वो तो सुननी है क्योंकि कार्यक्रम भी का नाम भी वही है और उसी पर आधारित है, लेकिन एक बार बीच में हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा लीना जी से परिचय करवाया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बताएंगे ना, मैं 20 तारीख का, मैं 19 तारीख का बताऊं।
0: नहीं वो तो बता दो, लेकिन वो अपने बारे में भाई, उन्होंने पढ़ाई क्या की है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मूल रूप से, जरा ये, और उनको कौन सी दिव्यांगता है, जरा ये हम एक बार जानना चाहेंगे।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी सर, मैं विकलांग हूँ
0: जी,
2: पैर से।
0: अच्छा
2: मेरे को यहाँ ज्यादा विकलांगता नहीं है, हल्की सी मेरी ये मतलब पैर की जो एड़ी है ना
0: जी,
2: वो नहीं टिकते। हम क्या दो बहन जुड़वा थी
0: जी जी जी,
2: ये मतलब हाँ दो बहन जुड़वा हो गए थे, तो वो तो अच्छी है, उसको कोई परेशानी नहीं है
0: जी।
2: हाँ तो मेरे को वो बचपन से मतलब ये पैर की परेशानी है
0: जी जी जी। अच्छा और आप कहाँ से?
2: मेरे को चार बहन है, मैं उधर महाराष्ट्र तरफ की हूँ, नागपुर तरफ
0: से है। ओके
2: चार बहन है, भाई है, मम्मी पापा है, पूरा परिवार है।
0: ये हमारा एक इत्तफाक है कि पिछले कार्यक्रम में भी जो हमारी मेहमान थी वो भी एक महाराष्ट्र से थी और इस बार आप भी महाराष्ट्र से हैं जी। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ कैलाश सर, तो अब आप अपनी कहानी जारी रखें।
1: जी जी जी, तो सर क्या हुआ कि 19 तारीख को मैं और मेरे को साथी लोग, मेरे बड़े भाई और एक भांजा जमाई, हम लोग सब गए और देखने के लिए कि कोई यार लड़की मिले ठीक ठाक अच्छा व्यवस्थित देखे जरा।
0: भोपाल गए आप?
1: भोपाल हम लोग सब गए और भी बहुत सारे ब्लाइंड साथी लोग गए। तो उसमें 19 फरवरी को हम लोग गए अपने पैसेंजर ट्रेन से और 20 को, हाँ 18 को गए होंगे और 19 को बात हुई परिचय की, सबसे मिले जुले एक दूसरे से, कोई क्या मिले कोई कैसा मिले कुछ। मेरे कहा यार महाराष्ट्र से ये लोग कुछ लोग आए थे तो दो चार लड़की आई थी, तो उसमें ये जो लीना जी ये सबको थोड़ी अच्छी लग रही थी और समझ में आ रही थी और मैं और किसी और को कहीं देख रहा था और मेरे दिमाग में ये था अरे यार हिंदी आती नहीं है, पढ़ाई का जो जगह है, मैं भी कम पढ़ी लिखा और ये भी थोड़ी बहुत कम पढ़ी लिखी, तो दिक्कत पढ़ाई की नहीं है, दिक्कत बोलने की है,
0: दिक्कत समझने की है, भाषा समझने की है।
1: भाषा भी चलो समझ लेंगे, मेरे टीचर सारे मराठी थे, परंतु दूरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, क्योंकि मैं भोपाल से आगे कभी अकेला गया ही नहीं, तो नागपुर न यवतमाल न काचनगांव न हिंगन घाट ने सब महाराष्ट्र के दौरे कैसे करूंगा। पर वो भाई लोगों को कुछ ऐसा लगा कि नहीं भाई लड़की तो ये अच्छी है इससे कर ले तो ज्यादा सही है।
0: नहीं लेकिन एक बात इसमें छूट गई कैलाश सर पीछे,
1: जी सर,
0: आपने कहा कि भाई आप भी सपना तो ऐसा देख रहे थे कि कोई मतलब कटरीना कैफ और कोई दीपिका पादुकोण टाइप की मतलब मिले आपको, वो कैसे छोड़ दिया मतलब बीच में?
1: नहीं नहीं छुटा उठा नहीं, मैं सब मैंने उसको देख लिया ना क्या था, एक जरा सा

0: तीन चार कार्यक्रम रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
1: फिर कड़ी चावल भी खाना है, दाल बाफले भी खाना, सब करना ही है, तो कैसे करेंगे?
0: चलिए क्या बताइए, आप आगे बताइए।
1: जी जी, तो सर हुआ क्या उसमें कि सब कुछ हो गया और तय हो गया, भाई लोग मानने लगे। मैंने कहा रुको से, देखो सर मैं कल सीएम साहब आने वाले हैं। अरे बोले हमके सीएम से कई कर लो, हमके तू ब्याह करे तू रुखा। मैंने कहा यार ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यार, दादा ऐसा कोई करे? बोले हाँ अस्तोस थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर और भी साथी लोग सब कहने लगे ठीक है यार। मैं कह विकलांग और दूर भी है, चलो विकलांग की दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा दूर है तो बोले सब हो जाएगा, कहाँ रोज रोज जाना है। तो सब हो गया सर 20 फरवरी 2000 को परिणय सूत्र में बन गए, या इसको ये कहे कि
0: चट मंगनी को पहुंचे और 20 को बंद भी गए परिणय सूत्र में ही डायरेक्ट सीधे
1: परिणय सूत्र में बन गए। मैंने कहा ना वो विवाह सम्मेलन था, परिचय सम्मेलन नहीं था वो, तो परिणय सूत्र में बन गए उसको। मैं ये कहूंगा कि चट मंगनी और पट ब्याह हो गया।
0: उस कार्यक्रम से पहले कभी सर लीना मैम के बारे में कहीं सुना था आपने या कुछ?
1: नहीं नहीं नहीं, अरे ना मैंने इनके बारे में कुछ सुना ना, इन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना, वो तो तुरंत सब
0: कुछ ऑन द स्पॉट
1: हो गया सर। हाँ अच्छा, ये लोग भी ना, तो मैंने महाराष्ट्र में जाके कोई सर्वे किया कि इनका घर कैसा है, कहाँ खेत बाड़ी कितना, क्या बोल रहे, क्या बता रहे, क्या कर रहे, कोई कुछ नहीं ना। इन्होंने इंदौर आना वो समझा इनको, जो भी सब भरोसे पे खेल हो गया पूरा।
0: वाह बड़ी गजब, मतलब बहुत फास्ट जमाना, मतलब
1: बिल्कुल
0: 4G का जमाना आज है, 5G का जमाना, और आपने उस समय ही कर लिया ये सब काम।
1: अरे उस समय 5G 6G सब आ गया। तो अच्छा अच्छा, क्या था कि सब टेलीफोन ऑपरेटर था ना, तो सबके दिलों के तार से तार जोड़ने का काम करता था, तो वहां भी दिल के तार से तार जुड़ गया और क्या, हेलो हाय बाय वही सब हो गया।
0: तो आपके लिए पसंद किसने किया लीना मैम को?
1: भाई थे ना मेरे, मेरे बड़े वाले भाई थे और भांजे थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हम लोग थोड़ी बहुत देर बात करे तो सुन, क्योंकि इनको मराठी आती थी एकदम, हॉस्टल से आई थी शुरू से, तो ज्यादा कोई कुछ बोलो तो हाँ बस ये वाली बात होती थी। तो मैं ठीक है यार सब कुछ, बोल के आवाज अच्छी है यार, ठीक है आवाज भी अच्छी है। अब बोलेगा हाँ उसे आवाज क्या समझ पड़े, तो वो भी चलो ठीक है देखेंगे।
0: तो घर की, घर परिवार की तरफ से ये तय था, मतलब आपके घर वालों ने ये मान करके चल रहे थे कि भाई जो जिस संस्था में पढ़ाई की है वही सब कर देंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसके बारे में करने की।
1: हाँ वो तो उनको तो कुछ समझते थे, उनको क्या, और समझे भी तो उनको क्या, ठीक है हम कहाँ देखेंगे यार ये सब, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था पहले।
0: और आपको भी एहसास हो गया था कि भाई जो कुछ करना है मुझे ही करना है?
1: हाँ वो भाई तो एक उस हिसाब से फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो भी गए थे, पर वो बाकी हमारे साथी ब्लाइंड साथी लोग ज्यादा देख रहे थे उसमें। अच्छा। उनको ज्यादा इंटरेस्ट था इसीलिए उन लोगों ने, अच्छा उस समय 4-5 जोड़े बन गए थे और उनको सब इंटरेस्ट था, वही लोग सब कर रहे थे
0: जी।
1: तो ऐसे धीरे धीरे सब

0: रहा और फिर इंदौर आ गए, और इंदौर में आके किराए का मकान था। उस किराए के मकान में रहे तो बहुत संघर्ष किया, ऊपर रहते थे हम लोग तो नीचे से पानी लेके आना इनको थोड़े था प्रॉब्लम पैर में, फिर भी उसके बाद भी कोशिश करी कि नहीं भाई ठीक है, अब एकदम से महल तो मिलेगा नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा, अपने मन से जो और किया है तो करना पड़ेगा। पर फिर मालिक का करम रहा अच्छा, अधिकारी और सब लोग खूब अच्छे थे, तो बहुत ही जल्दी हमको क्वार्टर भी मिल गया डिपार्टमेंट का। उस क्वार्टर में रहे और चलते चलते ऐसे जिंदगी चलती रही, और एक दूसरे को सुनते रहे, समझते रहे, होता रहा, चलता रहा इस टाइप से।
1: तो ये तो आपका पक्ष हुआ एक तरह से। लीना मैम, आपने क्या सोच करके वहां उस कार्यक्रम में आए थे, उस परिचय सम्मेलन में, या कोई लेकर के आया था आपको?
2: जी सर, वो मेरे गांव का है ना, एक अशोक था, मतलब भाई था मेरा, वो ये तो वो भी मतलब पार्सल ही था, उसको सब जानकारी थी, भोपाल में रहता था वो अशोक डब। तो फिर उसके थ्रू मेरे को ये पता लगा कि उसी ने बोला था कि बोली यही पे भोपाल में सम्मेलन हो रहा है, तो मम्मी पापा से उसने बात करी, फिर मम्मी पापा को लेके वो मैं आंगनवन में रहती थी, तो फिर वो वही पे मम्मी पापा को लेकर वो भैया आ गया, तो बोले ऐसे ऐसी बात है बोले, तो मैंने देखा भी था बोले लड़का, तो फिर ये इनसे थोड़ा परिचय था सही मालवी जी से, तो फिर इन्हीं को बोला था बोले अच्छा है बोले लड़का बोले सरकारी नौकरी वाला है सब कुछ है बोले, तो कर दो बोले तो मेरे तो उसके थ्रू हो गई शादी अशोक भैया के थ्रू।
1: नहीं तो एक बात
2: हाँ,
1: बताओ, आपको तो आंखों की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पैर में थी थोड़ी सी, है ना? तो आपके मम्मी पापा ने वहीं पर मतलब नहीं ढूंढना चाहा कि भाई हम तो महाराष्ट्र में ही ढूंढेंगे, क्यों कहीं परिचय सम्मेलन में भेजे?
2: जी सर, ये तो शादी तो मेरे मर्जी से हो गई, मम्मी पापा ने ऐसा कुछ मेरे से ज्यादा फोर्स नहीं करवाया, मैंने बोला था मम्मी पापा को, मैंने बोला मेरे को सरकारी वाला चाहिए, भले ब्लाइंड रह जाए तो चल जाएगा मेरे को, मम्मी पापा ये ब्लाइंड लोग विकलांग लोग जानते ही नहीं थे ना, मेरे को भी हल्की परेशानी थी, ज्यादा नहीं थी।
1: तो आप और ब्लाइंड लोगों के बारे में कैसे जानते थे?
2: तो जी सर, मेरे को है ना, मैं 2 साल नागपुर में रही हूँ हॉस्टल में, तो उसी भैया ने मेरे को भर्ती करवाया था अशोक डप ने, हाँ तो उसके उसने मेरे को भर्ती करवाया, 2 साल में वही पे रही, फिर वो छोरी उनके फिर एक दूसरे से जैसे जानकारी ले लेके फिर वो आंदन में रही, फिर वही से तो मेरी शादी हो गई। हाँ, उसने मेरा सब कुछ करा है।
1: तो आपको मालवीय जी पसंद आए थे, आपको भी कोई और पसंद आया था?
2: नहीं, यही पसंद आए थे। हाँ, घर के लोग सब अच्छे थे, मतलब अशोक भैया भी वगैरह मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे, बोले जी इसको पसंद आया तो बोले यही कर।
1: आपके घर वालों को फिर बताया अपने शादी के बाद कि भाई ऐसे ऐसे मेरी?
2: मम्मी पापा आए थे ना भैया,
1: आए थे। अच्छा,
2: हाँ सब आए थे ना वही पे, मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे ना शादी में,
1: किसी ने कोई विरोध नहीं किया मतलब?
2: नहीं, किसी ने नहीं। इनके घर परिवार ने जैसे इनके तरफ से था, ऐसा मेरे घर परिवार ने ऐसा कुछ विरोध वगैरह कुछ नहीं करा।
1: अच्छा,
2: हाँ ये शादी तो मेरे मर्जी से हो गई।
1: हाँ मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया अच्छे से?
2: हाँ, कारण बाहर में हॉस्टल में रहती थी तो सब जैसे एक दूसरे के इसके थ्रू पता लगता ही था कि भाई ये इसने सरकारी नौकरी से इसने ये करा उसने ये करा करके, तो थोड़ी बहुत अपने को भी बाहर निकली तो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई।
1: अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं लीना मैम?
2: जी मैं, हम दो बहन जुड़वाते हैं सर, तो मैं ही है ना वो मतलब उसके साथ में मैं 6ठी तक पढ़ी थी, तो मैं वो पास हो गई, वो तो मेरी बहन है ना साथ वाली, वो 12वीं तक पढ़ी है वो उसके साथ।
1: अच्छा, आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए मतलब कुल मिलाकर?
2: नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, वो पास हो गई थी, मैं फेल हो गई थी 6ठी। छठी पढ़कर आ गई थी, फिर इधर 8वीं करी है यहाँ के, ज्यादा पढ़ नहीं पाई मैं।
1: क्या बात है, मतलब आप लोगों की कहानी से दोनों की ये लग रहा है कि हाँ, समय पर एक तो इंसान को निर्णय ले लेना चाहिए और हाँ, एक एक स्थान पर आकर के संतुष्ट भी हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर बात।
0: बहुत सारों को सर हमने देखा है, सुना, समझा है
1: जी।
0: कि 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रहा, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, लड़के को लड़की नहीं मिल रहा। उस हिसाब से हमारा जो आपने ये कहा कि समय पर सब हो गया, ये बहुत बिल्कुल सही कहा, हम इससे बिल्कुल 101% सहमत है कि समय पर हर काम हमारा समय पर हुआ, सर्विस भी समय पे लगी, शादी भी समय पे।

0: छह साल के गैप में 2007 में प्रज्ञा नन्हे जिसको बोलते हैं 2007 में 30 अप्रैल को उसका जन्म हुआ। इसी दो लड़कियां हैं हमको और दोनों ही एक से बढ़कर एक है और पूरा ब्लाइंड समाज और सब लोग बिल्कुल खूब अच्छे से जानते पहचानते हैं और उनको भी ये एहसास है कि हमको और हमारे अलावा और हमारे दिव्यांग भाई है उनको क्या दिक्कत है। हमारी तो ठीक है अपनी जगह जो है वो करते ही हमेशा रोज, परंतु उसके अलावा दूसरे हमारे साथियों को उनको क्या दिक्कत, उनका भी ध्यान रखते हैं वो।
1: बहुत खूब।
0: इतनी होनहार दोनों बालिकाएं बीकॉम सेकेंड ईयर में है बड़ी वाली और छोटी वाली 8th में है अभी।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो कैलाश सर, मतलब मध्य प्रदेश की सभ्यता संस्कृति बोली सब कुछ अलग और मैडम जो है बिल्कुल महाराष्ट्रन, ठेठ महाराष्ट्रन।
0: बिल्कुल
1: शुरू शुरू में कुछ समय तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कतें तो आई होंगी ना?
0: हाँ हुआ ना हुआ सर। उसमें क्या होता था कि ये एकदम हॉस्टल से आई थी, अच्छा काम के इसमें भी कोई हमको बताने में बिल्कुल ना इनको ना मेरे को किसी कहीं कोई कुछ नहीं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जब जब जागो जब सवेरा, मैं तो ये समझता हूँ
1: बिल्कुल सही,
0: कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमारे मन में जहाँ चाह है वहाँ राह है तो करो, तो कोई वो नहीं। क्योंकि घर में भी इतने बहुत कम उम्र में एकदम पहले के इसमें जैसे शादियां हो जाया करती, मेरी उस समय मुश्किल से 22 साल की उम्र रही होगी और इनकी 17-18 के लगभग रही होगी। तो उस समय इतना परिपक्व इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने आपस में खूब एडजस्ट किया और बड़ा प्रेम पूर्वक खूब रहे करे और हर चीज को एडजस्ट किया, मैनेज किया। हमने जो सीखा सिखाया देखा करा सब इन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से। और जो मेरा जो अंधेरा, खास सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो मेरा अंधेरा जीवन था उसको रोशन हो गया, ये बहुत बड़ी चीज थी। कि जो जिस तरह से मैं चाहता था कि कोई ऐसी मिले, जब आपने बीच में शुरू में चर्चा हुई था कि गाड़ी चलाए घुमाए फिर आई है, ये सब चीजें इनमें थी। गाड़िया बढ़िया अच्छे सफल ड्राइवर है, अच्छे चलाती है गाड़िया, बिल्कुल हमारे ऑफिस के ड्राइवर लोग लोहा मानते हैं कि बड़े बढ़िया चलाती है। बच्चों को भी सिखा दिया, अब थोड़ा सा वो आलसीपन हो गया है बाकी पर शुरू में तो खूब जीवन की गाड़ी भी खूब चली और जो है क्या भौतिक गाड़ी वो भी खूब दौड़ी पटरी पे, खूब खूब अच्छे से चला, पूरा एंजॉय किया जीवन का। और अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रही हमारी, कभी कोई शिकवा शिकायत एक दूसरे से वो नहीं। भाषा का थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि हमने ऐसा जादू चलाया मालवे का और ऐसे दाल बाफले दाल बाटी खाना खिलाना सिखाया समझाया कि अब ये आज 21 साल हो गए, स्थिति ये हो गई कि ये मराठी भूल गई। कभी कुछ होता तो इनके पापा बोलते हैं तो ये हिंदी बोलती है, वो मराठी बोलते तो बोल पोरगी नहीं मुलगी मराठी सांग मराठी, तो वो अब वो मुलगी मराठी भूल गई और अब हिंदी आ गई। तो इंदौर और मालवा ऐसा है कि अपने आप में सबको संभाल लेता है कि भाषा में समझ में आ जाती थी कि मेरे टीचर जो थे सारे मराठी थे तो भाषा समझने में।
1: वैसे इंदौर में भी हमने सुना है ना कि काफी महाराष्ट्रन लोग बसे हुए हैं ना?
0: हाँ महाराष्ट्र लोग बसे और महाराष्ट्र की लड़कियां भी बहुत सारी शादियों के हमारे यहाँ आई हुई है, तो सब आपस में सबकी फ्रेंडशिप हो गई है, सब घर परिवार की तरह रहते हैं, अच्छा है। और नहीं तो परिवार के लोगों को कहते दिमाग में क्या गया था मेरे, अरे यार लड़कियों को दिखता नहीं और इससे लड़के से कुछ पूछो ये हाँ और हूँ में जवाब देती है, तो इसको दिख नहीं रहा और कहीं ऐसे लड़के कहीं गूंगी या मुख बधिर तो नहीं लिया है, तो बाद में हमको वापस कुछ छोड़ छुट्टी करना पड़े। पर वो चुप्पी उप्पी में सब और बहुत बढ़िया, आप तो तेज तर्रार बिल्कुल देखी देखी कटारी की तरह वो हो गई और आनंद आ गया। जिनकी अच्छी सबकी कृपा दृष्टि से हमराही का काम खूब अच्छा चल रहा।
1: कुल मिलाकर के मतलब आप तो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं।
1: तो आपके मतलब आपने अपना जब जीवन साथी ढूंढ लिया, शादी हो गई, उसके बाद कभी ऐसा अवसर भी आया कि और भी अपने साथियों की मदद की हो आपने विवाह के मामले में?
0: हाँ सर कोशिश तो की, पर योग सहयोग कुछ रहे ऐसे होता रहा चलता रहा और एक आध दो ही हो पाए ऐसा कुछ ज्यादा, क्योंकि ये सब ऊपर से तय हो के आते, अपन लाख कितना भी कुछ कर लो उसमें तो अपन एक निमित्त मात्र होते हैं। एक चीज मेरी थोड़ी सी सर छूट रही थी आपकी इजाजत यदि हो।
1: हाँ बताइए बताइए
0: रेडियो मधुबन की और हमराई की कि जब सर्विस नहीं लगी थी ना हमारी तो उस बीच एक आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी
1: जी,
0: तो हम लोगों ने एकदम तो नौकरी लग नहीं रही पढ़ने के बाद में, 2 साल लग गए मेहनत करते करते।

0: उस बीच में क्या हुआ, हमने एक ऑर्केस्ट्रा फन म्यूजिक नाइट क्रम से एक ऑर्केस्ट्रा शुरू कर लिया।
1: अच्छा, अरे वाह
0: जी। तो उस ऑर्केस्ट्रा में मैं अनाउंसमेंट का काम करता था।
1: अच्छा।
0: और अनाउंसमेंट के साथ साथ में जब कोई सिंगर यदि नहीं आया तो सिंगिंग का काम भी शुरू कर लेता था।
1: क्या बात है, मतलब आपको संगीत का भी शौक है।
0: हाँ, संगीत में मैंने फोर्थ ईयर किया गायन में, इलाहाबाद प्रयाग समिति से
1: जी
0: फोर्थ ईयर किया। और बजाने जाने में तो कुछ ज्यादा विशेष वो नहीं हो पाया।
1: लीना जी को कौन सा गाना सुनाया था आपने, बताइए।
0: अरे सालगिरह हम जब मनाते हैं तो मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा रहता हूँ। हमारी जब सालगिरह आती है 20 फरवरी को, अब तो लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई तो कई ज्यादा आ जा नहीं पाते परीक्षाओं की वजह से, परंतु हमारे एक निमाड़ अंचल नेत्रहीन संघ है खंडवा में
1: जी,
0: वहाँ हम उन बच्चों के बीच में जाकर के एनिवर्सरी मनाते हैं और बड़े एक दूसरे को खूब अच्छे गीत गाते सुनाते हैं और केक वगैरह काटना और पूरा ड्रेस रेस सब, और लगता है कि वापस डबल से पुनः विवाह हो रहा है। इस टाइप का ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। हमारे अवचे जी है, बड़ा उनका प्रेम मिलता हमको
1: और क्या बात है।
0: संस्था में हम जाते हैं और वहाँ हमेशा अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं और एक दूसरे को।
1: कौन सा गीत गाते हैं आप, दो लाइन गुनगुना के बताइए जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन के 10 लाइन गा देंगे सब। हम तो हमको गाने का भी शौक है, गाना सुनने का भी शौक है और सुनाने का भी शौक
1: जी,
0: और खाने का भी शौक, दोनों तीनों सब शौक है, किसी में कम नहीं पड़ते
1: जी।
0: तो जो अनुमति हो जाए आपकी, किस हिसाब से क्या सुना दिया जाए
1: बताइए, जो भी गाना लीना जी को पसंद हो आपका।
0: हाँ, पर उनसे मत गवाना, नहीं तो फिर वो
1: नहीं आपसे गवाएंगे।
0: यूं थोड़ा बहुत यूं गा लेगी ऑर्केस्ट्रा वगैरह समझ लीजिए, बाकी यूं अभी थोड़ा सा जब
1: नहीं आपसे आपसे ही रिक्वेस्ट है।
0: और मैं, अरे नहीं सर, आप तो निवेदन क्या, आप आदेश करिएगा, सपने में भी अपन शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सुनाता हूँ एक उसका स्थाई भी सुनाता हूँ और एक तीसरा अंतरा जो खास जो मुझे पसंद आता है और सबको बिल्कुल अट्रैक्ट करता है वो भी सुनाऊंगा। और बाद में कभी इजाजत हो रहा, कभी कुछ ऐसी होगी तो कॉलेज लाइफ की भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे आपको। उसमें गाने और खाने में कोई शर्म नहीं और अपने आप को बिल्कुल फक्र समझते हैं हम। तो मैं शुरू करता हूँ।

0: क्या
1: बात है, बहुत खूब सर। तो ये ऑर्केस्ट्रा जो आपने शुरू किया था वो आज भी चल रहा है या बंद हो गया फिर अब तो?
2: सर वो हुआ उसमें ये कि सब लोग नौकरी धंधे में और ब्याह शादी में घर गृहस्थी में बस तो गए, परंतु जब जब भी ये ना यूं बिखर गए, पर जब जैसे कुछ जरूरत पड़ती है तभी हम हाल फिलहाल में पिछले टाइम में क्या 24 तारीख थी जनवरी में एक देवास में हम लोग ऑर्केस्ट्रा लेके गए थे, तो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है।
1: मतलब ये एक बात है, एक बात है सर, उस जमाने में मतलब आज के लगभग
2: अच्छा सदाबहार में मजा आता है, अब तो क्या ट्रैक लगा के लोग शुरू जाते हैं, तो मुझे तो नहीं आज आता, के
1: 20-25 साल
2: ट्रैक पे जाना नहीं आता मैं जी सर, मुझे नहीं आता।
1: आज के 20-25 साल पहले उस समय ऑर्केस्ट्रा बनाना और दृष्टिबाधितों को मिल करके मतलब जाना कार्यक्रमों में, ये भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात रही है।
2: हम लोग भोपाल जावद रतलाम मंदसौर नीमच सब दूर जाते थे और अच्छा सब गाते थे, और एक लड़का हमारे इसमें ऐसा था कि लड़के की आवाज में भी गाता था लड़की की आवाज में भी गाता था वो एक और उसका अद्भुत था, तो लोगों को बड़ा मजा आता था कि अरे यार ये बहुत अच्छा काम है।
1: वो किशोर कुमार था मतलब
2: जी और विजय वर्गीय साहब थे हमारे, कैलाश विजय वर्गीय, उनका बड़ा आशीर्वाद था हम लोगों पे, वो भी कई बार हमारे साथ में गाते थे, अभी राष्ट्रीय महासचिव हुए।
1: आपकी कहानी सुन करके लग रहा है मतलब एक आम दृष्टिबाधित की कहानी जैसी हो सकती है, ठीक ठाक मतलब जो है पढ़ाई भी हो गई और समय पर
2: बिल्कुल
1: नौकरी लग गई, उसके बाद में विवाह भी हो गया टाइम पर,
2: बिल्कुल सब काम हर चीज जो मैंने,
1: समायोजन में भी दिक्कत नहीं आई और ज्यादा आपने कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिशें जिंदगी से रखी नहीं?
2: नहीं, मैंने ईश्वर से जो सच्ची श्रद्धा से मांगा वो मुझे मिल गया। मेरे पंडित जी कहते थे कि कैलाश भगवान भक्ति में तो वो शक्ति है जो किस्मत को बदल डालती है, तो मैंने 22 जून बोले किसको आप आराध्य मानते हो, मैंने कहा शिव जी को यार, मेरे नाम के अनुसार मैं भले धारण करूं मेरे भाई का नाम, परंतु वही नाम मैं तो अब उसको असली समझूंगा, मैं उसको ही अपना आराध्य मानता हूं। तो बोले फिर उपवास रखना चालू करो, उनका मंडे का उपवास रखना चालू करा 22 जून से मैंने 1999 से, तो मेरी पोस्ट बन गई और 25 जून को इंदौर में आ गई, इतना चमत्कार भोले का इतना आशीर्वाद रहा साहब, 25 जून को बन गई और 29 जून को इंदौर में वाणिज्यकर विभाग में पोस्ट बन के आ गई। तो ये भक्ति की शक्ति का है ऐसा भोला भंडारी है हमारा
1: जी। तो लीना मैम
3: जी सर,
1: कभी झगड़ा वगड़ा हुआ इन 20-21 सालों में कि नहीं?
3: जी सर हो जाता है थोड़ा बहुत
1: तो किसकी तरफ
2: आप बर्तन लेते हैं तो वहाँ थोड़ी खनक तो होना चाहिए ना,
1: आपकी तरफ से, आपकी तरफ से होता है कि मालवीय जी की तरफ से होता है?
3: नहीं, कभी मेरे तरफ से भी हो जाता है, कभी इनके तरफ से भी हो जाता है।
2: सर मेरा वीक पॉइंट एक है, क्योंकि अपना अपना अपना जो वीक है वो स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चीज मैं समझता हूँ, मेरा एक थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि मेरे को अब तो खैर बहुत मैंने पेशेंस अपने आप को कर लिया, मैंने मन्ना डे का साहब का सुना कि कम खाओ और गम खाओ, तो मैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने लगा, पर मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है जल्दी, तो मैं कंप्रोमाइज मैं नहीं करता, हमेशा कंप्रोमाइज इनको ही करना पड़ता है, तो पर आप करने लगा हूँ आप जैसे जैसे वो हो रहा ना उम्र बढ़ रही, तो धीर और गंभीरता आने लगी है।
1: आपको नहीं लगता सर कि पति पत्नी के संबंधों में गुस्से का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए?
2: नहीं होना चाहिए ना, तो ये मेरी कमी है, मैं इसमें सुधार ला रहा हूँ धीरे धीरे और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ और हो जाएगा। आपको कोई अब धीरे धीरे बहुत लोग चीज को समझने लगे और मुझे भी लगने लगा है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, हो जाएगा वो, क्योंकि अब मनुष्य है सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं सकता, क्यों पांच उंगली
1: तो आपका नहीं सर, जो गांव है जिस गांव के आप रहने वाले हैं वहां आप मैम को लेकर के जाना हो पाता है कभी कि नहीं?
2: अरे मैंने कहा ना कि हमारे पास गाड़ी थी, हम उस गाड़ी से बहुत हमने दौरे किए इस गांव के बहुत, और
1: आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था मतलब इनको देखने के बाद कि भाई ठीक है लड़की और सब संभाल रही है?
2: नहीं, ठीक क्या है, थोड़ा सा मन में तो रहता है,
1: कुछ तो रहा ही होगा उनके भी मन में, थोड़ी उलझन तो रही होगी ना, उनको स्वीकार करने में दिक्कत तो आई होगी ना एकदम से मतलब?
2: नहीं नहीं उनको नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था ना मेरे लिए, है ना, ये जरूर किया पढ़ाई लिखाई तो कर भी उन्होंने, उसके लिए अपन ये नहीं कह सकते, परंतु उनको ये था कि बेचारे भोपाल क्या जाने कहां क्या, पिताजी निरक्षर थे।
1: नहीं वो सब ठीक है, भोपाल तो हो गया चलिए, लेकिन अब जैसे अब आपके जीवन में मैम आ गई लीना मैम,
2: हाँ,
1: तो एक बहू के रूप में जो एक होता है ना स्वीकार करना,
2: हाँ स्वीकार किया, करा स्वीकार उकार में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
1: अच्छा।
2: स्वीकार तो कर लिया, दूर में थोड़ा सा ये था कभी कभी कि अरे हम ना तो हम जा पाते इनके इधर, ना वो कम से कम आ पाते, वो थोड़ा सा होता है जब समय हमको मिलता हम चल जाते।
1: तो आपके ससुराल आपका जाना कम हो पाता है मतलब?
2: हाँ हमारा कम हो पाता, उनका भी कम होता है, दूरी का है ना, तो जाते कभी कभी बीच बीच में, या फोन पे तो लगातार लगे ही रोज, बाकी मन होता कभी चल पड़ते।
1: अच्छा सर, बच्चे जब हुए तो फिर बच्चों के लालन पालन पे कोई दिक्कतें किस तरह की आपको आई?
2: नहीं दिक्कतें ज्यादा तो नहीं आई, क्योंकि इनकी बहन जो जुड़वा थी उसका बड़ा उसमें वो सहयोग रहा, जब बड़ी वाली बिल्लू थी तो वो एक साल तक लगभग हमारे यहीं पे रही और दोनों को जुड़वा समझते थे और पता ही नहीं चलता कि लीना कौन और मीना कौन दोनों।
1: आपको तो पता चलता था ना?
2: अपने आवाज की दुनिया थी ना, नॉर्मल की दुनिया उनके आंखों की दुनिया रहती है और अपने आवाज की दुनिया रहती है, तो आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं।
1: मतलब बोला कि आप ये मानते हैं सर कि हमारे जीवन में मतलब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में बच्चों के लालन पालन में मतलब किसी और का साथ होना जरूरी है, क्या आप ये मानते हैं?
2: नहीं सर, हकीकत को मेरा फिर वही और कॉन्फिडेंस या जो होगा वो वाली बात आ जाएगी कि कहीं ना कहीं हम चीज को एक्सेप्ट, जो हो सकता है वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, उसको स्वीकार कर ले या कोशिश करें, कोशिश कर सकते हैं परंतु और कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, पर हमारे साथ तो इसलिए नहीं आती थी कि इनको दिख रहा था, रही बात मेरी से तो मेरा तो इस मामला कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, इसलिए ज्यादा दिक्कत हम लोगों को नहीं आई। परिवार के तो मेरी बहन थी तो फिर आने जाने वाले लगे रहते, आता जाता सब चलता रहा, कब तो छोटे हुए कब बड़े हुए पता ही नहीं चला, अब वो हमसे बड़े लग दिखते हैं।
3: कार चलाने लग गए बड़े वाले गुड़िया, कार ले ली, कार कार चलाने लग गए, बड़ी छोटी वाली भी चला लेती जुपिटर, बड़ी वाली तो कार ही चला लेती।
2: अभी हमको एहसास नहीं होता कि अपनी जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, लगता है कि मालिक भले ही और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अच्छा जाहे विधि रखे ना ताहे विधि रहिए,
1: सीताराम सीताराम सीताराम कहिए
2: जी जी। और अपने डॉक्टर हेलन केलर बोलती थी सर कि मैं अपने हैंडीकैप को या अपनी विकलांगता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तो हम लोग भी उससे कोई निराश नहीं स्वीकार करते और बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आज दिखता होता तो अब यहाँ तक पहुँचते या हम राजस्थान में हमारी बात हो पाती नहीं हो पाती, इंदौर भी हमारे नॉर्मल लोगों के लिए इंदौर बहुत बड़ी बात है, गांव वालों के लिए मुश्किल से मेरा गांव 20 किलोमीटर भी नहीं है, पर बहुत सारे लोग इंदौर नहीं आ पाते, इंदौर जानते नहीं क्या, उससे तो अपन बहुत अच्छे हैं।
1: फिर भोपाल भी नहीं जा पाते
2: आप? अरे वो तो सवाल ही नहीं था ना, भोपाल जाने का कहां, इंदौर नहीं तो फिर भोपाल कहां से, वो तो नॉर्मल होता ना तो बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाता, ना पढ़ना लिखना ना कोई कुछ नहीं, वही गाँव में बढ़िया जैसे हम 10 भाई बहन थे वैसे हमारे भी 8-10 बच्चे होते और बखर उखर घेरते रहते, हल चलाते रहते, दूध निकालते रहते, गाय भैंसों का बेचते रहते,
1: मतलब शिक्षा से दूर हो जाते कुलना के।
2: हाँ शिक्षा से इंदौर से कहीं तक कोई वास्ता ही नहीं ना, उस समय इतना सब कहाँ क्या था।
1: तो कहीं मतलब जो कार्यक्रमों में भी आप लोग जाते रहे होंगे उस समय शुरू शुरू में जब विवाह हुआ, तो क्या प्रतिक्रियाएं रहती थी समाज के लोगों की, आपके जो साथ के लोग थे जॉब में और जो लोग थे?
2: नहीं अच्छी रहती थी उन लोगों की प्रतिक्रिया, तो वो लोग भी समझते थे और बातचीत करते, मिलना जुलना एक दूसरे के आना जाना और उनको भी प्रेरणा ही लेते थे, उनको भी लगता था कि अच्छा है अच्छा, ये भी सबको हेल्पफुल नेचर की है तो सबको गाइड करना, आना जाना, घूमना फिरना, मिलना मिलाना जुलाना। आजकल तो उस समय भी थोड़ा दौर चालू हो गया था बफेट का, तो बफेट में अपने साथियों को गाइड करना या कहीं पिकनिक पे चले गए तो वहाँ गाइड करना, अब बड़ी बड़ी दूर हम सब आए गए, घूमने फिरने का बड़ा शौक है हम लोगों को, तो कहीं भी मिस नहीं करते हैं वो, चाहे आपका रिकॉर्डिंग क्लब हो या हमारा कोई निमाड़ांचल नेत्री संघ का कोई सेमिनार हो या रतलाम का कुछ हो, हर जगह बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
1: बहुत बहुत खूब,
2: बिल्कुल रात बेरात हो जैसा भी जो हो, मन में जो ठान लिया वो पूरा कर लेते हैं और प्रकार का कोई वो तकलीफ या ऐसा कुछ नहीं रहता।
1: कोई शिकायत सर जिंदगी से अभी तक?
2: जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा है,
1: सब कुछ ठीक हुआ,
2: सब कुछ ठीक हुआ, समय पर हुआ,
1: समय पर हुआ जी,
2: फिर रिपीट करें उस चीज को।
1: ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
2: हाँ, समय पर भी हुआ और जो सच्ची श्रद्धा से मांगा और जितनी मेहनत करी, मैंने कभी शिकायत नहीं करी मालिक से कि मैं तो आईएएस बनना चाहता था और टेलीफोन ऑपरेटर बन कर गया। आईएएस कैसे बनना चाहता था, शिकायत उसके लिए पढ़ाई करना थी, जो कि वो मन लगता ही था पढ़ाई में, अपना गाने और खाने में लगता था और रोने में, शोशर में तो रोने में टाइम बीत गया मेरा बहुत दिन तक। परिवार को भूल ही नहीं पाया, बहने राखी बांधने आई, राखी नहीं बंधवाना, लड्डू नहीं खाना, तुम तो घर पे ले चलो। समय कट्ठी आत्मा करी बहनों ने सबने, तो आज यहाँ तक आपसे बात हो पा रही। नहीं तो कौन संदीप सर और कहाँ अजमेर ने कहाँ माउंट आबू कुछ नहीं समझ पड़ता।
3: माउंट आबू तो बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी।
3: हाँ, दो बार पंजाब भी लाया घुमा के।
1: ये हमारा स्टूडियो भी है माउंट आबू में ही है, ये रेडियो मधुबन का हमारा स्टूडियो भी माउंट आबू में है।
3: बहुत अच्छा।
1: आज कैलाश सर अपने मतलब उस जमाने में भी दिक्कतें तो थी, लेकिन आज भी इतना विकसित समय होने के बाद भी आपको पता है ना कि अपने दृष्टिबाधित साथियों को, जीवन साथी को ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आती हैं।
2: हाँ सर,
1: क्या लगता है आप, क्या कारण देखते हैं इसको, इसके लिए मतलब?
2: जी सर, उस समय भी अब तो खैर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, उस बाद भी क्या होता सर कि नॉर्मल लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने।
1: हाँ मतलब थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ दूं कि परिवार और समाज भी नहीं मतलब स्वीकार कर पाता है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं करता, नहीं करता। हाँ,
3: सर, परिवार में तो बहुत ही परेशानी आती है, ये एकदम से नहीं ये करते,
2: एडजस्ट नहीं करते और समझते भी नहीं।
3: हाँ।
2: ना अच्छा समझते तो हैं पर समझना नहीं चाहते, मैंने तो ये उसका अर्थ निकाला सर, समझते तो सब है पर समझना ही नहीं चाहते, उनका सोच क्या पता कहाँ तक जाता है।
1: नहीं तो अच्छा उसके आपको क्या लगता है इसका कोई हल निकल सकता है क्या आपके हिसाब से?
2: उसका हल ये कि हमारे जो ये सेमिनार वगैरह चलते रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और नॉर्मल तो कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसकी कोई कमजोरी हो तो एक्सेप्ट करें, नहीं तो नॉर्मल मेरे इसमें बहुत ऐसे ऐसे नॉर्मल वो ठीक है कि भाई बहुत कम इसमें दे देंगे, लो क्लास में दे देंगे कि भाई वो नशे वशे करता होगा, जो भी करता होगा सब कुछ होगा, सब चलेगा, पर यदि हमारा ब्लाइंड व्यक्ति बैंक में है या तहसीलदार है उसके लिए यदि कहेंगे तो के वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं अरे भाई दिखता नहीं है, क्योंकि वो भले एक खराब व्यक्ति को बैकवर्ड एरिया में दे देंगे वो चलेगा, और उनका सोच वहां तक जाता ही नहीं, वो जाना ही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल गांव के लोग इसमें वो करते हैं, सिटी वाले इससे ज्यादा करते हैं, गांव के देखभाल थोड़ा सा उनको समझाओ बुझाओ तो कुछ सोच सकते हैं इस विषय पर, परंतु सिटी वाले तो चाह करके भी नहीं वो करते, तो इसमें प्रॉब्लम तो है और ये हमेशा चलती रहेगी सर। इसको अपन कोशिश करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना आसान है सुलझना, ये तो हमको ही अपने आपस में, वो कहते ना घायल की गति घायल जाने, तो आपस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को करो, क्योंकि नॉर्मल समाज जब तक उसकी कोई कमी नहीं हो तब तक वो अपने को नहीं करता, क्योंकि हम तो हर जगह सब देख सब समझ चुके हैं और अनुभव भी खूब है, इसलिए मैं कई बार बहुत इससे वो देता हूँ अपने अनुभवी बहु भी और बताता भी सम्मेलन में, सब जगह कहता हूँ कि कोई परिचय सम्मेलन ऐसा आयोजित किया जाए कि उसमें परिचय हो, फिर उस बार 6 महीने बाद फिर विवाह सम्मेलन हो, तब थोड़ा सुधार आने लगा है और ये सब हो रहा है, हमारे ऐसा समय नहीं है।
1: तो दुनिया आपको कहेगी फिर कि यार खुद के टाइम पे तो आपने तुरंत विवाह सम्मेलन ही कर लिया, पर नहीं, हमें 6 महीने इंतजार करने के लिए कह रहे हो?
2: नहीं नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो समय जो था ना, तो उस समय मन और इतना लोगों के मन में वो नहीं था, अब जो थोड़ा सा जैसा जैसा जितनी सुविधा जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, इतना खरेब और सब बहुत सारे केस सुनने में आते ना, तो वो थोड़ा सा क्योंकि एक दूसरे को सोचने समझने को, और हर व्यक्ति इतना भोला और सच्चा और इतना सीधा और सिंपल नहीं हो सकता ना, अब वो समय जितना एडवांस हो रहा उतना हर क्षेत्र में एडवांस होगा ना फिर व्यक्ति, ये भी देखे एकदम से भरोसा करना थोड़ा सा तो कुछ टाइम तो चाहिए, हर व्यक्ति हमारे महाराष्ट्र जैसा या इनके परिवार जैसा या हमारे या एक दो दूसरे जैसा वो पहले वाली स्थिति नहीं हो सकती ना, बदल गया था हर चीज, ईगो टकराते हैं फिर आपस में, ये भी देखे।
1: ठीक बात है, चलो बढ़िया है, कुल मिलाकर के ऐसे ही हंसते खेलते जीवन चलता रहना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आगे बढ़ता रहना चाहिए। लीना मैम
3: जी सर,
1: आप अब चूंकि कार्यक्रम के हम अंत में हैं बिल्कुल, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, आप अपने जिंदगी से, मालवीय जी के साथ आपने जो जीवन बिताया है उसके अनुभव से, कोई आपको कोई मतलब मन में ऐसी कोई बात हो जो कहना चाहते हो आज सबके सामने आप?
3: जी सर, अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा बढ़िया, ये ऐसा तो कोई है नहीं है परेशानी वगैरह।
1: अच्छा,
3: हाँ सब अच्छा चल रहा है हमारा।
1: तो आपकी जो जुड़वा बहन थी उनका विवाह हुआ कि नहीं?
3: हाँ हो गया ना सर, उसका नागपुर में हो गया।
1: उनका नागपुर में हो गया, तो हाँ। उनके जीवन में और आपके जीवन में आपको कोई फर्क लगता है?
3: नहीं नहीं सर, कुछ भी फर्क नहीं
1: है ना। लोग मतलब जैसे आमतौर पर ये मानते हैं कि भाई ब्लाइंड व्यक्ति है, दिक्कत

0: आएंगी? आपको लगा कभी कि यार ब्लाइंड होने से दिक्कतें हैं मतलब इनके?
1: नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं लगता है।
0: और कभी मालवीय जी को लगा आपके मतलब पैरों से विकलांग होने से उनको कोई दिक्कतें आई हो?
1: नहीं नहीं उनको भी ऐसी कुछ परेशानी तो नहीं आई। हर जगह पे मतलब साथ में आते जाते, इनके गांव में इधर उधर सब दूर हम दोनों ही घूमते थे ना गाड़ी से इधर उधर। वो तो आप लड़की है थोड़ी बड़ी हो गई, नहीं तो पहले हम ही घूमते थे।
2: और सब ब्याह शादी
1: हाँ, सब दूर आना जाना सब कर लेते थे।
2: कुछ भी प्रोग्राम हो अच्छा बुरा सब में आना जाना, बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल, यानी पारिवारिक हो या सामाजिक हो या संस्थागत हो, सबसे बिल्कुल अपने आप को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि हम जुड़ेंगे तो हमसे लोग जुड़ेंगे।
0: कुल मिला के मतलब आप अपने जीवन के साथ परिवार को बढ़ाने के साथ साथ, अपने परिवार को संभालने के साथ साथ समाज को भी आप समय देते रहते हैं मतलब।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ये बहुत अच्छी बात है। तो कैलाश सर, आप अपने दृष्टिबाधित साथियों को और समाज के मुख्य धारा के लोग हमारे इस रेडियो मधुबन पे इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: उनको मैसेज यही कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे जी।
0: जो और लोग फिर अपने जीवन, जो लोग अपने हमराही को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे?
2: उनको ये कि ये शादी एक खिलौना नहीं है, इसको बहुत सोच समझ के, एकदम इमोशनल या भावनात्मक तरीके से नहीं, उसको यथार्थ में जीने के हिसाब से 10 बार। तो वही जो मैं 6 महीने वाली बात कर रहा था, तो और आपने मुझसे कहा था कि 6 महीने क्यों देना, 6 महीने इसलिए देना कि एक दूसरे को सोचने समझने का समय पर्याप्त मिले, ताकि बाद में कोई ऐसा तो नहीं आज शादी करी और कल डाइवोर्स हो गया।
0: ठीक बात।
2: तो उस हिसाब से ये यहाँ पे भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, और जहां जहां भी मैं सम्मेलन में या कोई गेस्ट के तौर पे इनवाइट करता है, बुलाते हैं, बताते हैं कि आप अपने अनुभव क्या साझा करना चाहते हैं, तो मैं यही उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ कि अपन एक दूसरे को ईगो जो है वो पाल के नहीं रखना, और एक दूसरे को समझना हमेशा, भावना को समझना। भाई ठीक है, वाइफ है तो उसको कमजोर नहीं दिखाना, या उसने उसको ईगो में नहीं दिखाना कि मैं अपनी, हमेशा दोनों का आपस में तालमेल बना के रखना सबसे बड़ी बात ये। और शादी जैसा जो है उसको पहले परिचय में और उसको सोचने समझने का, वो कम से कम नहीं ज्यादा तो 6 महीने तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और अपना बैंक बैलेंस और सब हर चीज को बना करके अपन उस लायक हो जाए। क्योंकि मुझे तो रोटी नहीं मिल रही थी 4 महीने में, मैंने इतना जो जल्दी किया उसको उतना जल्दी नहीं करना चाहिए, उस समय की मांग थी इस बार इस समय क्या अभी मांगनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का युग है, तो रिकॉर्डिंग क्लब उसमें भी कुछ कंपटीशन के कुछ एडवांस तरीके बता देगा कि रोटी कैसे बनाना, कैसे क्या करना, बहनों को हमारे तैयार कैसे करना। आपका मैं देखता हूँ, सुनता, समझता हूँ, मुझे मालूम है कि भाई और बहनों के लिए रिकॉर्डिंग क्लब और संदीप सर खूब तन मन धन से लगे रहते हैं, और ऐसे ही लगे रहे, और रेडियो मधुबन के लिए जो हमराही के लिए हमको आपने चुना, हम दोनों को एक बार फिर मैं हृदय की अंतर गहराइयों से सहस्त्रों बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सर और लीना मैम, आपने आज समय दिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बना।
2: मैडम जो जी जी आप सर जो मैडम कह करके आप हमें शर्मिंदा करते हैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं और मन से मन के आपके हमारे सबके मिलन है ना, तो
0: देखिए 4 जुलाई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे बड़े हैं, 3 मई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे छोटे हो
2: फिर यहाँ इधर 78 और क्या जाता है संदीप सर का, क्या जाता है 78 और
0: 84
2: बचना कहीं किसी को कहीं कुछ नहीं है ना।
0: तो चलिए सर, फिर बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों से बातें करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हर एक का जीवन ऐसा ही खुशियों भरा, और जो है कहते हैं ना जिसको संतोषम परम सुखम, इसी भावना को लेकर के हम सब आगे बढ़ते रहें। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा हमराही कार्यक्रम, अब मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। तब तक आप सब क्या करें, कुछ नहीं, बस रेडियो मधुबन को सुनते रहें 24 घंटे सातों दिन, और सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें रेडियो मधुबन का प्ले स्टोर से, और ईमेल करें info@radiomadhuban.in पर, और कॉल करना चाहें तो 9414151415 पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप हमसे कह सकते हैं। और देखिए कोई भी विवाहित व्यक्ति जो दिव्यांग है, दोनों में से कोई भी, किसी भी तरह की दिव्यांगता से अगर आप हैं तो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आप सबका भी, और आप सबको इंतजार रहेगा हमराई के अगले एपिसोड का। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराई के।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बहुत ही अच्छा दिन है आज। तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष रमेश काका जी जुड़े हुए हैं, जो अफ्रीका बेस्ड हैं, अभी मुंबई से हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं। तो आप विशेष रूप से बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि आप कुछ समय से जो है मेडिटेशन का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, राजयोगा का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में आप सिंधी जो एसोसिएशन है अफ्रीका में, उसके आप संस्थान के प्रेसिडेंट भी हैं, एक साल का आप उसमें सेवा कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा लगेगा हम लोग जब बात करेंगे आपसे। तो रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, बातें मुलाकातें इस एपिसोड में, ओम शांति, स्वागत है आपका।
1: थैंक यू,
0: ओम शांति, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ एकदम, बाबा की आशीर्वाद से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए रमेश जी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ दूसरे कलाकार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातें करते हैं। राजाई भार्गवी हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका भी इस मंच पर, बातें मुलाकातें करते हैं। ओम शांति, स्वागत। आप संगीत प्रेमी हैं, तबला भी अभी बजाते हैं और काफी टाइम से आप जो है संगीत के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं और अभी सीख भी रहे हैं साथ ही साथ और बच्चों को सिखा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप दोनों को यहाँ देखकर, हमें खुशी हो रहा है। तो मैं आप दोनों के लिए एक छोटा सा गीत पुनीता व्यास जी के द्वारा सुनेंगे, तो वो आपके लिए एक स्वागत गीत पेश कर रही है।

0: यू पुनीता जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया। आशा करता हूँ हमारे रमेश काका और राजाई भार्गवी को बहुत अच्छा लगा है। तो आइए रमेश जी, मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, और खास जैसे कि आप अभी वर्तमान में क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप।
1: ओम शांति। वर्तमान तो मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ अफ्रीका में, कैमरून शहर में। नाम कंट्री का कैमरून है और शहर का नाम है याउंदे। और प्रेजेंटली मैं बिजनेस करता हूँ और ब्रह्म कुमारी से जुड़ा पड़ा हूँ। और अभी हाल ही में मुझे विश्व सिंधी सभा संगम का, मुझे सेवा संगम का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, कंट्री प्रेसिडेंट। तो मेरा विश्वास है कि मैं ब्रह्म कुमारीज और विश्व सेवा संगम के साथ जुड़ के ऐसा कुछ काम करूं जिससे लोगों की सेवा हो और हमारी कम्युनिटी भी आगे बढ़े, ये मेरा लक्ष्य लेके चल रहा हूं मैं। और बाबा की
0: बिल्कुल
1: श्रीमत साथ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप वर्तमान समय में अफ्रीका में अपना बिजनेस चला रहे हैं, और साथ ही साथ अभी संगम संगम सेवा जो है सिंधी एसोसिएशन, उसमें आप अपना जो है रोल अदा कर रहे हैं। और आपको लगता है कि मेडिटेशन का जो प्रयोग है आप विश्व सेवा के लिए कर सके, तो एक अच्छा विचार लेकर आप सेवा के कार्य को करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए मैं आपको जोड़ना चाहूंगा फिर राजाई भार्गवी से। यस राजाई, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
2: बस एकदम ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं?
0: बढ़िया बढ़िया। अपने बारे में बताइए, अभी वर्तमान में कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं?
2: अभी तो मैं म्यूजिक कॉलेज स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर तबला में डिग्री कोर्स करने आई हूँ, वडनगर में गुजरात से।
0: जी।
2: मुझे इच्छा है कि मैं फीमेल तबला प्लेयर बनूँ, एक अच्छी सी, बस ऐसे ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी नेटिव कहाँ है आपका फिर?
2: जी
0: आपका घर कहाँ है?
2: भावनगर, भावनगर।
0: अच्छा, भावनगर से आप वडनगर आए हैं जहाँ पर आप तबला का तालीम ले रहे हैं। चलिए, और संगीत के साथ आपका रुझान या संगीत के साथ जुड़ना कैसे हुआ आपका? क्या बचपन से इच्छा थी या बीच में कुछ ऐसा हुआ जो आप संगीत के?
2: जी बचपन से ही मम्मी को बहुत इच्छा होती थी, हमारे गुरुजी होते थे उनको सुनते थे क्लासिकल सब, तो मम्मी को भी इच्छा होती थी कि भी अपनी बच्ची को सिखाऊं आगे। मेरा छोटा भाई है, वो भी तबला अच्छा बजाता है, पर उसने छोड़ दिया, पर मैंने संजी की दया से मैं अभी कंटिन्यू हूँ तबला में। तो बचपन से ही गाना मम्मा सिखाती थी, ढोलक बजाना भी मम्मी ने ही सिखाया था। फिर जैसे जैसे जानते गए कि क्लासिकल म्यूजिक के क्लासेस वगैरह, फिर क्लासेस ज्वाइन किया, फिर आज भावनगर से वडनगर का सफर स्टार्ट हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, संगीत सीखने के लिए जो है यात्रा बहुत जरूरी है, जितना यात्रा करेंगे उतना संगीत आपके पास अच्छी तरह से आएगा। तो निश्चित तौर पे जितने भी संगीतकार हुए हैं या सिंगर हैं या तबला आर्टिस्ट हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, उनकी यात्राएं ही उनको ज्यादा सिखाती हैं, और यात्रा नहीं करने से उनका ज्ञान बढ़ता। तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप नया कुछ सीखेंगे। तो बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं करते हैं आपके करियर के लिए, और संगीत में तबला में आप अच्छा काम करें, ऐसे हमारे शब्द। तो आइए फिर से मैं रमेश जी से जुड़ना चाहूंगा। रमेश जी, एक जो जैसे कि आप अध्यात्म से जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से, तो कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताइए, कहानी क्या हुआ जो आप इस तरफ मुड़े? आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपके पास सब कुछ है, फिर अध्यात्म की क्या जरूरत पड़ी आपको, थोड़ा सा बताइए।
1: ओम शांति। एक्चुअली देखो, अभी जब अज्ञान काल में थे तब क्या था, एक्चुअली अज्ञान काल में क्या था हमारे पास, हमको तो पहले बात तो हमको ना कोई एम ऑब्जेक्टिव के बारे में पता था, ना ही हमको कोई लक्ष्य था, ना हमको किसी ने बताया कि भाई लाइफ का गुरु का जैसे सिस्टम एट होता है, भाई गुरु हमको कौन सा राह दिखाता है, जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में भी कुछ हमको पता नहीं था। बस इतना था कि हम लोग, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो लौकिक थे, वो हमको मंदिर में लेके जाते थे, कभी हनुमान के मंदिर, कभी झूलेलाल के मंदिर, कभी माताओं के मंदिर, कभी कृष्णा के मंदिर, कभी। लेकिन हमेशा मेरा टेंशन रहता था कि ये जो लिंग होता था ना, लिंग शिवलिंग, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा मतलब अट्रैक्ट करता था कि भाई उसके पीछे जो एक पांच सर्प वाली जो सांप खड़ा हुआ दिखाते थे हमेशा, और ऊपर एक लोटा टंगा दिखाते थे, सामने नंदी बहन होती थी। और दूसरी बात, एक मेरे को बहुत हमेशा सरप्राइज करती थी कि हम जब भी आइडल्स के सामने जाते थे तो हम लोग बोलते थे, तुम माता पिता हम बालिक तेरे, तुम्हें कृपा में सुख घने रे। अभी मैं तो बोल रहा हूँ तुम माता पिता हम बालिक तेरे, भगवान के लिए मेरी वाइफ भी बोल रही है, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, मेरी माँ भी बोल रही है। तो एक समथिंग कुछ अटक रहा था कि भाई हम सब माँ बाप बोल रहे हैं तो हम लोग आपस में कौन हो गए। लेकिन फिर चलो, चलती रही भक्ति। फिर थोड़ी जब ज्ञान में, जब जैसे हम लोग घुसे, तो देखो हमको पहले पहले बताया गया कि हमारे चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अभी ज्ञान को अगर लो तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्ञान पहले तो आपको पता चले कि भाई जैसे हम जैसे पढ़ाई की हमने, तो पढ़ाई की तो हम लोग स्टूडेंट्स थे तभी, तो हम लोग को इंटरेस्ट भी था पढ़ाई करने में, तो वैसे ही जैसे ज्ञान शुरू हुआ पढ़ाई पढ़ने लगे हम, तो ऐसे तो नहीं हम मुंह से सुन के करते थे, जब हमारे सामने ये ज्ञान आया पहले पहले जो पहले दिन जैसे हमारे सेंटर हमारे एक दुकान में ब्रह्मा कुमारीज के जो भी स्थापक थे, हमारे पास कोई सेंटर वेंटर था नहीं, लेकिन जैसे लोग हमारे पास आने लगे जो हमारी बहनें थी, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं था ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, तो ये लोग आते थे हमारे पास दुकान में, तो अफ्रीका में वो भी इतने दूर अनजान शहर में, हम अभी कौन है ये लोग, क्या इनको चाहिए, कुछ मालूम नहीं था परमात्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो हम लोग थोड़ा दूर भाग रहे थे। लेकिन फिर मेरी वाइफ को इन कॉन्टेक्ट हुआ ये बहनों का, तो उन्होंने उसको हमारे घर में उन्होंने इजाजत मांगी कि हम कुछ आपके घर में पका के खाएं, तो मेरी वाइफ तो ऐसे भी बहुत धार्मिक है, तो उन्होंने तो बोला आपको जो करना है करो, रहने का तो भी रहो, फिर भी उन्होंने हमारे पास रात निकाली, वो अफ्रीका के कम से कम उसको 12-15 साल हो गए थे, तो क्या हो गया फिर जब ये लोग आए वहां पर, तो हम लोग मतलब वाइफ के साथ सहारे मतलब कॉन्टेक्ट जुड़ गया, लेकिन फिर हम ज्ञान में नहीं चले, फिर भी हम लोग ने अवॉइड कर दिया, फिर वो लोग चले गए। उसके बाद जब फिर से वापस बहने आई हमारे पास, तो वो क्या हो गया फिर उन्होंने अपना हमारे साथ में घर भी हमारे साथ में उनका हो गया बाजू में, उन्होंने हमारे साथ घर भी हमारे सेंटर के बाजू में था, तो आना जाना हो गया थोड़ा, फिर भी मैं जाता नहीं था, अवॉइड करता था, लेकिन एक बार मुझे बोला भाई ने कि आप आओ तो सही कम से कम, तो जैसे मैं पहले दिन सेंटर पे मतलब पैर कदम रखा, तो मुरली क्लास सुबह सुबह को चल रही थी, तो मुझे हाथ में मुरली का पेपर दिया गया जो कि हिंदी में थी, तो क्या हो गया उससे पहले पहला सबक मुझे क्या मिला कि भाई पतित पावनी गंगा नहीं, तो ये तो मुझे पहले से ही मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि ये पतित पावनी गंगा नहीं है, ये इसका मतलब क्या, मतलब हम लोग जो प्यूरिफाई होने जा रहे हैं तो ये गंगा प्यूरिफिकेशन नहीं है, ये तो मैं मानता था कि पानी प्यूरिफाई कैसे कर सकता है, तो ये बात मेरे को ऐड हो गई मेरे इसमें नॉलेज में, और जो लाइफ जो हमारी थी तभी वो काफी पेचीदी लाइफ थी, मतलब काफी स्ट्रेस था लाइफ में, सारा दिन काम करते थे, मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ थी वो लाइफ, जैसे थी कि जैसे भाई बहुत प्रेशर में हम लोग अपना लाइफ चलाते थे, स्ट्रेसफुल लाइफ थी, हमेशा कोई ना कोई माया का काफी प्रभाव पड़ता था हमारे ऊपर, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती थी, ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ था उस समय का। लेकिन जब एक बार सेंटर पे मेरे को थोड़ा देखो ज्ञान क्या, आप सुनोगे आपको एक एक पॉइंट्स आपको बाबा हमको आप समझो उसको, स्टूडेंट को क्या होता है आपको पॉइंट्स को नोट करना पड़ता है, वो पॉइंट्स नोट करते जाते हैं एज ए स्टूडेंट ही लर्न्स अंडरस्टैंड, अभी 12 साल का नॉलेज में आपको एक दिन में तो नहीं बता सकता हूँ ना, तो पहले पहले दिन एक पॉइंट आपको मिली तो आपने उसको स्टोर कर दिया, क्या था वो एक पॉइंट पहला पहला पतित पावनी गंगा नहीं है गर्ग, ठीक है, और जो एक पॉइंट उस समय जब मेरे को मिली तो उस समय भगवान के बारे में भी पता चल रहा था कि भाई सबसे पावरफुल ईश्वर के बारे में, जो भगवान के बारे में हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, हम तो आइडल्स

0: डिलीवर देना, लेकिन परमात्मा के बारे में मुरली में ज्यादा बोलते थे कि भाई सर्वशक्तिमान परमात्मा है, परमात्मा ही सुखदाता है, परमात्मा ही ये करते हैं। फिर उसके बाद जब स्लोगन में ऐसी ऐसी हम लोग को ब्लेसिंग्स मिलती थी या वरदान मिलता था, उस वरदान से मुझे काफी एक बहुत सारी फीलिंग्स
1: मिला
0: टचिंग मिलती कि भाई उस
1: बिल्कुल
0: समय दुख के समय में या तो मतलब हमको भगवान हमको एंकरेज करते, मतलब मोटिवेट करते थे कि भाई ये दुख तो कोई कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो मतलब संघर्ष कुछ बड़ी बात नहीं, आपको भगवान आपका प्रोटेक्टर है, आप ये है। तो क्या हो गया फिर, एक तो पार्ट हम लोग का जो टच टाइम चल रहा था वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ज्ञान की जो बातें हो रही थी ना उससे हमको काफी रिलैक्सेशन मिलता था। जैसे अभी समझो मुरली सुनते हैं तो आत्मा को एकदम शांति मिल जाती थी जैसे, तो ये एक इफेक्ट बता सकते हैं मुरली का हमारे पर होता था। अच्छा दूसरी बात जो मेरे
1: बिल्कुल
0: को बहुत घर कर गई वो क्या थी मालूम है क्या, एक होता है नॉलेज, प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर्स। ये जो नॉलेज, ये सात जो जो शक्तियां थी, ये भी काफी मेरे को मतलब इफेक्ट कर गई। क्योंकि देखो ये स्टेजेस है एक्चुअली, नॉलेज इज अ फर्स्ट स्टेप। हमको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नॉलेज के हिसाब से हमको पता चलता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं करके, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमको जो जैसे देखो ये जो अपोजिट जो हो गए ना, डार्कनेस लाइट, अंधेरा उजाला, बिग स्मॉल, आगे पीछे, ये जो भी जो प्लस और माइनस का जो जो सिम्टम्स हमको इधर ज्ञान में हमको मिले, मतलब क्या था मालूम है क्या, जो अपोजिट्स जो होते हैं ना, लाइट का अपोजिट डार्कनेस, ऊपर का अपोजिट नीचे, अगली का ब्यूटीफुल, ये सब हमको ज्ञान में काफी हमको इसका इफेक्ट हमको मिला एक्चुअली। वो कैसे मिला
1: जी
0: मालूम है क्या, जैसे अभी नॉलेज की बात लेते हैं हम लोग, पहला पहला जो पॉइंट आता है जो सात सेवन पावर्स जो है, जो शक्तियां जो परमात्मा से हमको मिलती है, वो नॉलेज मिलती है हमको पहले पहले। नॉलेज मिलने से जैसे आपको नॉलेज स्टार्ट हुई ना देखो, तो आपको प्यूरिटी का जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है साथ में साथ में। लेकिन नॉलेज इज नॉट कंप्लीट, नॉलेज के साथ में इग्नोरेंस भी चल रहा है आपके साथ में, ज्ञान के साथ में अज्ञान भी चल रहा है, एकदम आपको नॉलेज नहीं मिल रही है। तो ये स्टेज होती है कि आप पढ़ रहे हो नॉलेज के साथ में, मतलब साथ साथ फिर आपको प्यूरिटी भी आ रही है, मतलब पवित्रता भी आपको साथ में एप्लीकेशन हो रही है उसके से, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेल्फ दिखाई दे रहा है कि आप में ईमानदारी से आप जो कर रहे हो जैसे, तो उसमें
1: जी
0: आपको
1: जी
0: इफेक्ट आ रहा है उसका, नॉलेज के साथ में प्यूरिटी। अच्छा प्यूरिटी के साथ में फिर इम्प्यूरिटी भी चल रही है, मतलब प्योर तो आप कंप्लीट प्योर नहीं हो रहे हो देखो। उसके बाद फिर लव है, लव के साथ में फिर हेट्रेड भी है, जेलसी भी है, बहुत सारी साथ में, मतलब लव भी जो है ना वो कंप्लीट लव आपको नई स्टेज पे जा रहे हो। लव पीस, पीस के साथ में फिर अशांति, मतलब अपीवल्स, मतलब जो डिफिकल्टी टाइम्स आती है, तो पीस के साथ में पीसलेसनेस भी चल रही है साथ में। फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी कंप्लीटली हैप्पी नहीं रहते हो आप, हैप्पीनेस के साथ में फिर आप कभी दुख भी हो रहे हो, कभी डिस्प्रेस भी हो रहे हो, कभी आगे चल रहे हो, कभी पीछे चल रहे हो। तो ये जो पांच जो लेवल है ना, नॉलेज, प्यूरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ये सब स्टेजेस के अपोजिट्स काफी है, मतलब इनके अगेंस्ट में आप काफी चलते हो। मतलब नॉलेज के साथ में इग्नोरेंस भी है, प्यूरिटी के साथ में इम्प्यूरिटी भी है, लव के साथ में मतलब हेट्रेड भी
1: जी
0: है,
1: जी
0: और खुशी के साथ में दुख भी है, और लेकिन जी जो पीस के साथ में अशांति भी है, पीसलेसनेस भी है। लेकिन जब आप आनंद की स्टेज पे पहुंचते हैं हम लोग, तो उसका देखो कोई अपोजिट नहीं है। देखो आनंद का स्टेज जो है ना वो आपको जी पांच स्टेज आप पार करते हो तो आप एक स्टेज पे पहुंचते हो, आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। देखो आप देखोगे ना आनंद का कोई अपोजिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है
1: जी
0: फिर शक्तियां, शक्तियों का भी कोई लेवल नहीं है, अपोविल नहीं है उसमें। तो ऐसा करके मुझे समझ में आया। और दूसरी बात क्या थी
1: बिल्कुल
0: मालूम है क्या, जो परमात्मा के साथ में एवरीडे हमको भगवान के बारे में बहुत सारी न्यूनेस, उसके कार्य, उनका रूप, फिर त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, बहुत सारी नॉलेज डे बाय डे हम लोग जैसे वो बोलते हैं ना, वो चात्रक बन गए थे। मतलब अभी भगवान आज कौन सी हमको एक नई बातें सुनाएंगे, आज क्या हमको नया, हम वेट करते हैं कि हम लोग अव्यक्त मुरली
1: बिल्कुल
0: सुने,
1: बिल्कुल
0: जिसमें आपको डिस्कवरी बाबा हमको कोई ना कोई एक नया पॉइंट, ऐसा राज, एक होता है राज और होता है एक नाराज, तो राजी होता है वो हमेशा जी हजूर करके चलता है, तो हम लोग सुनते रहते हैं इसी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये जो मेरा पिताजी थे ना, जे जो हमारे हमारे लौकिक पिताजी का, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया अभी कुछ 2 महीने पहले, वो हमेशा बेस्ट बोलते थे हमको, सच तो बिठो नच। हम लोग सिंधी है तो भी इन सिंधी हम लोग में सच तो बिठो नच, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, वो जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, ये हमेशा अज्ञान काल में बोलते थे। अपनी घोर तो नशा चढ़े, हम लोग कभी कभी ये अपनी घोर तो नशा चढ़े वो उससे कंपेयर करते थे कि अपनी भांग बनाओ तो अपन बना के पियेंगे तो हमको नशा चढ़ेगा करके। लेकिन ये ज्ञान की बातें हैं जो बहुत सारी जो हमारे पिताजी अज्ञान काल में बोलते थे, लेकिन मैं उनको मधुबन भी लेके आया यही बताने के लिए कि देखो यहाँ पर जो आप बोलते हो ना इसका रियल मीनिंग यहाँ पर हमको मिलेगा, सच तो बिठो नच का मतलब क्या होता है करके भाई। और अब बाबा ने हमको हमेशा प्लस पॉइंट ही, हमको हमेशा अच्छाई की तरफ ही मोड़ा है करके, हमको अच्छी बातें ही
1: बिल्कुल
0: सिखाई है। और हमेशा फिर मैं जब भी मधुबन आता था तो बाबा को देखता था तो पता नहीं मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है, जैसे बोलते हैं ना हमको पूछे कोई क्या आप पहले कभी मिले हो करके, तो टीचर हमको अच्छा पढ़ाने वाला तो बताएगा ना, नहीं हम पहले 5,000 वर्ष पहले भी मिले थे ऐसे करके। अच्छा और दूसरी बात जो वर्ड है सिकिलत, मीठे में
1: जी जी
0: वर्ड है जैसे सिंधी वर्ड है सिकिलते का मतलब क्या हो गया? सिकिलते मतलब बहुत बहुत प्यारा सा, लाडला, लाडला बोलते हैं ना, हाँ लाडला, जो बहुत पहले गुम हो गया था वो हमको मिल गया करके, मीठे मीठे सिकिलते मतलब बहुत टाइम से हम तुम बिछड़े हुए थे अभी मिले हो करके, बिछड़े हुए। तो ये मीठे मीठे बच्चे, ये सब जो बाबा की जो लैंग्वेज है, बाबा के जो स्टाइल है बोलने का, बाबा के धोने का जो प्यार है, ये हमको बहुत मतलब ऐसा है ना कि भाई हमारे सीमा नहीं है। हाँ एक टचिंग फीलिंग होती है, एक टच फील होती है। और नॉलेज तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि भाई 12 साल की नॉलेज जो है, पॉइंट्स ऑफ नॉलेज में अगर आपके शेयर करूंगा, अभी टाइम फैक्टर है। अच्छा दूसरी बात है टाइम फैक्टर है, आप देखो टाइम का जो फैक्टर है, टाइम फैक्टर देखो वो आप वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, टाइम की जो मेजरमेंट है वो राउंड हमेशा है। देखो हमेशा टाइम को आप देखोगे ना, घड़ी को देखोगे आप, तो वो गोल में हमेशा दिखाया है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये गोल जो है ये अनादि चक्र का एक निशानी बताया है। तो टाइम फैक्टर का भी एक बहुत सारे, टाइम के ऊपर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा ना, तो आपको मतलब टाइम के ऊपर भी हम कम से कम 2 घंटा बोल सकते हैं करके, क्योंकि टाइम फैक्टर इज समथिंग विच इज वेरी मच का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे ज्ञान के से जुड़ा हुआ है, जो जो कि बहुत सारे लोगों को हमको बताना है और बाबा का परिचय भी देना, ये तो फर्स्ट काम है हमारा, ताकि ये ज्ञान सबको मिलेगा। अच्छा दूसरी बात क्या है, जो जैसे बताया किसी ने कि भाई परमात्मा, परमपिता परमात्मा, हमें उन्होंने 3 रचना की, सूक्ष्म, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अच्छा जो हम जो ब्रह्मा का शरीर जो दिखाते हैं, हमेशा हमने मिथोलॉजिकल देखा है, हमने देखा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को हमेशा सूक्ष्म अवतन में दिखाते हैं। अगर तो वो सूक्ष्म अवतन जो हम लोग को बाबा हम लोग को ज्ञान देते हैं उसके ऊपर देखेंगे, तो ब्रह्मा का भी हम 3 चेहरे दिखाए, 4 चेहरे हाथों में शास्त्र है करके, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमको ज्ञान की बातें उसमें हमको पता चली कि उन बाबा, ब्रह्मा बाबा के जरिए हमको सारे ज्ञान के शास्त्रों के बारे में जो भी राज है वो हमको उसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं करके। तो ये भी एक पॉइंट, पहले कैसे परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ये ज्ञान दिया, कैसे यज्ञ रचा, कैसे पवित्रता का इम्पैक्ट हमको चेंज करा सके।
1: नमस्कार, बड़ा अच्छा लग रहा था रमेश जी सुना रहे थे कि उनके जीवन में ब्रह्म कुमारी से जुड़कर बहुत सारा परिवर्तन आया, और एक खुशी होती है जब उन नई चीजें सुनते हैं हम लोग, तो उसमें क्या क्या रहस्यमय चीजें हैं जो वो अपने आप को समझ पा रहे थे वो समय के साथ साथ, आज वर्तमान समय में कौन सा समय चल रहा है, और जिस तरह से ज्ञान की बातें उन्हें मिलती गई उसके ऊपर उन्होंने पहले जो अजम्पशन उनका था, पहले का जो नॉलेज था उसको वेरीफाई करते थे, और उन्हें सत्य का पता चल जाता, जैसे सत्य का पता चल जाता है तो खुशी हो जाती है, मतलब आप राइट हो ये पता चलते ही आपको खुशी मिलती। तो आइए फिर से मैं राजा जी से जोड़ना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि तबला के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे उसकी तालीम आप ले रहे हैं, और संगीत में तबला सीखने के लिए कितना पेशेंट लगता है, और कैसे आप इनको कर रहे हैं?
2: तबला में तो बहुत, जैसे आपने बोला, पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। कभी सर कुछ देते हैं हमें बजाने के लिए तो कभी नहीं बजता है, कभी बज भी जाता है, जब सोचते हैं तो नहीं बजता है, अगर नहीं सोचते तो बज जाता है, ऐसा हो जाता है। तबला एक्चुअली आजकल सब ऐसा मानते हैं कि विदेश से आए हैं, मतलब उन्होंने इस पे ज्यादा रिसर्च किया है तो तबला वहां से आए हैं, पर एक्चुअली तबला इज मतलब आजकल तो दंत कथाएं भी कितनी चलती हैं उसके ऊपर, कि जैसे 2 उस्ताद थे काफी टाइम पहले, 2 उस्ताद थे, पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ढोलक होता है उसी तरह एक पखावज भी इंस्ट्रूमेंट है, तो पखावज की कॉम्पिटिशन हो रही थी, तो उसमें दोनों उस्ताद अच्छा बजा रहे थे, तो एक उस्ताद होते थे तो वो हर बार अच्छा बजाने के बावजूद भी वो हर बार हार जाते थे, तो लास्ट में उनका पेशेंस खत्म हो गया, तो उन्होंने गुस्से में स्टेज पे पखावज के 2 टुकड़े कर दिए। फिर ये सुनने के बाद सब लोग ऐसा बोलते थे कि पखावज उसका तबले का मेन है, कि पखावज में से तबला मिलाया हमें, पर ऐसा नहीं है। तबला तो है, वो काफी सालों पहले ही मतलब जो गुफाएं होती थी वहां पे जो मूर्तियां बनाते थे, वहां पे मूर्तियों में रिसर्च किया और वहां पे देखा तो कितनी सदियों पहले ही तबला ऑलरेडी हमारे इंडिया के यहाँ पे था, पखावज से निकला ये संत कथाएं हैं। ऐसे तबला हमारा इंडियन ही है और तबला अभी सीख रहे हैं, और तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, अभी मैं छोटी हूँ ये सब बताने के लिए, जो भी मेरा है तो मैं वो थोड़ा सा शेयर किया। और एक ये बात करूंगी मैं कि मैं भी सिंधी हूँ, और ये मुझे अच्छा लगा कि आज मुझे रमेश अंकल के साथ मिलना हुआ, मैं भी सिंधी हूँ। आपने जब झूलेलाल मंदिर का बोला तो, और आपने बोला कि मैं सिंधी हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्राउड टू बी सिंधी ऑलरेडी।
1: जी मैं चाहूंगा राजा एक छोटा सा गीत आप सुनाइए, क्योंकि संगीत में काफी टाइम से आप गीत बजाते हैं, गीत गाते हैं और तबला बजाते हैं, तो एक गीत सुनाइए जो आपका पसंद।

0: यू।
1: राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और चलिए फिर से रमेश जी से मैं जुड़ना चाहूंगा। रमेश जी, आप अफ्रीका में रहते हैं, तो वहाँ की कुछ बातें, वहाँ की करेंसी के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जरूर बातें हमें शेयर।
2: हाँ ओम शांति। अभी देखो, आप अगर अफ्रीका के बारे में पूछेंगे तो वो तो अभी देखो ऐसे कंपैरेटिवली तो बहुत काफी मतलब जैसे अंडर डेवलप्ड है,
1: हाँ
2: डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी वो जो गांव की जो फ्रेशनेस जैसे बोलते हैं ना, वर्जिनिटी, बहुत सारे उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज जो ताजा है अभी तक, मतलब डिकेड नहीं हुई है। और दूसरी बात क्या है कि आपको खाना भी बहुत ताजा मिलता है, फ्रेश मिलता है, लाल मिट्टी है वहाँ की।
1: अच्छा
2: टूरिस्ट के
1: अच्छा
2: लिए क्लाइमेट थोड़ा ठीक है, बाकी अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है काफी वर्ल्ड में, तो मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा टेंशन तो रहता है, लेकिन फिर भी सी शोर है वहां पर जो
1: अच्छा
2: बीबी के नाम से जानते हैं, द्वाला पोर्ट है वहां पर, जहाँ पर जैसे बॉम्बे का क्लाइमेट है, और मैं जहाँ पर रहता हूँ वो जगह का नाम याउंदे है, वहां पर पूना के जैसा क्लाइमेट है, पहाड़ों के
1: अच्छा
2: ऊपर बसा हुआ शहर है। जी, तो ओवरऑल समझो ऐसा है ना कि भाई चल रहा है अफ्रीका अपने हिसाब से चल रहा है, और कामकाज भी जैसे देखो पूरा एक कंट्री है, तो काफी सारे फॉरेनर्स भी बहुत है वहां पर, और लोकल भी जो जैसे जैसे पॉपुलेशन, अफ्रीकन जो पॉपुलेशन है, तो अफ्रीका के भी काफी सारे वैरायटी वाले लोग वहां पर रहते हैं। जैसे आप देखोगे केनियन है, केनिया के लोग हैं, साउथ अफ्रीकन्स हैं, नाइजीरियंस हैं, हमारे जो कैमरून के हैं, वहां पर दो भाषाएं ऑफिशियल है, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। तो आप देखोगे ना तो बाजू में जो भी इतनी सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां के सब देशों के लोगों को आपको वैरायटी के रूप में मिलेंगे, आपके सब देश के कंट्री। हालांकि 52 अफ्रीकन कंट्रीज हैं एक्चुअली एट प्रेजेंट, जिसमें इजिप्शियंस भी मिलेंगे आपको, लाइबेनियंस, लिबनान भी मिलेंगे, यूरोप के इतनी सारी वैरायटी आपको कंट्रीज के मिलेंगे हमारे, फिर अमेरिकन हैं, तो बहुत सारे हम लोग जहाँ पर रह पड़े हैं वहां पर हमको ऐसे छोटे से एटमोसफेयर में इतना सारे वेरायटी ऑफ यू नो डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड वाले पॉपुलेशन के हम जुड़े पड़े हैं उनसे, क्योंकि हमारे में हम चाइनीज वाले हमारे इतने बड़े कॉम्पिटिटर्स है, देखो चाइनीज हमारे दोस्त जितने बनते, भले इंडिया का बताते हैं दुश्मन है करके, या बहुत सारे उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहती है तो पॉलिटिकली, लेकिन जहां तक हमारे जो सप्लायर्स है वो सारे सब चाइनीज है, हमसे इतने प्यार से चलते हैं, प्यार से बुलाते हैं, प्यार से काम करते हैं, प्यार से हमको रिस्पेक्ट भी देते हैं, बोलते भी है यार ले लो माल आया है ले लो, रोज हमको मतलब दे, यू नो वी आर बिग कस्टमर्स ऑफ देम, क्योंकि चाइनीज हमारे पर काफी डिपेंड करते हैं अफ्रीका में, तो यू सी
1: अच्छा
2: इट्स। और देखो बिजनेस करते हैं हम सिंधी, तो आपको मालूम है अफ्रीका में हर सारे वर्ल्ड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन फिर हम लोग माइनॉरिटी में है ना, फिर भी इतना कॉम्पीट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम सिंधी सब जुड़ जाए या हिंदुस्तानी हम जुड़ जाए, तो अभी अभी जो मैं प्रेसिडेंट जो बना हूँ अफ्रीका में विश्व सिंधी सेवा संगम का, तो ये क्या है, ये एक तरीके का समझो सेवा का ही एक मौका मिला है हमको, प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके जरिए हम सिंधी मिलके हम लोग बताएंगे कि हम लोग जो कर सकते हैं यूनिटी के, अभी तो यूनिटी है नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से परमात्मा जो शिव ने, हम बोलते हैं ना हमको पार्ट मिल रहा है, हम इतनी दूर क्यों गए हैं करके, जरूर हमारा कोई पार्ट होगा ना, तभी तो गए ना,
1: बिल्कुल
2: हर आत्मा का पार्ट भगवान बोलते हैं ना परमात्मा की, हर आत्मा का पार्ट है, इवन परमात्मा भी छूटे नहीं पड़े अपने पार्ट के रोल से, उनका भी पार्ट है, तो वो
1: बिल्कुल
2: धरती पर अपना कार्य करते हैं, तो जरूर वो भी बंधे हुए ड्रामा से, तो हम भी ड्रामा से बंधे हुए हैं, तो हमको जो पार्ट मिला है तो हमको तो बजाना ही है, और अच्छी तरह बजाएं तो हमारी आत्मा को जो शक्ति है तो शक्तिशाली दूसरों को भी हमको बताना है, तो सबका परिवर्तन हो, सबके जीवन में परिवर्तन आए, ये हमारा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जैसे सिंधी कम्युनिटी के लिए हम जो कर सकते हैं, जिनको बहुत सारी तकलीफें आती हैं, और हम जैसे अभी इतने पुराने हो चुके हैं, तो हमारा भी कोई हक बनता है कि हम भी बताएं कि हम पुराने हैं उधर, तो ऐसे कुछ कर सकें
1: बिल्कुल
2: कम्युनिटी के लिए, क्योंकि नए वालों को इतना इम्पैक्ट नहीं, इतनी सपोर्ट नहीं मिल सकता ना, जितना हम पुराने वहां पर बसे हुए हैं, जो हम लोग कालो मतलब लोकल्स के जो हमको रग रग में हम जानते हैं।

0: इनकी बिहेवियर को जानते हैं, उनको जो चाल चलन है, उनके जो जो रिदम है, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, तो काफी सारे तो ऑफकोर्स क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं काफी सारे। बाकी हिंदू का तो सिर्फ हिंदू हम हिंदू को ही पता है, मंदिर वंदिर भी
1: बिल्कुल
0: हमारे वहां पर है नहीं, लोग भी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं जितने भी लोगों को हम जोड़ सकते हैं सिंधुत्व बनाने के लिए, इतना भी हम काम कर सकते हैं समाज के लिए। सेवा तो बोलते हैं ना, करना ही करके, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा हमको, तो
1: अच्छा,
0: भी है। और हमेशा जाति जान की,
1: वहां पर अफ्रीका में जो फेस्टिवल्स वगैरह कौन कौन से मनाते हैं खास?
0: देखो अफ्रीका में या तो जो मुस्लिम्स हैं उनकी ईद जो होते हैं, जो चार पांच जो इनकी ईद होता है फेस्टिवल्स, रमजान हो गया आपका, बकरी ईद हो गया, और जैसे दो तीन जो फंक्शन जिनके कॉमन है वो कॉमन मनाते हैं। बाकी क्रिश्चियंस का काफी फंक्शंस होता है उनके भी, जो क्या बोलते हैं, एक तो आपका क्रिसमस जो है वो तो एकदम अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, ऊपर से फिर न्यू ईयर का भी लोग काफी करते हैं, और वैलेंटाइन डे भी करते हैं। तो बहुत सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं इनके जो है क्रिश्चियंस के जो है वो लोग करते हैं। बट लेकिन हाँ, जो शॉप्स को लोग पब्लिक हॉलीडे कभी नहीं मिलती है इनको, सिर्फ जो नेशनल डे होता है उसी दिन मिलती है। तो हम लोग 365 डेज ऑलमोस्ट काम करते हैं, और यही हम लोग का शक्तिशाली परमात्मा की मुरली सुनने के बाद हमको बहुत ताकत मिलती है काम करने के लिए। अदरवाइज आप देखो माया का प्रभाव तो काफी पड़ता रहता है। पहले तो ठीक है बहुत सारे प्रभाव हमारे पर पड़े, हमने काफी झेला, लेकिन ज्ञान में आने के बाद फिर वो जो जो बोलते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो वो हमारे से काफी जो मतलब जो माया के जो प्रभाव काफी कम होता जाता है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है काम में। एक स्मूथनेस आ जाती है, आप
1: जाता
0: स्मूथनेस आ जाता है, और आपको किसी बात का जो भय रहता है वो नहीं रहता है, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है करके। बहुत सारी चीजें हैं कनेक्टेड टू ज्ञान के, ये जो हमारे जो
1: अच्छा,
0: त्योहार है ज्ञान के, ये भी तो
1: बिल्कुल
0: सब
1: उसमें
0: मीनिंग
1: कहीं ना कहीं
0: है
1: रहस्यमय चीजें हमको मिल जाती।
0: ना, जी सब में
1: और
0: मीनिंग्स है, सब मीनिंग है,
1: बिल्कुल
0: सब में
1: बिल्कुल,
0: मीनिंग, सब सब पूरा पूरा का ज्ञान का ही सब प्रभाव है, ये सब ज्ञान में ही है पूरा।
1: अच्छा वहाँ अफ्रीका में जो है जैसे फेस्टिवल की बात आपने कही, उसके बाद में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी चीजें करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है?
0: अभी देखो ना मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारी कुर्सियां बहुत होती हैं हमारे इधर, मैन्युफैक्चरिंग जो
1: अच्छा,
0: चेयर्स
1: किस
0: होते हैं,
1: टाइप की?
0: जो जो हमारे जो इंडिया की जो एक कंपनी है प्रीमा डिलाइट, प्रीमा के नाम से है, जो चेयर्स बनती है जिनकी, उनकी फैक्ट्रीज है हमारे पास। ग्लूकोज पाले, पाले जी की फैक्ट्री है हमारे यहाँ पर। फिर जो बैग्स होती है जो प्लास्टिक्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो यूटेंसिल्स होते हैं ना प्लास्टिक्स के, जैसे जग्स हो गया, मग्स हो गए, ये सब प्लास्टिक के आने लग गए हैं। स्ट्रॉलर्स, स्ट्रॉलर्स जो होते हैं वो आ गए हैं, जिसमें रैक्स होते हैं, छोटी छोटी वैरायटी बकेट्स हो गए हैं, जैसे जैसे होते हैं बाल्टियां, बाल्टियां वगैरह की फैक्ट्री। अच्छा अभी अभी अल्कोहल की भी, इंडियन की भी किसी की फैक्ट्री है जो कोलेबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो पहले हम भी अल्कोहल बेचते थे ज्ञान से पहले, लेकिन फिर हम ज्ञान के आने के बाद में अल्कोहल को सब बंद कर दिया हमने। हम तो खुद नॉनवेज करते थे तो वो भी हमने बंद कर दिया, नॉनवेज का भी वो सब। ऐसा नहीं कि किसी ने हमको बोला है करके, ऐसा नहीं है। नॉनवेज, अल्कोहल, ये सब जो जो व्यसन थे। हम तो यहाँ पर अभी हमारे सेंटर है यहाँ पर वाशिष के सेंटर में, हमारी शीला दीदी है उनके नियंत्रण में हम लोग काम, हमने रैली भी की थी, उन्होंने काफी
1: बिल्कुल
0: सक्सेसफुल रैली भी व्यसन के ऊपर हमने की थी, काफी उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। और दीदी हमेशा हमको गाइड भी करती है। और अफ्रीका में भी हमारे धर्मेश भाई साहब हैं हमारे टीचर, और हमारी जो सेंटर की कोऑर्डिनेटर है वेदांती बहन, प्रतिभा बहन, इन्होंने का भी काफी सपोर्ट मिला। और दूसरी बात, अभी जो ज्ञान की बात होती है तो ऐसे तो ज्ञान आता नहीं है, तो हमको इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना काफी सारी बातें। शीलू बहन जो हमारी है वो भी हमको इतना अच्छा ज्ञान देती है बहुत सारा। अभी हमें हाल ही में इनको मिला था अपना, जो हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब जो है, सतीश गुप्ता है, सब हमको बहुत। अभी स्वामीनाथन का भी एक क्लास हमने सुना, गिरीश भाई का भी क्लास सुनते हैं हम लोग। तो ये सब क्लास सुनने से हमारा ज्ञान को एक अलग ही लेवल मिल जाता है, और ज्ञान पे हमको चलना,
1: बिल्कुल
0: सुनने की बात नहीं होती इसको, बाबा हमेशा बोलते हैं अनुभवी बनो करके। और सबसे पहला जो हमको ज्ञान की बात, सबसे पहले हमको क्या मिली कि हमको आत्माभिमानी बनना है, आत्माभिमानी के ऊपर हमको जोर देना है। तो बनना क्या है, उनका स्वरूप बनना है। आत्मा तो एक हमको एक फर्स्ट स्टेप मिला है, और उसको हमको तो रियलाइजेशन में लाके हमको वो उनका स्वरूप बनना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आत्मा हूं करके ऐसे बोल के चलना है करके, वैसी बात नहीं होती। लेकिन कनेक्शन उसमें क्या है कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं रूह, रूह जो होती है ना रूह, रूह हमको बनना है। ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ बोलने की बात है, उसको प्रैक्टिस में लाके उसमें उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर देखना है कि कहाँ कौन सी परफेक्शन, जैसे बोलते हैं ना वो मूर्ति बनाने के लिए किसी ने, कलाकार ने वो ठोक ठोक के पत्थर जो उसके निकालता है, तो बाबा वैसे हमको श्रृंगार कर रहे हैं ज्ञान रत्नों से। तो जरूर उसका तो इम्पैक्ट तो हमारे उसकी ऑफकोर्स जो सेक्रीफाइसेस है वो हमारे को जैसे ठोक रहे हैं बाबा परफेक्ट बनाने के लिए, तो हमको वो सब
1: जी,
0: करके परफेक्शन में बनना है, जो हमको बन के दिखाना है हमको।
1: बिल्कुल
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है किसी का, ऐसा नहीं कि हमको
1: बिल्कुल
0: किसी के दबाव में या किसी के झुकाव में आके हम कर रहे हैं, या हमारी आत्मशक्ति जो है हमको मनोबल दे रही है ताकि हम एक कार्य कर सके। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर किसी को टच करता है या किसी को इस पे प्रेरणा मिलती है तो मेरा कार्य तो बन गया ना, तो एक अच्छा ही काम किया। हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी को, वो बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं वो पल्स देख के उसको दवा देनी है करके, इलाज करने के लिए पहले देखना पड़ता है कि भाई किसी को टचिंग मिले, तो वैसा हमको तीर बाण लगना चाहिए, तीर हमारे जो ज्ञान की बातें हैं उसको टच करनी चाहिए, उससे उनको प्रेरणा
1: रमेश जी
0: मिलनी
1: बहुत
0: चाहिए।
1: अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अभी आगे बढ़ते हैं, राजेश जी से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। और बड़ा अच्छा आपने बताया कि कैसे आपको जो है ये चीजें मिली, और जितना आप उसका मंथन करते जाते हैं, उसका प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वो आप वो फीलिंग में, माना जो सोल है, आत्मा है, उसकी टचिंग या उसकी फीलिंग आपको आ जाती है, तो वो फीलिंग बहुत ही सुख देता है हम सभी को। इसलिए व्यक्ति हमेशा जो है, आदमी का मन सुख ढूंढता है, कहाँ से वो सुख मिलेगा, लेकिन टेम्पररी व्यक्ति वैभव ये सारी चीजें टेम्पररी हमें सुख देता है, परमानेंट जो सुख आपको मिलेगा वो आत्मचिंतन में मिलेगा और प्रभु चिंतन में मिलेगा, जो आपने भावनाओं से बताया है। तो इसके लिए कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आपको खाली रास्ता बताया जाएगा, जो चलेगा जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना जल्दी उसको पाए, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, थैंक यू। आइए मैं फिर से राजा से जोड़ना चाहूंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं आप, अपने करियर को लेकर, संगीत को लेकर क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा वो बताइए। और संगीत में जिनको आपने अभी पढ़ाई शुरू की है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की स्टोरी बताई जाती है, तो किन के कहानी को सुनकर आपको मोटिवेशन मिलता है या प्रेरणा मिलता है संगीत जगत?
2: जी, मुझे तो ऐसा है कि मैंने सोच के रखा है कि मैं वर्ल्ड के सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करूं और सबको थोड़ा थोड़ा बजाना सीखूं। बहुत प्यार है इंस्ट्रूमेंट से, जहां भी मैं कुछ नया इंस्ट्रूमेंट देखती हूँ तो बस खरीद लेती हूँ। ये मेरा एक सपना है कि मैं अपना एक स्टूडियो हो और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, और थोड़ा थोड़ा बजाना तो आना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अभी तक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने सीखा है बजाना?
2: अभी फिलहाल मैंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा फ्लूट सीखा हुआ है, गिटार सीखा है, हारमोनियम, तबला, ढोलक, डीजे। रिदम एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो तो हमें कोई भी हम एक रिदम एक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो उसके साथ साथ हमें बाकी के भी रिदम एक इंस्ट्रूमेंट हमें आ जाते हैं थोड़े थोड़े। थोड़ा हाथ की रखावट हमें सीखनी पड़ती है, पर हम थोड़ा थोड़ा बच लेते हैं रिदम एक अगर हमने किया है। फिर आता है स्ट्रिंग वाला, तो जैसे मुझे अगर गिटार आता है तो वायलिन है, मैंडोलिन है, तो थोड़ी हाथ की रखावट चेंज होगी, पर उसको मैं अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो वो ऐसे ही मतलब सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जो संगीत में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको आप सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो किन के बारे में आपको बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनकर, उनके जीवन कहा को पढ़ दे?
2: अभी तो जाकिर हुसैन जी को सुनती हूँ, तो उनका तबला, उनके एक्सप्रेशन, उनका बजाने का तरीका, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और तबला मैं पहले

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बीइंग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन। एंड असर्टिव डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं। तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, आपको भोलू तो याद है ना? हाँ, वही भोलू जिसकी एक प्यारी सी बकरी है भूरी। चलो अब सीधा भोलू के पास चलते हैं, जो कि अपने दोस्त महेश के साथ अपने घर के बाहर खड़ा है।
1: क्या हुआ महेश, तुम मेरे घर के बाहर आकर रुक क्यों गए? अंदर आओ ना।
2: नहीं भोलू, वो मुझे तुम्हारे पिताजी से बहुत डर लगता है।
1: महेश भाई, मेरे पिताजी गुस्से वाले लगते जरूर है, लेकिन है नहीं। चलो उनसे मिलके तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आओ आओ ना पिताजी, देखिए तो मेरा दोस्त महेश आया है।
2: नमस्ते चाचा जी।
3: खुश रहो भोलू, तुम दोनों को तो इस समय अपने स्कूल में होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ घर पे क्या कर रहे हो?
1: पिताजी आज जल्दी छुट्टी हो गई, 2 हफ्ते बाद स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह है ना, तो बहन जी ने हर बच्चे को एक छोटा सा लेख लिखने के लिए कहा है। महेश और मैं साथ में बैठकर अपना अपना लेख लिखेंगे।
3: लेख लिखना किस विषय पे है?
1: एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमें कोई प्रेरणा मिलती है।
3: अच्छा विषय है। महेश, तुम्हें किस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है?
2: जी, वो मुझे, हाँ, महात्मा गांधी, गांधी जी से बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे, सच बोलने की प्रेरणा।
3: शाबाश, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है?
2: जी वो
3: रुमाल है ना जेब में।
0: महेश ने जेब से रुमाल निकाल के पसीना पोछा और भोलू के साथ बैठकर अपना लेख लिखने लगा। और अगले दिन
3: कहाँ जा रहे हो भोलू?
1: महेश के घर।
3: तुम वहाँ नहीं जाओगे, महेश अच्छा लड़का नहीं है, तुम आज के बाद उससे बात भी नहीं करोगे, समझे? इस उम्र में इतनी बुरी आदतें, जाओ जाके अपना लेख लिखो।
0: भोलू उदास होके अपने घर के बाहर बैठ गया, तभी वहाँ आ गई अपनी मीना।
4: भोलू भैया, भोलू भैया।
1: आओ मीना।
4: क्या हुआ भोलू भैया, आप इतने उदास क्यों हो?
1: मीना, पिताजी ने मुझे महेश से मिलने के लिए मना किया है और ये भी कहा है कि मैं आज के बाद उससे बात ना करूं।
4: मिट्टू चुप। चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा?
1: वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मीना।
4: अरे मिट्ठू, ये तुम्हारी चोंच में क्या है? गुटखे का खाली पैकेट, ये तुमने कहाँ से उठाया?
5: कहाँ से उठाया? भोलू के घर में नजर आया।
1: ओह, अब मैं समझा मीना कि पिताजी ने मुझे महेश से दूर रहने के लिए क्यों कहा है। कल रुमाल निकालते हुए महेश की जेब से ये गुटखे का पैकेट गिर गया होगा।
4: लेकिन आपको कैसे पता कि महेश भैया गुटखा खाते हैं?
1: पिछले हफ्ते मैंने महेश को गुटखा खाते हुए देखा था, मैंने उसे समझाया भी कि तंबाकू चबाना अच्छी बात नहीं, इससे सेहत का बहुत नुकसान होता है।
4: फिर
1: महेश ने मुझसे वादा किया कि वो अब कभी भी गुटखा नहीं खाएगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया।
4: हो सकता है कि ये पैकेट उनकी जेब में बहुत पहले से पड़ा हो।
1: तुम ठीक कह रही हो मीना, चलो हम अभी महेश के पास जाके उससे बात करते हैं।
0: भोलू और मीना जल्दी से महेश के पास पहुँचे।
1: महेश, तुमने गुटखा खाना छोड़ दिया है ना? देखो झूठ मत बोलना।
2: भोलू मेरे दोस्त, सच तो ये है कि मैं अब भी गुटखा खाता हूँ।
1: लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि...
2: मैंने गुटखा छोड़ने की बहुत कोशिश की भोलू, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया।
1: पिताजी ठीक ही कहते हैं, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा।
2: भोलू मेरी बात सुनो, तुम मेरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो भोलू, और तुम ही
4: भोलू भैया, महेश भैया को तो बहुत खांसी आ रही है, हमें तुरंत इन्हें नर्स बहन जी के पास ले जाना चाहिए।
1: तुम ठीक कह रही हो मीना, चलो आओ महेश हमारे साथ चलो।
0: भोलू और मीना महेश को लेकर नर्स बहन जी के पास पहुँचे। नर्स बहन जी ने महेश की जांच की और कहा,
6: महेश तुम्हारे गले के अंदर बहुत घाव हो गए हैं, क्या तुम बाजार की बनी चटपटी चीजें खाते हो? बोलो महेश।
2: नर्स बहन जी, वो मैं गुटखा खाता हूँ।
6: क्या महेश, गुटखा खाना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है।
5: बुरा होता है, बाद में आदमी रोता है।
2: नर्स बहन जी, मैंने अपनी ये बुरी आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन
1: ये झूठ बोल रहा है बहन जी। इसने पिछले हफ्ते ही मुझसे वादा किया था, जो कि इसने तोड़ दिया।
6: भोलू, ये बुरी आदतें एक बार लग जाएं, तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, बस थोड़े समय और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है।
4: नर्स बहन जी, इसका मतलब अगर महेश भैया गुटखा छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो क्या वो भी इस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे?
6: हाँ मीना, बिल्कुल। और भोलू, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्तों को बुरी आदतों से दूर रखने में उनकी मदद करे।
1: मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ?
6: मैं समझाती हूँ। महेश, एक बात बताओ, दिन के किस समय तुम्हें गुटखा खाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है?
2: जी, शाम को, जब हम सब दोस्त खेलकर वापस आ रहे होते हैं।
6: सुना भोलू, तुम उस समय महेश का ध्यान किसी और चीज की तरफ लगा सकते हो, ताकि इसका गुटखा खाने का दिल ही ना करे। और महेश, तुम अपने साथ नीम के दातून हमेशा रखा करो।
2: नीम के दातून?
6: हाँ, नीम के दातून, ताकि जब भी तुम्हें गुटखा खाने की इच्छा हो, तो उसकी जगह तुम दातून चबा सको।
2: ऐसा करने से महेश की ये बुरी आदत छूट जाएगी बहन जी?
6: उम्मीद तो यही है, लेकिन इस बुरी आदत को छोड़ने में सबसे जरूरी है महेश का अपना दृढ़ निश्चय।
2: नर्स बहन जी, मैं आज आप सबसे ये वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं गुटके को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
5: हाथ भी नहीं लगाऊंगा, अपनी सेहत बनाऊंगा।
0: उस दिन के बाद से महेश ने कभी भी गुटका नहीं खाया। उसकी ये बुरी आदत छोड़ने में भोलू ने भी उसकी बहुत मदद की। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन स्कूल में
7: अब अपना लेख पढ़ने की बारी है भोलू की।
1: हम अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा जरूर लेते हैं, और मुझे जिस व्यक्ति से प्रेरणा मिली है उसका नाम है महेश। महेश ने मुझे ये सिखा दिया है कि अगर दृढ़ निश्चय और सच्ची लगन हो, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी किया जा सकता है। जैसे अपने दृढ़ निश्चय से महेश ने गुटखा खाने जैसी बुरी आदत हमेशा के लिए छोड़ दी।
3: महेश बेटा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने गुटखा खाने जैसी बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज के बाद तुम जब चाहो भोलू से मिल सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा।
5: कभी नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं टोकूंगा।
0: दोस्तों, हम भी खुद से आज एक वादा करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हम हमेशा हर बुरी आदत से दूर रहेंगे। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की एक प्यारी सी कविता।
4: बुरी आदतों में पढ़कर ये जीवन नहीं गवाना,
5: याद रहे ये बात कभी, तंबाकू नहीं चबाना।
0: भाई वाह, क्या बढ़िया कविता लिखते हैं अपनी मीना और मिट्टू, मजा आ गया। चलो अब इस मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं एक बढ़िया सा गाना सुन के।

0: सचमुच बहुत बढ़िया था, है ना? फिर ठीक है, अब कहाँ चलना है सोचो सोचो। हाँ, अब चलना है खेलने।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो सुनो पहली कड़ी। मिट्टी से मैं बनती हूँ, हूँ बुरे वक्त की साथी, बूंद बूंद सागर बनता है, बात यही सिखलाती।
3: गमला।
1: वो कैसे दीपू?
3: क्योंकि गमला मिट्टी से बनता है।
1: अच्छा, और क्या गमला बुरे वक्त का साथी होता है? चलो चलो, शाबाश, जल्दी सोचो।
4: क्या हो सकता है? क्या होगा?
5: जल्दी सोचना।
6: मिट्टी से बनती है।
4: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है गोलू। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। एक आंख है मेरी, उसमें नोट या सिक्के डालो, जब मैं भर जाऊं तो मुझको तोड़ो और निकालो।
4: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है गुल्लक, क्योंकि गुल्लक मिट्टी से बनती है और उसमें हम पैसे जोड़ते हैं।
1: हाँ मीना, शाबाश। बच्चों, गुल्लक हमें क्या सिखाती है?
7: बहन जी, गुल्लक हमें सिखाती है कि बचत करने में ही समझदारी है।
8: समझदारी है, गुल्लक बहुत प्यारी है।
1: मिट्ठू ने भी कहा बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों, मजा आया ना?
2: जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100-3।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम हियर विद द अनदर लेसन which is what is amiss with us from the book Golden Rays for class 10th RBSE Rajasthan Madhyamik Shiksha Board students, aaj hum ek naye lesson ke question answers ke sath maujood hain yahan pe. Kal hamara lesson number 5th complete ho gaya tha, to aaj isko koshish karte hain. Dekhiye isme activity 1 mein comprehension A aur answer the following questions in about 30 to 40 words. Okay, what was the study undertaken in the schools of Britain for? So ye ws se shuru hai, what aur was ko hata diya. So the study was undertaken in the schools of Britain for, bilkul is lesson ke shuru mein hi iska answer diya hua hai. So I am going to read it for you. Main batata hu aapko, dekhiye. अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए कि हमें बार बार मैं ये बात बोलूंगा कि बुक के अंदर से ही, लेसन के अंदर से ही हमें आंसर्स को ढूंढना आना चाहिए. ओके, ये है स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन फॉर फाइंडिंग आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस. बस ये आपका आंसर हो गया कि कौन से देश के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये देखने के लिए वो स्टडी की गई. ओके, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर वी नॉट पेसिंग अप विद अदर सुपर पावर्स. इसका भी आंसर हम ऐसे ही करेंगे, वी आर नॉट पेसिंग अप विद अदर सुपर पावर्स बिकॉज. इसका आंसर भी देखिए यहां पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर है देखिए, बिकॉज देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम अवर कंट्री टू अदर अफ्लुएंट नेशन. Our imports exceed our exports. We look to developed nations for help and aid. ये इसका आंसर हो गया. ओके, ये भी आपकी बुक में से ही पढ़ के मैंने बताया. थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच आर अवर बिग अचीवमेंट्स. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, तो विच की जगह हम आंसर लिखेंगे. और देखिए आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. द भाकड़ा नागल डैम्स, भिलाई राउरकेला,

फर्स्ट ही है हमारा, तो देखते हैं अभी। नॉइस पोल्यूशन, ओके। आर अ टीवी प्रोग्राम और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इवन अ गॉसिप और अ चिट चैट इन अ कंपनी। ठीक है, ये सब हो गया, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। ये भी आंसर बिल्कुल बुक में एज इट इज दिया हुआ है। और यहां पे देखिए, बहुत इजी है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ इज द स्टेचुटरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड। द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड्स आर। ओके, अब आर्स के बाद ट्रैफिक वाले में जाएंगे हम। ये बहुत सीधे से आंसर दिया हुआ है इसमें। हाँ, नॉर्म्स आर हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल, व्हेन टू टेक अ टर्न, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स। ये इसका आंसर हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डज इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। इसी में ही मिलेगा इसलिए भी पॉसिबल रिस्क। द पिटी इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, मोस्ट ऑफ द व्हीकल एमिट स्मोक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द आंसर। पीपल प्लाई दियर व्हीकल्स ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। They overtake another vehicle the way they want, setting at naught the basic traffic rules and thus playing with lives of innocent people. Next question, whom does the writer call uncivilized? ये भी आंसर सीधा सा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बुक में। वर्ड में देखना है अनसिविलाइज्ड। द पीपल Those with muscle power are uncivilized. ये इसमें आंसर है हमारा। So it would be the people with muscle power does the writer call uncivilized. What is the easiest way of our protest? ये हम उसमें देखते हैं धरना प्रदर्शन वाले में। पहला ही पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ। द इजिएस्ट वे ऑफ अवर प्रोटेस्ट इज टू गिव वेंट टू अवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज अ धरना और कॉल फॉर अ बंद और अ रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज विच वेन कैन वी होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। इट इज वेरी इजी, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। वी कैन होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर व्हेन। हियर इट इज, द माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट। प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट अवर डोर्स। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, तो इनको अब हैं बी बी सेक्शन में। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज दैट हैव हैम्पर्ड अवर ग्लोरी। बहुत इजी है, हम बता सकते हैं इसको, शुरू के पेज पर ही दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज नॉइज पॉल्यूशन अफेक्ट अवर लाइफ। बहुत ईजी है, हम बिना लेसन को पढ़े भी इस पर लिख सकते हैं। थर्ड है, हाउ कैन यू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन। व्हाई हैज द मूवमेंट ऑन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई हैज द मूवमेंट ऑन
roads become

0: डेंजरस। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू मेक क्लीन अवर सराउंडिंग्स। ये क्लीनलीनेस में से, अकॉर्डिंग टू द राइटर, हाउ कैन वी एक्सप्रेस अवर प्रोटेस्ट विदाउट कॉजिंग एनी डिफिकल्टीज टू अदर्स। यहाँ पर आप जापान की जो कंपनी वाला एक एग्जाम्पल था, गांधी जी वाला एग्जाम्पल जो था, वो सब इसमें लिख सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, विच इज सुपीरियर बिटवीन द मसल पावर एंड द ब्रेन पावर। पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको देखिएगा। एट्थ क्वेश्चन है, हाउ डू द वर्कर्स ऑफ ए शू। अच्छा, ये अलग से भी क्वेश्चन आ गया, देखिए जापान वाला। शू फैक्ट्री इन जापान डेमोन्स्ट्रेट दियर प्रोटेस्ट। पूरा एज इट इज आप लिख दीजिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डू वी लैक इन अवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस। एक ऐसे ही हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव वाली, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं। द नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड मोस्ट बिकॉज ऑफ प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर एट हाई पिच, ब्लोइंग हॉर्न्स, यूजिंग लाउड स्पीकर्स इन सेरेमनीज, लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर। इनमें से सबसे ज्यादा पूछा है ना, मोस्ट तो लाउड स्पीकर ही हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज मोर हार्म टू अवर हेल्थ। ओके, ए में दिया है डायरेक्ट स्मोकिंग, बी में है पैसिव स्मोकिंग, सी में है च्यूइंग ऑफ टबैको, और डी में है सेलिंग ऑफ स्मोकिंग सब्सटेंसेस। तो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सेल वेल तो ठीक है। इसका सही आंसर है बी, पैसिव स्मोकिंग। ओके, थर्ड इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। व्हाट इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एनक्रोचमेंट, नो, बी में है क्लीनलीनेस, सी में है सोशल बिहेवियर, और डी में है सिविक सेंस। तो क्लीनलीनेस, स्वच्छता है ना। एक्टिविटी सेकंड में है वोकैबुलरी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स ऑफ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, ऑल्सो यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल बिलो। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलेप्स, और इसका जो मीनिंग है वो है फॉल डाउन, और सेंटेंस जो है वो बिल्डिंग में कॉलेप्स वन डे बिकॉज ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। तो ये कॉलेप्स का यूज हो गया। अब देखिए ए में क्या है, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मीनिंग क्या हो, बी में से मिलाना है हमें, तो इसका होगा थर्ड वाला, रिच एंड वेल्दी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा देखिए रिचुअल, रिचुअल का मीनिंग हो सकता है आपका रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक जो हमारे कार्यक्रम होते हैं। बीच में से हम लेते हैं एओन, एओन एक वर्ड आया था, एओन होता है एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो काफी लंबा समय। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये भी हो गया। अब बी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। पहला वर्ड है इनसेसेंटली, लगातार। दूसरा लिटर्ड, सने हुए, भरे हुए। स्लंप, कैलेमिटी, विनाश, ग्रैब, पकड़ना, प्रोटेस्ट, विरोध करना, हैम्पर, क्रास, कमी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, दीज डेज देयर इज अ ग्रेट खाली जगह इन रियल एस्टेट। तो क्या है रियल एस्टेट में कमी है, तो इसका आएगा क्रास। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट खाली जगह इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज। तो मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट, यहां भी क्रास आएगा, क्रास इग्नोरेंस। थर्ड में देखिए ब्लोइंग द हॉर्न्स इनसेसेंटली, थर्ड में इनसेसेंटली लगातार हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। चौथा है पब्लिक प्लेसेस कैन बी सीन लिटर्ड, यानी वो गंदे होते हैं ना, लोग गंदा कर देते हैं उसको। पांचवा है वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स मे लीड टू सीरियस क्या कैलेमिटी। सिक्स्थ, कांट वी थिंक अदर वेज ऑफ अवर एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट, तो यहां पे खाली जगह में आ जाएगा प्रोटेस्ट। कल्चरल बैरियर्स मे द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ओके, ये हो गया. अब है एक्टिविटी थ्री विच इज ग्रामर पोर्शन हमेशा की तरह, और आप जानते हैं इसमें है टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए आपको समझना चाहिए कि अगर हम जब बात अपनी कोई कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, लेकिन हम किसी और की बात जब बोलते हैं अपने शब्दों में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है. और ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, टेंसेज हो गए और प्रोनाउंस हो गए, ये सब कुछ बदल जाता है. तो देर आर सर्टेन रूल्स फॉर इट. इन आवर रूटीन लाइफ सिचुएशंस वी हैव टू टेल और रिपोर्ट टू अदर्स व्हाट वी हैव एक्चुअली हर्ड और कम टू नो फ्रॉम समबडी एल्स और सम अदर सोर्स. हमारे डेली रूटीन में वही बताया कि कुछ सूचनाएं हम खुद प्राप्त करते हैं, कुछ हमें किसी और से मिलती हैं. देर आर टू वेज, दो तरीके हैं ऑफ नरेटिंग और सेइंग किसी बात को कहने के. फर्स्ट, पहला है बाय यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स, उसके शब्दों को ही इस्तेमाल कर लेना ऑफ द स्पीकर. एंड सेकेंडली, दूसरा बाय रिपोर्टिंग यूजिंग द वर्ड्स ऑफ वंस ओन, हमारे खुद के शब्द. व्हेन वी यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज, किसी चेंज के बिना हम उसके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एनी वेयर कहीं भी, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. एंड इट इज पुट विद इन इनवर्टेड कॉमास. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई सेड वाई डोंट यू जस्ट आस्क माई साइज. When the words of a speaker are reported without quoting the actual words, it is called indirect speech or reported speech. For example, he said that he had not done anything. जो हमारा first example था उसको इन्होंने बनाया. He said that, देखिए change हो गया पूरा ही, that लगा दिया बीच में, he had not done anything. I asked why he did not just ask my size. और प्रोनाउंस भी चेंज हो गए. वी यूज रिपोर्टेड स्पीच मोर फ्रीक्वेंटली देन द डायरेक्ट स्पीच. हम अक्सर दूसरे की बात को अपने शब्दों में ही कहते हैं बिकॉज वी आर ऑफन मोर कंसर्न्ड अबाउट द स्पीकर्स इंटेंशन टू से देन द एक्चुअल वर्ड्स सेड फॉर द पर्पस. लुक एट द सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इनवर्टेड कॉमास इन डायरेक्ट स्पीच. इन द इनडायरेक्ट स्पीच द इनवर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्ड दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, सो ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का डिटेल्ड स्टडी जो है हम आप लोग पढ़िए और स्टडी कीजिए, खूब मन लगा करके मेहनत कीजिए. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वो पार्ट है ग्रामेटिकल पोर्शन का जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए 9 से ही ये शुरू हो जाता है. तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर एक बार आपने समझ लिया तो आप डिक्टेशन में और ड्राफ्टिंग में कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी. थैंक यू.
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे. कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर. 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण.
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ठीक हूँ।
1: पता है भैया, स्कूल में मुझे एक एसे लिखने के लिए बोला।
0: किस पे?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
0: अच्छा,
1: आपका इंस्पिरेशन कौन है भैया?
0: मेरे पापा।
1: पापा? तो आपके पापा के बारे में कुछ बोलो ना।
0: हाँ, मेरे पापा बहुत ईमानदार है और मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ।
1: तो आपको एसे लिखने क्यों बोला, तो आप लिख सकते हैं?
0: हाँ, एक दो पेज तो लिख ही सकता हूँ।
1: ग्रेट, तो चलो हमारी दीदी की एडवाइस भी लेते हैं।
0: हाँ, ये ठीक है।
2: हेलो बच्चों।
1: हेलो दीदी।
2: क्या कर रहे हो तुम लोग?
1: दीदी, आपको पता है मेरे स्कूल में एक एसे लिखने के बोला।
2: एसे? किस पे लिखना है बोलना?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
2: मतलब आपकी इंस्पिरेशन के बारे में? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं और लोग भी होते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं और सिखाते हैं। तो बुबना, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन है। पहली इंस्पिरेशन मेरे पापा नरेंद्र मोदी जी, सुभाष चंद्र बोस।
2: अरे वाह, आपकी तीन तीन इंस्पिरेशन है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके इंस्पिरेशन क्यों है, उनके बारे में हमें कुछ बताओ।
1: सुभाष चंद्र बोस सच में बहुत इंटेलिजेंट दीदी थी, बहुत अच्छी आदमी है, उनके बिना हमको फ्रीडम नहीं आती।
2: ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वो आपकी इंस्पिरेशन है। आप उनसे क्या सीखते हो भावना?
1: कि किस टाइम क्या बात करना है। वो इतनी इंटेलिजेंस से बात करती, इतनी इंटेलिजेंस यूज कर भारत के लिए, हमारी इंडिया को यूनाइट करने के लिए इतना किया दीदी, मैं बोल नहीं सकती हूँ। बहुत, मैंने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा।
2: आपने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी? अच्छा, और उनमें सबसे ज्यादा स्पेशल आपको क्या लगा?
1: मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ब्रिटिशर्स ने बोलते हैं कि वो मर गए प्लेन क्रैश में, लेकिन उन्होंने, बहुत सारे विलेजर्स ये सोचते हैं कि वो तीन प्रकार की सोच सोचते दीदी। एक प्रकार वो प्लेन क्रैश में मर गए, दूसरा वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनके ब्रेन को साइंटिस्ट रिसर्च के लिए ले गए, और तीसरा ब्रिटिशर ने उनको मेंटल टॉर्चर किया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ भी नहीं कहा, और वो सच में होते ना दीदी, कांग्रेस के सारे कुछ भी हो, उनका क्या क्या ट्रूथ, उनके बारे में उनकी सच्चाई बाहर निकल आती।
3: हाँ भुवना, ऐसे मैंने भी एक बार सुना है कि सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर्स ने नजरबंद कर लिया था, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भेष बदल के जहाँ पे थे वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से भाग गए, फिर बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स को नहीं मिले, फिर जब मिले तो उनको काले पानी की सजा दे दी, कई दूर समुद्र में जाके उनको टापू पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा समुद्र खुद तैर के पार करके वापस आ।
1: और दीदी, आपको पता है, मैंने तो न्यूज़पेपर में देखा कि दो लोग सुभाष चंद्र बोस को मिल के आए, वो रशियन जेल में है, बोलते हैं कि अब तक जिंदा है, उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया।
2: सुभाष चंद्र बोस के बारे में वैसे तो कई बातें चर्चित हैं, ये भी कहा जाता है कि वो कई जगह जाके बनारस में एक सेंट बनकर रहे।
1: हाँ,
2: काफी समय तक।
1: हाँ दीदी।
2: लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना है वो सबके सामने है, भले उनके आगे की जिंदगी के बारे में कुछ लोग अलग बात करते हैं, लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना थी और जो उनका इंटेलिजेंस था जो आपने बोला, वो किसी से नहीं छुपा, और ये बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है भुवना।
1: हाँ दीदी, और बताए दीदी, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलेंगे उनके बर्थडे,
2: और इससे आप बहुत खुश है?
1: हाँ दीदी, मैं जब छोटी थी सोच रही थी मैं बड़ी हो कि जर्नलिस्ट बनूंगी, सुभाष चंद्र बोस को फाइल करूंगी।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब सुभाष चंद्र बोस से आप इतने इंस्पायर्ड हैं।
1: हाँ दीदी,
2: ये बहुत अच्छी बात है, और उनकी तरह बनने की कोशिश भी करना।
1: हाँ दीदी।

0: और सैंडी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरे तो सबसे पहले मेरे पापा।
0: आपके पापा? और आपके पापा आपको कैसे इंस्पायर करते हैं?
1: मेरे पापा ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते।
0: उनकी ईमानदारी?
1: हाँ, और हमेशा सच बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, या बुरी कंडीशन हो या अच्छी कंडीशन हो, अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते। और मुझे मेरे पापा इस बात पे बहुत इंस्पायर करते हैं।
0: वैसे ये तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सबको अपनानी भी चाहिए, ईमानदारी। और अगर ये आप अपने पापा में देखते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो भी करनी चाहिए।
1: हाँ, और मैं कोशिश करता हूँ।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है सैंडी, इसकी ज़रूरत आपको आगे भी पड़ेगी। और अगर आप अपने पापा के नक्शे कदमों पे चलेंगे, वो सच में आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे।

0: और आप बताओ पंकज, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: दीदी, मेरा इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है?
1: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ बातें हैं जो मुझे इंस्पायर करती है, जैसे कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जो वो अपनी लाइफ में जो चाहते थे उन्होंने सब हासिल कर लिया।
0: और जितना उन्होंने अचीव किया वो उतना ही डाउन टू अर्थ और सिंपल भी रहे।
1: हाँ दीदी,
0: है ना, अगर उनका जीवन हम अच्छे से देखें तो जिस तरह के वो व्यक्ति थे, वे आम इंसान से भी मिलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे।
2: हाँ दीदी, उनके घर देखो तो हमसे भी बहुत छोटा और कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, और जो भी पैसे आते थे गवर्नमेंट से वो सारे लोग के लिए यूज़ करते, लेकिन उनकी सुविधाएं के लिए कभी नहीं यूज़ नहीं करते थे।
3: हाँ दीदी, मैंने भी एक बार APJ अब्दुल कलाम का नोबल पढ़ा था, उसके अंदर बताया था कि APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो वो बाहर जाके जो स्ट्रीट लाइट होती है ना उसके नीचे जाके पढ़ते थे रात को।
0: पता है वो यहाँ पे माउंट आबू भी आ चुके हैं पहले?
3: हाँ दीदी,
1: शांतिवन में भी आए।
2: पता नहीं दीदी,
0: शांतिवन में भी आए, नहीं पता
1: मुझे।
0: वो शांतिवन भी आए हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल भी आए हैं। वो जितनी लोगों की मदद कर सकते थे उन्होंने हमेशा की है, और चाहे वो किसी ऑफिस के बाहर खड़ा गार्ड हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, कहते वो जाके सबसे पहले उसी से मिलते थे जो सबसे लो ग्रेड के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जाते थे उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे और फिर जाके वो अपना काम करते थे, वो सबका हालचाल लेते थे। इसीलिए अचीवमेंट के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी हम सब उन्हें हमेशा याद करते हैं, है ना। और उनकी तरह बनने के लिए हमें ये बात याद रखनी होगी कि चाहे हम कितना ऊपर भी क्यों ना पहुंच जाए, एक इंसान की तरह हमें दूसरे इंसान को देखना चाहिए, है ना।
4: I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else. Everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you is a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have four unique things, four unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is a hard work with the devotion. And fourth is perseverance.
0: Akash, aapki inspiration kaun hai?
3: मेरे इंस्पिरेशंस मेरी मूवीज़ हैं।
0: मूवीज़ आपको कैसे इंस्पायर करती हैं?
3: दीदी, जब मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में था तब मैं मूवीज़ देखता था, उसके अंदर देशभक्ति मूवीज़ ज़्यादा देखता था। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो गुंडों की जिस तरह से धुलाई करते थे, मुझे लगता था मैं भी बड़ा होके इन्हीं की तरह बनूंगा, ऐसे ही पूरे देश में करप्शन को कम करूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक मूवी देखी थी, एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में अपने माँ बाप से खो गया था, तो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के देने के लिए पैसे भी नहीं थे, उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था और प्रिंसिपल ने बोला था जा पहले अपने माँ बाप को ढूंढ के ला, उसके बाद आना स्कूल में पढ़ने। तो उसको कोई पैसे भी नहीं देता था, बेचारा बहुत उदास उदास रहता था। तब उसने चाइल्ड लेबरिंग करनी स्टार्ट कर दी, और ऐसे करते करते 15 साल बाद वो बॉम्बे गया और बॉम्बे से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के आया, और जो प्रिंसिपल था वो बुढ़ा हो गया था और उसके बेटे बहू सब ने उसको छोड़ दिया था और उसकी स्कूल भी हड़प ली थी। तो उस प्रिंसिपल को जाके बोला, सर जैसे को तैसा आपने मुझे स्कूल से निकाला था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके बेटे बहू ने आपको निकाला है और आज आप मेरी स्थिति पे हो और मैं आज आपकी स्थिति पे हूँ। ऐसा ही मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ।
0: मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सबको हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए आपको इंस्पिरेशन मिली। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ें आकाश और भी इंस्पायर करती हैं, हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं लाइफ में और जो चीज़ें करना चाहते हैं और जिसकी मदद करना चाहते हैं, है ना? तो हमें अपने आसपास और लोगों में भी ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें इंस्पायर कर सके।
2: हाँ दीदी,
0: भले वो किताबें हों, भले वो ऐसे लोग हों। वैसे भी भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ की बहुत ही बड़े और नेक लोगों ने जन्म लिया है।
2: हाँ दीदी।
0: तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस हमारे आसपास ही मिलेंगी।
2: दीदी मैं एक बात बताऊं, इंस्पायर हम कैसे हो सकते हैं? देखो दीदी, जब कोई हमसे कुछ अच्छा करे, वो स्कूल में हो या APJ अब्दुल कलाम हो, हमसे बेहतरीन है और अच्छे है, जब हम वो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जलसी बन जाएगी।
0: बात तो भुवना आपने बहुत सही कही, जब हम किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे तो वो इंस्पिरेशन बन जाएगा, नहीं करेंगे तो वो जेलसी बन जाएगी। और हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं और ऐसे लोग होते हैं जो हमें जीवन में मिलते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए हमें इंस्पायर करके जाते हैं।
2: हाँ दीदी।
0: तो भुवना, आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा किसी से मिले हो जिसने आपको इंस्पायर किया?
2: हाँ दीदी, मैं अनूप जलोटा से मिली।
0: अच्छा, तो उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया?
2: दीदी, रेडियो पे एक क्वेश्चन पूछा विशाल भैया ने कि जब आपकी स्टेज पे कोई और आके गाए और आपको बुरा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ईगो नहीं है, कुछ भी हो, अच्छा प्रोग्राम हो, वो बोल रहे थे मेरी वर्क कम हो गई, ऐसे अच्छे से बात करते हैं और उनकी ईगो भी नहीं है। उस फीलिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनूप जलोटा ऐसे है और वो मेरी अच्छी इंस्पिरेशन है।
0: वो हमारे देश के बहुत ही जाने माने गायक हैं।
2: हाँ,
0: और उनके कई भजन हम लोग डेली सुनते हैं। और
2: वो एक गजल सिंगर भी है।
0: हाँ बिल्कुल। और इतने अच्छे गायक होने के बावजूद उनमें ईगो नहीं है, इसने आपको इंस्पायर किया। मतलब आप भी जब बड़े होके क्रिमिनल लॉयर बन जाओगे तब ईगो को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे।
2: हाँ दीदी।
0: चाहे क्लास में फर्स्ट आओ, चाहे कुछ भी अजीब कर लो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भुवना। पंकज, आप बताओ, आप अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो या ऐसी सिचुएशन आई है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, वैसे कल की ही बात है, कल हम मैच खेल रहे थे और हमारे विपक्षी जो टीम थी वो हमसे काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही थी और जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मैं उनसे इंप्रेस हो गया कि इतनी अच्छी बॉलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो मुझे लगा कि काश मैं भी इनकी तरह बॉलर बन सकूं और मैंने सोचा और मैंने कल से ही प्रैक्टिस करनी चालू कर दी कि उनके जैसा बॉलर बनूं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने तुरंत प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। वेरी गुड पंकज। हाँ सैंडी, आप बताओ।
5: दीदी, मैं हमारे पास में एक भैया रहते हैं अभिषेक भैया, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी जॉब कर रहे हैं दिल्ली में और उनकी बीटेक भी पूरा हो गया। वो इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं फिर भी वो हमेशा सिंपल रहते हैं, बच्चों से भी हमेशा प्यार से बातें करते हैं, इसीलिए मुझे वो सही लगते हैं।
0: अच्छा, तो वो भैया आपको इसलिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं।
5: हाँ,
0: ये तो अच्छी बात है कि हम कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाएं, हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, जो कि सैंडी ने सीखा। तो आकाश, आपने कभी किसी से कोई इंस्पिरेशन ली है?
3: हाँ दीदी, जब सर हमें पढ़ाते थे तब उनका एकदम एक्यूरेट ध्यान पढ़ाई में होता है और कुछ भी उनके दिमाग में उल्टा सीधा नहीं चलता, मतलब सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तब वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सबको अपने साथ ऐसे रखते हैं कि वो सर और हम भाई भाई हैं ऐसे।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई में स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा है और सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, ये बातें आपको इंस्पायर करती हैं।
1: और दीदी, एक और इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कॉमेडियन शो जो करते हैं वो कपिल शर्मा से। मैं उनका शो देखता हूँ तो हमेशा उनकी तरह कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ और मैं काफ़ी हद तक करता भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स को अच्छे भी लगते हैं।
0: अच्छा, मतलब आप भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ करना चाहते हो पंकज?
1: हाँ दीदी।
0: इसके लिए तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और उन्हीं की तरह मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है।
1: हाँ दीदी, हाँ मैंने अभी से ही शुरुआत कर दी उनके जैसा बनने की।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक स्पेशल क्वालिटी उनमें पता है और क्या है? उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, कई बार ऐसा भी हुआ जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को छोड़ा भी नहीं और हार भी नहीं मानी। इसीलिए आपकी जो इंस्पिरेशन है, उन्हीं की तरह आपको भी जिंदगी में ऐसा ही करना है। और आप लोग किताबें पढ़ते हो कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
0: तो कभी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा है या कोई ऐसी चीज आपने किसी के बारे में पढ़ा है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, मैंने जैसे नॉवेल्स पढ़ी है, कुछ स्टोरी बुक्स भी पढ़ी है, तो स्टोरी बुक्स ज्यादा इंस्पायर करती है हमें।
0: स्टोरी बुक्स?
1: हाँ दीदी।
0: कोई ऐसी सीख आपको याद है जो आपको किसी स्टोरी से मिली हो?
1: स्टोरी से तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है। किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, तो किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए, हमेशा बुरे के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सीख मिलती है।
0: ये सीख तो बहुत अच्छी है। क्या ये सीख और इंस्पिरेशन आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो बच्चों?
1: हाँ दीदी, मैं तो करता हूँ।
0: करते हो? ठीक है। भुवना, आप बताओ।
2: मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती हूँ दीदी। एक नॉवेल पढ़ी मैंने, आराम दी वाली 80 डेज, फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दोनों नॉवेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में हमें उस कैरेक्टर का पेशेंस पता चलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे।
0: अच्छा, उनके पेशेंस से आपने बहुत कुछ सीखा।
2: हाँ दीदी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश, आप बताओ, आपने कभी किसी बुक से, कहानी से, नॉवल से या किसी भी चीज से ऐसा कुछ सीखा है?
3: हाँ दीदी, मैंने बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है, उसकी बुक से सीखा है।
0: अच्छा, क्या सीखा आपने?
3: दीदी, उसकी बुक में ऐसा बताया था कि जब वो बच्चा था तब उसके जो टीचर थे वो पहले पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं था, कम पढ़ता था, तो उसके टीचर ने बोला था, अरे तू तो पत्थर है पत्थर, तेरे दिमाग में तो भूसा है। तो वही बात उनके माइंड पे प्रिंट हो गई और ना, मतलब थोड़ा पागल जैसे रहने लग गए, किसी से भी पूछते ये मैं पत्थर हूँ क्या, ऐसा ऐसा करने लगे। लेकिन उसके बाद ये बात जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने सोचा कि मैं सर को करके दिखाऊंगा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, ना मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो ये उनकी स्ट्रगल थी जो आज वो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसे वाले आदमी हैं।
0: अच्छा, मतलब कोई अगर आपको ये कहे भी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तब भी हिम्मत रखनी चाहिए, ये आपने इंस्पिरेशन ली।
3: हाँ दीदी।
0: और ये इंस्पिरेशन हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाती है।
3: हाँ दीदी।
0: हाँ सैंडी, आप बताओ।
6: दीदी, मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी बातें काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि जब वो छोटे थे, कम 7 साल के थे, तो उन्होंने 7 साल तक कुछ नहीं बोला, तो उन्हें उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद हमारा बच्चा कुछ बोलता वोलता नहीं है। फिर एक बार उनके खाना खा रहे थे सब लोग, तो सूप था वो गर्म था, तो उन्होंने पहली बार बोला कि सूप बहुत गर्म है, तो उनकी मम्मी पापा सब चौंक गए, बोले 7 साल तक कुछ बोला नहीं और आज अचानक। तो उनसे पूछा ना उनकी मम्मी पापा ने कि तुम इतने से बोल सकते, बोलते क्यों नहीं थे? तो उन्होंने बोला, हर मुझे ज़रूरत की चीज़ मुझे टाइम पर मिल जाती थी, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता था, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही कहाँ। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें जहाँ जरूरत है वहीं बोलना चाहिए। और उन्हें स्कूल में कभी उनको जो रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब स्कूल के रूल्स होते थे वो हमेशा फॉलो नहीं करते, तो खुद के रूल बनाते थे। उन्हें कभी स्कूल क्लास से मैम बाहर कर देती थी सब ऐसा। तो उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने बोला सर ठीक है, पर उन्होंने आज वो आइंस्टाइन है, अपने वैज्ञानिक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो जरूरी नहीं कि रूल्स ज़्यादा फॉलो करके कुछ कर सकते हैं, पर हाँ जो नियम है उनको तो मानना चाहिए, तो सबके लिए है, पर अपनी पढ़ाई के बारे में कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
0: देखो, नियम तो हमारे लिए ही बने हैं, उनकी सिचुएशन और उनके सर्कमस्टांसेस थोड़े से अलग थे।
6: हाँ।
0: और उनकी तरह हमें बनना जरूर चाहिए, लेकिन उन्हीं की तरह मेहनत भी करेंगे। हाँ, तभी हम पर ये चीजें लागू होती हैं, है कि नहीं?
6: हाँ दीदी।
3: हाँ।
0: पर ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने लाइफ की कमी को एक्सेप्ट करने के बाद भी कभी होप लूज नहीं की और बड़े बड़े काम करके दिखाए।
3: हाँ दीदी।
0: ठीक है, तो आज के इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय।

0: बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: कर्म योग स्वामी विवेकानंद जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उनके जो व्याख्यान संकलित किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवन को गढ़ना ही है। इन व्याख्यानों को सुनने पर हमें ज्ञात होता है कि उनके विचार किस उच्च कोटि के तथा हमारे दैनिक जीवन के लिए कितने उपयोगी रहे हैं।
1: आज की परिस्थिति में संसार के लिए कर्म योग का असली रूप समझ लेना बहुत जरूरी है। आवश्यकता इतनी ही है कि इसके भावों एवं विचारों का मनन कर उन्हें कार्य रूप में परिणित किया जाए। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं स्वामी जी ने उन्हें बहुत रोचक ढंग से समझाया है।
2: कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है। उदाहरणार्थ यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है परंतु फिर भी वो हमें सुनाई नहीं पड़ता। पर जो ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं क्यों ही बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों के समष्टि स्वरूप हैं।
0: मनुष्य को जांचना हो तो उसके द्वारा किए गए महान कार्यों को नहीं छोटे छोटे कार्यों की पड़ताल करनी चाहिए। उन्होंने कहा,
2: यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है।
1: हमारी इच्छा शक्ति ही हमसे काम करवाती है, स्वामी जी ने समझाया।
2: संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति से हो रहा है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा केवल मन का ही खेल है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्ध पोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र है। मनुष्य की ये इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वो चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव कर्म जैसा होगा इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष

0: हुए हैं वे सभी धुरंधर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे और ये शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी।
1: अच्छे काम करने की इच्छा वंशानुक्रम में नहीं मिलती।
0: बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी वो एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती और उसे हम अनुवांशिक शक्ति संचार भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उसके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। जोसेफ ईसा मसीह के पिता के समान तो असंख्य बड़े हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि वो बात केवल अनुवांशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई हो तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर नहीं करते थे, एक ऐसा सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है।
2: स्वामी जी ने ईसा मसीह का उदाहरण देकर समझाया।
0: इसी प्रकार जोसेफ नामक बड़े तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है उसका स्पष्टीकरण कहां? अनुवांशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए वो आई कहां से? उस महान शक्ति का उद्भव कहां से हुआ? अवश्य युग युगांतरों से वो उस स्थान में ही रही होगी और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई है और आज तक चली आ रही है।
1: कर्म के द्वारा ही हमारी इच्छा पूर्ति होती है, स्वामी जी ने कहा।
0: एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वो देखता है कि वो संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वो केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वो अधिकारी होगा, और ये अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं? हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं? इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है।
2: हर एक कार्य करने का एक विधिवत ढंग होता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है।
0: संभव है तुम कहो, कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ? संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्म योगी का अर्थ है कुशलता से, अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। ये स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र है।
1: स्वामी जी ने विभिन्न उदाहरण देकर समझाया कार्य करने के कितने उद्देश्य होते हैं।
0: मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कार्य किया करता है, क्योंकि बिना हेतु कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं। दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं। फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं। कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं। चीन देशों में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी जाती है। कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है।
2: आत्म संयम के बारे में स्वामी जी ने कहा,
0: अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक चार घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है अथवा 26 घोड़ों को रोक सकता है। इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किस में होता है? घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में। एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है। इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वो फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है।
1: सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए, भला या बुरा समझकर नहीं।
0: अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो? यदि तुम एक मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की चिंता ना करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो ये सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा।
2: जो जिस कार्य का आदि होता है उसे वही करना चाहिए, उन्होंने समझाया।
0: यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट कर लाया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वो दबाव नहीं है जिसके कारण वो जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वो शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं, उसे क्लेश होता है और संभव है कि उसका मस्तिष्क ही फिर जाए।
1: निस्वार्थ कर्म करना आसान नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है,
0: परंतु हमें शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाएं, उन्हें हम हाथ में लेते जाएं, और शने शने हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा ये पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे ये स्वार्थ परायणता अध्यावसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वो समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी ये आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी ना किसी दिन वो समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे और जो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यांतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।
1: सबको अपने हिस्से का कार्य करते रहना चाहिए, उसी में भलाई है।
0: जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। ये कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये चार आश्रम घटकर केवल दो ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं संन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर उपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वर उपासना में लग जाए तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते और ना अपने स्त्री बच्चों के लिए। संसार में रहने वाले गृहस्थों को ही ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित जीव हैं, अपने अपने स्थान में सभी बड़े।
1: स्वामी जी उदाहरण देकर कहानी सुनाकर समझाते हैं।
0: इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है। एक राजा था, उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आता तो उनसे सदैव एक प्रश्न पूछा करता था। संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वो श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। ये सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ को जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए, राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा हे राजा, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उसका प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया हां मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डोंडी पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी। राजा तथा सन्यासी भी ये सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है।
1: स्वामी जी ने अमेरिका वासियों को अपने देश में पूर्व प्रचलित स्वयंवर की प्रथा को समझाया।
0: राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान आदि। अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भी भाट होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा ये दर्शाते थे कि उन्हीं का वर्णन किया जाए। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वो उन सबके सामने जाती और उनका गुणगान सुनती। यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वो अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो, और उसके पश्चात यदि किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो उसके गले में वरमाला डाल देती और वो राजकुमार उसका पति हो जाता था।
2: कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने कहा,
0: जिस देश में ये राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। ये राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही न था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए पर राजकुमारी को अपने मन का पति न मिला। इस बार का स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी स्वयंवरों की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने में वहां एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वो इतना सुंदर था मानो सूर्य देव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आए। वो आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और जो ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा त्यों ही वो रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और ये कहते हुए, छी छी ये क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझे विवाह की क्या प्रयोजन। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण ये राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। अतएव उसने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। और ये कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी। उस युवा सन्यासी ने माला फिर निकाल कर फेंक दी और कहा, छी ये सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। और ये कहकर वो तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया कि मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने, जो राजा को यहां लाए थे, राजा से कहा, राजन चलिए इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चले। निदान वे उनके पीछे पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे। वो युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन में भली भांति परिचित था तथा वहां के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वो एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख न सकी। उसे काफी देर ढूंढने के बाद अंत में वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मालूम था। इतने में ये राजा और सन्यासी उसके पास आए और उससे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल ले चलेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं। यही एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री तथा उसके तीन बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन तीन लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो हमारे यहां ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है नहीं। ये कहकर उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया। और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी

लगा लगा कर खूब आग तैयार कर ली, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से फिर कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें अपना ही शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वो आग में कूद पड़ा और भूल गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का यत्न भी किया परंतु बचा न सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन में कहा, ये तो तीन लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं। पत्नी के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रमों को मैं व्यर्थ ना जाने दूं, वे मेरा भी शरीर ले लें। और ऐसा कहकर वो भी आग में गिर गई और भूल गई। इसके बाद जब उन तीन छोटे बच्चों ने देखा कि अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त ना होगा, तो उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा ना पड़ेगा। अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें, हमें अपने शरीर भी दे देने चाहिए। और ये कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। ये सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए, इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे। रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वो अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया है कि अपने अपने स्थान में सब बड़े। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो। और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो जिसके लिए वो परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य भी तृणवत था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज विशेष 24 जून के बारे में। जी हाँ, 24 जून की बात अगर करें तो ओमकारनाथ ठाकुर, तारा सिंह, विश्वनाथ, काशीनाथ राजवाड़े, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ में दरबान सिंह नेगी, रानी दुर्गावती, पंडित श्रद्धाराम शर्मा और अवधानम सीतारामन, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ। विचार बढ़िया सुंदर हम जब सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और अंतर आत्मा खुश हो जाती है। इसलिए सुंदर विचार हमेशा याद रखें। और कहा जाता है कि हद से ज़्यादा प्यार और हद से ज़्यादा विश्वास किसी पर मत करना, क्योंकि ये दोनों ही कारण मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहें और सतर्क रहें। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अभी आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज विशेष एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। रायगढ़ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इतिहास की एक अलग जो है अभिनय को उन्होंने जीवन में उतारा, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़ी। बहुत ही पॉपुलर लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान थे। इतिहास आचार्य राजवाड़े के नाम से ख्याति प्राप्त की इन्होंने। संस्कृत और व्याकरण के भी वे प्रखंड पंडित थे, जिसका प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध कृतियां राजवाड़े, धातुकोश तथा संस्कृत भाष्यचा उलागाढ़ आदि से दिखाई देता है। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने भारतीय विवाह संस्था का इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी और ग्रंथ इतिहास के व्यापक अध्ययन और चिंतन की एक अनूठी उपलब्धि इन्होंने पेश की थी। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। आज ही के दिन 24 जून 1863 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में वसई गांव में इनका जन्म हुआ। जब वे 3 वर्ष के थे उनके पिता का देहांत हुआ और आगे का पालन पोषण उनके नैनिहाल वारसाही में हुआ। बाद में वे अपने चाचा के पास पुणे के नज़दीक वड़गांव में आ गए। पुणे में रजवाड़े का प्राथमिक शिक्षण शनिवार पेठ की पाठशाला में हुआ। बाबा गोखले की पाठशाला विष्णुकांत चिपलूनकर ने न्यू स्कूल और फिर बाद में मिशन स्कूल से आध्यात्मिकता की शिक्षा पूरी की। 1882 में राजवाड़े ने मैट्रिकुलेशन किया। आगे की शिक्षा के लिए बॉम्बे के एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, पर ध्यान भाव के कारण वे अध्ययन जारी नहीं रख पाए। बाद में पुणे में पब्लिक सर्विस सेकेंड ग्रेड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाकर उन्हें धन उपार्जन किया और डेक्कन कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए नाम दर्ज कराया। कॉलेज के पाठ्यक्रम में लगी पाठ्य पुस्तकों से रजवाड़े कभी संतुष्ट नहीं हुए। फिर भी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे विद्वानों के सानिध्य में उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया और फिर 1891 में BA की परीक्षा पास की। अब पढ़ाई पूरा होने के बाद इनका जो रुझान है वो लिखने की तरफ रहा और पहली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की उच्च शिक्षा से संबंधित अपने अनुभवों को रजवाड़े ने ग्रंथमाला मासिक पत्रिका में कनिष्ठ माध्यमिक और उच्च शालीनता स्वानुभव शीर्षक निबंध द्वारा प्रस्तुत किया। इस रचना में उन्होंने शिक्षा के व्यवसाय हितों को सामाजिक उत्तरदायित्व पर वरीयत देने का तत्कालीन परंपरा की कठोर आलोचना की थी और 1894 में अनुवाद आधारित भाषांतर नामक मराठी पत्रिका संपादित करने अलावा 1910 में उन्होंने पुणे में भारत इतिहास संशोधन मंडल की स्थापना की और अपने द्वारा इकट्ठा किए गए ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, जो लिखत है इनकी, स्वयं द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को मंडल के लिए सौंप दिया। तो इस तरह से इतिहास सूत्र सामग्री का संकलन फिर बाद में इन्होंने किया और सत्य का अभाव है ये महत्वहीन घटनाओं को बढ़ चढ़कर दिखाया गया है। पूर्व लिखित इतिहास की छानबीन के पश्चात रजवाड़े इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सच्चे इतिहास को प्रकाश में लाए बिना राष्ट्र में स्वत्व की चेतना का ना तो निर्माण हो पाएगा और ना ही विकास। इस बीच अपने एक विद्यार्थी काका राव पंडित को मिले। कुछ छात्रों की जानकारी मिलने पर रजवाड़े उन छात्रों को विशेष उनके साथ कुछ बातें की और 2 महीने के परिश्रम द्वारा 1896 में मराठांचा इतिहासांची साधने ये पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किया। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ी और ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखकर रीति रिवाजों पर एक साहित्य उन्होंने प्रकाशित किया। कई ऐसी चीज़ें जो उनको लगता था जहाँ पर अब बोलना चाहिए तो वो लिख कर बोला करते थे। ये इनकी कमाल थी। इसलिए इनका नाम इतिहास के साथ जोड़ा गया। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और बातें चल रही थी विशेष विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के बारे में, और हिंदुत्ववाद के रक्षक तथा आलोचक भी रहे विश्वनाथ काशीकर। कट्टर रक्षक होने के साथ साथ उसके कट्टर आलोचक भी थे। हिंदुवाद को भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था मानते थे। शिवाजी जयंती के अवसर पर 1911 में लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी में लिखते हुए उन्होंने व्यवस्था का या जो समर्थन किया और इससे सामाजिक संगठन का उत्तम रूप बतलाया। साथ ही उन्होंने मराठी समाज पर यह आरोप भी लगाया कि व्यवस्था का ठीक से पालन न करना ही उसके पतन का कारण भी बना। हिंदुवाद अथवा ब्राह्मणवाद की आड़ में रजवाड़े ने हमेशा मराठी भाषा भाषी लोगों के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को सामूहिक रूप में महाराष्ट्र धर्म के रूप में व्यक्त किया और उसकी उन्नति के लिए उस पर जोर दिया था। तो इस तरह से एक भारतीय विवाह संस्थान का इतिहास इन्होंने रचा, और फिर इसमें एक पुस्तक जो है इस नाम से उन्होंने लिखा, भारतीय विवाह संस्थान का इतिहास। और बताया जाता है कि इसमें विश्व संस्थान इतिहास, भारतीय विवाह संस्थान का इतिहास के रूप में 1926 में ये किताब उन्होंने विवाह पद्धति पर निबंध लिखे और उसे पब्लिश किया। पहला अध्याय स्त्री पुरुष और फिर कई अत्यंत प्राचीन आर्य प्रथाओं का जिक्र उन्होंने किया। और 1923 में मई में पुणे की चित्रमय जगत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये। और इसमें वेद साहित्य, महाभारत और हरिवंश पुराण के कुछ उदाहरणों को उन्होंने

0: अपने भावनाओं के साथ लिखा था। आर्य समाज में भाई बहन और पिता पुत्र के विशेष बातें उन्होंने लिखी और इन विशेष चीज़ों को जो है यही इस निबंध का मुख्य विषय था। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय स्त्री की वंश प्रवृत्ति शक्ति और प्रजापति संस्थान में उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक बालक को दूसरे से अलग पहचानने के लिए पिता की जगह मातृत्व का नाम दिया गया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखा और जिसके कारण काफ़ी परिवर्तन भी हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफ़र इस कार्यक्रम को, और समकालीन इतिहास बताते हुए रजवाड़े ने यज्ञ की प्रक्रिया, फलश्रुति और उनसे संबंध दंत कथाओं का उल्लेख भी किया उसमें, और साथ ही उन्होंने स्त्री पुरुष के सामूहिक रूप से समागम, एकनिष्ठ विवाह पद्धति, ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया दर्शाई। इस ग्रंथ में सापेक्ष रूप से भारतीय विवाह संस्थान के इतिहास विषय पर विश्वनाथ रजवाड़े द्वारा लिखित टिप्पणियां लग्न संस्था शीर्षक के अंतर्गत शामिल की गई थी। महान अन्वेषक, व्याकरण, मानसशास्त्री और इतिहासकार विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े का 31 दिसंबर 1926 को पूना में देहांत हुआ। 1926 में उनकी अचानक मृत्यु के पश्चात दूल्हे स्थित रजवाड़े संशोधन मंडल की स्थापना हुई और उनके कार्य और सामग्री वही रखी गई। आज भी ये दोनों संस्थान अपने योगदान में भारतीय इतिहास और संस्कृति को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। उनके सम्मान में भारतीय इतिहास ने विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े अवार्ड की स्तुति जो है शुरू की, जो भारतीय इतिहास के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, सफर सुनते रहो मुस्कुराते।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं आज, तारा सिंह के बारे में। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर कट्टर सिख नेता थे जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के समय सिखों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडियन एक्ट में मुस्लिमों की भांति सिखों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। और तारा सिंह एक सिख नेता होने के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन रहे और ललितपुर के स्कूल में पहला अध्यापक का कार्य उन्होंने किया था, जिस कारण इनके नाम के साथ मास्टर शब्द

रावलपिंडी और अमृतसर में हुई थी। लाहौर से तारा सिंह ने अध्यापन का कार्य प्रशिक्षण लिया और फिर हाई स्कूल में 15 रुपये मासिक वेतन पर प्रधान अध्यापक का काम करने लगे। बाद के जीवन में उनका अध्यापन कार्य में कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन नाम के साथ मास्टर शब्द सदा के लिए जुड़ गया था। मंत्री तथा अध्यक्ष रूप में भी इन्होंने काम किया और इन्होंने पहला विश्व युद्ध के समय राजनीति में प्रवेश किया और मास्टर तारा सिंह ने सिखों को अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी और इसके फलस्वरूप युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडिया एक्ट में विशेष मुसलमानों की बात ही सिखों को भी पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया और इसके बाद तारा सिंह गुरुद्वारों के प्रबंधक की ओर मुड़े। 1925 में गुरुद्वारों के प्रबंधन का नया एक्ट बना। वे कई बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के मंत्री और अध्यक्ष बने। तो ये थी कुछ खास बातें मास्टर तारा सिंह के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, यहाँ सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और ओमकार नाथ ठाकुर के बारे में आप बात करते हैं जिनका आज ही के दिन जन्मदिन है। और ये भारत के बहुत ही पॉपुलर संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। इनका संबंध

ग्वालियर घराने से था और ओमकारनाथ के दादा महाशंकर जी और पिता गौरी शंकर जी नाना साहेब पेशवा की सेना के वीर योद्धा थे। एक बार उनके पिता का संपर्क ओलिनी बाबा के नाम से विख्यात एक योगी से हुआ। इन महात्मा से दीक्षा लेने के बाद से गौरी शंकर के परिवार की दिशा ही बदल गई। वे प्रणव साधना अर्थात ओमकार के ध्यान में रहने लगे और तभी 24 जून 1897 को उनकी चौथी संतान ने जन्म लिया। ओमकार भक्त पिता के पुत्र का नाम ओमकारनाथ रखा। जन्म के कुछ ही समय बाद ये परिवार बड़ौदा राज्य के जहाज ग्राम में नर्मदा तट पर बाड़ोच नामक स्थान पर आकर बस गया। ओमकारनाथ जी का पूरा जो जीवन है और शिक्षा दीक्षा यहीं पर संपन्न हुआ। इनका बचपन आभाव में बीता और यहाँ तक कि किशोर अवस्था में ओमकारनाथ जी को अपने पिता और परिवार के सदस्य के भरण पोषण के लिए एक मिल में नौकरी करनी पड़ी। ओमकारनाथ की आयु अब 14 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब बड़ौच के एक संगीत प्रेमी सेठ ने किशोर ओमकार की प्रतिमा को पहचाना और उनके बड़े भाई को बुलाकर संगीत शिक्षा के लिए बॉम्बे में विष्णु दिगंबर संगीत विद्यालय भेजने को कहा और पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने उनके मार्गदर्शन में उनकी संगीत शिक्षा पूरी हुई। 1922 में सूरत की इंदिरा देवी से उनका विवाह हुआ। उसके बाद वे नेपाल गए जहां महाराज चंद्र शेर जंग बहादुर के समक्ष उनको गायन प्रस्तुत करने का अवसर मिला। महाराज ने उन्हें भरपूर सम्मान भेंट वस्तुएं तथा ध्यान तो दिया ही, साथ ही दरबार में गायक के रूप में नियुक्ति देने का भी प्रस्ताव रखा। परंतु ओमकारनाथ जी ने दरबारी गायक बनना स्वीकार नहीं किया। वे उस समय इटाली, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम और अफगानिस्तान भी गए। रूस जाते समय वे उन्हें अपनी पत्नी के अचानक निधन का समाचार मिला तो वे वापस लौट आए। बहुत लोगों के कहने के बावजूद ओमकारनाथ ठाकुर ने पत्नी के निधन के बाद पुनर्विवाह नहीं किया और एकांकी जीवन बिताने लगे। उनके शिष्य ही उनके लिए पुत्र पुत्री समान हो गए थे। फिर उन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की और यहीं से गुरु शिष्य परंपरा से वो संगीत बच्चों को सिखाते रहे। तो ये थी कुछ खास बातें और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ओमकारनाथ ठाकुर के बारे में बातें चल रही थी, और जब गुरु शिष्य की परंपरा उन्होंने शुरू की तो प्रभावशाली गायन की बातें जो है, असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी, पंडित जी अपनी मात्र एक रचना से जनसमूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बोस की प्रयोगशाला में पेड़ पौधे और इन सभी के लिए संगीत के स्वरों का प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग भी किया। जब वे सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी गाते थे तो पूरे श्रोता समुदाय की आंखों में आंसू आकर भीग जाते थे। इस पद को गाते समय पंडित जी साहित्य के सभी रसों से साक्षात्कार कराते थे। कलजाई रचना की बात अगर करें तो पंडित ठाकुर ओमकारनाथ जी एक महत्वपूर्ण रचना वंदे मातरम बंकिमचंद चट्टोपाध्याय की ये अमर रचना आज़ाद भारत के प्रथम सूर्योदय पर पंडित जी के ही स्वर में अलंकृत होकर रेडियो में प्रसारित हुई। आगे चलकर वंदे मातरम गीत के आरंभिक दो अंतरों को भारत की संविधान सभा के राष्ट्रगीत के समक्ष मान्यता प्रदान की थी। वंदे मातरम का गायन 15 अगस्त 1947 को 6:30 बजे आकाशवाणी से पंडित ओमकारनाथ का राग देश में निबद्ध वंदे मातरम के गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। आजादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूकने में वंदे मातरम की भूमिका यादगार रही। ओमकारनाथ जी ने पूरी गीत स्टूडियो में खड़े होकर गाया था, अर्थात उन्होंने इसे राष्ट्रगीत के तौर पर पूरा सम्मान दिया था, और इस प्रसारण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का ये गीत दी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड संख्या में मौजूद है। राष्ट्रीय गीत की मान्यता इनको मिल गई, और फिर भूमिका को देखते हुए गीत के दो अंतरों का जनगण मन के समक्ष मान्यता मिल गई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का ये निर्णय सुनाया था। संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार, संगीत मार्तंड, संगीत महाधय और पद्मश्री को उपाधियों और अनगिनत पुरस्कारों का तथा सम्मान इनके नाम है। ओमकारनाथ ठाकुर एक अभिनय कुशल गायक थे, वे सम्मोहित कर लेते थे अपने श्रोताओं को। पक्षघात तथा अन्य बीमारियों से जूझते हुए पंडित ओमकारनाथ ठाकुर 29 दिसंबर 1967 को इस नश्वर संसार को छोड़ गए, परंतु अनेक गायन के अनगिनत रिकॉर्ड और टेप आज भी लाखों संगीत प्रेमियों के दिल में उन्हें जीवित रखे हुए हैं। आप सुने हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए, जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार। कहते हैं मन के विचार कभी नहीं मरते। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, छोटा सा विचार लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मन के विचार कभी नहीं मरते, इसलिए मन के विचारों को सुंदर बना सकते हैं, तो सुंदर विचार भी आपको सुंदर बनाने में उतना ही योगदान देगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक रुक रुक। कुछ सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नशा मुक्ति सप्ताह चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सप्ताह चल रहा है, क्योंकि बातचीत जहाँ तक होती है अवेयरनेस वहाँ तक आती है। अवेयरनेस ना हो तो उसके कमी के कारण कई बार गलत निर्णय लिए जाते हैं और कई बार उन निर्णय को सुधारने का मौका भी नहीं मिलता अवेयरनेस ना होने के कारण। तो भाई, क्या होना चाहिए अवेयरनेस, कैसे, एक्सपर्ट से बात कर, यूथ से बात कर, जो वर्ग पीड़ित है उससे भी बात कर, बहुत ज़रूरी है बातचीत करना। लेकिन बातचीत ऐसी जो सोल्यूशंस निकाले, जो लोगों को मदद कर पाए, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं युवा मंच पर, रेडियो मधुबन पर। तो दोस्तों, अभी आपको कुछ ऐसी ही बातचीत हम सुनाने वाले हैं, जो कि आप सुनेंगे युवाओं का क्या पर्सपेक्टिव है नशे को लेकर। अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले युवा हैं, क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष पेशकश में। वैसे तो आप सभी को पता है कि हम मना रहे हैं डी एडिक्शन वीक, यानी कि नशा मुक्ति सप्ताह मना रहे हैं। सरकार कहती है कि नशा मुक्त भारत यानी विकसित भारत, और सच में विकास से नशे का गहरा संबंध है, क्योंकि वो रुक जाता है, थम जाता है। और भारत का युवा अगर नशाग्रस्त होने लगे, अगर ये प्रभाव उन पर पड़ने लगे, तो पूरे देश पर असर पड़ता ही है, क्योंकि भारत को एक युवा देश कहा जाता है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन यूथ जो अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने जॉब्स भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं। और क्या वो उनके अनुभव हैं, क्या वो देख रहे हैं, आज हमें ये जानने को मिलेगा। तीन नए पर्सपेक्टिव्स आज हमें मिलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश, और वो एक क्लाइमेट इमरजेंसी फैशन के लिए काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कमाल की चीज है। जगदीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और हमारे साथ जुड़ गए अभिमन्यु, जो कि कंसल्टेंट है प्रोक्योरमेंट एंड रिस्क एडवाइजरीज में, और साथ साथ वो बहुत ही युवाओं से कनेक्टेड भी रहते हैं, उनके ओपिनियंस को जानते हैं, और एक अनुभवी टीचर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि।
0: और हमारे साथ जुड़ गई हैं ललिता, जो कि एक यूथ वॉलंटियर हैं, बच्चों के साथ उन्होंने काम किया है, बड़ों के साथ उन्होंने काम किया है, नशा मुक्ति के लिए भी काम किया है, उनको पढ़ाने के लिए वापस स्कूल पहुंचाने में भी उनका योगदान रहा है। तो ललिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू,
0: वेलकम। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप तीनों ने ज्वाइन किया, बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है आज हमारे पास। आप सभी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि नशा मुक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले तो मैं आप ही लोगों के ओपिनियंस जानना चाहूंगी, आपके ऑब्जर्वेशन जानना चाहूंगी कि क्या देखते हैं आप, क्या अपने आसपास किस तरह की बातें देखते हैं, या किस तरह का इफेक्ट देखते हैं नशा डाल रहा है आज जो हमारे साथ के ही लोग हैं, युवा हैं, उनके ऊपर। आपसे शुरुआत करें अभिमन्यु जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल आरुषि। अगर मैं ये बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने क्या देखे हैं यूथ में, मैं सबसे पहला एक्सपीरियंस मुझे याद आता है जब मैं 11th-12th में दिल्ली गया था कोचिंग लेने के लिए। और जैसे आजकल युवा लोग नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है वो एग्जाम और उसकी तैयारी, बहुत कॉम्पिटिशन रहता है उस एग्जाम में। जब हम तैयारी करते थे, ये 2008-2007 के आसपास की बात है, उस टाइम दो अलग अलग एग्जाम होते थे, AIEEE अलग होता था और IIT के लिए अलग एग्जाम होता था इंजीनियरिंग वाले लोगों का। तो हम कोचिंग लेने बाहर गए थे, दिल्ली गए थे, तो मेरा एक प्रिय मित्र जो गौरव नाम था उनका, और गौरव नाम बोलेंगे उनको यहाँ पे हम, ठीक है, उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए। तो मेरे पिताजी ने उनको देख कर मुझे दिल्ली भेजा था, ये बोला था कि मैं तुम्हारे भरोसे पर अभिमन्यु को दिल्ली भेज रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत स्टूडियस होते थे, ठीक है, और टॉपर थे अपने, और तो उनके भरोसे पर मुझे दिल्ली भेजा था कि वो मेरा ध्यान रखेंगे। तो 4-5 महीने जब हमने कोचिंग करी, उनका व्यवहार चेंज होता गया, मुझे नहीं पता था क्यों चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होता गया, मुझे ये पता था। एक दिन मैं क्लास से जल्दी आ गया, उनकी क्लासेज अलग होती थी मेरी अलग, तो मैं एक दिन क्लास से जल्दी आ गया, तो मैंने देखा, मैं उनके रूम में गया तो मैंने देखा कि वो नशा कर रहे थे। अब कौन सा नशा कर रहे थे वो मैं स्टूडेंट्स को डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि ये चीज ज्यादा बाहर है, बट मैंने ये देखा कि कैसे वो इंसान जो कभी एक टॉपर होता था, वो कैसे एक नशे की आदत में पड़ गया दिल्ली जाकर 4-5 महीने के अंदर, और सिर्फ नशे में नहीं, उसकी वजह से कैसे उसके मार्क्स भी गिरते जा रहे थे। तो जहां मेरे पिताजी ने उनके भरोसे पर मुझे भेजा था, ये इतना आसान हो जाता है बच्चों के लिए, खासकर उस उम्र में राह से भटकना, वो मैंने फर्स्ट हैंड अपने सबसे प्रिय मित्र के ऊपर देखा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और कैसे उसकी सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ा कि जो वो नंबर लाना चाहते थे, जिस वजह से लाखों रुपए लगा कि उनके माँ बाप ने उन्हें बाहर भेजा, वो चीज अचीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आपका फोकस और जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और नशा सबसे पहले आपसे वही लेता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई बार लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं या फिर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इसलिए नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, उल्टा ही असर डालता है और आपके लिए मुश्किल ही खड़ी कर देता है, आपको लक्ष्य से दूर ही ले जाता है, मदद नहीं करता। और आपने बताया वो टॉपर थे और कहां उनकी ये परिस्थिति हो गई।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कितना डिफिकल्ट है। जगदीश, आप क्या देखते हैं?
1: देखो मैं तो गांव में काम करता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अभी उदयपुर में काम कर रहा हूँ, तो नियर बाय गांव है उदयपुर में जहाँ पे अभी मैं रह के काम कर रहा हूँ। तो अभी एक वीक पहले की एक्सपीरियंस है, मैं उससे शेयर करूंगा, बहुत ताजा एक्सपीरियंस है। मैं कुछ लोकल मैरिज अटेंड कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे मैरिज का भी बहुत टाइम चल रहा है, लोकल मैं शादियां अटेंड कर रहा हूँ। तो वहां पे मनवार करते हैं कि बीड़ी सिगरेट एक प्लेट के अंदर, मतलब वो घूमती है प्लेट और जिसको भी लेना है लेके पी सकते हैं सर। तो मेरे को भी देते हैं,
0: अच्छा
1: तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं सर। तो उनका बहुत जबरदस्ती वाला रहता है कि नहीं आप पियो पियो, मतलब शौक पे एक बहुत अच्छा राइसी वाला कि हाँ पियोगे तो बहुत अच्छा है, आप बहुत हमारे स्पेशल गेस्ट है ऐसा फील कराते। पर
0: अच्छा
1: वहां पे मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, मतलब पिछले 3 दिन में लगातार एक मैरिज को अटेंड करने जा रहा था, शादी से पहले के जो इवेंट होते हैं, तो उसमें कुछ लड़के लोग जो कि अभी 14-15 साल के भी नहीं है, 9th-10th क्लास में पढ़ते होंगे या 8th में भी, तो वो बच्चे जो बीड़ी सिगरेट जो प्लेट आती है, जब इधर उधर वो जाती है प्लेट, सारे मील्स में बंटती है वो, तो उसमें से वो छुपा के एकदम से चोरी से, जैसे उन्होंने किसी ने देखा नहीं, मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन, उन्होंने लिया वहां से और जेब में रख दिया चुपके से। और वो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद में जब लेट नाइट हो जाता है तो मेरे रूम पे मुझे ड्रॉप करने आते हैं, और मेरे को बोलती कि आपका रूम देखना है चलो चलते हैं, बट वो वही मेरे को बहाना करके मेरे घर के बाहर ये साइड में एकांत में वहां पे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनको लगा कि मेरे को नहीं पता है। और ऐसा ऐसा एक बार मेरा एक्सपीरियंस रहा। दूसरे तीसरे दिन उनको लगा कि नहीं सर तो फैमिलियर हो गए, मतलब थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, तो हंसी मजाक में मुझे बोले कि आप यहाँ भी सो भी सकते हैं, हम और इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, और सर आप कौन सी बीड़ी पीते हो? तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या बोल दिया तुमने, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा हम उम्र हूँ, मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी और मेरी एज में बहुत
2: अक्सर
1: फर्क
2: ऐसा ही
1: है,
2: होता है
1: मैं
2: जगदीश भाई,
1: 27-28 साल का
2: सिगरेट
1: हूँ
2: पे
1: और
2: दोस्ती कर
1: तुम
2: लेते लोग,
1: 17 साल। हाँ
0: सिगरेट
1: जी
0: पे दोस्ती,
1: हाँ, वहीं से दोस्ती स्टार्ट होती है। उनको लगा कि
0: कोशिश
1: शेयरिंग
0: करते हैं
1: करते
0: लोग।
1: हैं, उनको ये तो पता है कि मैंने देख लिया उनको दूर से, तो उनका था कि आप
2: इस पे
1: शेयर
2: जगदीश
1: करने
2: भाई
1: में
2: के
1: क्या
2: साथ मैं
1: जाता
2: भी
1: है
2: ये
1: कुछ।
2: बताना चाहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज कंटिन्यू।
0: बिल्कुल
1: तो हालांकि मैंने उन्हें उनकी फैमिलीज भी थी वहां पे बात किया, फिर मैंने खुल के बोला कि तुमने वहां से उठाई और तुम मेरे को छोड़ने आने के बहाने वहां आके पीते हो, नाम का मेरा छोड़ना है, मेरे को छोड़ना तो तुम्हारा ऐसे ही
0: अच्छा है
1: ऑब्जेक्टिव,
0: वो।
1: तुम्हारा ऑब्जेक्टिव दूसरा है कि तुम घर से दूर आकर के ये करने आते हो, है ना? तो उनकी फैमिली को वही बोला कि ये चीजें इनके लिए नहीं है, ये स्टूडेंट है अभी और इनको बात करने का भी तरीका नहीं कि किससे बड़ों से कैसे बात करते, तो ये
0: कितने
1: चीजें
0: कितने
1: आपके पास
0: बड़े
1: है।
0: स्टूडेंट होंगे जगदीश, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते होंगे
1: ये
0: ऑलमोस्ट, अगर
1: एक था
0: बात
1: 10th क्लास का, मतलब कि आप मान सकते हैं 14-15 साल के बच्चे, 10th-11th के बच्चे, मतलब
0: करें।
1: 16 साल के 17 साल के बच्चे, एक ने बताया भी था 17 साल का है ऐसा, तो मैंने कहा मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ फिर, है ना? तो मतलब वही कि मैं उनको समझा रहा था। और एक और मैरिज अटेंड किया था, बट अभिमन्यु जी अभी बता रहे तो मैं उनके बाद भी बता सकता हूँ। तो
2: नहीं, प्लीज आप बताइए जगदीश भाई। मैं तो, आपने जब वो बताया कि वो आपसे बीडी के लिए पूछा आपसे कि आप भी हमारे साथ भी हम बातें करेंगे, तो मुझे ये, जैसे हम आजकल नौकरी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कैसे अभी भी क्या करते हैं कि लोग इसको सुट्टा ब्रेक बोलते हैं। तो
1: जी
2: जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग साथ में बाहर जाके ब्रेक लेते हैं, साथ में बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, उस पर बातें करते हैं, तो उस तरह से उनकी दोस्ती भी ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट मुझे भी लोगों ने ऐसे बोला कि अगर आपको करियर में जल्दी तरक्की करनी है तो आप भी ऐसे सिगरेट पिया करो साथ में, और जाके उनके अपने बॉस वगैरह से दोस्ती करने का एक आजकल तरीका बन चुका है। तो
0: बताइए,
2: वो
0: दोस्ती का
2: चीज याद आ
0: तरीका।
2: गई थी आपसे जब आपने बोला कि, और आपसे बोल रहे थे कि चलो भैया आप भी बीड़ी पियो हमारे साथ, हम आपके साथ बीड़ी पियेंगे। तो ये चीज प्रेवलेंट है
0: कैसे जोड़
2: अभी भी
0: दिया
2: उन्होंने,
0: गया
2: हाँ,
0: है ब्रेक को सिगरेट
2: सोशलाइज कर
0: से,
2: दिया गया ऐसे से, हाँ
0: सोशलाइज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एफर्ट भी होता है एडवर्टाइजमेंट्स का, कंपनीज का भी, क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा बिके, तो इसके से उसका एक कनेक्शन बिठाने लगते हैं कई बार लोग। आप दोनों की जो स्टोरीज हैं वो कहीं ना कहीं भले अलग अलग जगह की हैं मगर कुछ मिलती जुलती हैं। यहाँ मैं ललिता से भी जानना चाहूंगी एक्चुअली क्या उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या देखती हैं, और क्या ये प्रॉब्लम, मैं ललिता आपसे भी ये भी जानना चाहूंगी कि ये क्या ये महिलाओं में भी है या बच्चियों में भी है, या फिर सिर्फ लड़कों का ये इशू आपको लगता है ज्यादा रहता है?
3: एक्चुअली मैं दीदी, जैसे कि मैं स्कूलों में जाती हूँ, स्कूलों में नहीं, अदरवाइज मैं गांव में भी जाती हूँ, तो ऐसे बात करें तो कम से कम मेरे लगभग 3,500-4,000 बच्चे हैं जिनके साथ मैं काम के साथ है। तो जॉब पे तो मैं सब चीजें देखती हूँ जैसे काम करने वाले लोग हैं। अगर जो गांव की जैसे भैया बात कर रहे थे ना, 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 15 से 17 साल वाले बच्चे, इनमें ज्यादा ये चीजें होती है। और होती क्यों है, जब मैं बच्चों से बात करती हूँ ये सब चीजें क्यों होती है, तो मैं ये सब नहीं करने की, तो बोलते हैं मम्मी पापा भी तो करते हैं। उनका ऑलमोस्टली जवाब ये होता है कि मम्मी पापा भी तो करते हैं। आप उनको ऐसा बोलेंगे ना भाई ये फायदा करता नहीं है, मतलब नुकसान चीजें है, इस पे लिखा भी होता है, तो उनका सीधा जवाब होता है आज तक तो मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीजें देखकर मतलब ऐसा लगता है बच्चों के लिए समझाना कोई वो नहीं है, बट इनके लिए कुछ अलग करना चाहिए। जब मैं किसी भी बच्चे जैसे मैं जाती हूँ, जैसे लड़कियों की बात हुई, तो जैसे लड़कियां बोलती है मम्मी भी खाती है। ऐसे मैं बताऊं आपको कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं जा रही थी पैदल पैदल ऑफिस जा रही थी, तो रास्ते में मुझे स्कूल वाली बच्चियां मिली, तो बोल रही है दीदी आप आते नहीं हो। तो मैंने बोला जब मैं तब आऊंगी तुम्हारे पास जब तुम नशा करना छोड़ दोगी। नशा क्या होता है उनका, वो पाउच वाले वो आते हैं देसी वाले, वो उनका बहुत ज्यादा
0: तम्बाकू
3: नहीं, वो क्या बोलते वो पाउच में आई थी शराब भी आता है वो,
0: अच्छा,
3: गांव के एरिया में दिखता है वो भी वो लोग पीते हैं। तो मैं लड़कियों
0: बच्चे हैं स्कूल के, लड़कियां स्कूल की जिनकी बात कर रहे हैं,
3: मतलब पीना छोड़ देते, तो उनका सीधा जवाब होता है दीदी हम पियेंगे नहीं तो चलेगा कैसे।
0: और ये कितनी बड़ी बच्चियों की बात कर रहे हो आप ललिता,
3: यही 15 से शुरू हो जाती है वो,
0: 15 से
3: छोड़ देती है, घर पे रहती है, फिर माँ बाप को समझाने जाओ तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा धंधा नहीं चलेगा, हम इनको स्कूल भेजेंगे। तो
0: मतलब वो बोल रही है पिएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, 15 साल की एक बच्ची वो ये बोल रही है कि पिएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, मतलब कितनी कितनी कितनी खतरनाक ये सिचुएशन है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कितनी ज्यादा मुश्किल ये हो चुकी है अभी हमारे आसपास हम देख रहे हैं। आप जगदीश कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है आप भी कहते कहते रुक गए थे, जरूर आप वो बात बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और मैरिज अटेंड किया था तो वहां पे जो है मतलब दारू सब होता है, और दारू में भी महिलाएं पुरुष सारे लोग पीते हैं, मिलके खुल के पीते हैं। और हालांकि उस कम्युनिटी का नाम नहीं ले जाऊंगा, वहां पे इन्वाइट नहीं किया जाता किसी को भी अदर कम्युनिटी को, बट मैं उनके साथ में वर्क कर रहा हूँ, उनके बच्चों के साथ में, डायरेक्ट उनके बच्चे नहीं उनके रिलेटिव के बच्चे के साथ में। तो जस्ट ऐसा मैंने लाइजनिंग बनाया कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ कम्युनिटी में, मैंने मेरा खुद का बाउंडेशन है ऐसा, मतलब जिस तरीके से मैं फील्ड में कहीं गांव में एकदम डेप्थ में जाके काम करता हूँ, तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ दिन तक तो उन्होंने छोरी छिपे किया या मेरे सामने नहीं किया, पर कंटिन्यू जब जाने लगा 2-3 दिन जब जाता हूँ तो उनका शर्म ऐसा दूर हो जाता है कि सर तो अपने ही है ऐसा, है ना, मार साहब तो अपने ही है। तो फिर वो मेरे को दारू का बोतल ऐसा, तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं चलता है, तो फिर वो कि नहीं अगर आप मतलब आप अगर पैसे मतलब वही कि आप चश्मा पहन के आए हो या शहर के आए हो तो आप जरूर पियेंगे, या हम रईसी वाला है आपको मनवार कर रहे हैं, बहुत रेस्पेक्ट से दे रहे हैं, आपको पीना पड़ेगा जोर जबरदस्ती वाला। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं चलता है, तो आप फिर कौन सी कम्युनिटी से है ये वो कि नहीं चलता आपको। मैंने कहा नहीं मैं पीता ही नहीं हूँ सर। तो बोले आपके लिए क्या कोल्ड ड्रिंक लाए क्या, मतलब ऐसा मतलब उनको कुल मिला के कुछ तो पीने का देना है मुझे, जिसमें मैं उनके जैसा बराबर का उनको फील आए
0: कि सर ने स्टेटस से जोड़ दिया है उस चीज को।
1: हाँ भले उनके पास पैसे नहीं हो कोल्ड ड्रिंक के भी, बट वो मुझे कोल्ड ड्रिंक इसलिए दे के ताकि हम सब लोग एक जैसे हैं, एम्पैथी फील हो उनको, सहानुभूति फील हो, और वो उसके लिए वो करते हैं ऐसा। तो वही था कि जोर जबरदस्ती में, फिर अभिमन्यु जी ने जैसे बताया तो मेरे भी कुछ जनजी मतलब है दोस्त लोग हैं, तो उनका वही कि एक सुट्टा तो मार लो कुछ नहीं होगा, है ना, थकान दूर हो जाएगा या कुछ नहीं, एक से चलता है। मैंने कहा मेरा हेल्थ इश्यूज है, मैं नहीं करता हूँ ऐसे नशे पते ऐसे, नहीं नहीं एक से कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होगा, है ना। और मैंने कहा मुझे आता भी नहीं है सिगरेट पीना, नहीं ऐसे ऐसे करो फूक लो अंदर,
0: बताएंगे भी, सिखाएंगे भी,
1: हाँ मेरे को करके बताएंगे, करके बताएंगे।
2: ये चीज ऐसी हो गई है आरुषि बहन कि आज के टाइम में एक समय होता था जब कल्चरली नशा जो है ना एक गलत चीज की तरह देखा जाता था, और ये माना जाता था कि जो सोसाइटल आउटकास्ट है, जो सोसाइटी के मैं यूँ कहूंगा मिसफिट्स हैं, जो सोसाइटी में फिट नहीं होते, ऐसे लोग नशा करते हैं या फिर ऐसे लोग ही सारी चीजों का सेवन करते हैं, आज उल्टा हो चुका है। अगर मैं आज अपनी ऑफिस की कभी गैदरिंग्स में, पार्टी में जाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं, जो किसी तरह का नशा नहीं करते हैं, वो लोग बहुत कम रह गए हैं। उन लोगों को ऐसे देखा जाता है जैसे जगदीश भाई बता रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बिना शराब के एंजॉय कैसे करेगा। जैसे अब ये लोग, हम लोग कई बार गैदरिंग्स में डांस भी करते हैं, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मेरी शक्ल से ऐसा नहीं लगता लेकिन मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो जब मैं बिना शराब पिए डांस करता हूँ और काफी लोगों से ज्यादा डांस कर लेता हूँ, तो वो मानते ही नहीं है कि मैंने शराब नहीं पी और मैं फिर भी इतना एंजॉय कर पा रहा हूँ। मतलब आज ऐसा हो गया कि लोग सोचते हैं इस सब चीज के बिना गुजारा नहीं हो सकता, ये
0: नहीं,
2: कल्चरल एक
0: मतलब इसके
2: फिनोमिना
0: बिना
2: बन
0: आप
2: चुका है।
0: डांस भी नहीं कर सकते, इसके बिना आप इंजॉय नहीं कर सकते,
2: हाँ,
0: ये एक मान्यता बन गई है.
2: ये मान्यता बन गई। अब ऐसा हो गया, उल्टा हो गया कि वो लोग जो शराब नहीं पीते उनको ऐसे देखा जाता है कि इनके साथ कुछ गलत हो, जैसे तो ये इतने अलग कैसे है, ये एक देखने में आया जो पहले ऐसा नहीं होता था। जब हम
0: ये
2: छोटे होते थे
0: अभी
2: 20 साल
0: अभी
2: पहले में
0: अभी
2: भी,
0: लग
2: और अब
0: रहा
2: में
0: है.
2: बहुत फर्क आ गया है,
0: हाँ, ये मतलब
2: बहुत
0: अभी
2: फर्क आ गया है।
0: अब चेंज
1: और
0: देखने
1: हाँ,
0: में.
1: एक और बात याद आई कि वो दारू वाले में बताना भूल गया. वो कह रहे कि सर दारू नहीं पिला रहे आपको, बियर पिला रहे है ना, बियर पिला रहे है ना. लेडी, एक लेडी जो मुझे आके बोलती है कि वो खुद भी पीते थे, सब लोग वो लेडी वहां पीते हैं शादी में उस कम्युनिटी में. वो मुझे बोली कि सर बियर बियर, वो बोली, क्लियर बोली वो मुझे कि वो बियर सर आपको पिलाएंगे. मतलब बहुत प्राउड फील कर रही थी उस बियर में भी वो, कि सर हम तो दारू तो हमारे चलता नहीं है माता जी के, पर बियर जरूर चलता है तो बियर आपको पिलाएंगे. मैंने कहा सॉरी माता जी, मैं बियर भी नहीं पीता हूँ.
0: मतलब अच्छा, तो एक तो दो चीजें मुझे समझ में आई. एक तो दोस्ती बढ़ाने के तरीके से इसको जोड़ दिया गया है, और दूसरा स्टेटस से भी जोड़ दिया गया है कि आप
2: बिल्कुल
0: पीते हो तो एक स्टेटस है आपका, आप पिलाते हो तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं. मतलब बहुत ही गलत चीजों से जोड़ दिया गया है इस चीज को.
2: विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे
0: बिल्कुल
2: बोलते
0: बिल्कुल
2: हैं।
0: बिल्कुल, और वो हो रहा है. अब मैं आप तीनों से एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरेशन की. एक तो जैसे आपने कहा अभिमन्यु, कि आपने बताया कि पहले नहीं होता था, बहुत साल पहले ये नहीं होता था, अब ये ट्रेंड बन गया है जैसे. तो ज्यादा ये कौन सी जनरेशन में आपको लगता है, आप तीनों को लगता है सबसे ज्यादा इस वक्त जो नशे की समस्या है, कौन सी जनरेशन को ज्यादा असर डाल रही है, जिस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है? मतलब ये 25 से 35 साल के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आपको लग रहा है 15 से 25 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, या क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सी जनरेशन ज्यादा इफेक्टेड है? जी
2: मैं अगर इस पे बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि बहन की जनरेशन का इससे लेना देना नहीं है, बजाय कि
0: ओके
2: इसके कि आज ये ऐसा फिनोमिना बन गया कि जिन लोगों के पास कारण नहीं है, हर एक के पास कोई कारण होता है, मेरे पास कोई कारण है कि मैं ये सब चीजें ना करूं, लोगों के पास कारण नहीं बचा है, लोग खुशियां ढूंढते हैं इन चीजों में। तो उम्र की बात नहीं रह गई है, बात ये रह गई है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो। हर कोई, जो भी इंसान स्ट्रेस में है आज के टाइम में, जो इंसान स्ट्रेस में है, जो अकेला फील करता है, जिसको लगता है कि मुझे वो पारिवारिक सुख नहीं मिलता, या वो चीजें, वो जो सुख मिलना चाहिए वो
0: खुशी
2: आसपास
0: नहीं
2: नहीं
0: है
2: मिल रहा है,
0: लोगों के
2: वो
0: जीवन में.
2: खुशी नहीं है, वो इन चीजों में ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जब हम छोटे थे तो एज अ सोसाइटी में चीजें बोलूंगा कितनी नहीं थी, बट अब मैं बच्चों में भी देख रहा हूँ, मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, फिजिक्स पढ़ाया है 2018 में।

0: देखती हो ना दीदी, उसे पता चलता है कि मतलब कोई जनरेशन का इसमें लिमिट नहीं है। जैसे भैया ने
1: अच्छा
0: बोला, जैसे वजह मिल जाती है लोगों को, ये वजह है आजकल लोगों को, मतलब ये बच्चों की जैसे बात करें या बड़ों की बात करें, बच्चों को ये लगता है माँ बाप पी रहे, हमने थोड़ा पी लिया तो क्या जाता है। और बड़ों की बात करें जैसे कि ऑलमोस्टली लोग इसके बिना काम नहीं होता है। जैसे मैं एक जगह पे ऐसे ही हमारे अकाउंट वाले हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर उनको तार पे भी चलना है ना, बोलेंगे पी के ही चलेंगे। भाई पी के मत चलो दीदी, बिना पिए तो चलते भी नहीं है, चला भी नहीं जाता है। तो ऐसे सब किसी जनरेशन का
1: ओके
0: मेन नहीं रह गया ऑलमोस्टली। अभी क्या होता है, 12 साल तो क्रॉस होते ही लोगों को ये आदत हो जाती है पीने का,
1: बारह साल क्रॉस करते ही आदत हो जाती है।
0: तो लत लग जाती है उनको। क्यों? क्योंकि माँ बाप है ना, बोलते
1: बिल्कुल
0: बेटा जा 10 रुपए गुटखा लेके आ जा, या ये 10 रुपए का रोड पे पाउच मिल रहा है लेके आ जा, फिर वो लाने लाने को आदत हो जाती है वो।
1: जगदीश।
0: जगदीश
1: ऐड करना चाहूंगा ये बस एक लाइन कि इसमें बस ये कि नशे का फर्क है, जो 10वीं 11वीं के बच्चे वो वेप करके पीते हैं, एक नई चीज निकली है, वो खुशबू वाली सिगरेट है, वो फ्लेवर वाली सिगरेट है, वो वेप बोल देते हैं। तो जो छोटी उम्र के लोग हैं, जेन जी जिसे बोलते हैं, 10th 12th 11th वाले, वो वेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े कुछ और कर रहे हैं वो, उनको क्योंकि इतनी
0: मतलब
1: जल्दी
0: उनकी
1: शायद शराब
0: पकवान
1: नहीं मिल
0: बदल
1: पाती।
0: गया है।
1: हाँ, उनको शराब नहीं मिल पाती, आपको एक लीगल एज चाहिए उसके लिए, तो दूसरे तरीके निकाल दिए जाते हैं।
0: और जगदीश आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कौन सी
1: हाँ,
0: जनरेशन ज्यादा सफर कर रही है या आपको मैं
1: लगता है?
0: जो बिल्कुल जो अभी जो स्कूल वाले बच्चे हैं, 9th 10th से ऊपर के बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत अलग अलग नशा ट्राई करते हैं, है ना। और उनका जो है मतलब देखा जाए डेटा वाइज भी, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा डेटा भी, बट उनका जैसे एक्सपीरियंस है आसपास के बच्चे हैं, वो छुप छुप के जो पेरेंट्स से नशा करते हैं या उनकी पॉकेट मनी से नशा करते हैं, वो हद से ज्यादा करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स लोगों का ये कि कभी कभी वाइफ नहीं पसंद करती है, या अगर बेटा बेटी बड़े हो गए तो वो पापा मम्मी को नहीं करने देते हैं, पर जो बच्चा छुप छुप के करता है ना, उसका रेशो बहुत ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो, है ना, वो लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं जो छुप छुप के कर रहे हैं, और जो स्कूल और कॉलेज में, और वो डिफरेंट डिफरेंट नशा ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो जैसे एक पाउडर वही सूंघते हैं उसको, और जो आप सिगरेट की बात कर रहे हैं कि उसका फ्लेवर रहता है जिसमें वो ठंडक करता है गले में पीने के बाद में, है ना। तो वो सब चीजें ये बच्चे ट्राई करते हैं, और ट्राई ऐसे करते हैं कि किसी को नहीं पता कि ये करते हैं। बाकी ये जो पॉकेट मनी इनकी फैमिली से लाते हैं, उसी से इंजॉय करते हैं, आसानी से करते हैं, क्योंकि फैमिली को नहीं पता कि ये कर रहे हैं बच्चे, और ये छुप छुप के करते हैं इस एज में, और ये हद से ज्यादा कर रहे हैं।
1: तो एक चीज मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, अगर आप जवाब दें इसका, तो क्योंकि आप भी स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब की, तो ये प्रेशर तो आपके ऊपर भी आया ही है। तो क्या आप लोगों ने, आप तीनों ने खास तौर से अगर आप अपने अपने बारे में बताना चाहें कि आपने क्या डिसाइड किया हुआ था, या कभी मन गया ही नहीं उस तरफ, या कोई चीज थी जिसने आपको सही रास्ते पर चलने के लिए हेल्प की? क्योंकि दोस्त तो बोलते ही हैं, और जैसा आपने कहा आगे बढ़ने के लिए लोग बोलते हैं करियर में बहुत जरूरी है, दोस्तों के साथ रहने के लिए बहुत जरूरी है, या स्ट्रेस में बोलते हैं लोग बड़ा जरूरी है। तो आप इस चीज से कैसे बचे रहे, किस चीज ने आपको मदद की, या क्या आपके लाइफ का फॉर्मूला था जिसने आपको बचाया, ये मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी। कौन
0: मैं
1: शेयर?
0: बताऊं तो
1: हाँ
0: पहले आप बताइए।
1: जी
0: मैं सीखा जो हूँ, मतलब कि ये चीज नहीं करना है या मेरे लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा हैं जिनको मैंने देखा था करते हुए बचपन में, और उसके बाद में हमारी घर की जो कंडीशन है या उनका जो स्वास्थ्य है वो कितना प्रभावित हुआ है, और वो कितना पेन होता है उनको खाना खाने में, या वो खाना खाने से पहले पूरे अपने फेस के अंदर लिक्विड लगाते हैं उंगली से, उनको जलन कम हो, उस वजह इजिली वो खाना खा पाए, ठंडक हो उनके चेहरे मुंह के अंदर, तो वो सब चीजें मैंने देखी। और छुप छुप के दवाई जब लेते हैं या लगाते थे, हमको कभी नहीं बताया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम वो चीजें करना तो हम तो नहीं चाहेंगे ना कि वो चीजें करें। तो उनसे हम मेरे को प्रेरणा मिली कि नहीं, ये चीज करना गलत है, क्योंकि जितना प्रॉब्लम आज वो फेस कर रहे हैं ना, शायद मैं भी फेस करूंगा, या मेरे बच्चे भी देखेंगे, या मेरे आसपास की कम्युनिटी भी, और वो सही नहीं है ना। कहे उस जगह अगर कुछ अच्छा चीज खा सकते हैं, तो मैं मतलब जो बच्चे भी जो मुझे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे बीड़ी पीने का, तो मैंने कहा इस जगह तुम अच्छा खाओ ना, तो बोले कि अच्छा क्या खाए, बहुत महंगा। मैंने कहा तुम उसी पैसे में तुम फल फ्रूट खा सकते हो, है ना। तो लिसन।

0: थकान दूर होता है। मतलब ज्यादातर लोगों का यही कि तनाव या थकान स्टेट जो हमारा है दिमाग में मेंटली, वो दूर करने के लिए हम ये गुटखा खाते हैं या नशा करते हैं। तो मैं वो जो बात से भटक रहा हूँ, पर वही बता रहा हूँ कि मैं अपने पापा से सीखा हूँ कि उनके जो हेल्थ इश्यूज है, बाद में उनको समझ में आया कि नशा नहीं करना है या वो नहीं कर रहे हैं, तो यही चीजें मैं नहीं करूँ, तो फिर मैं संभल गया और मैंने नहीं किया।
1: शुरू से ही आपने सीख लिया उस चीज को,
0: बाकी
1: देख
0: लोगों ने
1: लिया आपने।
0: रिक्वेस्ट तो किया जब मैं फेलोशिप कर रहा था, तो अलग अलग दिल्ली से, यूपी से, अलग अलग जगह से, वेस्ट बंगाल से मेरे साथ फेलोज थे, जहाँ पे फीमेल और लड़के लड़कियां यूथ है, तो इजीली रोड पे भी सिगरेट पीते हैं, है ना, बहुत शौक से पीते हैं, है ना। इधर मैं चाय पी रहा हूँ उनके साथ में जाके, तो वो सिगरेट पी रही है लड़की, है ना। बट मैंने नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना, उन्होंने कहा ट्राई करो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता हूँ, बस खत्म। मैं चाय
1: आपने
0: पी
1: ओपिनियन
0: लूंगा आपके साथ
1: देखा
0: आके,
1: था।
0: मैं चाय पी सकता हूँ पर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा,
1: सिगरेट नहीं
0: कंपनी दे सकता
1: पियेंगे,
0: हूँ चाय में ऐसा।
1: क्योंकि आपने वो दर्द देखा है और महसूस किया है कि
0: जी
1: सिगरेट पीने के बाद, नशा करने के बाद क्या हालत हो जाती है, कि नॉर्मल खाना
0: वही
1: खाना भी मुश्किल हो जाता है, दर्द भरा हो
0: वही।
1: जाता है, हम
0: और एक अपनों का दर्द
1: सोच नहीं
0: होता है ना,
1: सकते
0: वो
1: कैसी
0: किसी भी
1: जिंदगी
0: तरह
1: हो
0: का दर्द हो,
1: सकती
0: छोटा सा छोटा दर्द भी हो ना, वो हमें दिल तक जाता है हमारे।
1: है। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश, सही कह रहे
0: जी
1: हैं आप। आप दोनों शेयर करना चाहेंगे कि आपको किस चीज ने मदद की कि आप बिल्कुल इससे दूर रहे।
2: दीदी, ऐसा तो एक ऐसे मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस तो खैर मेरे घर में तो ऐसा कोई है नहीं, और मेरी मम्मी कहती है मेरे पापा पीते थे, बट हमको पता नहीं वो पीते थे कि नहीं, लेकिन मम्मी से ऐसे पता चला। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब ये सब चीजें उनको नहीं, मतलब पसंद नहीं बिल्कुल, एक सुपारी भी उनको पसंद नहीं है। और
1: बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: दूसरा जो एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो आई थिंक शायद बाबा जी का वरदान है मेरे को, ऑलमोस्टली लोग है ना मेरे साथ रह के छोड़ देते हैं ये सब चीजें खाना, मतलब ऐसे मेरे पास
1: अच्छा,
2: कम से कम 6 लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया खाना पीना ये सब चीजें, मतलब
1: और अच्छी
2: कुछ
1: बात
2: सुपारी
1: है।
2: या गुटखा खाते भी थे, बट वो आए तो अब वो खाना छोड़ दिया उन्होंने। तो मेरा
1: ओके
2: एक्सपीरियंस तो खैर मेरे बड़े पापा थे वो बहुत पीते थे, और वो उनकी
1: ओके
2: जो डेथ हुई थी ना, मतलब इस तरीके से हुई थी, तो उसके बाद से मुझे ऐसा फील होता है लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और जितना होता है मैं लोगों को समझाती हूँ। और
1: तो इसलिए
2: आज के
1: कभी आप
2: जमाने
1: पे
2: में
1: वो
2: ऐसा चीज़
1: प्रेशर नहीं
2: किसी को
1: आया।
2: समझा नहीं सकते। हाँ, आप आज के जमाने किसी को आप समझा नहीं सकते, लोग देख के आपको फॉलो करते हैं, आप समझाओगे तो लोग बड़ा ज्ञान देने वाली आई है ऐसा सीधा होता है लोगों को, तो
1: ऐसा बोलते हैं, तुम
2: लोग
1: बड़ा
2: देखते
1: ज्ञान
2: हैं
1: दे
2: ना
1: रहे हो।
2: फॉलो ज्यादातर।
1: कंपनी का असर पड़ता है,
2: ऐसा
1: मतलब आप ये कह रहे हो, है ना, दोस्त
2: कंपनी का सर
1: जैसे
2: पड़ता
1: होते हैं उसका भी असर पड़ता है, और आपके दोस्त ऐसे रहे जो इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते,
2: नहीं है
1: ये बहुत अच्छी बात है।
2: जी।
1: बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छा संग मिला आपको। अभिमन्यु जी, आप शेयर करना चाहेंगे आपका
2: हाँ
1: क्या
2: जी,
1: एक्सपीरियंस रहा?
2: मेरा जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया ऋषि बहन, मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा था कि जो इंसान, जो हम छोटे होते हैं, छोटी छोटी चीजों का हम पे असर ज्यादा होता है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम उस रूम में एंटर करके गौरव को देखा, जो मेरा दोस्त था और टॉपर होता था वो, और जब मैंने देखा कि वो, अब बताता हूँ कर क्या रहा था, वो बेसिकली वाइटनर वगैरह जो आते हैं ना उसको थैली में डाल के वो उसको सूंघ रहा था, जो फ्लूइड वाइटनर बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो उसके कहीं कहीं पे वो सारा सफेद लगा हुआ था, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। वो देखने में, जब मैं देखा उसके चेहरे पे कहीं कहीं वाइटनर लगा हुआ है, और उसकी जो हालत हो गई थी, और जैसे उसके बाद मैंने उसकी लाइफ में गिरावट आती देखी, वो मेरे अपने आप में एक चीज थी, मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे ये चीज कभी नहीं करनी है, कि मुझे इस तरह से निर्भर नहीं होना किसी भी सब्सटेंस पे। और उसके बाद आप एक बात देखिए, आप अपनी लाइफ में भी ये चीज देखोगे, जो लोग नशा करते हैं, ठीक है, वो किसी भी कारण से शुरू करें, लेकिन बाद में फिर उससे दुगनी मेहनत करते हैं उसको छोड़ने के लिए। आप जिससे भी बात करोगे ना, मतलब हम जब देखते हैं लाइफ में जिस चीज, जिसकी लाइफ इस चीज से असर करने लग जाती है, वो फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यार मैं छोड़ना तो चाह रहा हूँ, छूट नहीं रही है, ठीक है। उनको
1: करेक्ट।
2: मेहनत करने लगती है, उनको कई जगह पे फिर कोर्सेज करने पड़ते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर्स के जाना पड़ता है, मैंने परिवार में भी ये देखा है कि थेरेपी लेनी पड़ती है। तो उस चीज को अपनाया ही क्यों जाए जिसको पता है कि बाद में जाके फिर आपको छोड़ना है। उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि देखो, हमें कारण में जाना जरूरी है, जैसा जगदीश भाई ने भी बोला कि लोग इस चीज को ना प्लेजर के लिए बोलते हैं, तो आप प्लेजर लाइफ में किसी और चीज से भी तो खोज सकते हो। तो अगर मैं मेरी
1: करेक्ट।
2: बात करूं, तो मैंने बचपन में जब वो देखा गौरव का, और तब से भी हमारे में हरियाणा से यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर भी है, तो जनरली मुझे खुशी इस चीज से मिलती है कि मान लो मैं रनिंग करने चला जाऊं, या मैं एक्सरसाइज कर लूं, या मैं कुछ अच्छा खा लूं, या फिर कुछ अच्छी मूवीज देख लूं। तो लाइफ में आप प्लेजर बहुत अलग अलग चीजों से ढूंढ सकते हो, तो वो कारण रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहला ही मेरा 10th 11th में जो मैंने वो एक्सपीरियंस किया, और मैंने लाइफ में गिरावट देखी, मुझे वो दिमाग में बैठ गई थी कुछ चीज की, मुझे ये चीज तो नहीं चाहिए,
1: इमेज आपके दिमाग में बैठ गई थी
2: एज इट इज, वो इमेज मेरे दिमाग में क्लियर बैठ गई थी क्योंकि एकदम प्रोटेक्टेड फैमिली से हम गए थे, मैंने कभी ये चीजें कभी देखी भी नहीं थी यहाँ पे, और वहां एकदम से बड़े शहर में जाना, छोटे से शहर से निकल के और बड़े शहर में जाके इस तरह की मायावी चीजें देखना, ये बहुत बड़ा
1: फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका ऐसा। एक और सवाल मेरे मन में आया हो, मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत लोग कहते हैं, पिछले दिनों भी हमने कुछ इंटरव्यूज किए तो लोगों ने कहा ना नहीं कह पाते, यू ना कहना सीख नहीं पाते। और एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बच्चे बड़े होते हैं, कई बार उसने बड़ा भी इसी प्रकार से किया जाता है कि जो माता पिता ने कहा हाँ बोलो, टीचर्स ने जो कहा हाँ बोलो, ज्यादा चीजों को क्वेश्चन नहीं करो, तो जब वो दोस्तों के सर्कल में भी जाते हैं तो क्वेश्चन करने से डरते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अगर ना बोलेंगे तो हमारा सर्कल नहीं रहेगा, दोस्त नहीं रहेंगे, या मे बी और भी रीजंस हो सकते हैं, कई चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़ी दुनिया है ना, ना कैसे कहा जाता है, क्या ना कहने से दोस्ती टूट जाती है या दोस्त बदल जाते हैं या हम अकेले हो जाते हैं, या क्या होता है, मतलब ना कहा कैसे जाता है या ना कहना कैसे सीखे आप लोग, ना जब आपको करना होता है तो कैसे करते हो ना?
2: इसमें पहले मैं बोलूं अगर आप लोगों को ठीक लगे,
1: बिल्कुल जरूर प्लीज।
2: तो ये चीज एक बहुत अच्छी बात उठाई आपने आरुषि बहन, और ये बहुत सच भी है कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी ना नहीं बोल पाते, ठीक है, जब हम ह्यूमंस जो है उनकी टेंडेंसी रहती है कि हम फिट होना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें अपनाएं, और अपनाने के लिए कई बार क्या होता है करते हैं जो दिखता है कि बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं और हमसे पूछेंगे मना कैसे करेंगे। लेकिन ये चीज मैं जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, यूथ को भी जब मैंने डील किया उनके साथ, जब हम खुद भी यूथ होते थे, मेरा एक मित्र है उसको मनोज बोलते हैं, चलो उसकी एक सबसे हम सबको एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि कई लोग होते हैं जो हाँ में हाँ भर देंगे, कई लोग होते हैं जो आपको जो सुनना है वो बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनको जिनके ओपिनियंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर वो गलत है तो आपके मुंह पे गलत बोलेंगे और कोई चीज सही है तो आपके मुंह पे सही बोलेंगे। तो हम लोग, आपसे भी मैं बात पूछना चाहूंगा, हम उन्हीं के पास जाके एडवाइस देते जिनको हमें पता है कि चल ये मेरे मुंह पे अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे मुंह पे ये बोलेगा,
1: बताएंगे।
2: तो दोस्ती टूटने की बात तो नहीं, हम सारे बल्कि उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करते थे मनोज की, हमें ये पता था कि ये शख्स एक बुलंद इंसान है, ये अपने खुद की विचारधारा रखना जानता है, अगर कोई चीज ये गलत हम करेंगे तो ये हमसे बोलेगा, तो उस ऐसे इंसान से सलाह ली जाती है। और जहां तक रही बात ना करने से दोस्ती टूट जाने की, क्या वो लोग आपके अभी दोस्त हैं जो इतनी सी बात पे आपसे दोस्ती तोड़ लें? दोस्त तो वही वही होते हैं जिनके आप आगे आप जैसे हो वैसे रह सको। तो ये चीज पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप, जो इंसान स्ट्रांगली नो बोलना जानता है गलत चीज को और जो इंसान स्ट्रांगली यस बोलना जानता है सही चीज को, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है लोगों की नजरों में, चाहे वो तुरंत ना दिखे बट वो समय के साथ दिखती है
1: समय के साथ। इट्स वंडरफुल। सेम क्वेश्चन ललिता जगदीश, ना कैसे बोला जाता है?
3: दीदी एक्चुअली में ना का पहले बात मैं आपको बताऊं, लोगों ने एक मन में ना एक इमेज बना रखा है, ना बोलेंगे ना तो हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, जैसे भैया ने बोला रिश्तों पे असर पड़ता है, कई बार ऐसा होता है दोस्त दूर कर देते हैं, लेकिन हमको दोस्त की जरूरत होती है इसलिए भी हम पीते हैं। ना बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक इमेज में हम मन में बना लेते ना, अरे ना बोलेंगे तो इतना हमारा घाटा हो जाएगा, पर हमारा फायदा कितना रहा वो भी हमें देखना चाहिए। कई लोगों ने मैंने एक्सपीरियंस सुना है कि ना मतलब उन्होंने शराब कैसे छोड़ा, उससे उनका फायदा क्या हुआ, पहले उन्होंने बोला हमें लगा भाई हमारे रिश्ते हमसे दूर जा रहे हैं, हमें कोई सपोर्ट में नहीं कर रहा है, बट जब धीरे धीरे जब हमें पता चले, जैसे भैया ने बोला कि जो कई लोग ऐसा होते हैं सीधे मुंह पे बोलते हैं, जो उनको पसंद नहीं तो बोल दिया, भाई पसंद नहीं है तो नहीं है, लेकिन लोग एक बात तो हमेशा याद रखे, चलो ये बंदा ऐसा था कि जो था वो मुंह पे बोलता था, चाहे वो गलत हो या सच हो, जो भी था वो सच बोलता था, सामने आके बोलता, डरता नहीं था किसी से। उसी पर जब हम चीजों को ना, जैसे कि हमें पता ये हमारा नुकसान करता है, हमें ये नहीं लेना, रिश्ते क्या ये छूट जाएंगे, दूसरे रिश्ते तो बन जाते हैं ना, जो आपके इंतजार में भाई कब ना बोलेगा, नशे को कब छोड़ेगा, कुछ लोग आपके इंतजार में भी तो बैठे हैं, तो आप उनके
1: ये नहीं पता होता ना कि कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं, ये नहीं पता होता, ऐसा लगता है यही है जो है, ये छूट गए तो मैं अकेला
3: लगता है, वो सामने हमारा एक इमेज होता है कि हमने ना बोला ये चीज हमसे छूट जाएगी, लेकिन हमारा इतने लोग इंतजार भी तो कर रहे हैं हमारे ना बोलने से, कितने खुश होंगे, कितनों को फायदा होगा, नहीं, जो पेरेंट्स होता है बच्चों को फायदा होता है, चलो आज हमारे पापा पी के नहीं आए, आज हमारे साथ टाइम बिताएंगे। माँ बाप को होता है हमारा बेटा पी के नहीं आया, हमारे साथ टाइम बिताएगा, बात करेगा, इतना सुखी परिवार होता है। वो रिश्ते तो क्या, उसी आपके जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते चीज में, वो आपके जीवन कभी बना नहीं सकते,
1: बना ही नहीं
3: सकते। अपनों के लिए भी कई बार ना बोलना सीखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली एक्चुअली। आप दोनों के पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं कि ना कहने से कितना मतलब फायदे में हम रहते हैं। लेकिन जैसे मैं छोटी छोटी बात करूं कि सिर्फ नशे की बात नहीं है, मान लीजिए आपके दोस्त प्लान कर रहे हैं नाइट आउट करेंगे, पूरी रात घूमेंगे, आपके माता पिता ने बोला है कि नहीं भाई नहीं जाना चाहिए रात को, लेकिन पीयर प्रेशर है कि सब लोग जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा तो बोलेंगे क्या तू बच्चा है अभी तक, अपने माँ बाप की सुनता है अभी तक, या फिर और भी चीज है, या किसी भी चीज के लिए मुझे अंदर से नहीं मने या मुझे ठीक नहीं लग रहा है लेकिन मैं अपने दोस्तों को ना नहीं बोल सकती या ना नहीं बोल सकता। ये छोटी छोटी बातों से भी डिफिकल्ट होता है कई बार ना बोलना। जगदीश आप कैसे समझते हो उस बात को, ना कहना आपको कभी मुश्किल लगा या आपके लिए हमेशा आसान था?
0: कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि हमारे बहुत खास दोस्त हैं और उनको उनका मतलब ना बोलना, और डर सा कि चलो मेरे को पीपीटी में हेल्प करने वाला था, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, उसको लैपटॉप चलाना आता है ना, आप मना कैसे करें। तो मैं उससे बातें घुमाता था कि उस टॉपिक पे बात नहीं जाए जो टॉपिक पे वो कर रहा है, या मेरे को सिगरेट दे रहा है ना, तो मैं उसको बातें घुमाता था ताकि उसको बुरा भी नहीं लगे, वो अपनी बात भूल जाए, है ना कि अभी नहीं ये वाला ये करना। मैं मतलब बात को टालने में बहुत माहिर था कि उसको पता नहीं चले और बात टल जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे थे उनको बहस करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और मतलब मेरा ये कि दोस्त बहुत जल्दी भी बनते हैं और बहुत जल्दी मतलब दोस्ती कट भी हो जाती है, बन भी जाती है। तो मेरा ये कि जिन लोगों से अगर दोस्ती होती है ना, वो बहुत काम के लोग होते हैं, तो उनको पहली बात तो मैं खोना नहीं चाहता। तो मेरे लिए भी मुश्किल तो है ना कह पाना बहुत चीजों के लिए, अभी भी मैं सीखा है, पर बहुत डर रहता है ना कहने के पीछे कि पता नहीं उसका क्या जवाब आएगा, या अभी लेट नाइट मुझे जरूरत पड़ी कि अगर लेट नाइट मैं अकेला हूँ मेरे को डर लगेगा तो कौन मेरे लिए आएगा तैयार, एकदम मेरे लिए 24/7 कौन अवेलेबल है, मैं फैमिली से दूर हूँ, तो वो सब चीजें हैं। बट कैसे मेंटेन रखना है, कैसे नशे में भी नहीं पड़ना है, कैसे वो दोस्त को भी नहीं खोए, और वो ठीक है आज नहीं तो कल समझेगा कि ये चीज गलत है। बाकी अवेयरनेस का काम तो चल रहा है, डेली उसको कहा जा रहा है मेरी तरफ से कि नहीं करना, पर वही एकदम से चीजें नहीं छूटती है। अगर आप ज्यादा ही करेंगे तो वो दो दूर हो जाएंगे आपसे, अगर आप ज्यादा पीछे पड़ जाओगे डिस्टेंस देंगे, तो डिस्टेंस बनाना नहीं, उनको नहीं बनाने देना है। देखते हैं
1: कोशिश है कि
0: छोड़ दे।
1: तो ये भी एक नया पर्सपेक्टिव है कि भाई म्यूचुअल होती है, हमें भी जरूरत होती है लोगों की, लोगों को भी जरूरत होती है हमारी, तो कई बार इस वजह से भी हम ना नहीं बोल पाते हैं कि फिर हमारे लिए कौन आएगा। लेकिन जगदीश ने कहा जैसे वो बात को घुमा के या थोड़ा अलग तरीके से उसे रखते हैं, और ना कहना सीखना लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें आज नहीं तो कल समझ में आता है धीरे धीरे कि हाँ थोड़ा थोड़ा हमें अपने लिए भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो अपना लाइफ अपनी तरह से तो कभी जी नहीं पाएंगे। और नशे की जहाँ बात आती
0: है, एग्जाम्पल के लिए मुझे वो बियर या दारू पिला रहे थे, बियर, तो मैंने उस जगह कोल्ड ड्रिंक भी नहीं चलता है, मुझे हेल्थ इश्यू है, पर थोड़ा सा उनके सामने मैंने कोल्ड ड्रिंक का एक घूट लिया, उसमें भी वो बोले कि नहीं दो घूट, फिर दो के बाद बोले कि चार घूट, सॉरी उनका मैं चार घूट नहीं पी, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी।
1: मतलब जितना हम
0: बट वही मैंने टाला, दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि ये नहीं तो ये वाला मैं कर सकता हूँ।
1: ओके, ऑप्शन आप बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब क्योंकि आप तीनों ही कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप लोगों ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, करीब से देखा है, आपने शुरू में ललिता कहा था कि समझाने से नहीं होता, कई बार लोग बोलते क्या आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, है ना, तो क्या तरीका होता है, मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है या बच्चा है या हम उम्र भी है, हाउ यू डील विद इट, या कैसे आप उनको ये एक्सेप्ट करा सकते हैं कि नशा ठीक नहीं है उनके लिए, क्या कोई और तरीका है क्या हमारे पास, क्या लगता है आप तीनों को?
3: दीदी एक्चुअली में जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे मेरे साथ ऐसे केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बट एक बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ था, मैं एक्चुअली में दोनों भाई बहन थे बट उनको आदत थी पीने की, दोनों पीते थे, क्यों, मम्मी पापा उनको पैसे लेके भेजते थे, अब दुकान पे बच्चे क्या कर रहे हैं माँ बाप को कैसे पता चलेगा, माँ बाप को तो पता नहीं चलता बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पैसा दिया, बच्चे क्या चॉकलेट का भी नाम लेते हैं, हमने चॉकलेट खा लिया, टॉफी खा लिया, ऐसा होता है। तो मैं उनको ऐसे रोज आते जाते देखती थी, मैं उनको बोलती थी मतलब चीजों के लिए समझाती थी, भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है, तो बोलते थे दीदी ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, हमारे मम्मी पापा भी तो खाते हैं, उनको तो आज तक कुछ नहीं हुआ, हमें क्यों होगा, ऐसा दबाव होता था। तो मैं सोची यार इनको समझाने से कोई मतलब नहीं है, हम इनको बार बार बोलेंगे तो वो ऐसा होता है बंद, या तो हमसे वो दूर होता है, मतलब हमसे बात करना नहीं चाहेगा, या मिलेगा तो कोई ना कोई बहाना करके वो चला जाएगा, इसे क्यों ना हम कुछ ऐसा उनके साथ गेम, जैसे कि मैं पहले जुड़ी हुई थी छोटी बड़ी बातों से, बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी, तो एक्टिविटी के द्वारा वो बच्चों को चीजों समझाई जाती थी, तो वो चीजें मुझे याद थी, तो मैंने क्यों ना बच्चों के साथ गेम गेम के तरीके से ही किया जाए, बच्चों का आप बच्चे क्या है, बच्चों का आप खाने पीने का दे दो तो अपने आप बच्चे जुड़ जाते हैं आपसे, तो मैंने ऐसा कुछ बच्चों का ग्रुप ये किया, छोटे छोटे बच्चों का जो नहीं ये सब चीजें नहीं लेते हैं, और उन दोनों को भी उसमें ऐड किया, तो मैं कुछ ऐसी चीजें उनको देती थी खाने के लिए जिसकी वजह से जो नशा करते उनको जलन होती, जैसे भैया ने बोला उनके पूरा दर्द होता है, जलन होता है चीजें, मतलब ऐसा कुछ खाते हैं तो जैसे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ चॉकलेट दे दिया, उनको ऐसा कुछ मसाले वाली चीज दो जिससे उनको जलन होती थी, ऐसा चीजें रखो जो बच्चे खाओ, हाँ तो वो खाते थे, तो सब बच्चे तो अच्छे से खा लेते थे, मजे से खा लेते थे, लेकिन जो बच्चे थे उनके गले वो जो अंदर का होता है ना गुटका खा करके पूरा वो फिल गया था, वो मतलब वो घाव सा हो जाता है, तो कुछ भी खाएंगे दर्द होगा, जलन होगी, तो ऐसे धीरे धीरे मैं उनको समझाती नहीं थी, बस चीजें लाकर खिलाती थी और कुछ ना कुछ गेम करवाती थी,
1: धीरे उनको उससे कुछ समझ में आए।
3: हाँ तो एक दिन क्या हुआ, वो जो लड़का था आया, बोला दीदी आप ये चीजें मत लेके आओ, मैंने लगा क्यों, कह रहा इसे खाने से ना जलन होती है, तो मैंने लगा ठीक है कोई बात नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा, दूसरे दिन मैं मीठा लेके गई, तो मीठा खाया तो उसको और ज्यादा वो घाव जैसा होता है ना, बोला दीदी मैं नहीं खाऊंगा, और ऐसे बोलते कि घाव होता है मीठा खाने से, ना ठीक है कुछ मत खाओ, तो मैं ऐसे ही आगे बैठा गया, फिर धीरे धीरे बोला यार बच्चे खाते हैं, बच्चे रहते हैं, हमारे एक चीज खाने से हमारा इतना कुछ छूट रहा है, ना हमें चॉकलेट मिल रहा है, ना कुछ ऐसी चीजें मिल रही है, ना दीदी हमको इतना गेम में शामिल करती है, ना उनके साथ मतलब बच्चों को ऐड करती है उतना, धीरे धीरे धीरे वो बच्चों को जब चीजें सीखी ना, आज वो बच्चे कम से कम आप भले 16 साल के हो गए हैं, 16 साल उन्होंने 2 साल हो गया बच्चों ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया,
1: That's wonderful.
3: मैं बोलती तो तुम खाओ मैं पैसे दे रही हूँ तुमको, मैं खुद बोलती थी मेरे से पैसे लेके जाओ तुम खाओ, तुम्हारा फायदा होता तुम खाओ मैं खुद पैसे दूंगी, मैं ऐसे बच्चों को बोलती हूँ अगर तुम्हारा फायदा होता तुम मेरे से पैसे लेके जाओ,
1: तो आपने उनको रियलाइज करवाया इस प्रकार से, दैट्स वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव, कुछ अलग तरीका है उनको ना कहने से ज्यादा रियलाइज कराना कि तुम्हें कितना पेन हो रहा है देखो, या तुम लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, क्योंकि कई बार जो नहीं पीते वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, आपने उनको लेफ्ट आउट फील करवाया जो पीते हैं, है ना, तो उल्टा ये जैसे वो चाल,
3: वो बच्चे क्या जिसका दांत वो मतलब ऐसे खराब हो जाते हैं ना सब चीजें खाने से, तो क्या वो हंसते नहीं थे किसी के सामने, सारे बच्चे हंसते थे, तो ऐसे वो बच्चों की हरकतें होती है ना एक दूसरे को बोलने की, तो धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ भाई हमारा दांत खराब हो गया हम हंस नहीं सकते किसी के सामने, तो
1: खुद ही रियलाइज,
3: फिर उन्होंने पूछा भी दीदी हम क्या करें तो हमारा दांत साफ हो जाए, तो मैंने बोला पहले सब चीजें छोड़ दिया है, अब अपना अच्छी चीजें रोज सुबह उठो ब्रश करो नहा दो और बच्चों को और समझाओ, मतलब दीदी समझाना नहीं है हम भी आपकी तरह करेंगे,
1: सेम अभिमन्यु जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या तरीका आपको लगता है जो काम करता है जिससे लोग समझे, क्या हो सकता है ऐसा तरीका?
2: मैं तो इतना क्रिएटिव नहीं हूँ जितना ललिता बहन है, ठीक है, ऐसे क्रिएटिव तरीके मैं तो नहीं निकाल पाया, जब भी मेरा बच्चों के साथ डील करना होता है मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं एक चीज में मानता हूँ कि आप किसी को अगर आपको बुरी चीज से बचाना है तो उनको अच्छी चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित करो, ठीक है, तो मैं हमेशा मेरी कोशिश यही रही, अभी भी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो 23-24 साल के हो गए हैं, मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो भी क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, कॉलेज में ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।

0: था, 10th क्लास के बच्चे थे, तो मैं अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए कॉलेज में था तब से ही पढ़ा रहा हूँ।
1: पढ़ा
0: तो अब
1: लिया।
0: अभी भी वो मेरे से मिलते हैं, तो हमारी जनरली वो मेरे से कंफर्टेबल होते हैं राय लेने के लिए कि मैं आगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में उनको एक चीज समझाता था कि आपकी लाइफ में एक हमेशा एक नॉर्थ स्टार होना चाहिए। मैं अपने सारे दर्शकों को ये बात बोलना चाहूंगा, एक नॉर्थ स्टार का कॉन्सेप्ट आप जरूर, नॉर्थ स्टार क्या होता है, ध्रुव तारा अगर हिंदी में बात करें तो। ध्रुव तारा मतलब एक चीज जिस पे आप लाइफ में फोकस करना चाहो। क्या होता है ना कि जब जैसे घोड़े की रेस करी जाती है, तो जब उनको घोड़े जिसको जीतना होता है, घोड़े को जब रेस कराई जाती है, तो उनके आंखों के दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो सिर्फ सामने देखे। आजकल के साथ आजकल प्रॉब्लम यही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजी है। आप चारों तरफ देख पा रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज कर पा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे खोलते ही आपको कोई अच्छी चीज तो देखने को मिलती नहीं, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है।
1: बहुत
0: तो उस टाइम
1: मिलते
0: भी मैं
1: हैं।
0: बच्चों से यही बात करता था कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनको वो रियलाइज कराता था। तो ये जो भी हमारे दर्शक है उनको भी ये रियलाइज करना चाहिए कि लाइफ में उनके लिए सबसे बड़े सपने क्या है, उनके लिए सबसे बड़े ड्रीम्स क्या है। क्योंकि ये जो नशा है वो सबसे पहले आपसे आपकी आपके सपनों को ही छीनता है, ठीक है। क्योंकि जो नशे करने वाला व्यक्ति होता है वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता। तो ये चीज समझाने की मैं पूरी कोशिश करता था, उदाहरण देता था, ठीक है, उनसे पूछता था। कोई लोग बताते थे कि हमें दुनिया घूमनी है, तो मैं उनसे पूछता था दुनिया घूमने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कैसे कमाओगे, किस तरह की नौकरी करोगे। कोई कहता था मुझे स्पोर्ट्स में आगे जाना है, हरियाणा में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत है, तो उस तरह की फिजिक कैसे बनाओगे, कितनी एक्सरसाइज करनी होगी। तो एक नॉर्थ स्टार आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए जिस पे आपका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टाइम उस पे जाए, सबसे ज्यादा फोकस उस पे जाए, और उसके बीच में आपको कभी भी लाइफ में किसी चीज को नहीं आने देना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश रहती थी समझाने के लिए।
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अभिमन्यु जी, एंड सो राइट कि आपको एक लक्ष्य पता हो, उस तरफ जाना है तो उसके लिए, और फिर सेकंड स्टेप भी आपने ये पूछा ना कि जैसे ये तो करना चाहते हो, मेरा सपना तो ये, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो
0: ब्रेकडाउन
1: बता।
0: करना पड़ेगा आपको। आप जितना ब्रेकडाउन करोगे आपको समझ होएगा कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है। तो अब क्या हुआ, अब एकदम से आप किसी से बंद नहीं करा सकते। आप पहले उनसे बोलो भी कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चीजें ठीक है, जैसे अति सभी चीज की खराब है, तो लोग पहले अति से थोड़ा कम में आते हैं, ठीक है, तो कम से फिर वापस छोड़ देते, जैसे ललिता ने या फिर जगदीश भाई ने छुड़वाया है लोगों का, तो एकदम से किसी का नहीं छूटता, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो ऐसे लाइफ में आपको फोकस क्या है उस तरफ बढ़ो, और जो चीज है उसके साथ बीच में आती है उसको धीरे धीरे करके साथ में साइड में करते जाओ।
1: ये मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें रेडियो पे, कि आप उनसे पूछें कि उनका लक्ष्य क्या है और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ताकि वो रियलाइज हो कि मुझे जाना किस तरफ है, मेरा डायरेक्शन क्या है और क्या उस चीज़ के आड़े आ सकता है। और जैसे आपने कहा कि अगर कमज़ोर मन है या कमज़ोर, तो फिर वो कोई अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है, फिर वो तो
0: बिल्कुल
1: आपको स्ट्रांग होना ही है। जगदीश, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि और क्या तरीका होता है, मतलब बात करने का स्टूडेंट से, या फिर बच्चों की हम बात कर रहे हैं, क्या तरीका होता है जिससे उन्हें समझ में आए, जो प्रैक्टिकली उन पे काम करे, नशा गलत है, ये बात समझ में आए।
0: जी। उनको ना उनके आसपास में जो माहौल है या कुछ केस स्टडी है आसपास की जो हमने पता की है, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। इवन अगर मेरे पेरेंट्स का भी मैं बोलूंगा तो किसी बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, वो हमारी कम्युनिटी से नहीं है, मैं उनकी, बट उनके लोकल में अगर कोई ऐसा हुआ, कोई स्टोरी है या हमने पता किया, या हो सकता है हम नहीं जानते हो किसी इंसान को जिसकी डेथ हुई हो इस कारण से, तो स्टोरी हमें पता हो तो उन स्टोरी से उनको समझाना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना, और वो शायद उन लोगों से जरूर कनेक्ट करेंगे अपने आप को कि मुझे वो नहीं करना है जो मेरे अपनों ने किया है या मेरे मेरे मिलने वालों, मेरे चाहने वालों ने किया है, तो वो ज्यादा उनको कनेक्ट कर पाएगी। मैंने जो समझाया लोगों को और जिन लोगों ने छोड़ने की कोशिश की या जिन लोगों ने छोड़ दिया, मेरा यही तरीका रहता है कि मैं उनको उनकी लोकल स्टोरीज बताऊं, है ना, क्लियर बताऊं, क्योंकि जब पता है फील्ड में काम कर रहे हैं तो डर नहीं रहता है मेरे को कि मैं फला फला आदमी का नाम ले रहा हूँ या किसी लेडी का नाम ले रहा हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा भी हुआ कम्युनिटी में कि कोई लेडी है जो पता चला कि वो मायके जब जाती है अपने पियर में तो वहां पे दारू पीती है ना, तो ये पता चला उसकी बेटी से ही, है ना, तो फिर वो जब आए तो मैंने बात किया कि काकी आप मेरे पास काम तो करते हो, मैं आपको सिखाता भी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करो, है ना, आप उस पैसे को सही जगह लगाओ, है ना, सही यूज करो, तो आप ही पियेंगे और आपके बच्चे जानते हैं, तो बच्चे तो आज नहीं तो कल ट्राई तो करेंगे ना, आप रोक नहीं
1: बिल्कुल
0: सकते उनको। और क्यों पीना है, आप अच्छी चीजें खाओ, है ना, तो बोले कि नहीं हमारे तो घर पे ही बनता है, तो घर पे बनता है इसका मतलब घर पे किराने की दुकान है, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम सारा सामान खुद ही खाएंगे बेचेंगे नहीं, तो थोड़ा समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग अपनों पे आ जाते हैं कि हमारे घर बनता है तो पीने पियेंगे ना, आप कौन होते रोकने वाले, कि हम खरीद के थोड़ी ना पी रहे हैं ऐसा,
1: वैसे क्या क्या
0: तो
1: रीजन मिलते हैं ना उस
0: वही
1: चीज
0: कि
1: के लिए
0: पैसे
1: वो
0: की बात नहीं है यहाँ पे, पैसे से उस नशे को नहीं तोलना है, आप उस स्वास्थ्य से तोलो कि आपका स्वास्थ्य उससे गड़बड़ होगा, आपके बच्चों पे गलत बुरा असर पड़ेगा, आपके बच्चे आज नहीं तो कल चीजें करेंगे, तब आप रोक नहीं पाओगे, तब आपको बोलने का हक नहीं होगा कि ये गलत है ना, क्योंकि आपको करते हुए देख रहे हैं बच्चे।
1: दैट्स वंडरफुल. मुझे लगता है तीन अलग अलग रास्ते
0: तो
1: मिले यहाँ
0: अक्सर
1: पे
0: मैं उन कम्युनिटी से
1: इस चीज के.
0: परेशान रहता हूँ जिनके घर पे बनता है, और अक्सर वो लोग घर पे कोई भी जाता है तो वो फ्री में मतलब करते हैं, मेहमान जब भी उनके घर कोई चला गया और उनके घर पे अगर दारू बनी है तो सब करते ही करते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, सर्व किया है लोगों ने कि
1: करते ही
0: आप
1: हैं
0: गेस्ट हो, आप तो 5 साल बाद हमारे,
1: तो आपको पीना ही
0: 5 साल
1: है,
0: बाद हमारे घर पे आए तो पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, ऐसा
1: प्रेशर होता
0: अतिथि
1: है.
0: देवो
1: बिल्कुल
0: भव में वो शामिल किया गया उन्होंने।
1: गलत गलत कॉन्सेप्ट हो गया ये. बिल्कुल अतिथि देवो भवा में अभी हमारा बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है हमारी सोच में. और तीन अलग अलग रास्ते मिले. ललिता ने बताया कैसे जो लोग ऑलरेडी नशा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना फोमो कहा जाता है, जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं नहीं करता सब लोग करते हैं तो उसे ना लगे. वो प्रेशर बिल्ड आपने उस पे कर दिया जो नशा करता है, बाकी लोगों के सामने उसको लगने लगा कि नहीं मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों परेशानी हो रही है, एक तरीका. दूसरा, अभिमन्यु जी ने बताया बहुत इंटरेस्टिंग कि ध्रुव तारा होना चाहिए, एक आपकी जिंदगी में लक्ष्य होना ही चाहिए. वो क्या है और फिर वो कैसे अचीव करना है ताकि फोकस बदल जाए, उन चीजों से डिस्ट्रैक्शन से हट जाए. तीसरा, जगदीश ने बताया कि लोकल स्टोरीज, अपनी स्टोरीज
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है. अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं.
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.
5: अभी बजे हैं शाम के 6.

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आपने इट हैपेंस ओनली इन इंडिया ये गीत सुनने के बाद मैं मोना वापस आई हूँ और आपके लिए आज के उड़ान कार्यक्रम में दो बेहतरीन कुछ कहानी और प्यारी कविताएं जरूर लेकर आई हूँ, जहाँ चार मटके और चार भाइयों की किस्मत की कहानी है। पर उससे पहले जो भाई है या ब्रदरहुड है या भाईचारा है, विश्व बंधुत्व है, इस पर प्यारी सी कविता जरूर है, क्योंकि आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। भाईचारा या बंधुत्व, इसका मतलब होता है आपसी प्रेम, सहयोग और एक परिवार जैसी मजबूती की भावना। ऊंचे पर्वतों सा सीना ताने एक दूसरे के संग मिलकर खड़े हैं। आंधियों में भी जो झुक ना पाए, मुसीबत में वो चट्टानों से अड़े हैं। खून का रिश्ता ही बस नहीं होता, दिल के तारों का भी तो एक नाता है। प्यार, त्याग और सहयोग की भावना से ही तो भाईचारा जीवन में महकता है। हर जाति धर्म के उठकर ऊपर जब एक दूजे का हाथ थामते हैं, मिट जाती है नफरत की दीवारें सारी और खुशियों से सबके मन भर जाते हैं। और ये कविता के साथ साथ आज की कहानी चार मटके और चार भाइयों की किस्मत की कहानी।
1: बालकपुर गांव में रामनाथ नाम का एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि सच्चे विचारों वाला व्यक्ति था। वह मानता था कि इंसानियत और ईमानदारी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत के साथ बिताई। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, धन दौलत से नहीं। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रामनाथ के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। भगवान की कृपा से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके चार बेटे थे जिन्हें उसने बड़े प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पाला था। उनकी उम्र हो चुकी थी और उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की सताने लगी थी कि कहीं उनके जाने के बाद उनके बेटे जमीन जायदाद के लिए आपस में लड़ ना पड़े। एक दिन उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी।
2: मेरे जाने के बाद तुम लोग आपस में कभी मत लड़ना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना और मेरी बात याद रखना। मैंने तुम सबके लिए बहुत कुछ संभाल कर रखा है। तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस तुम सब साथ रहना, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना।
1: बेटे ये बात सुनकर भावुक हो जाते हैं।
3: पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
4: पिताजी, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे।
1: यह सुनकर रामनाथ हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं,
2: बेटा, कोई भी इंसान नियति को नहीं बदल सकता। जो लिखा होता है वही होता है। मुझे अपने जाने का डर नहीं है, बस चिंता है तो तुम्हारी। मेरे बाद तुम सब हमेशा एकजुट रहना। मैंने इस चारपाई के चारों पैरों के नीचे तुम चारों के लिए अलग अलग हिस्से रखे हैं। मेरे जाने के बाद तुम सब अपना अपना हिस्सा निकाल लेना।
1: कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रामनाथ फिर से अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। इस बार उनकी आवाज पहले से कमजोर थी। वो धीरे से कहते हैं,
2: बेटा, अब मेरा समय आ गया है।
1: यह सुनते ही बेटे घबरा जाते हैं।
4: पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा।
2: नहीं बेटा, ये सच्चाई है। हर इंसान को एक दिन जाना ही होता है और मेरी घड़ी अब पास आ चुकी है। इस चारपाई के चारों पैरों के नीचे मैंने तुम चारों के लिए अलग अलग हिस्से रखे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे आंखों के सामने तुम सब एक एक करके अपना अपना पैर चुन लो और मेरे मरने के बाद अपने पसंद के पैर के नीचे रखे हुए हिस्से को निकाल लेना।
3: पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए।
5: हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। भाई को भाई से जमीन जायदाद के लिए लड़ते देखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम लोग भी उसी राह पर चलो जहां दौलत के लिए अपने ही पराए बन जाते हैं। यही ठीक होगा कि मेरे जीते जी तुम सब अपने अपने पसंद का पैर चुन लो ताकि मैं सुकून से जा सकूं। श्याम सबसे छोटा है इसलिए वो सबसे पहले अपने पसंद का पैर चुनेगा। उसके बाद मनोहर तुम अपनी पसंद का पैर चुनना, फिर केशव की बारी होगी। और माधव तुम सबसे बड़े हो इसलिए मैंने तुम्हारे छोटे भाइयों को पहले चुनने का मौका दिया है।
3: पिताजी, आपने हमेशा हर फैसला सोच समझ कर ही लिया है, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी।
4: हम वैसे ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं।
2: बस बेटा, यही भरोसा बना रहे, जो भी तुम्हारे हिस्से में आए उसे स्वीकार करना। अब तुम सब अपनी अपनी पसंद का मेरी चारपाई का एक एक पैर चुन लो और मेरे मरने के बाद उसको निकाल लेना।
1: सब दुखी हो गए लेकिन रामनाथ की बात मानते हुए उन्होंने अपने अपने पसंद का चारपाई का पैर चुन लिया। कुछ ही देर बाद रामनाथ ने शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस ली। कुछ दिनों बाद घर का माहौल अब भी उदास था।
3: पिताजी को गए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन उनकी बातें आज भी कानों में गूंजती हैं।
6: हाँ भैया, हमें अब उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा।
3: अब समय आ गया है कि हम पिताजी की आखिरी बात भी पूरी करें और अपने अपने हिस्से को निकालें।
5: और जो भी हमें मिलेगा उसे हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे।
1: सब अपने अपने चुने हुए पैर के नीचे खुदाई करने लगते हैं।
4: अरे यहाँ तो एक मटका है।
5: मेरे पास भी यहाँ भी एक मटका मिला है मुझे भैया।
1: केशव और माधव को भी अपने अपने हिस्से में मटके मिल जाते हैं।
4: भैया, हम सबके लिए पिताजी ने चार मटके रखे हैं, इसमें जरूर कोई कीमती चीज होंगी।
3: हाँ, अब सब अपने अपने मटके खोलो और देखो क्या है उसमें।
1: चारों भाई एक साथ अपने अपने मटके खोलते हैं और देखते हैं।
3: ये क्या, इसमें तो मिट्टी भरी है।
1: माधव हैरान हो जाता है।
7: मेरे वाले में तो हड्डियां हैं।
5: यहाँ तो सोने चांदी के सिक्के हैं।
4: और मेरे मटके में हीरे जवाहरात हैं।
1: चारों भाई एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं।
4: ये सब क्या है, पिताजी ने हमें अलग अलग चीजें क्यों दी।
5: हाँ, हम दोनों को तो सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात दिए हैं, पिताजी ने ऐसा क्यों किया कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पिताजी ने ऐसा क्यों किया, ये कैसी पहेली है।
3: नहीं, पिताजी बिना वजह कुछ नहीं करते थे, इसके पीछे जरूर कोई गहरा मतलब है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है।
6: शायद वो हमें कुछ सिखाना चाहते थे,
4: शायद पिताजी से कोई भूल हो गई हो। भैया, आप दोनों हमारे हिस्से के हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के में से आधे आधे ले लीजिए, हमें इतना सब नहीं चाहिए।
1: चारों भाई वहीं खड़े सोच में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि रामनाथ के बेटों को चारपाई के नीचे अलग अलग मटके मिले हैं और उनमें क्या क्या निकला है। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे।
8: सुना तुमने, रामनाथ ने अपने बेटों के लिए कितना कुछ छुपा कर रखा था।
1: कुछ लोग मन ही मन उनसे जलते थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। गांव के मुखिया धन्नाराम से माधव और केशव मिलते हैं। केशव धन्नाराम को बंटवारे के बारे में सब बताता है, मटका, मिट्टी, हड्डियां।
9: अरे राम राम राम राम, अरे तुम दोनों के साथ तो बहुत गलत हुआ। हम तो रामनाथ को बहुत समझदार मानते थे लेकिन उन्होंने तो तुम्हारे साथ न्याय ही नहीं किया। ये तो गलत हुआ भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
6: पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा।
9: अरे एक तरफ तुम्हारे दो भाइयों को हीरे जवाहरात और सोने चांदी के सिक्के मिले और तुम्हें क्या मिला, मिट्टी और हड्डियां। तुम दोनों भोले हो।
1: दोनों भाई सोच में पड़ गए। वो आदमी आग में घी डालते हुए बोला,
9: साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे उन दोनों भाइयों ने जरूर तुम्हारे पिताजी को कुछ कहा होगा, तभी तो सारा कीमती हिस्सा उन्हें मिल गया। वो दिखते भोले हैं लेकिन हैं बड़े चालाक।
3: नहीं पिताजी ऐसे नहीं थे, मनोहर और श्याम।

0: हमसे बहुत प्यार करते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते।
1: अरे दुनिया देखी है मैंने, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, कोई भी इतना सीधा नहीं होता। बिना वजह कोई अपने ही बेटों के साथ ऐसा फर्क नहीं करता। तुम्हारे साथ तो साफ साफ धोखा हुआ है, बस तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है भाई कि दो बच्चों को सब दे दो और दो को मिट्टी हड्डी।
2: दोनों भाई चुप हो जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही गांव के कुछ और लोग भी बातें करने लगते हैं।
3: अरे माधव, तुम सबसे बड़े हो, फिर भी तुम्हें क्या मिला? बस यूं ही कुछ बेकार चीजें। तुम्हारे छोटे भाई को देखो, उसके पास कितना कीमती सामान है, और तुम दोनों को क्या मिला?
2: गांव में हर तरफ से ऐसी ही बातें होने लगीं, कोई सीधे तो कोई घुमा फिरा कर। चारों भाई अपने पिता के पुराने मित्र जो उनके बचपन से साथ थे उनके घर पहुंचते हैं।
4: आओ बेटा, तुम सबको देखकर तुम्हारे पिताजी याद आ गए।
5: काका, एक बात समझ में नहीं आ रही, पिताजी ने ऐसा बंटवारा क्यों किया?
4: सच कहूं बेटा, मुझे भी ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, रामनाथ जैसे इंसान कभी अन्याय नहीं कर सकते।
0: हाँ काका, यही बात हमें भी समझ नहीं आ रही। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। पिताजी हमेशा सोच समझकर ही फैसला लेते थे।
4: बेटा, कभी कभी बड़े लोग अपनी बात सीधे नहीं कहते।
2: चारों भाई सोच में थे कि आखिर इस बंटवारे का मतलब क्या है। वो चारों घर वापस आ जाते हैं।
5: हम जितना सोच रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, शायद हमें किसी समझदार व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए।
0: पिताजी के एक बहुत पुराने मित्र हैं।
6: हाँ, पिताजी अक्सर उनका जिक्र किया करते थे, कहते थे कि वो बहुत बुद्धिमान और दयालु हैं।
7: तो फिर हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, शायद वही हमें इसका सही अर्थ समझा सकें।
2: चारों भाई उनके घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही पहुँचते हैं तभी उन्हें पंडित जी की पत्नी दिखाई देती है।
0: काकी, हमें पंडित जी से मिलना है, हम रामनाथ के बेटे हैं, उनसे मिलने आए हैं, हम उनसे मिलकर एक समस्या का समाधान जानना चाहते हैं।
8: अच्छा, आओ आओ बेटा, अंदर आओ।
2: तभी पंडित जी आते हैं।
0: काका, हम अपने पिता रामनाथ के बेटे हैं, उनके जाने के बाद हमें एक बात समझ नहीं आ रही, इसलिए आए हैं।
9: ठीक है बेटा, आओ यहाँ बैठ जाओ। सब कहो बेटा, क्या बात है?
2: मनोहर सारी बात विस्तार से बता देता है, चारपाई, मटके और उनमें मिली अलग अलग चीजों के बारे में। सब सुनने के बाद पंडित हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं,
9: तुम्हारे पिता बहुत ही समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा, उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए।
5: काका, हम उनका पूरा आदर करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया।
7: दो भाइयों को हीरे जवाहरात और सोने चांदी के सिक्के मिले और दो भाइयों को मिट्टी और हड्डियां, इसका क्या अर्थ है?
9: उन्होंने सीधे सीधे नहीं बल्कि संकेतों में तुम्हें सब कुछ समझाया है। जिसे मिट्टी मिली है उसका मतलब है कि तुम्हें खेत खलिहान यानी पूरी जमीन का हिस्सा मिला है, और जिसे हड्डियां मिली हैं, उसका अर्थ है कि तुम्हें गौशाला, अस्तबल और पशुधन का हिस्सा मिला है, क्योंकि हड्डियां पशुओं का प्रतीक होती है।
2: पंडित की बात सुनकर चारों भाई सब कुछ समझ जाते हैं।
0: काका, अब हमें सब समझ आ गया, लेकिन पिताजी ने ऐसा तरीका क्यों अपनाया?
9: क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने ये सब सोच समझ कर ही किया था। उन्होंने मुझसे पहले ही इस बारे में चर्चा की थी और कहा था कि इस पहेली का हल तभी बताना जब चारों भाई एक साथ मेरे पास आए।
2: यह सुनकर श्याम हैरानी से पूछता है,
7: अगर हम में से कोई एक नहीं आता
9: तो मैं इस पहेली का हल कभी नहीं बताता। तुम्हारे पिता ये देखना चाहते थे कि अगर तुम में से किसी एक के पास धन की कमी हो जाए तो क्या बाकी भाई उसका साथ देंगे या नहीं। लेकिन तुम सब साथ आए, एक दूसरे का साथ दिया, यही तुम्हारे पिता की असली कमाई थी। एकता ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, बस यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी।
6: काका, सच में हमारे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे।
9: अब जाओ और अपने पिता की सीख के अनुसार मिलजुल कर रहो।
2: चारों भाई अब सब कुछ समझ जाते हैं।
0: काका, अब हमें समझ आ गया कि पिताजी ने जो किया वो क्यों किया, सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि एकता की सीख देकर गए हैं।
10: चैनल

0: लोगे तुम,
1: हर मुश्किल से विधाता निकालोगे हम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और दूसरी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन हर समस्या का समाधान जरूर होता है, पर इस कहानी से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रोड सेफ्टी के विषय पर पहले लेकर आते फिर आगे की कहानी आप तक पहुंचाते, क्योंकि आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी,
1: ये है नशे की कहानी।
2: पहला नशा, पहला खुमार,
1: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
2: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
1: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: पान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर परिस्थिति में परेशानी ही ढूंढ लेता था। अगर कोई काम थोड़ा मुश्किल होता तो वो पहले ही हार मान लेता। अगर कोई योजना उसके अनुसार नहीं चलती तो वो निराश हो जाता। अगर कोई उसे सलाह देता तो उसे लगता कि लोग उसकी परेशानियां समझ ही नहीं सकते। धीरे धीरे उसकी यह आदत दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती गई कि उसे हर जगह केवल मुश्किलें ही दिखाई देने लगी। एक दिन वो घर के बाहर उदास बैठा था, तभी एक बुजुर्ग कुम्हार वहां से गुजरे। उन्होंने सोनू को देखा और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सोनू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। हर दिन कोई न कोई नई समस्या सामने आ जाती है। कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी छोटी छोटी परेशानियां। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में केवल मुश्किलें ही हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर सच में ऐसा है तो कल सुबह मेरे साथ चलना, शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। अगली सुबह सोनू उनके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक शांत जंगल में पहुंचे। वहां एक छोटा पौधा था और थोड़ी दूरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। बुजुर्ग ने कहा, पहले इस छोटे पौधे को उखाड़ो। सोनू ने झुककर पौधे को पकड़ा और आसानी से उखाड़ दिया। फिर बुजुर्ग ने बरगद की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इस पेड़ को उखाड़ कर दिखाओ। सोनू हंस पड़ा और बोला, यह कैसे संभव है? इसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। दोनों बरगद की छाया में बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। बुजुर्ग बोले, जीवन में आने वाली समस्याएं हवा की तरह होती हैं। वे हर इंसान के जीवन में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति उन समस्याओं का सामना अलग तरीके से करता है।
3: सोनू ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, यह छोटा पौधा हल्की हवा में भी झुक सकता है क्योंकि इसकी जड़ें अभी कमजोर हैं, लेकिन ये बरगद बड़े से बड़े तूफान का सामना कर लेता है। क्या तुम जानते हो क्यों? सोनू ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, इंसान की जड़ें उसका धैर्य, उसका आत्मविश्वास और उसकी सोच होती हैं। जिस व्यक्ति की सोच मजबूत होती है वो कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। ये बातें सोनू के दिल में उतर गईं। उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहा था। वो चाहता था कि उसकी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन उसने कभी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की। उस दिन के बाद उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। अगले ही दिन जब उसे अतिरिक्त काम मिला तो पहले की तरह शिकायत करने के बजाय उसने उसे सीखने का अवसर समझा। कुछ दिनों बाद उसका एक काम बिगड़ गया। पहले वो घंटों तक दुखी रहता, लेकिन इस बार उसने शांति से अपनी गलती सुधारी और फिर से प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वो हर समस्या को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगा। हर चुनौती उसे कुछ नया सिखाने लगी।
4: समय बीतता गया। सोनू के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगा। उसके मित्रों ने भी उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। जो लड़का पहले हर समय शिकायत करता था वही अब मुश्किल समय में दूसरों को हिम्मत देने लगा। उसके माता पिता भी ये बदलाव देखकर खुश थे, लेकिन जीवन की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कई छोटे पौधे झुक गए और कुछ की शाखाएं भी टूट गईं। पूरा बगीचा अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। बारिश रुकने के बाद सोनू फिर उसी जंगल में पहुंचा। उसकी नजर फिर उस विशाल बरगद पर पड़ी। वो पहले की तरह मजबूती से खड़ा था। आंधी और बारिश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। उसे देखकर सोनू को बुजुर्ग की बातें याद आ गईं। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि जीवन का उद्देश्य समस्याओं से भागना नहीं है। जीवन का उद्देश्य इतना मजबूत बनना है कि समस्याएं हमें डरा न सकें। उसने मन ही मन कहा, जीवन की हर समस्या का एक सरल समाधान होता है। समाधान समस्या को खत्म करने में नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई भी समस्या हमें कमजोर न कर सके।
5: बिल्कुल सही क्या, कोई भी समस्या कमजोर न करे बल्कि समस्या का हल ही एक्चुअल अपने आप को उसके बदल में स्ट्रांग बनाना ही इसका हल है। अंधेरे के बाद वो कहते हैं कि सवेरा है, फिर भी विघ्नों ने

ये तो घेरा है। सूरज की किरणों का इंतजार करूं या अंधेरों की कालिक में अपनी रोशनी को खुद ढूंढ लूं। अंधेरों में मंजिल कुछ दिखाई तो नहीं देता, राह फिर भी चलती दिखती है। मैं सूरज की किरणों के सहारे का इंतजार करूं या राहों का बन हम सफर, मैं अपनी रोशनी कुछ खुद ही बनूं। सैकड़ों मिश्रित विचारों के झमघट जमघट हैं, सैकड़ों मिश्रित विचारों के जमघट हैं। लम्हों के बिताने की आहट तो सुनाई देती है, मैं लम्हों के गुजरने का इंतजार करूं या वक्त के उजाले से पहले मैं अपना रोशन दीपक खुद बनूं। हम शिव बाबा के लाल हैं और सदा शिव परमात्मा ज्योतिर्बिंदु हमारे साथ है। आत्मा बन उस परमात्मा को याद करते हैं और इस गीत को प्यार से सुनते हैं। सुनते रहें।

0: शिशु बाबा के लाल हैं। आगे एक और कहानी आपके लिए, एक गरीब ईमानदार इंसान की छोटी सी कहानी सिर्फ उड़ान में आपके लिए है।
1: एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे हरिया लकड़हारा कहकर पुकारते थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उसका गुजारा होता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। हरिया खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। ये देखिए देखिए, हरिया बाजार से लौट रहा है।
2: चलो अच्छा हुआ, लकड़ी का बोझ कम से कम सिर से उतरा। अब घर जाकर नहा कर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। शरीर की सारी थकान मिट जाएगी।

0: अरे अरे हरिया, लकड़ियाँ बेच कर आ रहे हो क्या? हाँ
1: हाँ भाई, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मैं तो खुद ही लाता हूँ और खुद ही खाता हूँ।
0: ये बताओ आज कमाई कैसी हुई?
1: वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, रोज की तरह आज भी मैंने 5 रुपए ही कमाए हैं, और ये 5 रुपए ही मेरे लिए बहुत है। उसी से चावल खरीदा है, घर जाकर उसे अच्छे से पकाकर खा लूंगा।
0: इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा?
1: और क्या चाहिए। नहीं भाई, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। बहुत खुश हूँ।
0: अरे ऐसे कहीं चलता है क्या? जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ना जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े।
1: वो जब आएगी तब देख लेंगे। बस थोड़ा कमाओ और थोड़ा खा लो।
0: अरे नहीं भाई, भविष्य के बारे में जो नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है।
1: जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। अब मैं घर चलता हूँ। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, जाकर कुछ पका के खा लेता हूँ।

0: बहुत रात हो गई है, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। और कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने भी तो जाना है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचना भी तो है। और उसके बाद उन पैसों से बाजार जाके अनाज खरीद कर लाना है। बाप रे बाप, बहुत काम है कल। नहीं, जल्दी से सो जाता हूँ।
1: अरे बाप रे, अब क्या करूं? मैं खाऊं या इधर उधर भागूं? अब तो बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। लगता है ये बारिश जल्दी रुकने नहीं वाली है। हाँ,
0: बारिश तो हो ही रही है। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। जो होगा वो कल सुबह देखा जाएगा।
1: हाँ, सो जाता हूँ, अभी सो जाता हूँ।

ये क्या मुसीबत है, पूरी रात बारिश होने के बाद भी ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। मेरे लकड़ी काटने का समय भी बीतता जा रहा है, पर इतनी भारी बारिश में मैं जाऊं कहां? उफ, ये तो मुश्किल में फंस गया मैं। लेकिन ऐसे घर में बैठ भी तो नहीं सकता हूँ। लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा, और घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। नहीं, पेट पे हाथ रख के सोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलकर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे सर पर एक छत्ती लग रहा है, अब वो भी टूट जाएगी। किस्मत ने पता नहीं क्या लिखा है, अगर कुछ अनाज जमा करके मैं रखता तो आज ऐसे बिना खाए यूं दिन नहीं बिताना पड़ता मुझे। ऊपर वाले मेरी हिफाजत करो, मुझे बचा लो।

चलो आखिरकार 3 दिनों के बाद ये भारी बारिश रुक ही गई। चलो आज जब धूप खिली ही है तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। चलो मैं जल्दी से जाकर लकड़ियाँ काट के आता हूँ। हाँ जल्दी जाता हूँ।

अरे अरे ये क्या, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यही बैठकर जरा आराम कर लूं। जरा बैठ जाता हूँ। नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो कैसे चलेगा? किसी भी तरह मुझे लकड़ियाँ काटनी ही पड़ेगी, वरना मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा। मैं देखता हूँ, जरा आगे जाकर देखता हूँ।

0: ये सब मेरी किस्मत का खेल है। कब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई सूखा पेड़ मिल जाए, पर यहाँ आसपास कोई सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है।
1: नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ।
1: हाँ, एक काम करता हूँ, उस नदी की तरफ जाता हूँ।
0: हाँ, मेरा मन कह रहा है,
1: मेरा मन मुझे पक्का कह रहा है कि उस नदी किनारे मुझे पेड़ मिल जाएगा। हाँ, जाता हूँ।

जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, वैसा ही। बड़े छोटे हर तरह के पेड़ हैं, नदी का किनारा पेड़ों से भरा पड़ा है। बस अब मैं अच्छा सा पेड़ देखकर काटना शुरू करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी। ये वाला, ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियाँ भी नीचे की तरफ झुकी हुई है, इसे काटने में आसानी होगी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं नहीं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ।

0: पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऊपर से पेड़ के चक्कर में इतनी दूर तक चलकर आया हूँ। पूरे शरीर में भूख के मारे मेरे शरीर में जैसे झनझनाहट हो रही है। नहीं, मुझे लगता है अब मुझे ठीक लगने लगा है। मैं देखता हूँ एक बार, कोशिश करके देखता हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से फिसल कर नदी में चली गई, और ये नदी का पानी भी बहुत गहरा है। मैं तो लुट गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? नहीं, पानी के नीचे कहीं नजर भी तो नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि वो नदी की गहराई में कहीं जाकर गिर गई है। हाय, ये क्या मुसीबत आन पड़ी मुझ पे। मैं तो ऐसे ही गरीब हूँ, और ऊपर से मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी मेरी कुल्हाड़ी, वो भी हाथों से फिसल कर नदी में गिर गई। मैं तो बर्बाद हो गया। हाय, अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मेरे पेट का गुजारा कैसे होगा? मुझे लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं मैं अब जिंदा कैसे बचूंगा। हे ऊपर वाले, ये आपने क्या किया?
1: क्या हुआ हरिया, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो?
0: ये क्या, आप कौन है? कौन है आप और कहाँ से आए हैं?
1: तुम मुझे नहीं पहचानते हो हरिया, मैं जल देवता हूँ, ये नदी ही मेरा घर है।
0: इसका मतलब आपने मेरी मन की बातें सुनी ही होगी, और आप समझ गए होंगे कि वो कुल्हाड़ी मेरे लिए कितनी कीमती है। अगर मुझे वो नहीं मिली तो बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा, मैं बहुत मुश्किल में।
1: ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी।
0: ये क्या, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये वाली मेरी नहीं है।
1: ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ये लो, ये जरूर तुम्हारी है।
0: नहीं, ये भी मेरी वाली नहीं है, ये तो सोने की है। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है वो।
1: ठीक है, इस बार कोई भूल नहीं होगी, जरा प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हारे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। क्यों हरिया, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? इसे ही ढूंढ रहे थे ना इतनी देर से?
0: हाँ, यही है, यही तो है, यही है मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी आप मुझे दे दीजिए।
1: ये लो, अब तो तुम खुश हो ना?
0: आप बहुत अच्छे हैं जल देवता, बहुत दयालु हैं आप। अब मैं फिर से लकड़ियाँ काट कर रोजगार कर पाऊंगा। रोजगार कर पाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ये क्या, जल देवता तो फिर से पानी में चले गए, कहीं उन्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? हाँ,
1: बिल्कुल नहीं हरिया, बल्कि मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो, ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी आज से तुम्हारी हुई।
0: लेकिन ये कैसे हो सकता है?
1: तुम गरीब होने के बावजूद भी सच्चे हो, ईमानदार हो, और ये इन्हीं गुणों का उपहार है।

0: चलो
1: अब मैं इन दोनों को सुनार के दुकान पर ले जाता हूँ। उपहार में मिली सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर लगता है कुछ पैसे जमा हो जाएंगे और खाना भी आ जाएगा। मुसीबत में वही पैसे और अनाज काम आएंगे।
2: अरे ये क्या मामला है? देख के तो लगता है कि जैसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ हैं। जाके पता लगाना ही पड़ेगा।

0: अरे क्या बात है हरिया, तुम ऐसे अचानक मेरे पास कैसे आ गए?
1: वो मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ जरूरी काम है आपसे। ये दोनों कुल्हाड़ी को बेचकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे क्या आप बता सकते हैं?
0: वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सारी कुल्हाड़ियाँ तुम्हें मिली कहाँ से?
1: वो दरअसल ऐसा हुआ कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और मैं बहुत रो रहा था। उसके बाद जल देवता बाहर आए और मुझे ये दोनों कुल्हाड़ी दी।
0: वाह, ये तो मजेदार बात है।
2: नहीं नहीं, अब आप ये सब छोड़िए
1: और इसे लेकर मुझे फटाफट इसके पैसे दीजिए।
3: मजा तो अब मैं चखाता हूँ। मैं भी ठीक इसी तरह उपाय करके जल देवता से सोने की कुल्हाड़ी हासिल करूंगा। जिसकी जरूरत थी वो मिल गई। इस लोहे की कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दूंगा।

0: ये हाँ, काम हो गया मेरा।
1: अब आगे का नाटक शुरू करता हूँ।

0: तरह से रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं जल देता हूँ।
1: आप कोई भी हो, कहीं भी रहे, इसमें मैं क्या करूँ? अगर ला सकते हैं तो वो कुल्हाड़ी ला दीजिए।
0: जरा ये देखो और बताओ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है?
2: हाँ हाँ, यही है, यही है, यही मेरी कुल्हाड़ी है।
0: अच्छा, पर तुम तो झूठ बोल रहे हो, और मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी।
1: अरे ये क्या हो गया, सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आके निकल गई। ओह नहीं नहीं, लगता है लालच का फल ऐसा ही होता है।
0: तो देखा आपने, लालच का फल कैसा होता है, इसलिए जीवन में हमेशा सत्य।
3: वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहूंगी गुड बाय। कुछ बेहतरीन कहानियों को पेश करने के बाद मैं मोना कहती हूँ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में नाम से कितना खुशबू आता है, क्योंकि अपना गांव और अपना अंचल, जिस गांव जिस अंचल में हम पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उस गांव और अंचल को हम कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि गांव को लेकर ही शहर बनता है और शहर को लेकर ही हमारा राष्ट्र और विश्व बनता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका साथ रूबरू होने के लिए किसी न किसी अंचल में जाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे कैसे, आज है 24 जून, यानी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य प्रशासिका कहेंगे तब भी अत्युक्ति होगी नहीं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा जिसको दादा लेखराज का नाम पे पहले जानते थे और उनका तत्वावधान में ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापना हुआ 1936 से, और उसका पूरा संचालन करने के लिए एक फीमेल जिसको मम्मा डे के नाम से प्रसिद्ध है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो जगदम्बा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कैसे मातेश्वरी सरस्वती बने और उनका पुरुषार्थ क्या रहा, आज सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इस दिन को मम्मा का जो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जिसको हम निक नेम में मम्मा कहते हैं, तो उनका जो विशेषता को धारण करके आगे बढ़ रहे, जग माता कहते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाप है और ये माँ है, तो माँ का जो अवदान माँ का जो पालना सब ये ब्रह्मा वस्त्र पालन करते, सिर्फ ब्रह्मा वस्त्र क्यों, आप भी जो सुन रहे हमारा श्रोता मित्र वो भी किस न किस रूप में ब्रह्मा का जो संतान ही है, क्योंकि सृष्टि का क्रिएटर ब्रह्मा बाबा है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मैंने आबूराज प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहुंचे जो कि पांडव भवन नाम से प्रसिद्ध, तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बारी बारी जो अनुभवी मम्मा का विशेषता को देखे हैं अनुभव किए उस आधार से आज आपका पास रखेंगे, वो कितना सीख लिए हैं और मम्मा को फॉलो किए मम्मा को जगदम्बा सरस्वती को, तो उसका अनुभव हम सुनेंगे। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर विनी बहन उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते श्रोता मित्र की तरफ से और खासकर हमारा रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से। दीदी आपको स्वागत करते हैं, हमें खुशी है क्योंकि मम्मा का जो विशेषता, आप भी तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं, सभी जगह में आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि एक दुनिया को एक जो आवश्यकता है, समय का जो मांग है, जो सीखे हमें, जो सीखे हम क्यों सबको सिखाए, तो ये चीज को लेकर आप बहुत स्पीकर आज हमें खुशी है, क्योंकि रेडियो मधुबन पहला बार हमारा साथ रूबरू हो रहे, क्योंकि कल्प पहले भी हुए थे आज भी हुए, कुछ नथिंग न्यू कहते जो ड्रामा बना हुआ उसको हम फॉलो करते, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा बारी बारी, सभी का आवाज आपको सुनने को मिलेगा। दीदी आपको स्वागत करते, आप अपना परिचय दीजिए, मैं दू तो कम होगा।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति दीदी।
1: डॉक्टर बी के बिनी
0: जी,
1: पीस एम्बेसडर ग्लोबल हॉस्पिटल में वेलबींग स्पिरिचुअल एंड पब्लिक रिलेशंस एडवाइजर हूँ
0: जी भैया,
1: लेकिन सबसे ज्यादा मेरा एक अनुभव जिसके साथ में मैं आज सबसे पहले
0: जी मैम,
1: हमारी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा माँ उनका शत शत दिल से नमन, मेरे पास शब्दों का अभाव है कि उस माँ का मैं कैसे धन्यवाद करूं, कैसे उस माँ को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माउंट आबू में पहली, मैं कहूं कि परिवार था, पहली बच्ची थी
0: जी।
1: 50 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मम्मा का पहली बार जब मैंने उनकी तस्वीर देखी
0: जी,
1: जो वो मेरे आंखों में उतर गई,
0: क्या बात,
1: उनकी दृष्टि, उनकी वाणी और उनकी सरलता, उनका मधुरता, उनका निश्चल भाव, उनकी सच्चाई और उनकी सफाई, वो उनके चेहरे से झलकती थी।
0: ओके।
1: और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैंने उनको देखा, क्योंकि मैं तो उस समय केवल 7 साल की थी,
0: सेवन इयर्स
1: की, तो उस समय वो तस्वीर मेरे आंखों में बिल्कुल बस गई और मैं ऐसा समझती हूँ कि वो मेरे लिए आदर्श रही मेरे जीवन में और हमेशा वो आदर्श रहेंगी, क्योंकि उनकी वाणी, उनका चेहरा, उनका व्यवहार
0: जी
1: इतना कुछ कह जाता है कि शायद उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, मैं समर्पित करती हूँ उनके लिए ये पंक्तियाँ। कहते हैं कि खुदा ने जब जन्नत बनाई,
0: क्या बात,
1: उसके मन में एक बात आई कि मैं सबके साथ न रह पाऊंगा, इसीलिए उसने माँ बनाई, इसीलिए उसने माँ बनाई।
0: क्या बात,
1: जगदम्बा माँ उन्होंने इसीलिए बनाई कि जगदम्बा माँ ने यज्ञ की पालना की, लेकिन वो गई नहीं। मैं तो यही समझती हूँ कि आज की पुण्यतिथि पर वो मौजूद है, वो हमारे साथ है, उनके शब्द कानों में गूंज रहे हैं कि करण करावन हार करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा, हम तो निभाते हैं अपना किरदार
0: जी।
1: जीना है तो ऐसा जीना कि हर क्षण ये अंतिम घड़ी, ये था उनका दिव्य अंतिम संदेश, ये है जीवन का सार।
0: क्या बात, तो श्रोता मित्र ग्रामवासियों, खासकर जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्वाइन नहीं किए उनको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज का देख सभी ब्रह्मा वस्त्र उसको पालन करते हैं, क्योंकि अव्यक्ति दिवस रूप में शरीर इस दिन शरीर छोड़े थे, तो हमेशा तो गांव और अंचल का मैं आवाज लेता था, मतलब आज इस अंचल का जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडवन आभुराज का आवाज भी आपको सुनने को मिल रहा है, ये भी हमारा कम्युनिटी रेडियो है, कम्युनिटी का सभी का भागीदारी इसमें मिलता है, तो आज हमें खुशी है मैम जैसे अपना बात को रखे है, और मम्मा माँ जो शब्द दिया उनका जो चेहरा, उनका जो व्यक्तित्व, उनका जो चेहरा में जो देखते हुए भले साकार में नहीं देखे होंगे, लेकिन उनका जो चित्र जो फोटो में देखकर इतना प्रभावित हुए, जब साकार होते उनको साकार जो मिले हैं तो उनसे भी हमें रूबरू कराएंगे, जो साकार में उनसे अंग संग रखकर पालना लिए हैं
1: जी।
0: माता का जो गोद में जो भावना होता है
1: जी।
0: और माँ तो माँ होता है, माँ का दर्जा तो कोई नहीं ले पाएंगे, इसलिए आज माँ शब्द, और आज भी हर स्कूल में हर जगह में सरस्वती को पूजा वंदन करते, हर स्कूल में वंदना करते प्रार्थना सत्र में, तो सरस्वती कैसे बने, वो सरस्वती जिसको हम भक्ति मार्ग में करते वही सरस्वती प्रैक्टिकल उनका ट्रेनिंग पीरियड था कलयुग का अंत में
1: जी।
0: ये कहना चाहेंगे दीदी, आप इसके बारे में थोड़ा आलोकपात कराइए हमारे श्रोता में, थोड़ा जानकारी मिले
1: जी। आपने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल में विद्यालयों में भी सरस्वती को विद्या की
0: देवी
1: कहते, विद्या ददाति विनयम संस्कृत का वाक्य है
0: जी,
1: कि विद्या जो है विनय सिखाती है, विनम्रता सिखाती है
0: जी।
1: ऐसी ही देवी सरस्वती माँ, हमारी मातेश्वरी मम्मा के जो शब्द थे वो बहुत मधुर होते थे, कभी किसी ने उनको ऊंची आवाज में बोलते हुए देखा ही नहीं, और वो जो बोलती थी वो मन में छप जाता था। मैंने उनके बहुत किस्से सुने हैं हमारे सीनियर से, और जो मेरे को बिल्कुल मन में हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं, उसमें एक बड़ी बात ये है कि कोई भी जब मम्मा के पास जाता था किसी की शिकायत लेके
0: जी जी,
1: तो मम्मा उस समय जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी रूप में आता था, लेकिन मम्मा उसको बहुत बहुत मीठी भावना से, मीठी दृष्टि से देखती थी, और उस समय वो जो व्यक्ति ने गलती की, जिनकी बात लेके आए उनके लिए उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया, तो इतने निश्चल भाव से जब वो सुनती थी, जो व्यक्ति उनके लिए कुछ किसी के लिए जो बात लेके जाता था, वो व्यक्ति उस समय जैसे कि कहें कि मूर्ति बन जाता कि आगे कहें क्या, क्योंकि मम्मा उनको मीठी दृष्टि देते हुए मधुरता से जिस तरह से सुनती थी, शांति से व्यक्ति अपनी खुद की भी गलती रियलाइज कर लेता था, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अपनी भी और दूसरे के प्रति शुभ भावना को जागृत करना, वो बहुत बड़ी बात थी। दूसरी जो आपने विद्या की देवी कहा, जैसे आप देखिए माँ का पहला शब्द माँ है
0: जी,
1: मधुरता, तो मधुरता विनम्रता ये अगर हम जीवन में शिक्षा का भी अर्थ है, पहले शिक्षा में है शिष्टाचार, दूसरा है क्षमा
0: जी,
1: तो वो शिष्टाचार और क्षमा की भी देवी थी, इसीलिए मम्मा जो थी वो हमेशा ही जो बाबा कहते थे उसका सबसे पहले अगर अध्ययन बनकर, क्योंकि एक वाक्य जो हमेशा हमें याद रहता है वो ये कि मम्मा जो एक बार गलती करती थी तो क्यों मम्मा सरस्वती क्यों बन गई, देवी का तो अभी भी उनकी पूजा हो रही है उनकी, लेकिन वो भविष्य में भी चाहे हम उसको कहे लक्ष्मी बने, राधा बने, जो भी रूप में हम उसको स्वीकार करें, वो क्यों बनी, वो एक बहुत बड़ी बात कि जो एक बार उन्होंने गलती की
0: दोबारा,
1: वो कहते थे कि जो उनको पता चल जाता था कि गलती, वो कभी दोबारा नहीं करती थी। ये अपने आप में मम्मा का बहुत बड़ा चरित्र था
0: जी जी।
1: और वो सच में अगर देखा जाए तो आज जो कहते हैं कि जो यादें हमारे मन में आ रही हैं, वो एक हमारे नारी शक्ति, हम ये कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसको कहते हैं लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड अगर है, तो प्रजापिता ब्रह्मा ने भी अगर उनको आगे रखा, बाबा ने भी उनको आगे रखा, तो वो एक लीडर थी
0: जी जी।
1: तो लीडर के रूप में सामने रही, तो इसीलिए जब लीडर इतना श्रेष्ठ,
0: ऑलराउंडर जिसको कहते हैं,
1: ऑलराउंडर कहीं माँ,
0: तो माँ भी है, लीडर भी है, और
1: प्रेरणा मार्गदर्शन, तो मैं तो यही कहूंगी कि आज के दिन में तो हमारा जो मस्तक है वो नतमस्तक हो रहा है, हमारे हमारे
0: तो जब व्यक्ति तो पर्सनालिटी बात करेंगे, जो भी एक बार देखा है अभी भी उसका फोटो जो देखे होंगे तो कितना चीज सीखने को मिलता
1: है, और शांति की संदेश देती थी वो, और कम शब्द जो भी
0: उनका पुरुषार्थ है, अभी इस जीवन में साकार में पुरुषार्थ किया,
1: पुरुषार्थ किया,
0: मैंने जैसे सरस्वती बनी
1: बनी
0: मातेश्वरी,
1: सरस्वती जो है जो शब्द निकालती है वो सिद्ध हो जाते
0: थे,
1: तो उनके भी एक एक शब्द जो उन्होंने निकाले, ज्ञान वीणा कहते हैं,
0: जैसे आज जो भक्ति मार्ग में मानते हैं सरस्वती को इतना मान्यता है
1: जी,
0: आपने जो बताया हम जो बात कर रहे हैं
1: जी,
0: उसी का पूर्व जन्म मैंने उसका पूर्व जो तैयारी
1: जी,
0: जो ट्रेनिंग लिए सरस्वती के लिए,
1: सरस्वती
0: ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, गर्ल यूनिवर्सिटी में
1: जी,
0: और गवर्नमेंट ऑफ गॉड,
1: हाँ बिल्कुल
0: कोई ने मैंने गाड़ी में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ गॉड,
1: गॉड
0: गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जैसे लिखते गाड़ी,
1: हाँ।
0: तो मैंने आश्चर्य हुआ, हाँ ये तो सही बात है
1: जी,
0: गवर्नमेंट भगवान का जो सरकार है उसमें वो पढ़ाई ट्रेनिंग लिए
1: जी बिल्कुल,
0: जैसे आज संगम युग जिसको कहते हैं, बाहर लोग तो समझ में भाई ये लोग सरस्वती ब्रह्मा विष्णु सब क्यों कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी
1: है, जरूरी है कि वो वर्तमान में उनका उस समय क्या जीवन रहा होगा, क्या उन्होंने अभ्यास किया, कम शब्दों में वो कितना बड़ा
0: जबकि 1964 में वो अव्यक्त हुए, सॉरी छोड़े
1: हुआ, आज के दिन अव्यक्त हुए वो,
0: आज का दिन में
1: तो देखिए
0: 1964
1: ना, तब से अब तक प्रेरणा दे रही,
0: प्रेरणा दे रही
1: हमारा आदर्श
0: बहन, जैसे आज हम मुरली क्लास में सुन रहे थे सभी बच्चों से, तो सभी हाथ में कोई देखा साकार में, तो दो तीन लोग अभी गिनती में रह गए
1: जी, दो तीन बहुत कम रह गए,
0: बहुत कम रह गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर को तो देखे होंगे सभी, बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन 64 और 69 में अंतर
1: हो गया,
0: तो आज अव्यक्त दिवस में उनको याद करने का ये लक्ष्य है, क्यों हम क्यों आप जो सुन रहे वो भी कुछ एक पॉइंट भी
1: प्रेरणा
0: ले, तो जीवन आप भी चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो
1: जी,
0: वो तो सृष्टि का जो आदि रचना किए ब्रह्मा का बच्चे है
1: जी,
0: अलौकिक और लौकिक
1: दोनों
0: माँ है,
1: माँ है बिल्कुल, माँ तो माँ ही है, माँ कैसी होती होगी,
0: फिर भी एक कुमारी
1: ओके माँ बनी, सबसे बड़ी बात ये
0: कैसे बनी,
1: बोर्डिंग का संभाला उन्होंने उस समय, और वास्तव में एक चीज मैं देखती हूँ जो मैं उनकी स्टोरी में कि मम्मा जब यंग आई थी जब स्कूल में पढ़ती
0: जी
1: थी तभी वो गिटार बजाती थी, वीणा जिसको कहें, और जब वो वीणा और ओम ध्वनि करती थी वीणा पर, तो वो उनकी उसकी वो आवाज देखा जाए तो सरस्वती की आवाज, और उसके बाद जब वो समर्पित हुई यानी वो बाबा के संपर्क में आई और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया धक्ष से, उनका रूप माँ का बन गया, तो कन्या से माँ बन गई, और माँ के गुण जो होते हैं वास्तव में
0: उनका लौकिक माँ भी उनको मम्मा
1: कहते थे, और उनके जीवन में वो दर्शते थे, दर्शन
0: उनसे भी बड़े भी उनको
1: माँ कहते थे,
0: जैसे हमारे दादी प्रकाश मणि सभी जितने सीनियर थे मम्मा से, तो ये भी एक
1: बहुत बड़ी बात है,
0: बड़ी बात उच्च स्टेज जिसको कहते हैं उनका
1: जीवन
0: सोच, मैंने
1: सोच से
0: जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी का जो सोच था
1: जी,
0: मैंने पहाड़ से भी ऊंचाई
1: बहुत ऊंची और फूलों जैसी कोमल,
0: क्या बात, तो इस गीत को हम सुनेंगे अभी लेते छोटा सा ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, खासकर आज स्पेशल डे इस पूरे विश्वविद्यालय का, क्योंकि यज्ञ माता और यज्ञ पिता तो नाम सुनते 8 जनवरी हमारा यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस अव्यक्त दिवस जो संपूर्ण रूप में संपन्न होकर अव्यक्त हुए, उस दिन को सारा विश्व में मनाते हैं, और यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जिसको सरस्वती नाम से पूरा आज भी गायन पूजन करते हैं, तो उनका आज अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस है। तो आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए डॉक्टर बिनी बहन को, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है और स्पिरिचुअल लीडर है, मम्मा जैसे लीडर थी उनको पद चिन्ह पर भी चल पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो जाते जाते लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: रेडियो मधुबन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर कार्यक्रम आप प्रस्तुत करते हैं उसके लिए सदा के लिए हृदय से धन्यवाद देती
0: जी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि आज हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम सुबह से शाम तक भिन्न भिन्न कार्यक्रम का माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहे। तो रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम के जरिए यानी मेरा गांव मेरांचल के तहत आज आपको पांडव भवन जो कि आबुराज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय से आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए कोई अपना व्यक्तित्व को भाषण का माध्यम से, अनुभव को कविता का माध्यम से और भिन्न भिन्न प्रकार के जो धारणा, सेवा और ज्ञान योग को अपना पास जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए उनको मौका मिल रहा है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ब्रह्मा कुमार विवेक भाई है जो कि एक कवि है। कवि को कौन नहीं जानता है, एक सेकंड में अपना भाव और भावना को कविता का माध्यम से जनहित में प्रसारण करते हैं। तो उनका अनुभव, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा को कैसे आत्मसात किए और जगदम्बा सरस्वती का जो ज्ञान को जो उनसे शिक्षा मिले उसको आज आपके पास रखने जा रहे कविता के माध्यम से। तो विवेक भाई आपको स्वागत करते हैं हमारा कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में और आज हम उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करते हैं जो कि प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है। तो उनके ज्ञान जो उनका धारणा को आज कविता के माध्यम से रखने जा रहे, तो आपको स्वागत करते हैं, लीजिए उनका।
1: ज्ञान की देवी माँ शारदे वरदानी बन डूबतों को तार दे, योग के बल से बनी योगेश्वरी कर्मेंद्रियों की विजेता राजेश्वरी, संकल्प और कर्म का ऊंचा बोध दिया, सूक्ष्मता से योगी जीवन पर शोध किया, अम्बा माँ बन तेरा प्यार से संभालना, सदा याद आएगी मम्मा आपके दिव्य पालना, आज याद आता है विश्व सेवा में आपका संपूर्ण समर्पण, आज श्रद्धा के फूल माँ जगदम्बा आपको अर्पण, आपको अर्पण, आपको अर्पण, ओम शांति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। कविता का माध्यम से आपने जो अनुभव किए, जो आत्मसात किए और ज्ञान योग धारणा का साथ विश्व हित में जैसे एक साधारण जीवन से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रथम प्रशासिका रूप में मानते हैं, जानते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज्ञान युक्त बातें, योग और धारणा सभी ब्रह्मावस्था ब्रह्मा कुमार कुमारियां अंग निभाते हैं। तो आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप से सजाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक अनुभव भी हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो किसको हम मामा कहते हैं उनका अंग संग साकार में पालना लिए हुए उनका भी व्यक्तित्व सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बाद आप सब सुन पा रहे स्पेशल दिन में खासकर मामा डे जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासिका कहते हैं उनका स्मृति दिवस के तहत आज सुनेंगे। अल्प विराम का बाद अनुभव को लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले लिंक में हम डॉक्टर बिनी ब्रह्मा कुमारी को सुने थे, मम्मा मम्मा कैसे बने। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आज खास दिन है क्योंकि यज्ञ माता यज्ञ पिता हम सुनते हैं और यज्ञ माता का आज पुण्य स्मृति दिवस है। सारा विश्व में आज माँ जगदम्बा सरस्वती को याद में सुबह से शाम तक अपना हर रोज तो याद करते, लेकिन आज स्पेशल पुण्यतिथि में सभी अपना दिल का उद्गार और ज्ञान मार्ग में हम सब चले हैं, तो ज्ञान आधार में हम उसको याद करते हैं। तो आज हमें खुशी और बहुत सीखने का दिन है और उनका प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ महान व्यक्तित्व कहे और बहुत पुराना सीनियर जो कि जिसका डे आज मना रहे हैं, मम्मा डे, जिसको मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती प्रथम एडमिनिस्ट्रेटर जो थे माता जगदम्बा सरस्वती का आज पुण्य स्मृति में आज हमारा भाई साहब को स्वागत करते हैं। ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई साहब को स्वागत करते हैं। बहुत सीनियर, सभी लोग जानते हैं जमुना प्रसाद भाई साहब को क्योंकि बहुत सीनियर मम्मा बाबा का पालना ले साकार में। अभी तो अलौकिक हम उसको देखते हैं, आकार में उसको अनुभव करते, लेकिन साकार पालना का अनुभवी का धनी ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई साहब को स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम को सजाएंगे और खासकर मम्मा दिवस क्यों मनाते हैं विद्यालय में, क्या विशेषता मम्मा एक ब्राह्मणी माने कुमारी होकर माँ कैसे बने, और भक्ति मार्ग में सरस्वती अभी भी पूजन गायन करते हैं तो कैसे वो सरस्वती और जगदम्बा सरस्वती में क्या पार्थक्य है, क्योंकि आप अनुभव की माँ सरस्वती का साकार पालना लिए। हम तो फोटो आज भी पूजा करते हैं, सभी संसार दुनिया पूजा करते हैं, गायन करते हैं।

0: थे, हर स्कूल में शारदा माँ को याद करते, लेकिन वो सरस्वती जो फोटो में आज पूजा कर रहे हैं, वो सरस्वती सरस्वती कैसे बने, क्या विशेषता लिए उनका, कैसे पाए, उसका ऊपर में थोड़ा बताएं, क्योंकि वो साकार ट्रेनिंग पीरियड माँ जगदम्बा सरस्वती को आप देखे हैं, उनका पालना भी लिए हैं, तो आप हम तो खुशी महसूस कर रहे, धन्य महसूस कर रहे, हम माँ जगदम्बा सरस्वती को साकार में नहीं देखे, लेकिन आप साकार में अंग संग लिए, तो ऐसे क्या विशेषता आपका जीवन में छाप आया, जो विशेषता आपका पास ग्रहण किए, जो आज आप यहाँ तक पहुँचे। भाई साहब आपका स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार में, आप ओम शांति।
1: ओम शांति। मैं पहले अपना थोड़ा परिचय देता हूँ। मेरा नाम जमुना प्रसाद है और मैं बहुत छोटेपन से ही
0: जी,
1: जब मैं लखनऊ में पढ़ता था और हमारी उम्र उस समय सिर्फ 13 बरस की थी, तब ये बाबा का ज्ञान लखनऊ में मुझे मिला।
0: कौन सा ईयर होगा
1: ये? उस समय 59-60 का ईयर था,
0: 1959-60।
1: और हमारे से पहले हमारे परिवार में हमारे चाचा जी, चाची जी, अंकल आंटी और हमारे फादर मदर, उनको ये ज्ञान मिला था। पहले चाचा जी को ही मिला है लखनऊ में, उनसे सारे परिवार में धीरे धीरे सैपलिंग लगती गई। तो चूंकि हम लखनऊ में थे, छोटे थे, बालिकाल अवस्था से पढ़ते भी थे, तो नेचुरल है बचपन में इतना रुचि तो नहीं रहता आध्यात्मिकता में। लेकिन 1960 में वहाँ एक शिवरात्रि पर बड़ा फंक्शन था जिसमें वहाँ चार दादियाँ थी, शांतामणि दादी, कृष्णी दादी, सती दादी, भगवती दादी। तो चारों दादियों का भाषण था फंक्शन में। उस दिन से लेकर के हम ये ज्ञान को पूरा सुनने लगे और रुचि लेने लगे, जिसको आज लगभग 66 ईयर हो गया। और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ऐसे तो उस समय का अनुभव बहुत लंबा है, लेकिन हमारे पिताजी की प्रेरणा से मधुबन में आने का हमें सौभाग्य मिला। हमसे पहले हमारी बड़ी बहन और हमसे छोटा भाई वो सरेंडर हुआ था,
0: वो
1: फिर हमने भी बाबा को लिखा था लेटर, तो बाबा ने हमको भी बुला लिया कि आ जाओ। और ये 20 जुलाई को मुझे मधुबन में 63 ईयर्स हो जाएगा बालिकाल से ही। वैसे तो मम्मा 61-62 में लखनऊ आई थी, कानपुर भी आई थी, लेकिन चूंकि इतना रुचि नहीं रहता था, इतना अंदर में ज्ञान की प्रकाशा नहीं थी कि मम्मा क्या है, मम्मा की वैल्यू क्या है, जिस कारण से मिलने में इतने रुचि रहे। हालांकि हमारे पिताजी खास मम्मा से मिलने गांव से आए थे लखनऊ, लेकिन वो समय तो बीत गया। फिर हम मधुबन आ गए बाबा के लिखने से, अर्थात बाबा ने मुझको लेटर लिख करके बुलाया। मैं नहीं समझता हूँ कि यज्ञ के इतिहास में कोई ऐसा होगा केस जो बाबा खुद
0: बुलाए,
1: किसी को लेटर लिख करके बुलाए।
0: बाबा ने भगवान स्वयं परमात्मा गॉड,
1: तब से वो लेटर भी मेरे पास रखा है। मैं मधुबन में ही रहता हूँ परमानेंट। यहाँ आया तो आज बाबा की बात तो नहीं चल रही है, वो जनवरी तो बीत गया। आज मम्मा की पुण्यतिथि है जिसको एनिवर्सरी कहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो भाई जी का जानने का विचार है कि मम्मा के साथ कैसे दिन बिताए। तो मेरे आने के बाद तो मम्मा लगभग 2 बरस यहाँ रही है, उसके बाद आप हुई थी 24 जून 1965 को।
0: ओ,
1: तो जी, और मम्मा साल में लगभग 6 मंथ टाइम टू टाइम, 2 मास मधुबन में और 2 मास टूर पर, कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, कभी साउथ, वेस्ट, ऐसे टर्न वाइज टूर करती थी। ज़्यादा
0: सेवार्थ
1: बाबा भेजते रहते थे, क्योंकि सभी लोग तो मधुबन नहीं पहुंच सकते थे, तो बाबा कहते थे जाओ तुम वहां ज्ञान की वर्षा करो। तो मम्मा जाती रहती थी वहाँ के लोकल क्लासेस में, सबको ज्ञान सुनाती थी। और मम्मा की विशेषता की थी कि मम्मा एक बात, एक पॉइंट जो लेती थी, भाई परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, सृष्टि चक्कर क्या है, हम आत्मा क्या है, हमारा इस सृष्टि चक्कर में क्या पार्ट है, हमारा क्या रोल है, परमात्मा आत्मा का संबंध क्या है। तो मामा एक ही पॉइंट लेती थी, बाबा का तो आप सुनते हैं मुरली में कि एक पॉइंट लिया दूसरी तीसरी सागर है, जैसे उछल खाता रहता सागर की बहुत लहरें चलती
0: तो ज्ञान का सागर है।
1: हाँ, तो बाबा सुनाते रहते एक ही मुरली में बहुत बातें बाबा सुना देते, ज्ञान की भी, योग की भी, धारणा की भी,
0: समझे
1: सेवा की, सब सुना देते हैं
0: जी।
1: और हम बच्चों की महिमा भी कर देंगे, हमारी कोई गलती होगी वो भी इनडायरेक्ट सुना देंगे, क्योंकि उसको हम सुन करके फिर अपने में परिवर्तन करें, इसलिए बाबा तो सब कुछ सुना देते थे। और बाबा वैसे भी बाबा पिता है, तो पिता की हैसियत से बाबा को सब पावर भी है। तो मम्मा जो है बाबा के कहने से सब जगह जाती थी, एक ही पॉइंट उठाती थी, समझो आज आत्मा की बात ली तो आत्मा का विस्तार सुनाएगी, आत्मा कैसे निराकार है, छोटी है, बिंदु है, उसमें कैसे संस्कार होते हैं, कैसे पार्ट भरा है, कैसे वो पार्ट प्ले करती है, फिर जब तक शरीर है तब तक आत्मा का पार्ट है, शरीर खत्म हो गया तो आत्मा का पार्ट भी चेंज हो गया, बदल हो गया, माना वहाँ स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद जब वो दूसरा शरीर ग्रहण करेगी तो फिर उसका, इस तरह से मम्मा सब बातों पर, सृष्टि चक्कर क्या है, या जैसे
0: आदि मध्य अंत,
1: पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि,
0: तत्व,
1: ये प्रकृति अनादि कैसे है। दुनिया कहती ना कि सब चीज अनादि है, परंपरा है, लेकिन सब कुछ अनादि परंपरा तो नहीं है, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, फिर नया जन्म होगा। तो ये सृष्टि, ये अर्थात जमीन जो है, पानी जो है, अग्नि जो है, चांद सूरज है, ये प्रकृति जो है, ये अनादि है, वो अपने स्टेजेज अनुसार सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, वो बात अलग है। तो मम्मा ऐसे करके सब जगह सुनाती थी, जिसको हम मम्मा की मुरली कहते थे, ज्ञान मुरली, ऐसे ही बाबा की ज्ञान मुरली होती है। दूसरी बात यह कि मम्मा अपने टाइम की पंक्चुअल थी। आज हम लोग कहते हैं ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पंक्चुअल थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने संस्कार को जैसा बना लेंगे, अपनी धारणा को जैसा बना लेंगे
0: जी,
1: वो बन जाता है। हमने देखा जानकी दादी यहाँ क्लास कराती थी, उनको एम दिया जाता था कि दादी 8 बजे क्लास पूरा होना है, तो वो 8:01 के पहले पहले ओम शांति करती थी, क्योंकि वो ब्रिटिश अर्थात लंदन में रह के आई थी, तो उनके अंदर वहाँ का संस्कार भरा हुआ था कि अगर हम लेट करेंगे तो वहाँ वाले इस चीज से खुश नहीं होंगे, तो अपने अंदर हाँ धारणा ऐसी रख लें। तो जानकी दादी भी ऐसे ही करती थी, ऐसे ही मम्मा। और दूसरी बात ये है, मम्मा जब क्लास में आती, ठंडी का दिन हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सीजन हो, कोई मौसम हो, 5:45 6:15 फिक्स था मम्मा क्लास में आ जाए डेली, जब तक इधर मधुबन में होती थी। आने के बाद 15 मिनट योग कराती, उसके बाद एक गीत बजता था जो मुरली में गीत आता है, फिर मम्मा की वाणी चालू होती थी, मम्मा अपना डिस्कोर्स चालू करती थी कोई भी पॉइंट पर, और मम्मा वो पॉइंट विस्तार से डिटेल में सुनाती थी। तो मम्मा की ये विशेषता कि जब बाबा आ जाते थे, या पुराने मकान में भी और नए हाल में भी, कभी भी
0: साकार
1: ब्रह्मा बाबा जब आ जाते थे, बाबा का भी टाइम फिक्स था 6:30 पे मॉर्निंग में डेली, तो मम्मा को फील होता था कि बाबा आ रहे हैं। पुराने मकान में तो दिख जाता था, नए हाल में दिखता नहीं था, लेकिन मम्मा को फील हो जाता था कि बाबा सामने आ गए, पैसेज में आ गए। उसी समय मम्मा की जितनी भी पॉइंट चली, डिस्कोर्स सुना दिया, एकदम से स्टॉप, माना जैसे कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, मम्मा वहीं कह देती थी अच्छा ओम शांति। कभी कभी बाबा कहते थे हाँ मम्मा सुनाओ क्या बोल रही हो, बाबा भी सुने मम्मा क्या सुनाती बच्चों को। तो मम्मा बहुत धीरे से, बहुत स्लो एंड स्वीट साउंड में कहती थी बाबा पूरा हो गया, बस उसके आगे मम्मा एक शब्द भी नहीं। आज हमको कोई कहे हाँ सुनाओ तो हम समझेंगे कि लोग मेरे लिए वंस मोर कर रहे हैं, तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर देंगे।
0: लेकिन वो नहीं
1: लेकिन
0: है
1: मम्मा में ये बात नहीं थी। स्टॉप मीन्स स्टॉप।
0: भाई साहब, इससे हमारा श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं, तो खासकर जो स्टॉप माने स्टॉप, मैंने बड़ा जैसे आ गया,
1: हाँ
0: आपका टीचर जब आते हैं वो उसको दे देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई आप आगे, आप इससे हमें क्या गुण सीखना चाहिए जो श्रोता।
1: इसे हमें ये गुण सीखना चाहिए कि एक कहावत है हिंदी में कि क्या सूरज के आगे दीपक जला रहे हो।
0: ओ
1: माना सूरज एक सूरज है,
0: जी
1: सन तो एक ही है ना, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो,
0: एक होता है,
1: एक ही सूरज से सारी दुनिया में रोशनी है। और
0: उसका आगे
1: अगर हम
0: दीपक,
1: एक बल्ब जला देंगे उसके आगे तो क्या लाइट बढ़ जाएगी।
0: क्या बात।
1: तो इसी तरह से हमें यह सीखना है कि मम्मा बाबा का इतना रिस्पेक्ट रखती थी। बाबा आ गए मीन्स हम छोटे हैं, हम दीपक समान हैं, वो ज्ञान सूर्य है। स्टॉप। ज्ञान चंद्रमा, मम्मा को ज्ञान चंद्रमा कहते हैं, लेकिन चांद भी सूरज की रोशनी से ही
0: रोशनी
1: चमकता है। अगर बीच में पृथ्वी आ गई तो चांद भी अंधेरा हो जाएगा। तो ज्ञान सूर्य से बाप मम्मा जो है अपने को चमकाती थी।
0: जैसे आपने बता रहे थे रोशनी, जैसे सूरज और चांद का।
1: तो ये तो मैंने बात बताई मम्मा के चमत्कारी व्यक्तित्व की।
0: बड़ा को
1: दूसरी बात, तो मम्मा में ये गुण था जैसे मुरली की मैं बात बता रहा था। तो मम्मा जब बाबा आ जाते तो एक तो मम्मा मुरली स्टॉप कर देती। दूसरा, मम्मा में ये बहुत अच्छा गुण था कि बाबा कुछ भी कहें, कोई सेवा बताएं, सर्विस बताएं, कहीं जाना
0: सीखे
1: है, कुछ स्थूल कार्य कराना है, या यज्ञ में कुछ करना है, किसको डायरेक्शन दिलाना है, कुछ भी हो, या कोई सेवा करानी है, तो मम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि ये कर लेंगे, हाँ बाबा कर लेंगे, या ये काम करवा देंगे। आज हम कहते हैं ठीक है कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, क्या
0: जी।
1: जल्दी है। लेकिन मम्मा तुरंत उसको इमीडिएट वो काम होना चाहिए वो करती थी।
0: मैंने एक्शन में
1: एक्शन
0: उनमें आ
1: में
0: जाते थे,
1: परफेक्ट, हाँ
0: परफेक्ट, ये इनका
1: किसी
0: विशेषता
1: बात की देर नहीं। तो इससे क्या है, एक्चुअल रहना, पंक्चुअल रहना, ओबीडियंट रहना, बाबा का
0: आज्ञाकारी
1: रिगार्ड रहना। और
0: रेस्पेक्ट।
1: जैसे बाबा मुरली में भी कहते ना कि हर कोई ये समझो कि बाबा अगर समझेंगे ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहा है तो
0: तब भी
1: आपको थोड़ा शक ही होगा कि बाबा है या शिव बाबा है।
0: जी,
1: हमेशा समझो बाप और दादा
0: डाल
1: है। ये ब्रह्मा भी मुरली विचार सागर मथन करके ज्ञान सुना सकता है,
0: शिव परमात्मा भी।
1: दादियां भी सब, उनमें थोड़ी शिव बाबा आता है, विचार करके ज्ञान सुनाती थी। मम्मा भी ऐसे ही सुनाती थी, बाबा का ज्ञान सुन के विचार सागर मथन करके फिर सुनाती। तो ऐसे ही बाबा को समझो कि बाप और
0: कभी भी
1: दादा
0: संशय
1: दोनों,
0: नहीं,
1: हाँ,
0: कभी
1: तो
0: डाउट
1: इसमें
0: नहीं,
1: किसी में
0: संशय,
1: किसी को डाउट नहीं आएगा।
0: ये भी इनका एक।
1: अभी थोड़ा दिन पहले ही मुरली में था कि ये यज्ञ है, बाबा तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की बातें सारी सुनाता, लेकिन यज्ञ को चलाने के लिए, कारोबार के लिए, फील्ड में देखभाल करने वाला, उसके लिए बाबा ने मामा को निमित्त बनाया। वैसे तो मामा भी कन्या थी, उसमें कोई शिव बाबा नहीं आता है, लेकिन
0: ठीक,
1: ये एक कोई बाबा का दिया हुआ गिफ्ट कहें, वरदान कहें, ब्लेसिंग कहें, क्योंकि ब्लेसिंग गिफ्ट वरदान
0: उसमें
1: कभी
0: तो
1: मांग कर नहीं मिलता
0: कितने
1: है।
0: स्टूडेंट थे मामा जो
1: तो
0: बने
1: उस
0: इस
1: समय
0: पर
1: तो
0: विश्वविद्यालय में,
1: यहाँ तो थोड़ा स्टाफ
0: उस समय
1: रहता
0: मन
1: था, हम जब आए तब 15-20 का स्टाफ था यहाँ, बस तो
0: जी, फिर
1: छोटा घर था, थोड़े
0: भी
1: थे।
0: मम्मा को सिलेक्शन
1: लेकिन
0: किया।
1: हाँ नहीं, मम्मा को तो बाबा ने पाकिस्तान से ही मुकर्रर किया था ना,
0: जी,
1: वहाँ तो 300 भाई बहन थे,
0: वहां
1: बहुत
0: से
1: बड़ा, वहाँ से ही ये
0: सिलेक्शन
1: मम्मा
0: कराया।
1: को ये टाइटल मम्मा मिला है, तो इसी आधार से मिला है।
0: जो
1: एक
0: परमात्मा
1: बात,
0: को पता है
1: हाँ ये सब ड्रामा में फिक्स है,
0: कितने कन्या
1: कुदरती
0: कितने
1: सब
0: माताएं
1: ये
0: बहन, उनका लौकी
1: नेचुरली
0: भी, ब्रह्मा का
1: रिपीट
0: लौकी
1: होता रहता है।
0: लड़की भी थी, ब्रह्मा बाबा का,
1: उसने लौकी को अलग किसी को बाबा नहीं,
0: नहीं
1: माना
0: बना। फिर जो टॉपर है,
1: तो
0: जो पढ़ाई में
1: बाबा
0: ज्ञान
1: को
0: योग,
1: मालूम था ज्ञान
0: जो
1: योग में,
0: में जो फास्ट आगे गए, तो उनको रखा है।
1: मैं एक बात बताऊं, क्लास के अंदर आप लोग मुरली में सुनते हैं याद प्यार, डेली मुरली में पढ़ते हैं सुनते हैं, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। तो उस समय सिस्टम था, बाबा और मम्मा जब एक साथ मधुबन में रहते थे तब एक सप्ताह बाबा याद प्यार देते थे। ये आज की किसी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को नहीं मालूम है, जो उस समय के होंगे उनको मालूम है बस, जिन्होंने बाबा मम्मा को एक साथ देखा है। और एक सप्ताह बाबा याद प्यार और एक सप्ताह मम्मा याद प्यार देती। तो बाबा का जब वीक पूरा हो जाता था संडे टू सैटरडे, तो जब बाबा रूम से आते थे क्लासरूम में, उस समय लच्छू दादी रास्ते में बाबा को रिमाइंड कर देती थी, बाबा आज से मम्मा का टर्न शुरू होगा। बाबा आके मुरली पूरी करते, अच्छा बस मुरली पूरी हुई, अच्छा हो, और इशारा करते मम्मा
0: आ जाते।
1: तो इतना कहते ही मम्मा को तो मालूम होता है, मम्मा कहती हाँ बाबा। तो हम लोगों में क्या आदत होती है कि नहीं नहीं बाबा, या जो हमारे से बड़ा बैठा होगा साथ में, हम कहेंगे नहीं नहीं आप ही याद प्यार दे दो ना, आप ही कंटिन्यू करो ना, आप तो मेरे से बड़े हैं, हम आपके आगे क्या है, मेरे बोलने से क्या होगा, हम क्या याद प्यार, ऐसे ऐसे कहानियां बैठ के करेंगे। बेस्ट ऑफ टाइम बेस्ट ऑफ रिगार्ड, ये भी डिसरिगार्ड हो गया। तो मम्मा क्या करती थी, बाबा ने इशारा किया और मम्मा कहती यस बस, और कुछ नहीं, हाँ हूँ नो ना, कैसे वैसे ऐसे वैसे नथिंग, समझा, हाँ हाँ बाबा बस,
0: जो भी बोले
1: कुछ
0: बस,
1: बोला बाबा ने हाँ बस, उनके लिए जैसे कि भगवान डायरेक्ट बोल रहा है, हाँ करती
0: हाँ जी,
1: और याद प्यार देती और नमस्ते करती। तो ये सब विशेषताएं मम्मा को आगे बढ़ाने में बहुत, क्या कहे, पीछे से कोई पुश करता है ना आगे बढ़ने के लिए, तो हिम्मत उमंग उत्साह आगे परफेक्ट होने के लिए, पास बीस आनर होने के लिए बहुत मदद किया है मम्मा को। और कुछ जो है नेचुरल गिफ्ट भी होती है,
0: और उनका विशेषता देखते हो, ये कर पाएगा कर पाएगी, उनको पता है।
1: जैसे
0: जैसे कोई बच्चा को नहीं दिए,
1: कोई बच्चा आज 98-99% लाता है, तो कुछ उसकी मेहनत है
0: और
1: कुछ उसके अंदर भरा हुआ संस्कार है जो उसको आगे बढ़ाता रहता है। उसको कोई कहे तुम क्या करेगा, आज कॉलेज नहीं जाओ, एक दिन नहीं जाओ, दो दिन नहीं जाओ, क्या करे, लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे जाना है। तो ऐसे करके मम्मा सबसे आगे गई, नंबर वन में गई।
0: इतना चीज भाई साहब का पास है, इतना सागर का ज्ञान को हम 40 मिनट में कैसे समा पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट एंड स्वीट में दिए, जो आवश्यकता है वो दिए, बहुत अच्छा लगा। और हमारा श्रोता मित्र बार बार सुन रहे होंगे बाबा शब्द, माँ शब्द, मम्मा शब्द, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, क्योंकि नानवी के जो ज्ञान में नहीं चलते, ओम शांति को जानते नहीं, तो उनको लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे हमारा भाई साहब, क्योंकि हमें पूरा बाबा ही हमारा दिल में, परमात्मा हम प्यार से बाबा कहते, इन गॉड फादर कहते, तो हम पिता को बाबा कहते प्यार से, भले हमारा बीके जो ज्ञान में चलते हैं उनको तो बाबा में बहुत लगन है, कोई उससे दिल से हटा नहीं पाएगा, कितने भी कोई मीडिया आए, लेकिन बाबा शब्द आएगा ही, क्योंकि बाबा मतलब हम प्यार से परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते, ईश्वर कहते, आला कहते। तो हमारा श्रोता मित्र जो सुन रहे इस पूरे इस इंटरनेट का माध्यम से, ऐप का माध्यम से, FM का माध्यम से, जो भी साधन मीडिया का सुन रहे, सभी को आज का दिन में कुछ जो हमारा भाई बहन आपके पास रखे अपने विचार को, उनका पद चिन्ह पर चल के आज यहाँ तक पहुँचे, और करण करावन हर तो परमात्मा, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, श्री बाबा, तो उनको भी धन्यवाद। क्या कहते जाते जाते भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगा आपको, और आज आपको सुन रहे हैं सभी,
1: हम सबको यही कहेंगे कि आज मामा को अव्यक्त हुए 61 ईयर्स हो गया, और फिर भी हम सभी मामा को भूले नहीं हैं। तो क्यों नहीं भूले, इसीलिए क्योंकि आज हम उनके शरीर को नहीं, लेकिन उनकी आत्मा में जो गुण थे, जिसको हम सभी आज तक भी फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसे ही हर एक भाई बहन बाबा के सभी बच्चे अपने में फॉलो करें और अपने जीवन को भी ऐसे ही जैसे आज 61st एनिवर्सरी मम्मा की हम मना रहे हैं, ऐसे ही हमारे जाने के बाद में दुनिया हमको भी याद करे, गुणों से याद करे, हमारे शरीरों से हमको नहीं याद करे, हमारे रूप से हमको याद नहीं करे, लेकिन हमारे अंदर क्या गुण है, क्या कर्म हमने किया है, माँ बाप को हमने कैसे फॉलो किया है, ऐसे आप सभी भी फॉलो करें, यही शुभ भावना सभी के लिए है हमारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को इतने सुंदर में, और एक अनुभव भी, इतने साल का अनुभव किसी से मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन आज पहला बार रेडियो कार्यक्रम में उनको स्वागत किया। और भाई साहब का जो हाँ जी का पार्ट, हाँ जी का, इतने व्यस्तता का समय में भी अपना समय दिए, ये हमारे लिए और हमारा श्रोता मित्र के लिए तो लॉटरी है, मैंने ज्ञान का खुराक है, क्योंकि ये ज्ञान हमेशा किसका पास नहीं है, और परमात्मा से जो डायरेक्ट साकार पालना लिए हुए हैं, ब्रह्मा बाबा जिसको आज फाउंडर कहते हैं ईश्वर विश्वविद्यालय 1936 से आज तक वो संस्था आज फलीभूत विशाल बटवृक्ष हो गया, और उसका पालना हम तो 2002 में ईश्वर ज्ञान को लाए, लेकिन आप तो कितने साल पहले 1950 तो उस समय तो आपको मिल गया था, तो जो भी है समय अनुसार सबको मिला, तो इस कार्यक्रम का माध्यम से, रेडियो माध्यम से आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आपको जब मम्मा समान दिव्य गुण में भरपूर होना है तो जरूर नजदीक सेवा केंद्र जो है ईश्वर विश्वविद्यालय का ब्रांचेज, जैसे हम ट्यूशन जाते हैं डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते, तो आसपास जहाँ भी आपको मिलेगा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर जाएंगे, निःशुल्क आपको ये ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मतलब समझ जो हमारा जीवन को अच्छा बना देता है। भक्ति तो बहुत की है, भक्ति का फल ज्ञान, ज्ञान का मतलब समझ, समझ का मतलब करना नहीं करना आपका हाथ में, क्योंकि हमें कोई उलाना ना दे जो हमें कोई बताया
1: नहीं।
0: इसी हिसाब से आपका पास हम रखें, कुछ भी इधर उधर होगा तो आप थोड़ा मेकअप कर देना, हमें दीजिए इजाजत, और भाई साहब को जमुना प्रसाद भाई साहब जो कि ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय का, जैसे आज मैं सुन रहा था जो परमात्मा का ज्ञान को, तो कौन कौन मम्मा जो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का अंग संग मैंने शरीर मैंने साकार रूप में व्यक्ति जो थे उस समय मिले, सिर्फ तीन का नाम आया भाई साहब, आपका नाम आया और शशि दीदी का, सिल्लू बहन का नाम आया, और कोई उठा नहीं, क्योंकि तब हम मुझे थोड़ा हमारा भी सौभाग्य होगा, हम तो साकार में अफसोस तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका पालना आज भी हमें आकर्षित, उनका चेहरा उनका व्यक्तित्व आज भी हमें बहुत आकर्षित करता, इसलिए तो हर विद्यालय में जहाँ शिक्षा अनुष्ठान में माँ सरस्वती का फोटो रखकर आज भी उनका महिमा गान करते, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, अच्छा धन्यवाद।

अभी बजे हैं शाम के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें। शाम

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की कैंड हो। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त केवल, और आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ दोस्तों, नई शाम, नया दिन, आज तारीख 24 जून, 6 महीने 2025 के ख़त्म होने वाले हैं, और हम यहीं आपके साथ इसी तरह खुशियों की, नगमों की बातें कर रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम 2 दिन से कुछ ऐसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, जहां हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पानी बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज बातें होगी सिर्फ खुशियों की, सिर्फ खुशी बांटेंगे, खुशी के नगमे सुनेंगे, और आपकी खुशियों की ऐसी ऐसी फरमाइशें आएगी जो हम आपके लिए प्ले करेंगे और आपको सुनाएंगे आपके पसंदीदा गाने। जी हाँ दोस्तों, चलिए वक्त है आज आपके लिए पहला गाना शो पे प्ले करने का, और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो भी गाने हैं आज आप हमें फरमाइश के रूप में जो भी आप सुनाएंगे, ऐसे अच्छे से खुशी वाले नगमे सुनाएं जिसे हम आपके लिए प्ले कर सकें। चलिए बढ़ते हैं पहले नगमे की ओर, और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा नगमा।

0: वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही प्यारा नगमा अभी हमने सुना। जब हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे कोई खास दोस्त हो या फिर हमारा वो खुदा, जब उनका प्यार हमें इस तरह से घेर लेता है तो दिल का एक अजीब सी कश्मकश में आ जाता है। दिल सोचता है कि सामने वाले ने हमें इतना कुछ दिया, बदले में हम उसे क्या दें, हमारी तो कोई औकात ही नहीं। साल 1970 में आई एक फिल्म तर्पण। इस फिल्म में आनंद बख्शी साहब ने ऐसे ही जज्बातों को पिरोकर एक गीत लिखा था, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत से सजाया। इस गाने के बोल जब रफी साहब और लता जी की आवाज में हमारे कानों में घुलते हैं तो रूह कांप उठती है। चलिए दोस्तों, अब ये हमारे कॉलर हमसे जुड़े, पहले करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: नमस्कार बाबूजी।
0: नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं आप?
1: बाबूजी बात ही मत पूछो, आजकल तो मजे ही मजे लिखे हुए हमारे किस्मत में। क्या भगवान ने हमारे को ही अच्छा लग दे रहा है, फिर आपको ही दे रहा है, क्या मालूम।
0: क्या बात
1: समय
0: है,
1: पे, समय पे आप ही आ जाते हो, समय पे हम भी आ जाते हो, पहला कॉलर नहीं बन जाता।
0: अरे वाह क्या बात है, सही में सबसे पहले कॉलर आप ही बन जाते, वाह वाह।
1: इसलिए एक फिल्म है।
0: हाँ जी।
1: एक जादू,
0: क्या नाम है फिल्म का?
1: एक सपेरा एक लुटेरा, एक सपेरा एक लुटेरा।
0: हाँ,
1: फिल्म का नाम ये है, गाना है बड़ा मस्त।
0: हाँ जी।
1: हम तुमसे जुदा हो के रो मर जाएंगे रो रो के, दुनिया बड़ी जालिम है, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के,
0: लेकिन
1: दुनिया है बड़ी जालिम। क्या कहना है,
0: क्या कहना है
1: आपके साथ में ऐसे को छोड़ करके हमारे को आनंद आनंद मन में जाए।
0: लेकिन लेकिन मेरा ये कहना है बुरीलाल जी, आज हम गाना खुशी के गा रहे और आप रोने की बात लगा रहे कि मर जाएंगे
1: रो रो के। रोना क्या, खुशी क्यों रोना है, मर जिंदगी रोना है।
0: चलिए कोई और भी गाना है क्या आज आपके खुशी के लिए कि हमको ऐसा खुशी कर।
1: बहुत सारे गाने हैं, आप कहो तो दूसरा गाना दे दो,
0: दूसरा भी सुना दीजिए। चलिए।
1: हाँ हाँ, क्या कहे हैं आपके साथ में हमारे को रह करके बढ़िया बढ़िया गाने सुन करके मजे लेंगे हम आपके साथ में।
0: बिल्कुल
1: मजा नहीं लेगा तो मजा कैसे आएगा ये बताओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा।
1: मैं तेरे हाथों में पहला से सुन लिया,
0: मैं तेरे हाथों में,
1: मेरे हाथों में पहना से सुन लिया।
0: मेरे हाथों में पहना के चूड़िया, ऐसा कुछ गाना है।
1: हाँ ऐसा गाना है, जालिम दिश में गा, फिल्म में गाना जालिम दिश है।
0: अच्छा चले कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम आपके लिए ये गाना प्ले करें। और बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके लिए आज गाना प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है ठीक है, धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: यहाँ दोस्तों जो हम ये बात कर रहे थे कि जब गाने की बात हो रही है और खुशी के नगमे की बात हो रही है, तो हम शाम को अपने खुशी के दिल को बनाने के लिए बैठे हैं तो ऐसे कुछ खुशी के गाने बजाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही प्यारा हमें अभी एक गाना सजेस्ट किया है, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया। चलिए कोशिश करते हैं कि हम उनको ये गाना सुनाएं, लेकिन उससे पहले जब हम ये बात कर रहे थे प्यार की, अभी की गाने की, तो गाने की कुछ बोल से मेरी कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। तेरे प्यार का क्या जवाब दूँ, मुझे खुद समझ में ना आए। चलिए कॉलर है हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, बुराराम जी कैसे हैं आप? जी आपका आवाज़ नहीं आ रहा है बुराराम जी, शायद फ़ोन कट गया है, वापस से कॉल लगाएंगे बुराराम जी। और हम बात कर रहे थे गाने के बारे में, तेरे प्यार का क्या जवाब दूँ, मुझे खुद समझ में ना आए, तुझे दिल की धड़कन में रख लूँ या इन आँखों में छुपा लूँ। ज़रा सोचिए, जब खुद की या किसी अपने की रहमत पर, रहमत हम पर बरसती है, खुदा की रहमत हम पर बरसती है, तो हम यही सोचते हैं कि इस पार का क्या संभाल कर रखूँ। आंखों में रखूं तो आंसू बनकर बह ना जाए, दिल में रखूं तो धड़कन बनकर की शोर मचाए। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, सुनते हैं प्यारा सा ये नगमा और फिर करते ढेर सारी बातें। तब तक शायद बुराराम जी के आ गया कॉल, हम सोच ही रहे थे बुराराम जी का कॉल आने के लिए और आ गया। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी, मेरे खाते में तना मेज बंजारा ले गया, मेज बंजारा ले गया, ये गाना सर
0: जी। बिल्कुल, चलिए आज आपके लिए ये गाना हम कोशिश करते प्ले करने के लिए, तेरे हाथों में पहना के। चलिए
1: धन्यवाद सर, सभी को प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। तो ये थे हमारे भूरीलाल जी, इन्होंने गाने के बोल को ठीक करके और हमें फिर से बताया है। और चलिए तब तक हम बजाते हैं अगला ये नगमा और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: वेलकम बैक दोस्तों। अभी अभी हम फिल्म दर्पण के इस रूहानी नगमे में खोए हुए थे, जहां दिल कह रहा था कि तुझे दिल की धड़कन में रख लूं या आंखों में छुपाए। सचमुच मोहब्बत जब मुकम्मल होती है तो ज़िंदगी का हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ उसी एक मंजिल की तरफ मुड़ जाता है। चलिए दोस्तों, मुड़ने से पहले हमारे कॉलर से हम बात करते हैं। हमारे कॉलर आज हमसे जुड़े हैं। हेलो।
1: हाँ, बुरा राम बोल रहा हूँ।
0: जी, कोई बात नहीं बुरा जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बस आपकी

0: फिर से आपका आवाज़ कट गया, नेटवर्क आपका शायद आज ठीक नहीं है बुरा जी, कोशिश कीजिए आप फिर से हमें कॉल करने की, शायद आज आपका नेटवर्क ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, लेकिन फिर से आप हमें ट्राई कर सकते हैं, हमें कॉल लगाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए तब तक दोस्तों बात ये कर रहा था कि उसे एक मंजिल की तरफ मुड़ जाता है, इन शब्दों की गहराई जो अभी हमने गाना सुना को अपने दिल में उतरते हैं, चलिए सुनते हैं जो अभी हमने सुना गाना। जिस गली में तेरा घर ना हो बालम, उस गली में अब तो हमें गुजरना नहीं, क्या ऊंचे दर्जे के समर्पण है। आज के इस दौर में जहां लोग हर मोड़ पर रास्ता बदल लेते हैं, वहीं ये गीत हमें सिखाता है कि सच्ची चाहत क्या होती है। जब आप किसी से निश्चल प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या फिर ईश्वर की शक्ति, तब हर उस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद हमारे भूरा राम जी ने फिर से हमें कॉल किया, चलिए कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हेलो, शायद नेटवर्क ठीक नहीं है आज आपका, बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है।
1: हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है, और सब भाइयों को और आपको सबको मेरा राम राम है, और सबको ये और एक गाने की फरमाइश है।
0: जी बिल्कुल सर,
1: तो सुनाएंगे। अच्छा, पवन का महीना पवन करे चोर, चोर ने बाबा चोर दियारा रे झूमे ऐसे ऐसे बनमाना तिमोर, ऐसा सुनाएंगे तो अच्छा करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर से कोशिश करेंगे बुराराम जी, आपके लिए आज ये गाना सुनाया, बिकॉज सावन वैसे भी शुरू हो चुका है, और सावन के महीने में जब पवन शोर करता है तो दिल के अंदर के तार बजने लगते हैं, जरूर से कोशिश करेंगे बुराराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए हमें।
1: ओके सर, ओके
0: जी। हाँ, तो ये थे हमारे बुराराम जी, और आखिरकार इनका हमें जो कॉल लगाना था वो लग गया है, और चलिए कोशिश करेंगे इनके लिए उनका प्यारा सा नगमा हम आप सभी के लिए सुनाए। लेकिन जी हाँ, हम जो बात कर रहे थे इस वक्त, क्या ऊंचे दर्जे का समर्पण है ना, ये गीत हमें सिखाता है कि सच्ची चाहत क्या होती है। जब आप किसी से निश्चल प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या फिर ईश्वर शक्ति, तो आप हर उस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपको उनसे दूर ले जाते हैं। दिल कहता है कि अगर वो मंजिल ही सामने नहीं तो उन रास्तों पर चलने का भला फ़ायदा ही क्या। दोस्तों, अभी तक हम और आपने रास्तों और मंजिलों की रूहानी बातों में खोए हुए थे, लेकिन अब जनाब ज़िंदगी सिर्फ ठहरने का नाम नहीं, ज़िंदगी नाम है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा सजने संवरने का, और कभी कभी बिना बात के भी पैर थिरकने का। तो चलिए माहौल को थोड़ा लाइट हार्टेड बनाते हैं, गाना सुनते हैं जो हमारे भूरीलाल जी ने हमें सजेस्ट किया था, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया। चले उनका ये फरमाइश उनको सुनाते हैं, और फिर करते हैं इस गाने के बारे में ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने गाना सुना जानी दुश्मन मूवी का, ये गाना तेरे हाथों में पहना के चुने, दोस्तों इस गाने के बोल को सुनिए। एक तरफ रफ़ी जी कह रहे हैं कि चूड़ियाँ पहनकर बंजारा मौज ले गया, और दूसरी तरफ आनंद बख्शी जी की शायरी में हमारी प्यारी सी आशा जी पलट कर कितना

0: वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो, गाओ झूम झूम के, नाचो झूम झूम के।
1: खुशी की वो रात आ गई है। चलिए बहुत अच्छी बात, आज हम शाम के वैसे भी खुशियों की बात कर रहे हैं, काफी दिनों से खुशी खुशी करने की बात कर रहे हैं, खुशी के
0: चलो
1: नगमे हैं, तो खुशियों के गाने
0: खुशी
1: तो
0: का
1: जरूर
0: ही
1: सुनेंगे।
0: गाना, इसीलिए तो मैंने खुशी का गाना ढूंढ के दिया है कि खुशी का, चलो खुशी का गाना हो जाए तो सबको
1: बिल्कुल
0: खुशी भी मिल जाए।
1: बिल्कुल, तो अभी
0: ठीक है
1: आपको
0: सर।
1: रेडियो पे ठीक से सुनाई दे रहा है?
0: हाँ बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही।
1: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
0: ठीक, नमस्ते सर।
1: नमस्कार सुरेश जी। जी हाँ दोस्तों, तो हम खुशी की बात करते हैं और शायद फिर से किसी कॉलर का कॉल है, देखते हैं। नहीं है, शायद है कॉलर का कॉल है, सुनते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो, शायद उनकी तरफ से फ़ोन डिस्कनेक्ट। सुरेश जी आपकी तरफ से शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, इस वजह से शायद फिर से आपका कॉल चालू था, बट कोई बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो हम क्या बात कर रहे थे? जी हाँ, हम बात कर रहे थे इस गाने के बारे में कि अभी अभी जो हमने गाना सुना, जहाँ पे आनंद बख्शी साहब और रफ़ी साहब और आशा जी ने जो बातें की, यानी जब दिल ही दे दिया तो बाकी बचा ही क्या है। ये जो बेफिक्री और मोहब्बत का आलम है ना दोस्तों, ये आजकल के फास्ट फॉरवर्ड गाने में कहाँ मिलता है। ये मज़े तो बस 50s, 70s और 80s के उसी गोल्डन एरा में था, जहाँ हर एक शब्द सीधा दिल के पार निकल जाता था। वैसे आपके घर में भी जब चूड़ियों की खनक गूंजती है, तो क्या आपका भी दिल ऐसे ही गुनगुनाता है, या फिर आपका ध्यान भी उसी बंजारे की तरह बस मौज मस्ती में रहता है? चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, फिर बढ़ते अगले नगमे की ओर। जो हमारा अगला नगमा था, ये हमें पेश किया था हमारे बुरा राम जी ने, किस गाना है सावन का महीना। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सावन का महीना पवन करे शोर,

बिल्कुल सही। जब सावन की पहली बारिश होती है और धूप छाओं का मौसम बनता है, तो आज भी हम सब का जियर आ रे ऐसे ही झूम उठता है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, है ना दोस्तों। दोस्तों अभी जो हमने नगमा हमने सुना फिल्म मिलन का, इस गाने की बात ही कुछ अलग है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, आनंद बख्शी साहब के बोल और मुकेश जी के साथ लता मंगेशकर जी की वो जोरदार, बिल्कुल ज़ोरदार आवाज़ की अगर हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ोरदार आवाज़ पर इस गाने में एक बड़ा ही मस्त और मौसम सा मूड है, जो आप जो मुझे बड़ा बेहद पसंद है। शायद आप लोगों ने भी उस पर ध्यान दिया हो, जब मुकेश जी गाते हैं, यानी कि सुनील दत्त जी कब जब करते हैं गाते हैं जियर अरे सावन का महीना पवन करे शोर, और लता जी उन्हें टोकते हुए प्यार से सिखाती है शोर नहीं शोर शोर, तो मुकेश जी फिर से अपनी मीठी धुन में बोलते हैं अरे पवन करे शोर। हाँ हाँ, ये जो छोटी छोटी मासी में तो नोक झोंक होता है दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी के असली रंग देती है। दोस्तों इसमें एक और सेंटेंस है जहाँ लिखते हैं कि जिनके बलम बैरी गए है विदेशवा। अब इसमें भी जो वर्ड यूज़ हुए विदेशवा, नॉट विदेश या विदेशवा, वी नहीं विदेशवा, जैसे है ना जहाँ बी यूज़ होता है, लाई है जैसे उनके प्यार का संदेश हुआ, है ना दोस्तों। जब कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कुछ सावन का महीना आता है और हम सोचते हैं कि हमारे जो दूर रहने वाले दोस्त हैं उनका भी कोई संदेश आ जाए और हम फिर मिल करके कोई ऐसी प्लानिंग करें। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कहीं होता है, जब बारिश का मौसम शुरू होता है यहाँ पे आबू रोड में और हम सब वेट करते कि हमारे जो पुराने दोस्त है यहाँ आए और हम ऐसे किसी झरनों पे चले जाए नहाने धोने के लिए, तैरने के लिए और सावन का मजे ले, बारिश की मजे ले। तो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है तो आप हमें ज़रूर से कॉल करके हमारे साथ आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आपको पता है कॉल किस पे करना है, 9414151415, यानी कि 9414151415 पे आप हमें कॉल करके अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली मोड़ की ओर। जो अगला गाना है हमारे सुरेश जी ने हमें फरमाइश दी थी, खुशी की वो रात आ गई है। बिल्कुल दोस्तों आज वो खुशी की रात आ गई है और सुनते हैं प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

0: आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

वेलकम बैक दोस्तों। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, मजरूल सुल्तानपुरी साहब का ये बेमिसाल बोल, और मुकेश जी, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का वो जादू। जब जिंदगी में ढेर सारी परेशानियों के बाद खुशी का पल आता है तो इंसान सब भूल कर नाच उठता है। यहाँ दोस्तों, अभी जो हमने गाना सुना, ऐसे ही खुशियों की बातों को लेकर के ये गाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। एक और खुशी भरा नाचने गाने वाला गाना है, जहाँ लोग कहते हैं जेंटलमैन जेंटलमैन। जब कोई किसी को कुछ मिल जाता है, कुछ बन जाता है, तो कहते हैं जेंटलमैन। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

0: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
1: अरे 1 2 3 4
0: मैं कहती हूँ
2: 1 2 3 4
1: अरे इधर डाबरा के आबरा
3: बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
0: कॉफी यस व्हाट वाटर सैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग फटे

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

वेलकम बैक दोस्तों। जब कोई सीधा विलायत से यानी हमारे प्यारे लंदन से एकदम सज धज कर बाबू जेंटलमैन बनकर लौटता है तो उसका टशन ही कुछ अलग लाता है। और जब सामने से जवाब आता है ओ परदेसिया ओ अंग्रेजिया, तो देसी और विदेशी तड़के का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका कोई जवाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये जो हमने गाना सुना, इस गाने में हमारी लता जी महेंद्र कपूर साहब ने जो गाया है, कल्याण जी आनंद जी ने जो म्यूज़िक दिया है, बड़ा ही लाजवाब। इस गाने के बोल भी सुन करके बड़ा प्यारा लगा। देख मेरा टोपा, ये देख मेरा कॉम्बा और मेरा सोपा, जो इस तरह से बोल यूज़ हुए है, मेड इन जापान बेबी ऑन जापान, और जिस तरह से इंग्लिश को टूटी फूटी रूप में पेश किया है, और जिस तरह से लता जी कह रही है कि इसे तो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, मैं करती हूँ प्यार लेकिन इसे तो अपनी जूते चप्पलों की पड़ी है, जापान की पड़ी है, लंदन की पड़ी है।

यह दोस्तों ऐसा ही होता है, कई बार जब हम विदेश जाकर के फिर आते हैं तो हमारे साथ के दोस्त हमारे इसी तरह से कुछ टांग खींचते हैं। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, और फिर मिलेंगे हम अगले सोमवार मंडे को ठीक 8 बजे आपके इसी पसंदीदा चैनल 107.8 FM खुशी के नगमे दिल की बातों पर। तब तक आप बने रहिए रेडियो पर, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये प्रयासों के पुस्तिल गुलाम जो तुम्हें लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं।
1: सामने आओ। अनारकली मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
0: अनारकली जान सलीम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। हम में से बहुत सारे लोग जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसे गाड़ी की तरह हांकते रहते हैं और कभी किसी रोज वो गाड़ी कहीं अटक जाए या शुरू होने में तकलीफ देने लगे तो तब हम ध्यान देने लगते हैं कि ओहो, गाड़ी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। या आप में से बहुत सारे लोग जो कार या टू व्हीलर चलाते होंगे या साइकिल भी चलाते होंगे, आप सभी ये ध्यान न रखें कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराई जानी चाहिए, कभी कभी ग्रीस चेक कर लेना चाहिए, पहिया ठीक है या नहीं, हवा ठीक है या नहीं, ये चेक किए बगैर अगर आप चलते हैं तो एक न एक दिन सुबह उठ के आप देखते हैं तो गाड़ी पंक्चर है या गाड़ी में कोई खराबी है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हम अपने इस गाड़ी के बारे में यानी अपने शरीर के बारे में ध्यान रखें और अगर इस गाड़ी में कोई गड़बड़ियां हैं तो होने से पहले ही उसे ठीक करने के प्रयास करें। और सहज स्वास्थ्य में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिससे हमें ये बात समझ में आए कि हम अपनी गाड़ी की मरम्मत समय रहते कर लें, गाड़ी में खराबियों को होने न दें और इस गाड़ी का ध्यान रखें। प्रायः व्यक्ति जब गाड़ी खराब होती है तो इस शरीर के लिए लोग वैद्यों के पास जाते हैं, चिकित्सकों के पास, डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही चिकित्सक हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी गाड़ी का ख्याल बेहतर रख सकें और चिकित्सकों के ऊपर जो ऑलरेडी वर्कलोड बढ़ा हुआ है उसको हम कम कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां से वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, ये बात सोचने और समझने वाली है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई गाड़ी खराब हो जाए तो तब हम गैरेज में ले जाएं, मगर हम ये भी चीजें जानते हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो सभी कहते हैं कि भाई समय रहते सर्विसिंग भी करा लेना चाहिए, गाड़ी का ध्यान भी रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, ऑयलिंग व्हीलिंग कर लेनी चाहिए। ये हम अपने दो पहिए और चार पहिए या जितने पहिए की भी गाड़ी है उसके बारे में हम ध्यान रखते हैं, मगर इस शरीर रूपी गाड़ी के बारे में क्या हमें ऐसा ख्याल रखने की जरूरत है?
1: जरूर है। जिस तरह से गाड़ी रेगुलर सर्विस चाहती है उसी तरह शरीर भी रेगुलर सर्विस चाहता है। और मैंने ये अपने प्राकृतिक चिकित्सालय में ये अनुभव करना शुरू किया है। पहले मरीज हमारे यहाँ महीने दो महीने रहता था, पर अब वो 7 दिन रहता है और बॉडी सर्विस करा के चला जाता है। पहले पुराने मरीज एक बार आते थे, 2-3 महीने रह के पारिवारिक संबंध बना के चले जाते थे। अब ऐसे मरीज हैं जो हर 6 महीने 8 महीने पे आते हैं और अपनी बॉडी की सर्विस कराते हैं और चले जाते हैं। ये हमारे रेगुलर पेशेंट है। आज ही हमारे चिकित्सालय में कोटा से एक दीदी और उनकी माता जी आई हैं और ये दोनों जन ही हमेशा गाड़ी से ड्राइव करके आते हैं और दोनों लोग हर साल

0: हमारे यहाँ करीब 3 हफ्ते का समय बिताते हैं। और ये देखने में आया है कि अब लोग अपने शरीर और साथ साथ मन दोनों का सर्विस करा रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूं कि आप अपने घर पे भी हों, हमने जो पुराने एपिसोड्स में बात किया कि थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत प्राणायाम, थोड़ा बहुत फास्टिंग, थोड़ा बहुत भोजन पे कंट्रोल, ये करते रहिए कि बॉडी अपने टॉक्सिन्स निकाल पाए। और जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर में भर गए हो, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर अपने पूरे शरीर को साफ कर लीजिए। ये बॉडी सर्विस स्टेशन है।
1: ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि हमें अपने शरीर की ये सर्विसिंग भी करानी जरूरी है, और ये करने के तरीके कितने आसान हैं ये भी आपने बताया। थोड़ा बहुत व्यायाम, थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत आहार के प्रति सजगता, थोड़ा बहुत फास्टिंग, उपवास इत्यादि करके हम अपने शरीर को सर्विसिंग कर सकते हैं, उसको ठीक रख सकते हैं, और इससे मन भी अच्छा रहता है। कल हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब कि शरीर के लिए विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। आजकल जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो विटामिन्स की आवश्यकता को समझते हैं। बहुत सारे लोग विटामिन्स की दवाइयां लेने लगे हैं, विटामिन्स के टैबलेट्स भी खाने लगे हैं। आपने कल की बातचीत में ये बताया कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो प्रकृति से हमें निशुल्क रीति से मिल रहा है, उसके लिए हमें कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ता। सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ते ही हमारे जिस्म में वो चीज़ बनने लगती है, और ज़्यादा समय भी नहीं, दिन में 5-7 मिनट अगर हम शरीर को सूरज की रोशनी में देते हैं तो ये अपने आप बनने लगता है, ये आपने बताया। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये विटामिन डी आवश्यक क्यों है, क्या काम ये करता है, ये भी तो समझा जाए।
0: इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि हमारे में विटामिन डी की कमी हो रही है। सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है कि महिला या पुरुष जब रात में सोने जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं या सोचते हैं कि जो उनका पार्टनर है, पुरुष ये सोचते हैं कि महिला मेरा थोड़ा सा पैर दबा दे, या महिला ये सोचती है कि पुरुष थोड़ा सा मेरा पैर दबा दे, या प्लीज मेरे पैर के ऊपर पैर रख के सो जाओ। ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग मिलती है इन यंगस्टर्स। यंगस्टर्स मतलब 30+ के उम्र के लोगों में, अबव 60, 60 साल के ऊपर हमेशा यह होता है कि बहू आई है और 2 दिन हमारा पैर दबाई है और हमको बड़ा अच्छा लगा, या जो ओल्ड या जो महिला है या पुरुष है वो कहते हैं जब तक पैर दबाती है बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे ही वो छोड़ देती है वापस दर्द करने लगता है। तो ये सब बिना कोई जांच किए, बिना कुछ, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर दबाया जाए और आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, आपकी हड्डियां रो रही हैं। और जब हम विटामिन, आपको कोई भी शरीर का अंग दबाते हैं तो जो हमारी हड्डी है उसके ऊपर का कैल्शियम कंप्रेस होता है हल्का सा। मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि एक साधारण बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं। आप जैसे ही वो हड्डी पे तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, आदमी को बहुत अच्छा लगने लगता। और ये क्रूडेस्ट टेस्ट है, सबसे सिंपल टेस्ट है बताने के लिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है। इसको सिर्फ हड्डी से जोड़कर पहले देखा जाता था, पर अब ये आपको बहुत सारी समस्याएं अगर हो रही हैं तो आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है।
1: मैं अक्सर ये चीज देखता था, आज भी ये चीज होता है कि घर में अगर थोड़े बड़ी आयु के लोग हैं, दादा दादी के उम्र के लोग हैं, और घर में अगर बच्चे हैं तो वो यही कहते थे कि भाई मेरे पैर पे थोड़ा चल लो तुम। और मैं सोचता था कि ये चलवा क्यों रहे हैं किसी को अपने ऊपर, और वैसे भी हम भारत में तो ये मान्यता है ही कि अगर बड़ों को हमारे पैर लग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पैर नहीं लगने चाहिए, उनका आदर सत्कार होना चाहिए, हमसे गलती हो जाती है छोटे होने के नाते बड़ों को हमारे पैर लगे। मगर यहाँ जब बड़े खुद कह रहे हैं तो मैं हमेशा सोचता था आखिर ये क्या है, क्या इसमें आनंद आ रहा है जो ऐसे चलवा रहे हैं। आप पता चल रहा है कि ये तो
0: विटामिन डी की कमी है भैया। कमर का दर्द, मतलब सबसे पहले मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा है, या वो कहते हैं ना सवेरे तो एकदम ठीक था पर शाम होते होते बहुत थक जा रहे हैं, मेरी कमर में दर्द होने लग रहा है, और उसका वो कि कोई छोटा बच्चा मेरे कमर पे चल देता है या कमर पे पैर रख देता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगता है। भैया अब विटामिन डी को मैजिकल विटामिन इसीलिए बोला जाता है कि इसको पहले से दर्द के साथ देखा जा रहा था, अब ये तक देखा जा रहा है कि जिनको डिप्रेशन हो रहा है, जो इरिटेटेड रहते हैं, जो जिनका मूड थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, थोड़ा दुखी फील कर रहा हूं, अगर उनको भी विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में, यहां तक कि अब तो ये कहा जाता है कि पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी अगर हो रही है पुरुषों की वजह से, तो उसमें भी अब विटामिन डी के रोल की बात की जा रही है। तो अगर जो श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, अगर वो थके थके महसूस कर रहे हैं, कमर में उनके दर्द हो रहा है, हाथ पैर दबवाना उन्हें पसंद है, तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है। कुछ लोग की हड्डियां अगर बार बार टूट जा रही हैं, थोड़ा सा झटका लगा और हड्डी क्रैक कर जा रही है, टूट जा रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है।
1: ये तो बात समझ में आ रही है कि विटामिन डी की कमी को कैसे हम परख सकते हैं कि हाँ ये अगर हो रहा है तो ये मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी जब नहीं होता है तो शरीर में क्या रोग पैदा होते हैं, उससे क्या चीजें होने लगती हैं शरीर में, वो भी चीज समझा जाए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो दर्द तो बहुत समय से हो रहा है, कई चीजों को तो हम ऐसे इग्नोर करते चले जाते हैं, अरे हाथ पैर तो दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत सारे उम्र दराज लोग तो ये कह देते हैं कि भाई अब तो उम्र हो गई, ये तो दर्द होना स्वाभाविक है, ऐसा भी कई लोग कहने लगते हैं, आज हमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया इसलिए भी दर्द हो रहा है ये कहते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में क्या चीज है, विटामिन डी की कमी होने के कारण क्या चीजें हो सकती हैं शरीर में?
0: अगर हम लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होगी तो सबसे पहले हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी तो उन्हें रिकेट्स नामक एक बीमारी हो सकती है जिसमें उनके पैर टेढ़े हो सकते हैं और हड्डियां टूट सकती हैं। और बड़े वयस्क लोगों में अगर विटामिन डी की कमी लंबे समय तक हुई तो उन्हें ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, जिसको ब्रिटल बोन्स कहा जाता है, उनकी हड्डियां एकदम भुरभुरी हो जाती हैं और हड्डियां जो है वो जल्दी टूट जाती हैं। ये समस्या हड्डियों को रिलेटेड है। दूसरा, लंबे समय तक अगर विटामिन डी कम रहेगा तो आदमी बहुत थका हुआ महसूस करेगा, मतलब कहते ना इच्छा ही नहीं हो रही है, बड़ी थकान हो रही है यार, काम करने में मन नहीं लग रहा है। इवन कुछ महिलाओं और पुरुषों में जो बाल गिरने का कारण है उसमें भी विटामिन डी का रोल माना जाता है कि अगर विटामिन डी कम हो रहा है तो शरीर में कोलेजन कम होने लगता है, और जब वो कोलेजन कम होता है तो वो हमारे बालों को भी इफेक्ट करता है और हमारा हमको हेयर फॉल भी होता है। तो इसीलिए अगर किसी को बहुत थकान, कमर में दर्द, हड्डियां कमजोर ये महसूस हो रहा है तो प्लीज विटामिन डी के लिए जरूर सोचें, कहीं ये आपकी समस्या है विटामिन डी की वजह से तो नहीं हो रही।
1: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि विटामिन डी की कमी से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और जैसे आपने इसको मैजिक विटामिन कहा, ये भी बात समझ में आ रही है कि हाँ इसकी अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब विटामिन डी की कमी को पूरा करने की बात आती है तो लोग कैसे इस चीज को पूरा करें, क्योंकि जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि आजकल लोग बहुत सारे टैबलेट्स खा रहे हैं, मल्टी विटामिन खा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा, ये हम हर दिन खा रहे हैं ये भी लोग कहने लग गए हैं, तो क्या ये सही तरीका है या विटामिन डी को पूरा करने के कुछ और भी तरीके हैं?
0: सबसे पहले हम ये समझ लें कि विटामिन डी हमारे शरीर में बनता कैसे है और इसमें किस किस अंग का रोल आता है या किस किस अंग की सहभागिता होती है। सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा के ऊपर पड़ता है तो जो सब डर्मल फैट है, मतलब जो त्वचा के नीचे का हमारा जो वसा है, उससे रिएक्शन होता है और वो एक 7-dehydroxy कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। फिर ये हमारे लिवर में जाता है, वहां इसे एक एंजाइम मिलती है जो इसको 25-hydroxy कोलीकैल्सिफेरॉल बनाती है, और फिर ये हमारी किडनी में जाता है, और फिर फाइनली ये जो कैल्सिरॉल है, जो इसका एक्टिव फॉर्म है, उसमें ये उसके वो बनता है और फिर वो हमारे शरीर में ये काम करता है। कॉमन भाषा में ये समझा जाए, विटामिन डी है वो मजदूर है, वो हमारे खून में से कैल्शियम निकाल के हमारी हड्डियों को चिपकाता है और वो कोशिश करता है जहां भी कैल्शियम चल रहा है उसको उठा के ले आए, हमारी आंतों में, हमारी किडनी से, मतलब वो हर जगह से कैल्शियम लेके आता है। और सिर्फ कैल्शियम नहीं, ये हमारे शरीर में फास्फोरस को भी लेके आता है। तो ये दो मिनरल्स को लेकर ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये देखिए कि इस विटामिन के लिए हमको सूर्य का प्रकाश, हमारी त्वचा, हमारी लिवर और हमारी किडनी, ये चारों चीज चाहिए। फैट सॉल्युबल है तो थोड़ा सा फैट भी चाहिए, तो इतनी चीज है। और अगर इन चीजों में कुछ भी गड़बड़ हुआ, हम सूर्य का प्रकाश नहीं लिए, हमारी लिवर खराब हो गई, हमारी किडनी खराब हो गई, या हम अपने भोजन में फैट नहीं ले रहे हैं, जिन लोग का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो फैट मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो या एक और चीज, आजकल बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी करा रहे हैं, जिनमें वो अपनी आंतों को काट के छोटा कर दे रहे हैं, अपने पेट को छोटा करवा दे रहे हैं, तो इन सब कारणों से हमारे शरीर में विटामिन जो डी है उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा इफेक्ट हो जा रहा है, और जब वो इफेक्ट हो जा रहा है तो हमारे शरीर को पूरा कैल्शियम नहीं दे पा रहा है।
1: अब ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन डी का कैल्शियम के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, और जैसे आपने ये भी बताया कि शरीर के जो ये अलग अलग अंग हैं, हमारी किडनीज हैं, लीवर है, इन सब का भी इसका कनेक्शन है, और लोगों को इन सारे कनेक्शंस को समझने से इसकी अहमियत समझ में आती है और क्यों ये शरीर के लिए आवश्यक है ये बात पता चल जाती है।
0: भैया पहले, अब तो भारत में नमक में आयोडीन मिलने लगा, नहीं तो पहले औरतों को घेंगा हो जाता था, जिसको थायराइड की बीमारी कहते थे, और थायराइड के ऊपर छोटी सी ग्लैंड्स है जिनको पैरा थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, उसमें पैरा थायराइड हार्मोन निकलता है, वो भी विटामिन डी के साथ जुड़कर हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप देखिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, उसके कितने सारे अंगों की जरूरत है। ये हमारे शरीर की सुंदरता है कि बहुत सारे अंग मिलकर एक काम कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर सुंदर और सुडौल बना रहता है।
1: आजकल मैं समझता हूं कि लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में ज्यादा बिजी हैं, सुडौल बनाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तब तक नहीं सोचते जब तक कोई चीज अकड़ नहीं जाती कि भाई मेरे से झुका नहीं जा रहा, मेरा हाथ नहीं उठ रहा या पैर नहीं उठ रहा। मगर ये आज की त्रासदी है, और जब हम ऐसे चिकित्सकों से इन चीजों के बारे में सुनते हैं तब हमारी जागरूकता आती है, तब हम समझते हैं कि हाँ, हमें इन चीजों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में भी ये बात बताई थी कि विटामिन डी को लेने के लिए बहुत सारे विदेशी सैलानी भारत या भारत जैसे वो देश जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं वहां पर पहुंचते हैं, और काफी दिनों तक वो बीच स्पेस सागर किनारे अपनी पीठ सूरज की ओर करके पड़े रहते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई चलो हमारा विटामिन डी की कमी हम पूरी करें क्योंकि हमारे देश में ये चीज नहीं मिलती। और भारत में रहने वाले लोगों को या ऐसे उष्णकटिबंध में रहने वाले लोगों को इस चीज की जानकारी ना हो तो ये बहुत ही बड़ा नुकसानदायक चीज समझ में आ रही है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? क्या हम भी बीच पर जाएं अभी, या हर दिन के लिए कोई चीज ऐसा इख्तियार कर लिया जाए कि भाई हाँ विटामिन डी की कमी ना हो हमारे पास?
0: सबसे पहला हमको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए 15 मिनट दिन में जरूर से, अगर 30 मिनट तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो मांसाहारी हैं वो लोग मछली और कुछ लिवर का पार्ट खा के अपने इस विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों में आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है वो है मशरूम खाने का, और इसको जो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं धूप में रखे हुए मशरूम की सब्जी बनाई गई है, कि वो जो मशरूम जो है वो यूवी रेस से चार्ज हो गया है। सर चार्ज वाटर से कुछ नहीं होने वाला है, उससे बहुत कम मिलता है, बट मैक्सिमम वेजिटेरियंस को या तो धूप में रखी हुई मशरूम की सब्जी से कर लें और या तो धूप से पी। ये भैया गोली के रूप में भी मिलता है, और मैं एक नेचुरोपैथ होकर और एक एलोपैथ होकर एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर होकर जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है, जिनका लेवल बहुत कम है, उनको मैं रिकमेंड जरूर करता हूं कि आप प्लीज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की जो गोली है वो प्लीज हफ्ते में एक बार करीब 8 से 12 हफ्ते तक ले लीजिए। अगर ये आप ले लेंगे तो आपको 6 से 8 महीने की छुट्टी हो जाएगी। गोली लेने का ये मतलब नहीं है कि हम धूप में जाना नहीं जाएंगे, हमने तो गोली ले ली हम नहीं जाएंगे। प्लीज गोली आपको एक बूस्टर डोज की तरह दी गई है, पर धूप में जाने का जो अपनी आदत है उसको डालिए। प्लीज 15 मिनट अपनी पीठ को धूप की तरफ जरूर करिए। तो सबसे अच्छा तरीका विटामिन डी लेने का है कि 15 मिनट धूप सेका जाए।
1: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है कि लोग पैसा खर्च करके विटामिन डी के दूसरे पर्याय खोजने में लगे रहते हैं, मगर जो प्रकृति से प्रदत्त चीज है, जो सबसे आसान भी है और मुफ्त में मिल रही है, और वही एक शाश्वत तरीका है कि हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को ना होने दें और सूरज की रोशनी से हम उस चीज को हासिल करें। दोस्तों आज की बातचीत में यही विराम लेना होगा, घड़ी इशारा करती है, मगर आज जो चीजें हमने समझी हैं कि विटामिन डी के कमी से हमारे शरीर में क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, शरीर के अलग अलग अंगों के साथ विटामिन डी का जो कनेक्शन है वो भी आज समझ में आया है, और इस विटामिन डी को आप सभी सीरियसली लेंगे और आप सभी अपने शरीर में इस विटामिन की कमी को ना होने दे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, ऐसी शुभ आशाएं हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों आज की बातचीत में इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को, अपने समाज को, परिवार को और अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वस्थ विश्व की कामना करते करते यह भी ध्यान रखें कि भाई अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो रही है तो हम प्रकृति से मिल रही चीजों का सही सेवन नहीं कर रहे हैं। तो विटामिन डी के लिए खास तौर पर आप सभी सूर्य की रोशनी में 15-20 मिनट बैठें और शरीर पर सूर्य की किरणों को पड़ने दें। आज की बातचीत से यही संदेश आप सबके लिए। फिर मुलाकात होगी सहज स्वास्थ्य में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति, मैं खुशान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलो चलो, 9:30 बज गए, जल्दी जल्दी आओ रेडियो के पास, क्योंकि आपके साथ हम बातें करने वाले हैं। कौन? परी और मनी दीदी।
2: हाँ, आपका फेवरेट शो जो शुरू होने वाला है और जिसका नाम तो आपके लबों पे हमेशा रहता ही है, सपनों की सैर, है ना बच्चों?
1: हाँ, और आजकल बातें हो रही है बच्चों के सवालों के जवाब की। तो आज पूछा है बैजू ने, बहुत अच्छा सवाल बैजू ने भेजा है कि अच्छा बच्चा मैं कैसे बनूं?
2: अच्छा बच्चा? वैसे बैजू, आप तो है ही अच्छे बच्चे, क्योंकि आपने ये सवाल ही ऐसा पूछ लिया है कि आपको तो ये बहुत उत्साह है कि, और अंदर में ये लगन भी है कि आप अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं, तभी तो आपने ये सवाल पूछा है कि अच्छा बच्चा कैसे बने।
1: हाँ, और सच्चा बच्चा ही सबको अच्छा लगता है, इसीलिए हमेशा सच्चे बनो, बड़ों को सम्मान करो और नियमित पढ़ाई पर ध्यान दो।
2: हाँ, रोज पढ़ाई करोगे, स्कूल में भी अच्छे से बराबर टाइम पे जाओगे, सबकी मदद करोगे, सबको खुश करोगे, तो आप तो अच्छे बच्चे बनी जाओगे, और आप तो हो ही अच्छे बच्चे भाई।
1: हाँ क्यों नहीं, सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं और एक्टिव भी है।
2: हाँ, और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना, कई बार बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, तो वो तो आपको अच्छे से बात माननी पड़ेगी।
1: हाँ, वरना फिर बैड बॉय बैड गर्ल हो जाओगे, इसीलिए हमेशा अच्छे बनना। तो चलो मनी दीदी, अब आगे क्या करना है?
2: चलो भाई, अभी तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की

बच्चों चलो बैठो रेडियो के पास, फिर से कहानी शुरू होने वाली है। और पता है आज आपको एक पिपहरी वाला और गांव के लोगों के बारे में कहानी सुनाएंगे, जिस गांव में हजारों चूहे थे। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चूहे ना हो। ये चूहे ढेरों अनाज खा जाते थे, घर का सामान, कपड़े, कागज पत्र सब कुछ कुतर डालते थे। चूहों के कारण तो गांव के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। वे किसी तरह चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे। तो बच्चों सोचो उन लोगों ने क्या प्लान किया होगा। एक दिन पिपहरी वाला उस गांव में आया। उसने देखा गांव के लोग चूहों से त्रस्त है, तो उसने गांव के लोगों से कहा, मैं गांव के सारे चूहों को खत्म कर दूंगा, पर इसके लिए तुम लोगों को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। बच्चों गांव वालों ने तो पिपहरी वाले को 5,000 रुपए देना मंजूर कर लिया। पिपहरी वाला मधुर स्वर में अपनी पिपहरी बजाने लगा। पिपहरी की आवाज सुनकर क्या हुआ पता है? सारे चूहे घरों, दुकानों, गोदाम, खेत, खलिहानों सब जगह से निकलकर दौड़ते हुए रास्ते पर आ गए। वे पिपहरी की आवाज सुनकर नाचने लगे। और बच्चों वो जो पिपहरी बजाने वाला था ना, नदी की ओर चल पड़ा, तो चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो नदी के पानी में उतर गया, उसके पीछे चूहे भी पानी में कूद गए। इस तरह सारे चूहे पानी में कूद कर मर गए। बच्चों सोचो इसके बाद क्या हुआ होगा। इसके बाद पिपहरी वाला गांव लौटा। उसने गांव वालों से अपने 5,000 रुपए मांगे। लेकिन पता है बच्चों क्या हुआ? गांव वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो पिपहरी वाला भी कम थोड़ी था, उन्होंने क्या कहा पता है? उसने कहा, तुम लोग बेईमान हो, अब मैं फिर से पिपहरी बजा रहा हूँ। इस बार तुम लोगों को 5,000 के बजाय 10,000 देने पड़ेंगे। उसने पहले से भी मधुर पिपहरी बजानी शुरू की। और बच्चों वो आवाज सुनकर क्या हुआ? गांव के सारे बच्चे जो थे ना, वो रास्ते पर आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। फिर पिपहरी वाला पिपहरी बजाता रहा और बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। गांव के लोग ना पिपहरी वालों को पिपहरी बजाने से रोक सके और ना बच्चों को नाचने से रोक सके। फिर सोचो बच्चों क्या हुआ होगा। गांव के लोगों को लगा चूहों की तरह उनके बच्चों के भी नाचते नाचते प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने पिपहरी वाले को पैसे ना देने का बड़ा पछतावा किया। आखिरकार गांव वालों ने उसको विनती की कि ये रहे तुम्हारे 10,000 रुपए, अपने पैसे लो और पिपहरी बजाना बंद करो। बच्चों पिपहरी वाले ने पिपहरी बजाना बंद कर दिया। पैसे अपनी जेब में डालकर वो गांव से चल पड़ा। पिपहरी की आवाज बंद होते ही बच्चों ने नाचना बंद कर दिया। वे अपने अपने घर लौट गए। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो देखा बच्चों कितनी मजेदार कहानी थी। लेकिन बच्चों बताओ तो सही, इस कहानी से क्या समझ में आया? बेईमानी की सजा तो हमेशा बहुत भारी होती है, इसीलिए बच्चों कभी बेईमानी मत करना, ठीक है ना? तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सब

बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली राम की किताब, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें तेनाली राम को ये चुनौती मिली हुई थी कि बिना स्पर्श किए दो स्वर्ण पिंडों में से पहचानना है कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का, और तेनाली राम ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का। और फिर उस व्यापारी ने अपना जो स्वर्ण पिंड का संदूक था वो तेनाली राम को सौंप दिया। फिर चलो भाई अब आगे हम पता लगाते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि तेनाली राम ने ये कैसे पता लगाया। तो चलो मैं बिना देर के पढ़ना शुरू करती हूँ। तो फिर व्यापारी अपना वह जो स्वर्ण पिंडों का संदूक था वो तेनाली राम को दे करके महाराज को सौंप करके चला गया। व्यापारी सोमदत्त भारी कदमों से महाराज की सभा से चला गया और महाराज ने तेनाली राम को स्वर्ण पिंडों वाली संदूक सौंपते हुए कहा, ये तुम्हारी मेधा का यानी कि बुद्धिमत्ता का पुरस्कार है, इसका उपयोग अपनी और स्वजन परिजनों की भलाई के लिए करना। सभा विसर्जित होने के पश्चात महाराज कृष्णदेव राय ने तेनाली राम से पूछा, तेनाली राम तुमने पिंडों का रहस्य कैसे सुलझा लिया? दोनों पिंड तो बिल्कुल एक जैसे थे, फिर उन्हें छुए बिना तुमने कैसे जान लिया कि इनमें से ठोस कौन सा है और कौन सा पिंड खोखला है? तेनाली राम ने हंसते हुए कहा, इसमें कोई रहस्य सुलझाने जैसी बात नहीं है महाराज, खोखला पिंड हल्का होता है और ठोस पिंड भारी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है और जब उसे रस्सी पर लटकाया गया और दोनों पिंडों को मैंने गंभीरता से देखा तो ठोस पिंड को लटकाने वाले जो चैन था, रस्सी थी, उसमें तनाव अधिक था तथा उस रस्सी के उस भाग में खिंचाव भी अधिक था जिस भाग में ठोस स्वर्ण पिंड लटकाया गया था। इस खिंचाव के कारण ठोस पिंड थोड़ा नीचे आ गया था, खोखला पिंड थोड़ा ऊपर था और उसे लटकाने वाली जंजीर में वैसा तनाव भी नहीं था जैसा कि ठोस पिंड लटकाने वाली जंजीर में था। तो उस दिन महाराज ने फिर तेनाली राम को अपने बाहों में ले लिया और बोले, तेनाली राम तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तो बच्चों देखो भाई, फिर इस तरीके से आखिरकार तेनाली राम ने ये चुनौती भी सुलझा ली। और ऐसे ही हमें भी अपनी बुद्धि चलाते रहना चाहिए, है ना? तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: चलो बच्चों, तो चलो चलो फिर से। आखिर हमने काफी सारी आज जानकारियां भी ली और कहानियां भी सुनी, किताबें भी पढ़ी, और अब इसे जानना है पहेली का सही जवाब जो पिछली कड़ी में परी ने पूछा था।
1: बिल्कुल मम्मी दीदी, तो याद है ना बच्चों, हमने पूछा था कभी सफेद तो कभी रंगीन कागज पर मैं दिखूं, बच्चों के हाथ में खेलूं, चित्र बनाकर सबको खुश करूं।
0: रंग बिरंगी चीजें क्या होती है बच्चों के लिए जिससे वो रंग भरते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं, तो वो सही जवाब है क्रेयॉन्स, रंगीन पेंसिल्स भी कह सकते हैं या स्केच पेन भी कह सकते हैं, जिसमें बच्चे रंग बिरंगी कलर करते हैं, चित्र बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर।
1: हाँ बच्चों, बच्चों का तो ये फेवरेट चीज है क्रेयॉन से स्क्रिबल करना। तो चलो अब नोट कर लो आज की पहेली। दिन में छिप जाता हूँ, रात में चमक जाता हूँ, कभी गोल तो कभी आधा, सबको रोशनी देता हूँ।
0: हाँ बच्चों, इसका जवाब तो बहुत इजी है। दिन में कौन है जो छिप जाता है और रात में चमकता है और कभी गोल तो कभी आधा आधा रह जाता है। तो चलो चलो जल्दी से मोबाइल उठाओ और 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
1: और हमारा टाइम हो गया है विदा लेने का, तो चलो मनी दीदी चलते हैं।
0: हाँ तो करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
0: गुड बाय।
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM पर
1: सपनों की
0: सर को।
2: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। ईश्वर के दरबार में कभी भी स्वयं को मालिक मत समझिए, हमेशा दास बनकर चलिए। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, अगर जंगों में दर्द है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय बताने वाली हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी देने वाली हूँ जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ढोकले। लेकिन किसके बने हुए वो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप?
1: जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
2: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, ईश्वर के दरबार में कभी भी स्वयं को मालिक मत समझिए, हमेशा दास समझ करके चलिएगा। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रहे थे। एक विशाल नदी जो कि सदाबहार थी, उसके दोनों तरफ दो सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव मंदिर बना हुआ था। नदी के इधर एक राजा था। राजा को बड़ा अहंकार था, कुछ भी करता तो अहंकार का प्रदर्शन करता। वहां एक दास भी था, भक्त, बहुत ही विनम्र और सज्जन। एक बार राजा और दास दोनों नदी के वहां गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। दो नावें थी, रात का समय था। एक नाव में राजा सवार हुआ और दूसरे में वो भक्त सवार हुआ। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार न पहुंच पाया और सूर्योदय हो गया। तो राजा ने देखा कि दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। दास आया और देव मंदिर का गुणगान करने लगा। राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे? दास ने कहा कि हाँ। और राजा जी, क्या मनोहर देव प्रतिमा थी, वाह क्या बात है, मैं तो बहुत धन्य धन्य हो गया दर्शन करके, पर आप क्यों नहीं आए? अरे मैंने तो रात भर चप्पू चलाया। पर गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, वत्स बताओ कि राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर फिर भी उस पार क्यों नहीं पहुंचा, ऐसा क्यों हुआ जबकि उस पार पहुंचने में एक घंटे का समय ही बहुत है। शिष्य ने कहा, हे नाथ, मैं तो आपका बहुत सेवक हूं, मैं क्या जानू, आप ही बताइए, कृपा करिए और आप ही बताइए। ऋषिवर ने कहा कि हे वत्स, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया पर उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला। और इसी तरह लोग जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। हे वत्स, जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये न कहो कि ये मैंने किया, ये नहीं कहना है कि ये मेरा है, ये है कहो कि जो कुछ भी है वो सदगुरु का है, समर्थ सत्ता का है, ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी का है। स्वयं को सामने मत रखो, समर्थ सत्ता को सामने रखो और समर्थ सत्ता या तो सदगुरु है या फिर अपने इष्ट देव। यदि ईश्वर के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम नहीं चलेगा, वहां तो दास बनकर रहोगे तभी कोई मतलब है। जो अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में ही रहता है। इसलिए कहा गया है, ईश्वर के दरबार में कभी राजा नहीं दास बन के रहना है। और ये सिर्फ एक गुरु शिष्य की कहानी नहीं है, हम सभी के ऊपर लागू होती है कि हमें भी ईश्वर के समक्ष कैसे रहना है, दास बन करके या राजा बन करके, वो अब सभी को स्वयं सोचना है। और आइए अब फिर से एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।
3: प्रार्थना है, हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं, माई तो बचपन से गाती आ रही है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जंगों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, जांग में दर्द है तो आप एक चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच घी मिला करके खाइए सुबह सुबह खाली पेट, ठीक है, काफी राहत मिलेगी। जंगा में दर्द है तो एक चम्मच अदरक का रस में एक चम्मच घी मिलाकर सुबह सुबह खाइएगा, भले इसको चाटिएगा भले पीजिएगा, इससे काफी राहत मिलेगी। और भी आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रही हूँ। घुटनों का दर्द हो तो क्या करेंगे? घुटनों का दर्द दूर करने के लिए भोजन में खीरा ज्यादा खाइए, ठीक है। अगर घुटनों का दर्द है तो भोजन में खीरा ककड़ी को शामिल करिए, खीरा ककड़ी ज्यादा से ज्यादा खाइएगा। दूसरा उपाय है घुटने के स्लेश कला शोथ सूजन में इस जोड़ में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो कच्चे आलू को पीस करके लगाइए, काफी राहत मिलेगी। कच्चे आलू को पीस कर इसकी लुगदी बना करके लगाने से काफी राहत मिलेगी। और भी जान लीजिए उपाय, घुटनों में दर्द नया हो या बहुत पुराना, मोठ के लड्डू खाइए, इसे शीघ्र ठीक हो जाएगा। घुटनों में दर्द नया नया ही शुरू हुआ हो, ठीक है, तो मोठ के लड्डू बनाकर खाइएगा, इससे काफी राहत मिलेगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। फिर देखिए, कमर दर्द है तो क्या करेंगे? आज मैं आपको मिक्स नुस्खे बता रही हूँ। मेथी की सब्जी खाइएगा, इससे कमर दर्द में राहत मिलेगी। मेथी की सब्जी खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। कमर दर्द में सहजन की सब्जी भी बहुत ही लाभदायक है, तो सहजन की सब्जी बना करके भी खा सकते हैं, इसके फूल के भी बना सकते हैं, फली के भी बना सकते हैं, ये सब फायदा करता है, फूल फली पत्ते सब फायदा करता है, ठीक है। और कमर के दर्द में छुहारा बहुत ही लाभदायक है, तो आप छुहारा सुबह शाम खाइएगा। और लास्ट उपाय यही है, कच्चे आलू की पुलटिस कमर में भी आप बांधिएगा, इससे कमर दर्द में राहत मिलेगी। कच्चे आलू की पुलटिस बना करके लुगदी बना करके कमर में बांधिएगा तो कमर दर्द में राहत मिलेगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, आप चाहे तो आजमा सकते हैं और घुटने का कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके फायदे और नुकसान दोनों ही बताइएगा। तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब कृष्णमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आज का है जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराइए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण भी सिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है, उसके फायदे और नुकसान दोनों ही बताना है, थोड़े थोड़े शॉर्ट रूप में। ठीक है, तो खुशनुमा जीवन के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप

0: हाल चाल पूछ लेते हैं
1: जी।
0: और बस आराम से काम करते हैं, टाइम सर काम करते हैं, टाइम सर खाना खाते हैं, टाइम सर सो जाते हैं, बस वही तो चाहिए, और क्या चाहिए दीदी।
1: जी जी,
0: जीवन तो यही का, इसका नाम तो जीवन है दीदी, वरना तो कहते न कोई उठल बाथल करता है, यानी कि कोई ऐसा खर्च कर देता है, खर्चा कर देता है, कोई काम धंधा नहीं करता है दीदी, उसको तो दिक्कतें रहेंगी हरदम
1: जी।
0: दिक्कत तो किसको रहती है, काम नहीं करता है, घूमता रहता है, एक दूसरे का जो एक दूसरे का जो लड़ता है, झगड़ता है, उससे तो मुसीबत रहेगी, लेकिन हमको तो कोई मुसीबत रहेगी नहीं
1: जी।
0: बस बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, आज मम्मा खुशबती दिन है तो हमारी तरफ से श्रद्धा से मुलाकात करते हैं दीदी
1: जी।
0: अच्छा ही सवाल आपने, अच्छा ही खुशनुमा जीवन की जो बात की है दीदी, एक बार दोहरा दीजिए।
1: हाँ जी, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइए नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। कहते हैं ना, परिवर्तन आपको सफलता भी दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण भी सिखाएंगे।
0: जिंदगी का नाम तो दीदी परिवर्तन है, और परिवर्तन तो होता ही रहता है जीवन में। देखो हम छोटे हैं, छोटे होते हैं तब क्या होता है, थोड़ा बड़े होते तो थोड़ा सा बदल जाता है, उम्र होती है जिंदगी बदल जाती है, तो जिंदगी तो बदलती रहेगी, और ऐसे तो घबराना नहीं है जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा दीदी, सब कुछ आएगा, तो इससे कोई हारना नहीं है। देखो हम भी पहले बहुत ऐसे परेशान थे, सबक छोटे थे तब ऐसा कई सारा ऐसा प्रॉब्लम आया, लेकिन हारना नहीं है दीदी, कभी हमने हार नहीं मानी, आज तक नहीं मानी और मानेंगे भी नहीं
1: जी,
0: क्योंकि परिवर्तन तो दीदी होता रहता है जीवन में, किसी के दिन अच्छा रहता है, किसी के दिन कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, किसी के दिन कोई, लेकिन हमको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है दीदी तो हमको कुछ सिखाते जाता है
1: जी जी।
0: ऐसा नहीं कि भाई चलो भाई हम से कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हम घबरा जाएंगे अब क्या होगा, नहीं, इससे तो हम कुछ सीख पाते हैं, कई सारी बातें सीख पाते हैं
1: जी।
0: किसी को, हाँ किसी को कोई ऐसा ऐसा हो गया जीवन में, कोई सा नुकसान हो गया तो भी दीदी हम कुछ सीख पाते हैं, चलो भाई इस रास्ते से अब नहीं जाना है, तो इससे कई सारा हमको भी नॉलेज मिलता है, लेकिन हम तो ऐसा करेंगे दीदी जीवन में परिवर्तन आएगा, जिंदगी में परिवर्तन आएगा तो उससे घबराना नहीं है, अच्छा हो तो अच्छा है, वरना कोई ऐसी भी कई सारी परिस्थितियाँ जीवन में बदलती रहती है दीदी
1: जी,
0: तो बस हमने तो कभी आते हार मानी नहीं और मानेंगे दे लेंगे, चलते रहते हैं हमारी गाड़ी अच्छी तरह से, चाहे दुख हो या सुख हो बस चलते ही रहना है
1: जी। ओके नमस्ते, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोड़नाना से, बहुत ही सुंदर आपने भी विषय को स्पष्ट किया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। विषय बहुत ही सुंदर है, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए, कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल विषय है, आप जुड़ करके अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। देखिए आप अपने बचपन के दिन याद करिए और आज के दिन को आप याद करिएगा, कितना आपको परिवर्तन लगा होगा, है ना। एक समय था कि इतने साधन सुविधाएं नहीं थी, और आज देखे साधन सुविधाएं भरपूर है, तो परिवर्तन ही, वो कहते हैं ना कि मतलब जीवन का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन से ही इंसान आगे बढ़ता है, सीखता जाता है, स्वयं को चेंज करता जाता है और अपने मुकाम तक पहुंचता है। हम बचपन की बातें करें तो कहते हैं देखो पहले 25 पैसे चलते थे, 10 पैसे चलते थे, 5 पैसे चलते थे, फिर धीरे धीरे 5 पैसे बंद हुए, 10 पैसे बंद हुए, फिर धीरे धीरे 25 पैसे बंद हुए, फिर 50 पैसे बंद हुए, फिर 1 का सिक्का, फिर 5 का सिक्का, और आज 500 की नोट, बीच में तो 1000 की भी चली थी, वो बंद हो गई, बात अलग है। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इतने चीज़ें कहाँ मिलती थी। पहले ड्राई फ्रूट भी घर में बड़ी मुश्किल से आते थे, शादी ब्याह में बड़े बड़े प्रोग्राम में ही आते थे, बाकी नॉर्मल वे में घरों में फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट इतने नहीं आते थे, और आज देखे ड्राई फ्रूट खराब हो जाते हैं तो फेंकने की नौबत आ जाती है। तो ये सब क्या है, परिवर्तन ही तो है ना।

0: परिवर्तन है ये सभी, कि कहां हर चीज का क्रेज था और आज कोई भी चीज आप पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात हो गई। अगर आपके पास पैसे है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और सब कुछ मिलेगा। पहले पैसा होने के बावजूद भी कहां सुविधाएं थी, कहां इतने सारी फैसिलिटीज थी, नहीं थी। लोग शांति से रहते थे और हाँ कुछ करने की कोशिश करते थे। आज हम वैज्ञानिकों को देखते हैं कितने रिसर्च करते रहते हैं, अगर वो भी सोच ले कि क्यों हमें परिवर्तन की पड़ी है भाई, दुनिया चल रही है ऐसे चलने दो, हम भी आराम से जिए और बैठ जाए, तो क्या इतना विकास हो पाता। आज हर चीज़ की मशीन है, जिसका नाम सुनो अच्छा उसकी मशीन ले आते हैं। अरे भाई सब चीज़ों की मशीन है, पोछा लगाने की मशीन, बर्तन मांजने की मशीन, हर एक चीज़ की, कहाँ ये सब कुछ था। देखते ही देखते देखते ही देखते कितना बदलाव आ गया, कितना बदलाव आ गया। पहले गिनी चुनी ट्रेन होती थी, बच्चे देखने के लिए दौड़ते थे, अरे ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, चलो रे चलो, भगो भगो भगो, और सब जाते थे देखने के लिए कि भाई हाँ ये ट्रेन का टाइम होता और पहुँच जाते बच्चे लोग ट्रेन देखने के लिए। और आज ट्रेन की भी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू मतलब बोले तो आज कोई बड़ी बात नहीं है, आज कोई भागता नहीं है देखने के लिए। कोई साइकिल चला लेती लड़की तो लोग देखने के लिए जाते, अरे देखो देखो फलानी लड़की साइकिल चला रही है। हेलो
1: हेलो उषा भाई बोल।
0: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी नमस्कार नमस्कार, सुप्रभात
0: सुप्रभात जी।
1: आज तो खेती का भी काम करना पड़ता है, गोबर का खाद डालना पड़ता है, खेड़ाई भी करनी पड़ती है, अब खेत तैयार करने पड़ते हैं तो खेतों में भी जाना पड़ता है।
0: जी जी अच्छा ये बताइए कंचन भाई, अभी आपके खेत पर पहले क्या चड़स चलती थी, वो बेल को लेकर के पानी निकालते थे, कुआ है आपके खेत पर?
1: हाँ कुआ था, मैंने चलाया भी है बेलों से जो पोस्ट बोलते हैं।
0: जी जी जी हाँ शब्दों का फेर है, और शब्दों का फेर है, बेलों को लेकर के चलाते थे और पानी वो काले काले कलर के वो बड़े बड़े से बंधे हुए होते थे, उसमें से पानी गिरता था अंदर से भर के।
1: हाँ अंदर से भर के, कोई तो चमड़ी का था और कोई था जो कोस बोलते थे ना हमारे
0: जी,
1: तो ये लोखंड का भी था, ये दोनों का था। तो हम चलाते थे इधर से दूर लेके, रस्सी बांधे हुई थी, बैलों को लेके जाते थे और कोस हवाड़ा बोलता था ना वहाँ ये होता था और
0: जी, जी,
1: फिर वापिस आते थे।
0: अभी पानी मोटर से आता होगा है ना, स्विच ऑन किया और
1: अभी तो काफी परिवर्तन आ गया बहन जी।
0: जी
1: जैसे जैसे परिवर्तन, जीवन एक परिवर्तन है पर इसका हमें उपयोग करना चाहिए, हमें एक ही पकड़ के नहीं रहना है बहन
0: जी। क्या
1: है कि पहले तो ये था नहीं, तो ये सब करते थे, हमने भी किया है, चलाया है कुछ बैलों को लेके पानी निकाला है, लेकिन अब तो इंजन आया, फिर बाद में क्या हुआ डीजल इंजन, तो डीजल इंजन से भी हमने ये किया खेतों का काम और पियक किया और उपज ली। फिर आई लाइट, तो लाइट से ये पंप आया
0: जी
1: लाइट का, तो इसका उपयोग हमने किया, तो ये अभी चल रहा है लाइट
0: जी।
1: ठीक है, ये परिवर्तन है ना बहन जी।
0: जी
1: तो ये हमें परिवर्तन, जैसे जैसे परिवर्तन आए ऐसे ऐसे हम ये थोड़ा ये करें। हमारे सिलाई की काम का बात करें तो सिलाई पहले मोटर नहीं थी, तो पहले पैदल और मशीन भी ऐसा था जो
0: जी
1: ऑयल वाला नहीं था, वो सादा था, तो
0: जी
1: लाइट भी नहीं थी, तो लाल टेन यहाँ रख के भी हम काम करते थे
0: जी।
1: लेकिन जब जब परिवर्तन आया, लाइट आई, ये सब आया, तो ये मोटर आई लाइट से चलने वाली
0: जी।
1: पहले कोयले से गर्म करते थे कैसे के पहले, तो अब खाली ये लगा देते हैं तो गर्म हो
0: जी।
1: तो ये परिवर्तन, जब जब परिवर्तन आया इसका हमने एक किया।
0: जी, देखते ही देखते तो, बदलाव आ रहा है। बदलाव कौन ला रहे हैं? हम ही ला रहे हैं, इंसान ही ला रहे हैं।
1: हाँ, इंशाल्लाह
0: जी। तो बदलाव जरूरी है या नहीं है, या फिर जहाँ बैठे वही?
1: बिल्कुल जरूरी है बेटी, बदलाव जरूरी है। ये भी पकड़ के नहीं रहना है पहले वाले, तो ये सब पहले था नहीं तो हम ऐसे ही काम करते थे, लेकिन अब तो बदलाव आ गया। तो पहले जो गेहूं डालते थे तो बैलों को गोल गोल गोल गोल फिरा के हमें गेहूं निकालते थे
0: जी।
1: अब तो ट्रैक्टर से ये निकालते है, तो ये टेक्नोलॉजी आई, ये सब आया तो हमें इसका उपयोग करते हैं, तो झड़प भी हमारे ये होती है। पहले तो काफी समय तक खेतों में पड़ा रहना पड़ता था
0: जी,
1: ऐसा
0: बिल्कुल
1: अनाज को लेकर
0: जी जी।
1: तो ये जब जब ये परिवर्तन आया, इसका हमने काम किया और ये जरूरी परिवर्तन
0: जी। तो
1: और अभी करवाया है हमारा स्पेशल रेडियो सुनने के लिए ही करवाया है हमारा नेशनल
0: जी,
1: तो आज करवाया है तो अब तो हम बात करेंगे सुनेंगे भी।
0: अच्छा, अरे वाह,
1: का जवाब तो हम देते
0: जी। ठीक है,
1: अभी तो आपको नमस्कार।
0: हाँ जी, हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
3: जय माता
2: दी, जी जय श्री हरि। स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: सभी मेरे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन के ढेर मंगल काम
2: जी। आज के विषय आपके समक्ष रख रही हूँ, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। और आज का प्रश्न है वज्रासन।
3: प्रश्न तो बाद में।
2: चलो ठीक है।
3: जिंदगी में परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है
2: जी,
3: तब कितना प्यारा होता है
2: जी।
3: तो जैसे जैसे जन्म लेता है, उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसके शरीर में भी परिवर्तन होता है
2: जी।
3: आप जैसे आचरण दोगे और आचरण में भी परिवर्तन होता है
2: जी।
3: तो उसी तरह ही जिंदगी है। देखिए जिंदगी में उतार चढ़ाव परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ आपको तुरंत ही ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएंगे और कुछ मतलब आपको नीचे भी ला सकते हैं, और आप कुछ आपको मेहनत करने के बाद भी आगे ले जाएंगे
2: जी।
3: तो परिवर्तन तो एक जिंदगी का नाम है। मतलब जिंदगी वो ही जी सकते हैं जिनके जिंदगी है, मतलब जीवन में परिवर्तन होते हैं। बाकी तो जिंदगी क्या है, फिर एक रुक जाएगी तो फिर खटारा नहीं बनेगी। जिंदगी में परिवर्तन तो होना ही चाहिए ना
2: जी,
3: तभी तो रंग भरेंगे ना, नहीं तो फिर वो खटारा हो जाएगा ना। बेरंग क्या काम का फिर
2: जी।
3: हाँ, क्योंकि परिवर्तन होंगे तभी निर्धन है तो वो करोड़पति बनेगा, और करोड़पति निर्धन भी बन सकता है परिवर्तन के साथ। तो आपको बस जिंदगी में परिवर्तन होते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मगर आपको अपने निरंतर अपने मार्ग पे कोशिश करनी है, आप क्रम करने हैं बस
2: जी।
3: तो आप जीवन में बस अच्छे परिवर्तन होते रहेंगे और आप एक सफल इंसान बनोगे
2: जी।
3: ठीक है, क्योंकि शरीर भी परिवर्तन होता रहता है, बचपन आता है, बूढ़ा युवा आता है, किशोरी अवस्था, फिर युवा, फिर बुढ़ापा भी आता है, और एक दिन अपन जीवन छोड़ के भी जाते हैं, तो परिवर्तन होता रहता है
2: जी। चलिए बहुत अच्छा है, आज के प्रश्न का जवाब देंगे।
3: ऑब्वियस
2: ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है। प्रश्न को दोहरा रही हूँ, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते। हेलो,
4: भूरा राम बोल रहा है दीदी।
2: राम राम। भूरा राम जी, कैसे हो? अरे भूरा राम जी, मैं बात कर रही हूँ, फिर से आप फोन कॉल्स कर सकते है, काटिएगा नहीं, हम लगे हुए हैं। हेलो,
5: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
2: हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, हम अच्छे हैं, आप बताइए सुभाष भाई कैसे हैं आप?
5: बहुत जी बढ़िया हूँ, और कल का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, आज का भी बहुत अच्छा हो रहा है, और विषय भी बहुत अच्छा है, कि परिवर्तन जरूरी है, वो जिंदापन की निशानी है। पर कई कई परिवर्तन से अगर अपना नुकसान हो रहा है, सभी का खुशी गायब हो रही, तो परिवर्तन में बदल कर रहना है। परंतु परिवर्तन ये अच्छा ही है, उमंग उत्साह बढ़ा के खुश रहना है, आगे बढ़ना है। और सवाल जो है दीदी, वो शायद वज्रासन है, अन्न पचन के लिए वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जॉइंट्स पेन है और वजन ज्यादा है तो श्वास का तकलीफ हो सकता है, इसीलिए संभाल के करना है। तुरंत नहीं गिरा, अच्छी तरह से हलवार करना है वज्रासन। थैंक यू, सभी को नमस्कार, ओम शांति।
2: चलिए, बहुत बहुत आभार सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और बहुत ही सुंदर विषय है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, बैठ कर किया जाने वाला आसन मतलब कौन सा है, भोजन के उपरांत कौन सा आसन किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, यह आज का प्रश्न है। विषय भी बहुत ही सुंदर है, जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलवाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। बहुत सुंदर विषय है। कितनी बार हम परिवर्तन के चक्कर में असफल भी होते हैं, फिर स्वयं की चेकिंग करते हैं, पता चलता है हाँ कहाँ गलती हुई, फिर उस गलती को सुधार करके हम सफल बन जाते हैं। ऐसा ही होता है, कोई भी नया काम हम शुरू करेंगे तो एक ही बार में तो सफलता नहीं मिलेगी ना, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत जान सुझाग, तो वही अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी ही।
6: Hello.
2: हाँ जी, नमस्ते सगुना बहन।
6: नमस्ते, ओम शांति।
2: ओम शांति जी, कैसे हो?

0: बहुत अच्छे
1: है जी।
0: आज क्या प्रश्न का जवाब दूं?
1: दे दीजिए।
0: भोजन के तुरंत बाद आसन जो करना है वो है वज्रासन। वज्रासन।
1: अच्छा, फायदे नुकसान भी बताइएगा।
0: फायदे तो उसके गैस जो होता है हमको और खाना हजम नहीं होता है इसके लिए है।
1: अच्छा,
0: हेलो,
1: ठीक है, अब देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम अंत में जवाब। हाँ जी,
0: विषय बताना।
1: विषय है जिंदगी परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराइएगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करिए। क्या कहेंगे आप?
0: हाँ तो जिंदगी हमारे परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे में तो एहसास नहीं होगा ना। जिंदगी में परेशानी आएगी हमको तो ही सुख दुख का अनुभव होगा ना हमको। हाँ, तकलीफ नहीं आएंगी तो हमें क्या पता चलेगा। तो कोई भी परिस्थिति आए तो घबराना नहीं है। हाँ, बाबा की याद में रहना है तो हमको शक्ति मिलती है। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है
1: जी।
0: आज तो मम्मा रही है
1: जी,
0: बहुत अच्छा दिन है हमारा। तो मम्मा की याद में, बाबा की याद में रहते हैं आज पूरा दिन।
1: बिल्कुल, मम्मा का स्मृति दिवस है आज।
0: हाँ, और अभी जितना हो सके उतना कम बोलना है
1: जी।
0: ऐसे तो रोज कम ही बोलना है, काम के बगैर कोई बात नहीं ज्यादा करनी है किसी से
1: जी।
0: हम तो थोड़ा थोड़ा तो नियम पालन करते ही है।
1: बिल्कुल, और इस तरह के दिन आते हैं तो पूरा अटेंशन हमारा उधर जाता है।
0: हाँ, और अभी तो देखो 8 दिन का जो सम्मान होता है ना स्वरूप का
1: जी,
0: वो कल से हमने शुरू किया है देवी स्वरूपा का।
1: अच्छा,
0: हम रोज प्रमाण लेते हैं उसके स्वरूप होने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा दिन जाता है हमारे। याद रहती है और कोई भी ऐसी बात आती है तो हमको ऐसे टेंशन नहीं आता है, खुश रहते हैं हम।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
0: ओम शांति।
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार सगुना बहन, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप भी जुड़िएगा और कोशिश करिएगा आज के प्रश्न का जवाब देने की, आज के विषय में अपने राय व्यक्त करने की। क्योंकि देखिए, खुशनुमा जीवन का भी विषय के लिए जो टाइम है वो एक टाइम लिमिटेशन रहती है ना, तो वो पूरी हो जाएगी फिर हमारे श्रोता बंधु जुड़ते हैं तो उनको रोकना बड़ा भारी पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हमारे श्रोता बंधुओं को रोकना पड़े, वो बोले, लेकिन समय को देखते हुए जुड़े, ठीक है, अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर कहना पड़ता है बस टॉपिक चेंज। भाई, अब आपको रेसिपी सिखा रहे, रेसिपी में आप खुशनुमा जीवन की बात करेंगे तो कहाँ काम चलेगा। इसलिए समय के अनुसार आप जुड़िएगा। और परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है, देखते ही देखते इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि देखिए आज कहाँ पहले लाइटें नहीं थी, आज कोई कमी नहीं, गर्मी लगती है तो एसी, कूलर, क्या क्या सुविधाएं नहीं जुटाई, सब कुछ मिला है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, और इतने आविष्कार हो चुके कि आज तो पहले के समय की और आज की तुलना करें तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और आज के बदलाव को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में कितना ज़बरदस्त बदलाव आया है। तो घबराना नहीं है, बदलाव तो स्वाभाविक है। कितनी बार क्या है, लोग स्वीकार नहीं कर पाते। एक माताजी, उनको मैंने कहा कि माताजी मतलब बहुत चौथे पोछे पाँचवें फ्लोर पर जाना था, तो उनको बोला कि आप लिफ्ट सीख जाइए, सीढ़ियाँ चढ़ के मत जाइए, सुविधा है तो यूज़ करिए, नहीं है तो फिर अपने पैर तो है ही है। लेकिन माताजी को डर लगता है, बोले नहीं नहीं बेटे, मैं कैसे लिफ्ट में जाऊं, लिफ्ट कहीं गिर गई तो। मैंने कहा अरे इतने जा रहे तब तो नहीं गिरे, आप अकेले जाओगे कैसे गिर जाएगी। नहीं नहीं बेटा, बहुत डर लगता है जब वो माताजी अकेले जाते हैं, किसी को कहते नहीं है, और जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ करके जाते और सीढ़ियाँ उतरते हैं, लिफ्ट यूज़ नहीं करते कि नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना है, मैं गिर जाऊँगी लिफ्ट में। डर को भगाना होगा, डर नहीं भागेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना सिंपल है, उनको बोला कि देखो खाली बस जीरो दबाओ तो ग्राउंड फ्लोर पर, और 1 2 3 4 पढ़ना तो आता ही है, चौथे फ्लोर पर जाना हो तो चार पे दबाओ, ऊपर ऊपर पहुंच जाओगे, ऑटोमेटिकली लिफ्ट है, न खोलना न कुछ करना, बंद करना, अपने आप खुलेगी, अपने आप बंद करो। अरे मैं तो फंस जाऊं तो कहीं नहीं खुली तो देखिए, बदलाव से डरना नहीं है भाई। आप रिस्क लेंगे नहीं तो कैसे आपको कामयाबी मिलेगी? सिखाने वाले हमें सिखा देते हैं, लेकिन कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। और सिखाते समय बड़ी घबराहट सी होती है, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे सीखूंगी, क्या करूंगी। लेकिन जब हम खुद कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और उसको दो बार खोला, दो बार किया, फिर आता है तो बड़ी खुशी होती है कि अरे हमने तो सीख लिया, कितनी खुशी होती है। तो यही बात है ना सभी के ऊपर। हमने कहा उनको कि अरे लिफ्ट में ऐसे करिए, आप हमारे साथ चलिए, तो उनको साथ चलते समय बताते, देखिए अब या आप खुद अपने हाथ से दबाओ, जाते समय कहते खुद अपने हाथ से दबाओ, उस समय दबा देते हैं, चल पड़ते हैं, अकेले पड़ते और पता नहीं क्या होता है, लिफ्ट में नहीं जाते और सीढ़ियाँ ही चढ़ते हैं। तो भाई बदलाव आया है तो हमारे को भी बदलना है। अभी जैसे समय के साथ बदलाव आया, पहले एक समय था कि बहू आती थी तो सासुए रुआब झाड़ती थी और सासूपन दिखाते थे, पहले बहुओं के साथ बहुत अन्याय होता था। और आज के बदलाव में काफ़ी भिन्नता नजर आई है, कहीं कहीं पर बहुएं हावी हो जाती है लेकिन सास एकदम ठंडे ठीर हो रहती है। तो इतना बड़ा बदलाव आया है तो बदलाव से डरना नहीं है और बदलाव का गलत फायदा भी नहीं उठाना है, ठीक है। बहू भी अपनी मर्यादा में रहे, सास भी अपनी मर्यादा में रहे, प्यार से एक दूसरे से रिश्ता बनाए रखे, प्यार से एक दूसरे के बाद साथ बातें शेयर करते रहे, तो इस तरह के झगड़े बगड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो बदलाव खुद के हाथ में है, बदलाव खुद को लाना है, और बदलाव हो रहा है उसमें घबराना नहीं। लोग निंदा करने बैठ जाते, अरे देखो देखो फलाने को देखो, ये देखो वो देखो, अरे भाई क्यों देखना है, खुद को देख लीजिए ना, खुद को देखने का भी टाइम नहीं है, हम दूसरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो जैसे चल रहा है उनको चलने दीजिए, आप शुभ भावना रखिए स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी, तो शुभकामनाएं जरूर रंग लाएगी। तो चलिए बस कहने का भाव यही है, जीवन परिवर्तनशील का नाम है, परिवर्तन तो होना ही है। तो आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो अब फिर से अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा, आज बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ढोकला। लेकिन किसका ढोकला बनाएंगे? जी हाँ, सूजी का। सूजी का ढोकला क्या है, नुकसान नहीं करता है और जब चाहे आप फटाफट बना सकते हैं। बच्चे जैसे ही चिल्लाए ढोकला खाना ढोकला खाना, तो आप फटाफट उनको बोलो कि 15 मिनट में अभी बना के खिलाते हैं। तो इंस्टेंट ढोकला, ठीक है। सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। आप सूजी लीजिएगा, अपने घर के सदस्यों के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। फिर दही लेना है खट्टा वाला, स्वाद के अनुसार नमक लीजिएगा, राई लेना है, इनो ले लीजिएगा, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लेना है, धनिया की चटनी लीजिएगा और तेल लेना है। सजावट के लिए ले सकते हैं टमाटर, खीरा और कसा हुआ नारियल, मतलब कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, अपने डायरी में नज़र डाल दीजिएगा। सूजी ले लीजिए, दही लेना है, राई लीजिएगा, इनो लीजिएगा और अदरक और हरी मिर्च लीजिएगा, धनिया की चटनी लेनी है, नमक लीजिएगा अपने स्वाद के अनुसार और तेल लेना है। सजावट के लिए टमाटर, खीरा, कद्दूकस किया हुआ नारियल, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखाने जा रही हूँ। आप क्या करेंगे, सूजी को मतलब पहले तो छान लीजिए, छान करके दही के अंदर कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए, ठीक है। फिर आप कढ़ाई में तेल गरम करिए और राई और उड़द की दाल को भूनिएगा। आप अदरक हरी मिर्च ली है, धुलाई करके इसकी पेस्ट कर लीजिए और ये पेस्ट डालिएगा। पेस्ट फ्राई करने के बाद आप नमक डालिएगा और अब एक कटोरी पानी और सूजी मिक्स कर दीजिए दूसरी तरफ, ठीक है। कुकर में पानी डाल करके ढोकला गरम कर लीजिए और तेल लगा कर उसकी 2 प्लेट डिश तैयार कर लीजिए। सूजी के घोल में इनो डाल करके अच्छी तरह फेंट लीजिए और तुरंत तैयार डिश में जो प्लेट हमने तैयार की ना, तेल लगा करके उसमें डालिएगा और ये प्लेट कुकर में रखी है। भले कुकर में रखने के बाद आप इस मिश्रण को डालिएगा और ऊपर मतलब आप कुकर बंद कर दीजिए। फिर लगभग 15 मिनट तक इसको पकाइए। फिर आप गैस बंद करके निकाल दीजिए प्लेट को बाहर और ठंडा होने दीजिए। एक प्लेट में पहले एक बेस को रखिए, उस पर चटनी लगाइए, फिर दूसरे बेस रखिए, किनारा छोड़कर चटनी लगाइए। टमाटर, खीरा और कच्चे नारियल से आप गार्निश करिए और हरी चटनी या नारियल चटनी के साथ सर्व करिए। तो ये बन गया सूजी का ढोकला। अब मैं फिर से एक बार विधि दोहरा रही हूँ, आप अच्छी तरह सुन करके बनाइएगा। सूजी को छानिएगा और दही में इसको भिगो दीजिए, ठीक है। भिगो कर रख दीजिए कम से कम 4-5 घंटा, इसको दही में रहने दीजिएगा, भिगने दीजिएगा। और अब आप अदरक हरी मिर्च की पेस्ट करिएगा, राई उड़द की दाल को भून लीजिएगा गरम करके और फिर अदरक हरी मिर्च की पेस्ट करनी है, ठीक है। फिर एक कटोरी पानी आप डाल करके, मतलब दही में तो सूजी भीगी हुई है, अब आवश्यकता के अनुसार पानी डालिए, जरूरत पड़े तो एक कटोरी, जरूरत पड़े तो और भी डाल दीजिए। और सूजी को अच्छी तरह इसका घोल तैयार करिएगा, मिश्रण तैयार करिएगा, ठीक है। और इसमें जब अच्छी तरह आप हिला लो, तुरंत ही इसमें आप इनो डाल दीजिएगा। इनो डाल करके आप जल्दी से हिला करके कुकर का, इडली वाला कुकर लीजिए, उसमें प्लेटें भी होती है, प्लेट में आप तेल लगा दीजिए, प्लेट के कुकर में पानी डाल दीजिए, पानी गर्म कर लीजिए और कुकर के प्लेट में तेल लगा करके आप रखिएगा और इस मिश्रण को उसमें उड़ेलिएगा, ठीक है। अगर 2 प्लेटें एक साथ में रखना चाहे तो ऊपर नीचे रख सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको इनो डालना है, ठीक है। और अब इसको 15 मिनट तक उबलने दीजिए। 15 मिनट उबल जाए तो फिर आप ढक्कन हटाकर प्लेटें बाहर निकाल दीजिए, फिर दूसरी प्लेटें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक प्लेट में पहले एक बेस को रखिए
उस पर चटनी लगाइए, फिर दूसरा बेस रखिए, किनारा छोड़कर चटनी लगाइएगा। फिर आप टमाटर, खीरा और कच्चे नारियल से गार्निश करिए और हरी चटनी या नारियल की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह ढोकला तैयार हो चुका है। मन चाहे आकार में इनको काट लीजिए और अलग अलग प्लेटों में डालिए। आप एक में जैसे खीरा ककड़ी टमाटर सजा दिया, फिर वो हमने मसाला बना रखा है राई उड़द की दाल का, अदरक हरी मिर्च के पेस्ट, तो इसको आप एक प्लेट पर ये लगा दीजिएगा और पहले काट लीजिए, फिर निकाल ये लगा दीजिए सब, और हरा धनिया ऊपर से डाल दीजिए और फिर आप पीस निकाल करके रख सकते हैं। अपने जो भी खाना चाहे उनको सर्व कर सकते हैं। और भले आप नारियल की चटनी के साथ, भले हरी चटनी के साथ, दोनों ही चटनी है तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो भी सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही स्वीकार करिएगा, ठीक है। तो इस तरह सूजी वाले ढोकले बनाए जाते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है बैठकर किए जाने वाला आसन तो आपको सिखाया ही है, पर ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके फायदे और नुकसान दोनों ही बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है।

0: अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई?
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे बहुत ही अच्छे दिए हैं, जनरल नुस्खे, घुटने दर्द, जांग का दर्द, कमर दर्द, तो इन उपाय को आप आजमा सकते हैं। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो आपको सूजी का ढोकला बनाना सिखाया है, बच्चे बेहद पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी आराम से खा सकते हैं, नुकसान भी नहीं करेगा सूजी का है इसलिए, तो ज़रूर बना करके इसका भी आनंद लीजिएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि भाई ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो देखिए हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने वज्रासन कहा, वज्रासन एकदम सही जवाब, आधा जवाब तो सभी का सही है, इसलिए मैं पहले तो ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी। अब वज्रासन के फायदे और नुकसान जान लीजिए, फिर मैं आपके नाम सुनाऊंगी। वज्रासन का फायदा है, इस आसन से जंग और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है, और यह आसन पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके नुकसान यह है कि बवासीर के मरीजों को इस आसन को नहीं करना है, परहेज रखना है। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित लोगों को भी इस आसन से परहेज करना है, ठीक है। और अब नाम सुनाना चाहूंगी जिन्होंने भी जवाब दिया है। सुरेश भाई झोटाना से आपका जवाब एकदम सही है। अलका जी काबरा आपने आधा जवाब दिया है। दीपा जी सोमानी कपासन से आपने भी आधा जवाब दिया है। प्रेम गोड़ उदयपुर से आपका जवाब एकदम सही है। संगीता जी कपासन से आपका आधा जवाब सही है। कंचन भाई मंडाली से आपका पूरा जवाब सही है। सुभाष भाई का पूरा जवाब सही है। सगुणा बहन जी का पूरा जवाब सही है, और आप सभी विषय में भी जुड़े इसके लिए भी। और आज का मीठा मोती है, यदि आपको दूसरों की प्रतीक्षा करने की आदत है तो आप अवश्य ही पीछे रह जाएंगे। अब मैं मम्मा पर, आज मम्मा का स्मृति दिवस है, मम्मा पर एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नई पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। ज्ञान की गंगा बहाने वाली, प्रेम का दीप जलाने वाली, ज्ञान की गंगा बहाने वाली, प्रेम का दीप जलाने वाली, अंधकार में भटकी राहों को सच्ची मंजिल दिखाने वाली, मधुर मुस्कान सरल स्वभाव, मधुर मुस्कान सरल स्वभाव, चेहरे पर दिव्यता की छाया, जिसने भी उनका सानिध्य पाया, जीवन में सुख और शांति पाया। मातेश्वरी तुम ममता की मूरत, मातेश्वरी तुम ममता की मूरत, त्याग और तपस्या की पहचान, बाबा के संग चलकर तुमने जग को दिया नया वरदान। नहीं था कोई भेदभाव मन में, नहीं था कोई भेदभाव मन में, सबको अपना माना था, प्रेम धैर्य और सेवा का पाठ जीवन भर सिखलाया था। आज भी तेरी यादों से मन में उमंगे जगती है, आज भी तेरी यादों से मन में उमंगे जगती है, तेरे श्रीमत के दीपक से जीवन राहे जगमगाती है। हे जगदम्बा हे मातेश्वरी, हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना, सत्य प्रेम और पवित्रता की राह पर सदा हमें चलाए रखना, सदा हमें चलाए रखना। तेरा जीवन एक संदेश है, तेरा हर कर्म मिसाल, मातेश्वरी तुझको नमन है, शत शत वंदन बारंबार, शत शत वंदन बारंबार।
3: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कबरता रेडियो ने।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वो भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

0: छोटा सा गांव है जहां तीन सहेलियां रहती हैं, जिनका नाम आशा, रजनी और सरला है। तीनों ही अच्छी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की होती हैं। सरला की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में है। रजनी को अपनी सहेली आशा के यहाँ जाना है, परंतु मम्मी अकेली भेजने के लिए तैयार नहीं है बेटी को। तो आइए क्या होता है आगे देखते हैं।
1: रजनी, या तू तैयार वेन कटे जा रही है?
2: मम्मी, मारी फ्रेंड आशा का पापा रिटायर्ड हुआ है, तो हवन और भजन संध्या राखी और एक छोटो सो भोजन समारोह भी राखियो, तो मैं वटे जा रही हूँ।
1: हाँ भले जा, रजनी का पापा थे बैंक जा रहे हो ना, तो रजनी ने आशा का घरे छोड़ दीजो और आता टाइम पे लेता आजो।
2: मैं कोई छोटी बच्ची को नहीं जो मन छोड़वा आनो पड़े, मैं चली जाऊँ मारी रीतु। मम्मी आप कोई चिंता मत करो।
1: मैं क्यों के छोरिया ने ज्यादा पढ़ानो को नहीं, पढ़ावा तो एड़ो जवाब मिली। छोरिया ने पढ़ावो तो भी चोको चुल्लो तो संभालनो इस पड़ी, पर थारा पापा है के माने को नहीं मारी बात। देख रजनी, लड़की अगर घर से बाने जावे तो के पिता के भाई के पति कोई ने कोई तो साथ में होनो ही चाहिए, समझी?
3: ओफो, थारी माँ है कि बात कटे हूँ कटे लेन परीगी। चाल रजनी, मार लारे परी चाल, मुंह तने छोड़ दे, थारी माँ से बेस करवा कोई फायदो को नहीं।
0: सांस्कृतिक मान्यता भी कैसी होती है कि लड़की भले बड़ी और समझदार हो गई है, फिर भी वह घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती। खैर, आशा के घर पर क्या होता है आइए देखते हैं।

0: अरे रजनी, आओ आओ, तू तो घनी लेट होगी भजन में। भजन तो पूरा हो गया, अब हवन की तैयारी हो रही है। चल आपा भी हवन में बैठा।
1: सॉरी आशा, थोड़ी लेट होगी, चल बेटा।
2: सेठानी जी, यजमान कटे है, पूजा में लेट हो रही है, हवन बुलाओ।
3: पंडित जी पूजा चालू करो, सेठ जी तो आवता इस वे।
2: राम राम राम राम राम। पूजा तो पहले पुरुष द्वारा ही शुरू होवे है ना, सेठ जी का बिना पूजा क्या शुरू करा।
3: पंडित जी पूजा चालू करो, अबे तो सेठ जी भी आ गया।
2: सेठ जी आप आगे बैठो, सेठानी जी आप पाछे बैठो। हाँ तो पूजा शुरू करूँ सा। गणपति बेगा पधार जो, रिद्धि सिद्धि के संग आय बिराजो, पूजा में सारो कार्य सार अक्षत समर्पयामी। सेठानी जी आप थोड़ा रुको, पहला सेठ जी ने अक्षत समर्पण करवा दो, पछे आप।
0: पंडित जी कुछ ज्यादा ही नहीं कह रहे रजनी, हर बात में पुरुष पहले और महिला बाद में, ऐसा थोड़ी होता है।
1: तू सही कह रही आशा, मैं तो आज सुबह से यो ही देखती आ रही हूँ।
4: तो देखा, सामाजिक मान्यता के अनुसार पूजा में भी महिला या तो बगल में बैठेगी या पीछे बैठेगी। शादी में पुरुष आगे चलेगा, महिला पीछे चलेगी। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नारी का सम्मान करो, क्या इस तरह सम्मान होता है? चलिए अभी एक और परिवार में चलते हैं। वहां यह सरला रो क्यों रही है, जरा देखते हैं।
0: हेलो रजनी, अपनी सहेली सरला आई है ससुराल से, तो मिलवा चालू। तू तैयार है ना? मैं लेवा आ रही हूँ।
1: हाँ आशा, मैं तैयार हूँ।
0: अरे सरला, थारी तो नई नई शादी हुई है और तू उदास लग रही है, कई बात है?
5: मारा तो किस्मत ही फूट गया।
0: अरे सरला, तू रो क्यों रही है? ले पानी पी, तुझे शांति हूँ, सारी बात बता के कई हुए।
5: काहे बताऊ मैं, थारा जीजा जी शराब पीवे और सास झगड़ालो स्वभाव की, मैं तो दुखी होगी वटे जान।
0: सरला, थने तो अंकल जी अत्रो दहेज दी दो, फिर भी एड़ा लोग मिलिया। अंकल आंटी से बात की दी तू?
5: हाँ सा, सारी बात की दी, पर वहाँ का बात करवा रो कोई फायदो कोनी, उल्टा मनी ही डांट रिया।
1: अरे थारी तो कोई गलती कोनी, फिर भी थने डांटिया क्यों?
5: मम्मी का ही क्यों जो सुन।
6: देख सरला, थारी सगली बात सुनी, पर मारी बात तो ध्यान से सुन। हारा में थोड़ो घनो तो सहन करनो ही पड़े। मने देख, जद में पढ़नी नानी घर

0: आई तो मने घणो दुख उठानो पड़्यो। सगलाई विचित्र पर समय का लारे सब ठीक हो गयो और आज मैं खुश हूँ। तो बेटा शुरू शुरू में सेन कर ले तो पचे सब ठीक हो जाए। शुरू शुरू का 5 साल थोड़ा मुश्किल का निकले, ये 5 साल सेन कर लो तो पचे आपने ही चाले घर में।
1: मम्मी भविष्य ने कौन देखो, बात तो अबानो वर्तमान की है। ये शराब पीन गाली गलौज करे यह बात मने बिल्कुल पसंद कोनी। शादी का बात दूसरी बार मैं ससुराल गई, नहीं नहीं फिर भी शर्म कोनी, पुरानी ब्याह बात कई शर्म आई। मैं 18 साल इंतजार कोनी कर सकूं।
0: सरला थारो दिमाग खराब हो गयो, समाज में बातता जाए तो अपनी इज्जत की धज्जा उड़ जाए। तू तो एड़ी बात करे कि जाने थाने ससुराल में मार रहा वे। सरला का पापा सुन रहा था कि बेटी की बात?
2: मैं सब सुन रही हूँ। सरला तू खाई चिंता मत कर, मैं बात करूँ वे लोग आसू। अगर वे नहीं सुधरे तो पछे आगे देखा काई करनो। थने ससुराल भेजने को नहीं भेजनो। एक बार तू जा हावरे। और हाँ बेटा सुन, तू एक बार सगला जना ने समझान देख, फिर भी वे कोनी सुधरे तो तू जो भी डिसीजन ले मैं थरे साथ हूँ।
1: थैंक यू पापा।
3: अंकल जी भी एड़ी बात करी, ये तो सोदो हो गयो। हावरा वाला सुधर जाए तो बेटी ससुराल में रही, नहीं सुधारी तो बेटी मायका में रही। बेटिया को जीवन तो एक कठपुतली की न्यान हो गयो, जो लोग नचावे व्यान नाचनो।
4: पारिवारिक मान्यता भी बड़ी अजीब होती है। पीड़ित खुद दुखी है लेकिन वह अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि माता पिता को समाज में बदनामी का डर है। इन्हीं कारणों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है और पीड़ित अंदर ही अंदर घुट करके या तो वह सुसाइड कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। खैर, कुछ समय रहकर सरला अपने ससुराल चली जाती है। सरला अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। सरला के व्यवहार से ससुराल वालों में परिवर्तन आने लगता है और एक दिन अचानक फोन आता है सरला के पियर से। आधी रात को फोन क्यों आया देखते हैं।
0: हेलो सुन सरला, तू जल्दी आओ, तारा पापा के कहीं हो गयो है, हॉस्पिटल लेन जा रहा, तू जल्दी आओ जी बेटा।
1: मम्मी मम्मी।
2: सरला तू चिंता मत कर, फटाफट एक दो जोड़ी कपड़ा ले ले और आपा चला।
1: अरे ये सब चढ़ा बेला क्यों हुआ है, काई हुए हमारा पापा के?
5: बेटा थारा पापा अभी दुनिया में कौन ही रहा, और तू भी रोई तो थारी मम्मी ने कौन हमारी, आगे की सोच काय करनो, बाय तो तारे है कौन ही, मुखाग्नि कौन दी?
6: अरे इन्हें काई पूछनो, मुखाग्नि तो मारो बेटो जगदीश दी।
1: नहीं बड़ा पापा, मारा पापा मने कदी बेटी समझिया कोनी, हमेशा बेटा की न्याय नहीं रखी, और बेटो नहीं है तो काई बेटी मुखांगी नहीं दे सके, मारा पापा ने मुखा रंगनी मैं ही देऊंगा।
6: ठीक है बेटा, जेडी थारी मर्जी।
4: अक्सर लोगों का कहना होता है कि अगर पिता को मुखाग्नि बेटा देता है तो उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटियां भी अपने पिता को मुखाग्नि दे सकती हैं, जैसे कि सरला ने किसी की परवाह नहीं की और एक बेटे का रोल अदा किया। तो इस तरह हम पारिवारिक बदलाव ला सकते हैं।
7: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
8: तो सुना दोस्तों आपने 3 सहेलियों की कहानी, जिसमें तीनों की अलग अलग कहानी है, परंतु सरला ने पुरानी परंपराओं को तोड़ करके एक नया इतिहास बनाया है। तो अंधविश्वास को कटाक्ष करता हुआ इस नाटक को आपने सुना है। अगर आपने भी समाज में इस तरह की बातें देखी है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप भी रेडियो मधुबन के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारे है 94-1415-1415। आज का विषय भी नाटक का बहुत ही अच्छा था कि सामाजिक परिवेश, संस्कृति व पारिवारिक मानदंड के अनुसार देखते हैं तो हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार की हिंसा होती है। तो इस कार्यक्रम को आप सुन करके जो भी आपको महसूस हुआ हो तो आप फोन कॉल्स कर सकते हो, हमें बता सकते हो। तो यहीं पर हम आपसे अनुमति चाहेंगे और अगली बार लेकर के आएंगे और भी नया नाटक एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
9: अपनी खुशी

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सुबह सुबह जब सोते सूरज चाचा, मेरी माँ मुझे उठाती,
2: देती मुझे ढेरों दुआएं और फिर मुझे तैयार कराती।
1: मेरा टिफिन, बॉटल पानी की हमेशा मुझे प्यार से देती।
2: कहती थी हमेशा कि मानो बेटा, सदा मेरी बात, कभी ना छूटे शिक्षा का साथ।
1: और हमारे मुंह से निकलता,
3: माँ पढ़ूंगा लिखूंगा बनूंगा नवाब, और अगर ना पढ़ा तो हो जाऊंगा खराब।
2: वैसे देखा जाए दोस्तों, तो शिक्षा की नींव स्कूल ही है, मगर उस नींव को मजबूती प्रदान करते हैं हमारे परिवार के सदस्य, जैसे माँ, पिता, भाई, बहन एवं दादा दादी, जो हमें बचपन में कहानियाँ, कविता और किस्से सुनाते थे, जिनसे हम अपनी जिंदगी के उस पल को महसूस करते हैं।
1: जैसे दादी की वो शहजादी की कहानी, जिसके किरदार हम होते और ऐसे करते करते बना लेते अपना रास्ता, अपना एम।
2: विशाल, एम तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ, वो हमारी हॉबी जरूर बन जाती थी, मगर कब वो हॉबी हमारी स्ट्रेंथ बन गई पता ही नहीं चला।
1: प्रवीण, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर जैसे हम बात कर रहे थे स्कूल लाइफ में अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के बारे में, तो मेरा तो ये मानना है, स्कूल में आजकल जिस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, जैसे म्यूजिक क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन और कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे अंदर के छुपे हुए हुनर को पहचानते हैं और उन्हें निखारते हैं।
2: हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर, जिसने 16 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि कल का यानी आज का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा बनेगा जो अपना, अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करेगा।
1: तभी तो मैं कहता हूँ प्रवीण अपने दोस्तों से कि स्कूल ही वो ऐसी जगह है जहाँ मिलती है हमारे वजूद को पहचान और निखार होता है हमारे हुनर का।
2: हमारे हुनर को निखार जरूर मिलेगा स्कूल जाने से, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में नाम से कितना खुशबू आता है, क्योंकि अपना गांव और अपना अंचल, जिस गांव जिस अंचल में हम पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उस गांव और अंचल को हम कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि गांव को लेकर ही शहर बनता है और शहर को लेकर ही हमारा राष्ट्र और विश्व बनता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका साथ रूबरू होने के लिए किसी न किसी अंचल में जाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे कैसे, आज है 24 जून, यानी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य प्रशासिका कहेंगे तब भी अत्युक्ति होगी नहीं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा जिसको दादा लेखराज का नाम पे पहले जानते थे और उनका तत्वावधान में ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापना हुआ 1936 से, और उसका पूरा संचालन करने के लिए एक फीमेल जिसको मम्मा डे के नाम से प्रसिद्ध है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो जगदम्बा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कैसे मातेश्वरी सरस्वती बने और उनका पुरुषार्थ क्या रहा, आज सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इस दिन को मम्मा का जो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जिसको हम निक नेम में मम्मा कहते हैं, तो उनका जो विशेषता को धारण करके आगे बढ़ रहे जग माता कहते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाप है और ये माँ है, तो माँ का जो अवदान माँ का जो पालना सब ये ब्रह्मा वस्त्र पालन करते, सिर्फ ब्रह्मा वस्त्र क्यों, आप भी जो सुन रहे हमारा श्रोता मित्र वो भी किस न किस रूप में ब्रह्मा का जो संतान ही है, क्योंकि सृष्टि का क्रिएटर ब्रह्मा बाबा है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मैंने आबूराज प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहुंचे जो कि पांडव भवन नाम से प्रसिद्ध, तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बारी बारी जो अनुभवी मम्मा का विशेषता को देखे हैं अनुभव किए उस आधार से आज आपका पास रखेंगे, वो कितना सीख लिए हैं और मम्मा को फॉलो किए मम्मा को जगदम्बा सरस्वती को, तो उसका अनुभव हम सुनेंगे। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर विनी बहन उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते श्रोता मित्र की तरफ से और खासकर हमारा रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से। दीदी आपको स्वागत करते हैं, हमें खुशी है क्योंकि मम्मा का जो विशेषता, आप भी तो पर इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं, सभी जगह में आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि एक दुनिया को एक जो आवश्यकता है, समय का जो मांग है, जो सीखे हमें, जो सीखे हम क्यों सबको सिखाए, तो ये चीज को लेकर आप बहुत स्पीकर आज हमें खुशी है, क्योंकि रेडियो मधुबन पहला बार हमारा साथ रूबरू हो रहे, क्योंकि कल्प पहले भी हुए थे आज भी हुए, कुछ नथिंग न्यू कहते जो ड्रामा बना हुआ उसको हम फॉलो करते, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा बारी बारी, सभी का आवाज आपको सुनने को मिलेगा। दीदी आपको स्वागत करते, आप अपना परिचय दीजिए, मैं दू तो कम होगा। ओम शांति दीदी।
1: डॉक्टर बी के बिंदी
0: जी,
1: पीस एम्बेसडर ग्लोबल हॉस्पिटल में वेलबींग स्पिरिचुअल एंड पब्लिक रिलेशंस एडवाइजर हूँ
0: जी, बिल्कुल।
1: लेकिन सबसे ज्यादा मेरा एक अनुभव जिसके साथ में मैं आज सबसे पहले
0: जी मैम,
1: हमारी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा माँ उनका शत शत दिल से नमन, मेरे पास शब्दों का अभाव है कि उस माँ का मैं कैसे धन्यवाद करूं, कैसे उस माँ को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माउंट आबू में पहली, मैं कहूं कि परिवार था, पहली बच्ची थी
0: जी।
1: 50 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मम्मा का पहली बार जब मैंने उनकी तस्वीर देखी
0: जी,
1: जो वो मेरे आंखों में उतर गई,
0: क्या बात,
1: उनकी दृष्टि, उनकी वाणी और उनकी सरलता, उनका मधुरता, उनका निश्चल भाव, उनकी सच्चाई और उनकी सफाई, वो उनके चेहरे से झलकती थी।
0: ओके।
1: और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैंने उनको देखा, क्योंकि मैं तो उस समय केवल 7 साल की थी,
0: सेवन इयर्स
1: की, तो उस समय वो तस्वीर मेरे आंखों में बिल्कुल बस गई और मैं ऐसा समझती हूँ कि वो मेरे लिए आदर्श रही मेरे जीवन में और हमेशा वो आदर्श रहेंगी, क्योंकि उनकी वाणी, उनका चेहरा, उनका व्यवहार
0: जी
1: इतना कुछ कह जाता है कि शायद उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, मैं समर्पित करती हूँ उनके लिए ये पंक्तियाँ। कहते हैं कि खुदा ने जब जन्नत बनाई,
0: क्या बात,
1: उसके मन में एक बात आई कि मैं सबके साथ न रह पाऊंगा, इसीलिए उसने माँ बनाई, इसीलिए उसने माँ बनाई,
0: क्या बात,
1: जगदम्बा माँ उन्होंने इसीलिए बनाई कि जगदम्बा माँ ने यज्ञ की पालना की लेकिन वो गई नहीं। मैं तो यही समझती हूँ कि आज की पुण्यतिथि पर वो मौजूद है, वो हमारे साथ है, उनके शब्द कानों में गूंज रहे हैं कि करण करावन हार करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा, हम तो निभाते हैं अपना किरदार
0: जी।
1: जीना है तो ऐसा जीना कि हर क्षण ये अंतिम घड़ी, ये था उनका दिव्य अंतिम संदेश, ये है जीवन का सार।
0: क्या बात, तो श्रोता मित्र ग्रामीण और खासकर जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्वाइन नहीं किए उनको थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज का देख सभी ब्रह्मा वश्च उसको पालन करते हैं, क्योंकि अव्यक्ति दिवस रूप में शरीर इस दिन शरीर छोड़े थे, तो हमेशा तो गांव और अंचल का मैं आवाज लेता था, मतलब आज इस अंचल का जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडवन आभुराज का आवाज भी आपको सुनने को मिल रहा है, ये भी हमारा कम्युनिटी रेडियो है, कम्युनिटी का सभी का भागीदारी इसमें मिलता है, तो आज हमें खुशी है मैम जैसे अपना बात को रखे है, और मम्मा माँ जो शब्द दिया उनका जो चेहरा, उनका जो व्यक्तित्व, उनका जो चेहरा में जो देखते हुए भले साकार में नहीं देखे होंगे लेकिन उनका जो चित्र जो फोटो में देखकर इतना प्रभावित हुए, जब साकार होते उनको साकार जो मिले हैं तो उनसे भी हमें रूबरू कराएंगे, जो साकार में उनसे अंग संग रखकर पालना लिए हैं
1: जी।
0: माता का जो गोद में जो भावना होता है
1: जी।
0: और माँ तो माँ होता है, माँ का दर्जा तो कोई नहीं ले पाएंगे, इसलिए आज माँ शब्द, और आज भी हर स्कूल में हर जगह में सरस्वती को पूजा वंदन करते, हर स्कूल में वंदना करते प्रार्थना सत्र में, तो सरस्वती कैसे बने, वो सरस्वती जिसको हम भक्ति मार्ग में करते वही सरस्वती प्रैक्टिकल उनका ट्रेनिंग पीरियड था कलयुग का अंत में
1: जी।
0: ये कहना चाहेंगे दीदी आप, इसके बारे में थोड़ा आलोकपात कराइए हमारे श्रोता को, थोड़ा जानकारी मिले
1: जी। आपने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल में विद्यालयों में भी सरस्वती को विद्या की
0: देवी
1: कहते, विद्या ददाति विनयम संस्कृत का वाक्य है
0: जी,
1: कि विद्या जो है विनय सिखाती है, विनम्रता सिखाती है
0: जी।
1: ऐसी ही देवी सरस्वती माँ, हमारी मातेश्वरी मम्मा के जो शब्द थे वो बहुत मधुर होते थे, कभी किसी ने उनको ऊंची आवाज में बोलते हुए देखा ही नहीं, और वो जो बोलती थी वो मन में छप जाता था। मैंने उनके बहुत किस्से सुने हैं हमारे सीनियर से, और जो मेरे को बिल्कुल मन में हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं, उसमें एक बड़ी बात ये है कि कोई भी जब मम्मा के पास जाता था किसी की शिकायत लेके
0: जी जी,
1: तो मम्मा उस समय जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी रूप में आता था, लेकिन मम्मा उसको बहुत बहुत मीठी भावना से, मीठी दृष्टि से देखती थी, और उस समय वो जो व्यक्ति ने गलती की जिनकी बात लेके आई उनके लिए उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया, तो इतने निश्चल भाव से जब वो सुनती थी जो व्यक्ति उनके लिए कुछ, किसी के लिए जो बात लेके जाता था, वो व्यक्ति उस समय जैसे कि कहें कि मूर्ति बन जाता कि आगे कहें क्या, क्योंकि मम्मा उनको मीठी दृष्टि देते हुए मधुरता से जिस तरह से सुनती थी, शांति से व्यक्ति अपनी खुद की भी गलती रियलाइज कर लेता था, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अपनी भी और दूसरे के प्रति शुभ भावना को जागृत करना वो बहुत बड़ी बात थी। दूसरी जो आपने विद्या की देवी कहा, जैसे आप देखिए माँ का पहला शब्द माँ है
0: जी,
1: मधुरता, तो मधुरता विनम्रता ये अगर हम जीवन में शिक्षा का भी अर्थ है, पहले शिक्षा में है शिष्टाचार, दूसरा है क्षमा
0: जी,
1: तो वो शिष्टाचार और क्षमा की भी देवी थी, इसीलिए मम्मा जो थी वो हमेशा ही जो बाबा कहते थे उसका सबसे पहले अगर अध्ययन बनकर, क्योंकि एक वाक्य जो हमेशा हमें याद रहता है वो ये कि मम्मा जो एक बार गलती करती थी वो क्यों मम्मा सरस्वती क्यों बन गई, देवी का तो अभी भी उनकी पूजा हो रही है उनकी, लेकिन वो भविष्य में भी चाहे हम उसको कहे लक्ष्मी बने, राधा बने, जो भी रूप में हम उसको स्वीकार करें, वो क्यों बनी, वो एक बहुत बड़ी बात कि जो एक बार उन्होंने गलती की
0: दोबारा,
1: वो कहते थे कि जो उनको पता चल जाता था कि गलती, वो कभी दोबारा नहीं करती थी। ये अपने आप में मम्मा का बहुत बड़ा चरित्र था।
0: जी जी।
1: और वो सच में अगर देखा जाए तो आज जो कहते हैं कि जो यादें हमारे मन में आ रही हैं, वो एक हमारे नारी शक्ति, हम ये कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसको कहते हैं लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड अगर है, तो प्रजापिता ब्रह्मा ने भी अगर उनको आगे रखा, बाबा ने भी उनको आगे रखा, तो वो एक लीडर थी।
0: जी जी।
1: तो लीडर के रूप में सामने रही, तो इसीलिए जब लीडर इतना श्रेष्ठ,
0: ऑलराउंडर जिसको कहते हैं,
1: ऑलराउंडर कहीं माँ,
0: तो माँ भी है, लीडर भी है, और
1: प्रेरणा मार्गदर्शन, तो मैं तो यही कहूंगी कि आज के दिन में तो हमारा जो मस्तक है वो नतमस्तक हो रहा है, हमारे हमारे
0: जो व्यक्ति तो पर्सनालिटी बात करेंगे, जो भी एक बार देखा है अभी भी उसका फोटो जो देखे होंगे तो कितना चीज सीखने को
1: मिलता है, और शांति की संदेश देती थी वो, और कम शब्द जो भी
0: उनका पुरुषार्थ है, अभी इस जीवन में सकार में पुरुषार्थ किया,
1: पुरुषार्थ किया है,
0: मैंने जैसे सरस्वती बनी
1: बनी
0: मातेश्वर
1: सरस्वती जो है, जो शब्द निकालती है वो सिद्ध हो जाते थे, तो उनके भी एक एक शब्द जो उन्होंने निकाले, ज्ञान वीणा कहते हैं,
0: जैसे आज जो भक्ति मार्ग में मानते हैं सरस्वती को इतना मान्यता है
1: जी,
0: आपने जो बताया हम जो बात कर रहे हैं
1: जी,
0: उसी का पूर्व जन्म, मैंने उसका पूर्व जो तैयारी
1: जी,
0: जो ट्रेनिंग लिए सरस्वती के लिए,
1: सरस्वती
0: ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, गर्ल यूनिवर्सिटी में
1: जी,
0: और गवर्नमेंट ऑफ गॉड,
1: हाँ बिल्कुल
0: कोई ने मैंने गाड़ी में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ गॉड,
1: गॉड
0: गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जैसे लिखते गाड़ी में,
1: हाँ।
0: तो मैंने आश्चर्य हुआ, बोला हाँ ये तो सही बात है
1: जी,
0: गवर्नमेंट भगवान का जो सरकार है उसमें वो पढ़ाई ट्रेनिंग लिए
1: जी, बिल्कुल
0: तो, जैसे आज संगम युग जिसको कहते हैं, बाहर लोग तो समझ में भाई ये लोग सरस्वती ब्रह्मा विष्णु सब क्यों कहते, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी
1: है कि वो वर्तमान में उनका उस समय क्या जीवन रहा होगा, क्या उन्होंने अभ्यास किया, कम शब्दों में वो कितना
0: जबकि 1964 में वो अव्यक्त हुए, सॉरी छोड़े
1: हुआ, आज के दिन अव्यक्त हुए वो,
0: आज का दिन में
1: तो देखिए तब से अब तक प्रेरणा दे रही,
0: प्रेरणा दे रही
1: हमारा आदर्श।
0: जैसे आज हम मुरली क्लास में सुन रहे थे सभी बच्चों से, तो सभी हाथ में कोई देखा साकार में, तो दो तीन लोग अभी गिनती में रह गए
1: जी, दो तीन बहुत कम रह गए,
0: बहुत कम रह गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर को तो देखे होंगे सभी, बहुत लोग को देखे होंगे, लेकिन 64 और 69 में अंतर
1: हो गया,
0: तो आज अव्यक्त दिवस में उनको याद करने का ये लक्ष्य है कि हम क्यों, आप जो सुन रहे वो भी कुछ एक पॉइंट भी
1: प्रेरणा
0: ले, तो जीवन आप भी चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो
1: जी,
0: वो तो सृष्टि का जो आदि रचना किए ब्रह्मा का बच्चे है
1: जी,
0: अलौकिक और लौकिक
1: दोनों
0: माँ है,
1: माँ है बिल्कुल, माँ तो माँ ही है, माँ कैसी होती होगी,
0: फिर भी एक कुमारी
1: ओके माँ बनी, सबसे बड़ी बात ये
0: कैसे बनी,
1: बोर्डिंग का संभाला उन्होंने उस समय, और वास्तव में एक चीज मैं देखती हूँ जो मैं उनकी स्टोरी में कि मम्मा जब यंग आई थी, जब स्कूल में पढ़ती
0: जी
1: थी
0: मैम जी,
1: तभी वो गिटार बजाती थी, वीणा जिसको कहें, और जब वो वीणा और ओम ध्वनि करती थी वीणा पर, तो वो उनकी उसकी वो आवाज देखा जाए तो सरस्वती की आवाज, और उसके बाद जब वो समर्पित हुई यानी वो बाबा के संपर्क में आई और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया धक से, उनका रूप माँ का बन गया, तो कन्या से माँ बन गई, और माँ के गुण जो होते हैं वास्तव में
0: उनका लौकिक माँ भी उनको मम्मा
1: कहते थे, और उनके जीवन में वो दर्शते थे, दर्शन
0: उनसे भी बड़े भी उनको
1: माँ कहते थे,
0: जैसे हमारे दादी प्रकाश मणि सभी जितना सीनियर थे मम्मा से, तो ये भी एक
1: बहुत बड़ी बात है,
0: बड़ी बात उच्च स्टेज जिसको कहते हैं उनका सोच, मैंने
1: सोच से
0: जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी का जो सोच था
1: जी,
0: मैंने पहाड़ से भी ऊंचाई
1: बहुत ऊंची और फूलों जैसी कोमल,
0: क्या बात, तो इस गीत को हम सुनेंगे अभी लेते छोटा सा ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, खासकर आज स्पेशल डे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, क्योंकि यज्ञ माता और यज्ञ पिता तो नाम सुनते, 18 जनवरी हमारा यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, अव्यक्त दिवस जो संपूर्ण रूप में संपन्न होकर अव्यक्त हुए, उस दिन को सारा विश्व में मनाते हैं, और यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जिसको सरस्वती नाम से पूरा आज भी गायन पूजन करते हैं, तो उनका आज अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस है। तो आज इस कार्यक्रम को सुंदर में सजाए डॉक्टर बिनी बहन को, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है और स्पिरिचुअल लीडर है, मम्मा जैसे लीडर थी उनको पद चिन्ह पर भी चल पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो जाते जाते लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: रेडियो मधुबन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर कार्यक्रम आप प्रस्तुत करते हैं उसके लिए सदा के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूं।
0: जी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि आज हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम सुबह से शाम तक भिन्न भिन्न कार्यक्रम का माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहे तो रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम के जरिए यानी मेरा गांव मेरांचल के तहत आज आपको पांडव भवन जो कि आबुराज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय से आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए कोई अपना व्यक्तित्व को भाषण का माध्यम से अनुभव को कविता का माध्यम से और भिन्न भिन्न प्रकार के जो धारणा सेवा और ज्ञान योग को अपना पास जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए उनको मौका मिल रहा है तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ब्रह्मा कुमारी विवेक भाई है जो कि एक कवि है। कवि को कौन नहीं जानता है, एक सेकंड में अपना भाव और भावना को कविता का माध्यम से जनहित में प्रसारण करते हैं तो उनका अनुभव ज्ञान योग धारणा और सेवा को कैसे आत्मसात किए और जगदम्बा सरस्वती का जो ज्ञान को जो उनसे शिक्षा मिले उसको आज आपके पास रखने जा रहे कविता के माध्यम से। तो विवेक भाई आपको स्वागत करते हैं हमारा कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में और आज हम उनको श्रद्धांज सुमन अर्पण करते हैं जो कि प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है तो उनके ज्ञान योग उनका धारणा को आज कविता माध्यम से रखने जा रहे तो आपको स्वागत करते हैं, लीजिए उनका।
1: ज्ञान की देवी माँ शारदे वरदानी बन डूबतों को तार दे, योग के बल से बनी योगेश्वरी कर्मेंद्रियों की विजेता राजेश्वरी, संकल्प और कर्म का ऊंचा बोध दिया, सूक्ष्मता से योगी जीवन पर शोध किया, अम्बा माँ बन तेरा प्यार से संभालना, सदा याद आएगी मम्मा आपके दिव्य पालना, आज याद आता है विश्व सेवा में आपका संपूर्ण समर्पण, आज श्रद्धा के फूल माँ जगदम्बा आपको अर्पण आपको अर्पण आपको अर्पण। ओम शांति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। कविता का माध्यम से आपने जो अनुभव किए जो आत्मसात किए और ज्ञान योग धारणा का साथ विश्व हित में जैसे एक साधारण जीवन से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रथम प्रशासिका रूप में मानते हैं जानते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज्ञान युक्त बातें योग और धारणा सभी ब्रह्मा वश्च ब्रह्मा कुमार कुमारियां अंगे निभाते हैं तो आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप से सजाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक अनुभव भी हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो जिसको हम मामा कहते हैं उनका अंग संग साकार में पालना लिए हुए उनका भी व्यक्तित्व सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद आप सब सुन पा रहे स्पेशल दिन में खासकर मामा डे जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासिका कहते हैं उनका स्मृति दिवस के तहत आज सुनेंगे। अल्प विराम का बाद अनुभव को लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन,
2: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए

0: प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महान व्यक्तित्व कहे और बहुत पुराना सीनियर जो कि जिसका डे आज मना रहे हैं, मम्मा डे, जिसको मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती प्रथम एडमिनिस्ट्रेटर जो थे माता जगदम्बा सरस्वती का आज पुण्य स्मृति में आज हमारा भाई साहब को स्वागत करते हैं, ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई साहब को स्वागत करते हैं। बहुत सीनियर, सभी लोग जानते हैं जमुना प्रसाद भाई साहब को, क्योंकि बहुत सीनियर मम्मा बाबा का पालना ले साकार में। अभी तो अलौकिक हम उसको देखते हैं, आकार में उसको अनुभव करते, लेकिन साकार पालना का अनुभवी का धनी ब्रह्मा कुमार जमुना प्रसाद भाई साहब को स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम को सजाएंगे और खासकर मम्मा दिवस क्यों मनाते हैं विद्यालय में, क्या विशेषता, मम्मा एक ब्राह्मणी माने कुमारी होकर माँ कैसे बने, और भक्ति मार्ग में सरस्वती अभी भी पूजन गायन करते हैं, तो कैसे वो सरस्वती और जगदम्बा सरस्वती में क्या पार्थक्य है, क्योंकि आप अनुभव की माँ सरस्वती का साकार पालना लिए। हम तो फोटो आज भी पूजा करते हैं, सभी संसार दुनिया पूजा करते हैं, गायन करते हैं, हर स्कूल में शारदा माँ को याद करते, लेकिन वो सरस्वती जो फोटो में आज पूजा कर रहे हैं, वो सरस्वती सरस्वती कैसे बने, क्या विशेषता लिए उनका, कैसे पाए, उसका ऊपर में थोड़ा बताएं, क्योंकि वो साकार ट्रेनिंग पीरियड माँ जगदम्बा सरस्वती को आप देखे हैं, उनका पालना भी लिए हैं, तो आप हम तो खुशी महसूस कर रहे, धन्य महसूस कर रहे, हम माँ जगदम्बा सरस्वती को साकार में नहीं देखे, लेकिन आप साकार में अंग संग लिए, तो ऐसे क्या विशेषता आपका जीवन में छाप आया, जो विशेषता आपके पास ग्रहण किए, जो आज आप यहाँ तक पहुँचे। भाई साहब आपका स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार में, आप ओम शांति।
1: ओम शांति। मैं पहले अपना थोड़ा परिचय देता हूँ। मेरा नाम जमुना प्रसाद है और मैं बहुत छोटेपन से ही
0: जी,
1: जब मैं लखनऊ में पढ़ता था और हमारी उम्र उस समय सिर्फ 13 बरस की थी, तब ये बाबा का ज्ञान लखनऊ में मुझे मिला।
0: कौन सा ईयर होगा
1: ये? उस समय 59-60 का ईयर था,
0: 1959-60।
1: और हमारे से पहले हमारे परिवार में हमारे चाचा जी, चाची जी, अंकल आंटी और हमारे फादर मदर, उनको ये ज्ञान मिला था। पहले चाचा जी को ही मिला है लखनऊ में, उनसे सारे परिवार में धीरे धीरे सैपलिंग लगती गई। तो चूंकि हम लखनऊ में थे, छोटे थे, बालिकाल अवस्था से पढ़ते भी थे, तो नेचुरल है बचपन में इतना रुचि तो नहीं रहता आध्यात्मिकता में। लेकिन 1960 में वहाँ एक शिवरात्रि पर बड़ा फंक्शन था
0: जी,
1: जिसमें वहाँ चार दादियाँ थी, शांतामणि दादी, कृष्णी दादी, सती दादी, भगवती दादी। तो चारों दादियों का भाषण था फंक्शन में। उस दिन से लेकर के हम ये ज्ञान को पूरा सुनने लगे और रुचि लेने लगे, जिसको आज लगभग 66 ईयर हो गया। और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ऐसे तो उस समय का अनुभव बहुत लंबा है, लेकिन हमारे पिताजी की प्रेरणा से मधुबन में आने का हमें सौभाग्य मिला। हमसे पहले हमारी बड़ी बहन और हमसे छोटा भाई वो सरेंडर हुआ था,
0: वो
1: फिर हमने भी बाबा को लिखा था लेटर, तो बाबा ने हमको भी बुला लिया कि आ जाओ। और ये 20 जुलाई को मुझे मधुबन में 63 ईयर्स हो जाएगा,
0: क्या
1: बालिकाल से ही। वैसे तो मम्मा 61-62 में लखनऊ आई थी, कानपुर भी आई थी, लेकिन चूंकि इतना रुचि नहीं रहता था, इतना अंदर में ज्ञान की प्रकाशा नहीं थी कि मम्मा क्या है, मम्मा की वैल्यू क्या है, जिस कारण से मिलने में इतने रुचि रहे। हालांकि हमारे पिताजी खास मम्मा से मिलने गांव से आए थे लखनऊ, लेकिन वो समय तो बीत गया। फिर हम मधुबन आ गए बाबा के लिखने से, अर्थात बाबा ने मुझको लेटर लिख करके बुलाया। मैं नहीं समझता हूँ कि यज्ञ के इतिहास में कोई ऐसा होगा केस जो बाबा खुद
0: बुलाए,
1: किसी को लेटर लिख करके बुलाए।
0: मैंने भगवान स्वयं परमात्मा गॉड,
1: तब से वो लेटर भी मेरे पास रखा है। मैं मधुबन में ही रहता हूँ परमानेंट। यहाँ आया तो आज बाबा की बात तो

0: नहीं चल रही है, वो जनवरी तो बीत गया।
1: जी
0: आज मम्मा की
1: हाँ
0: पुण्यतिथि है, जिसको एनिवर्सरी कहते हैं।
1: अच्छा
0: तो भाई जी का जानने का विचार है कि मम्मा के साथ कैसे दिन बिताए। तो मेरे आने के बाद तो मम्मा लगभग 2 बरस यहाँ रही है। उसके बाद आप हुई थी 24 जून 1965 को। तो
1: ओ बहुत पुराना।
0: जी, और मम्मा साल में लगभग 6 मंथ टाइम टू टाइम, 2 मास मधुबन में और 2 मास टूर पर, कभी नॉर्थ कभी ईस्ट कभी साउथ वेस्ट, ऐसे टर्न वाइज टूर करती थी।
1: सेवार्थ
0: ज़्यादा
1: सेवार्थ
0: सेवार्थ बाबा भेजते रहते थे, क्योंकि सभी लोग तो मधुबन नहीं पहुंच सकते थे। तो बाबा कहते थे जाओ तुम वहाँ ज्ञान की वर्षा करो। तो मम्मा जाती रहती थी वहाँ के लोकल क्लासेस में, सबको ज्ञान सुनाती थी। और मम्मा की विशेषता की थी कि मम्मा एक बात, एक पॉइंट जो लेती थी, भाई परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, सृष्टि चक्कर क्या है, हम आत्मा क्या है, हमारा इस सृष्टि चक्कर में क्या पार्ट है, हमारा क्या रोल है, परमात्मा आत्मा का संबंध क्या है। तो मम्मा एक ही पॉइंट लेती थी। बाबा का तो आप सुनते हैं मुरली में कि एक पॉइंट लिया, दूसरी तीसरी सागर है,
1: नार
0: जैसे उछल खाता रहता सागर की, बहुत लहरें
1: क्योंकि वो तो
0: चलती
1: ज्ञान
0: हैं।
1: का सागर है।
0: हाँ, तो बाबा सुनाते रहते एक ही मुरली में, बहुत बातें बाबा सुना देते, ज्ञान की भी, योग की भी, धारणा की भी,
1: सेवा की
0: समझे,
1: भी
0: सेवा की, सब सुना देते हैं।
1: जी
0: और हम बच्चों की महिमा भी कर देंगे, हमारी कोई गलती होगी वो भी इनडायरेक्ट सुना देंगे, क्योंकि
1: ना
0: उसको हम सुन करके फिर अपने में परिवर्तन करें, इसलिए बाबा तो सब कुछ सुना देते थे। और बाबा वैसे भी बाबा पिता है, तो पिता की हैसियत से बाबा को सब पावर भी है। तो मम्मा जो है बाबा के कहने से सब जगह जाती थी, एक ही पॉइंट उठाती थी। समझो, आज आत्मा की बात ली तो आत्मा का विस्तार सुनाएगी,
1: आज
0: आत्मा कैसे निराकार है, छोटी है, बिंदु है, उसमें कैसे संस्कार होते हैं, कैसे पार्ट भरा है, कैसे वो पार्ट प्ले करती है। फिर जब तक शरीर है तब तक आत्मा का पार्ट है, शरीर खत्म हो गया तो आत्मा का पार्ट भी चेंज हो गया,
1: स्टेज
0: बदल हो गया,
1: स्टेजेस
0: माना वहाँ स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद जब वो दूसरा शरीर ग्रहण करेगी तो फिर उसका, इस तरह से मम्मा सब बातों पर, सृष्टि चक्कर क्या है, या जैसे
1: सृष्टि का आदि मध्य अंत
0: पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि,
1: तत्व
0: ये प्रकृति अनादि कैसे हैं।
1: ओ
0: दुनिया कहती ना कि सब चीज़ अनादि है, परंपरा है, लेकिन सब कुछ अनादि परंपरा तो नहीं है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, फिर नया जन्म होगा। तो ये सृष्टि, ये अर्थात जमीन जो है,
1: जी
0: पानी जो है, अग्नि जो है,
1: परिवर्तनशील
0: चांद सूरज है, ये

0: जो मुरली में गीत आता है, फिर मम्मा की वाणी चालू होती थी, मम्मा अपना डिस्कोर्स चालू करती थी कोई भी पॉइंट पर, और मम्मा वो पॉइंट विस्तार से डिटेल में सुनाती थी। तो मम्मा की ये विशेषता कि जब बाबा आ जाते थे या पुराने मकान में भी और नए हाल में भी, कभी भी
1: साकार
0: ब्रह्मा बाबा जब आ जाते थे, बाबा का भी टाइम फिक्स था 6:30 पे मॉर्निंग में डेली, तो मम्मा को फील होता था कि बाबा आ रहे हैं। पुराने मकान में तो दिख जाता था, नए हाल में दिखता नहीं था, लेकिन मम्मा को फील हो जाता था कि अब बाबा सामने आ गए, पैसेज में आ गए। उसी समय मम्मा की जितनी भी पॉइंट चली, डिस्कोर्स सुना दिया, एकदम से स्टॉप, माना जैसे कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, मम्मा वहीं कह देती थी अच्छा ओम शांति। कभी कभी बाबा कहते थे हाँ मम्मा सुनाओ क्या बोल रही हो, बाबा भी सुने मम्मा क्या सुनाती बच्चों को। तो मम्मा बहुत धीरे से, बहुत स्लो एंड स्वीट साउंड में कहती थी बाबा पूरा हो गया, बस उसके आगे मम्मा एक शब्द भी नहीं। आज हमको कोई कहे हाँ सुनाओ तो हम समझेंगे कि लोग मेरे लिए वंस मोर कर रहे हैं, तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन मम्मा में ये बात नहीं थी। स्टॉप मीन्स स्टॉप।
1: भाई साहब, इससे हमारा श्रोता मित्र सुन रहे हैं, तो खासकर जो स्टॉप माने स्टॉप, मैंने बड़ा जैसे आ गया, आपका टीचर जब आते हैं वो उसको दे देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई आप आ गए, आप इससे हमें क्या गुण सीखना चाहिए?
0: इससे हमें ये गुण सीखना चाहिए कि एक कहावत है हिंदी में कि क्या सूरज के आगे दीपक जला रहे हो। माना सूरज एक सूरज है
1: जी,
0: सन तो एक ही है ना, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो,
1: एक
0: ही सूरज से सारी दुनिया में रोशनी है, और अगर हम एक बल्ब जला देंगे उसके आगे तो क्या लाइट बढ़ जाएगी,
1: क्या बात।
0: तो इसी तरह से हमें यह सीखना है कि मम्मा बाबा का इतना रिस्पेक्ट रखती थी, बाबा आ गए मीन्स हम छोटे हैं, हम दीपक समान हैं, वो ज्ञान सूर्य है, स्टॉप। ज्ञान चंद्रमा, मम्मा को ज्ञान चंद्रमा कहते हैं, लेकिन चांद भी सूरज की रोशनी से ही चमकता है, अगर बीच में पृथ्वी आ गई तो चांद भी अंधेरा हो जाएगा। तो ज्ञान सूर्य से बाप मम्मा जो है अपने को चमकाती थी,
1: जैसे आपने बता रहे थे रोशनी, जैसे सूरज और चांद का।
0: तो ये तो मैंने बात बताई मम्मा के चमत्कारी व्यक्तित्व की।
1: बड़को
0: दूसरी बात, तो मम्मा में ये गुण था, जैसे मुरली की मैं बात बता रहा था, तो मम्मा जब बाबा आ जाते तो एक तो मम्मा मुरली स्टॉप कर देती, दूसरा मम्मा में ये बहुत अच्छा गुण था कि बाबा कुछ भी कहें, कोई सेवा बताएं, सर्विस बताएं, कहीं जाना है, कुछ स्थूल कार्य कराना है, या यज्ञ में कुछ करना है, किसको डायरेक्शन दिलाना है, कुछ भी हो, या कोई सेवा करानी है, तो मम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि ये कर लेंगे, हाँ बाबा कर लेंगे, या ये काम करवा देंगे। आज हम कहते हैं ठीक है कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, क्या जल्दी है, लेकिन मम्मा तुरंत उसको इमीडिएट वो काम होना चाहिए वो करती थी,
1: एक्शन में
0: परफेक्ट। हाँ,
1: ये इनका
0: किसी बात की देर नहीं। तो इससे क्या है, एक्चुअल रहना, पंक्चुअल रहना, ओबीडिएंट रहना, बाबा का रिगार्ड रहना, और जैसे बाबा मुरली में भी कहते ना कि हर कोई ये समझो कि बाबा अगर समझेंगे ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहा है
1: तो
0: आपको थोड़ा शक होगा कि बाबा है या शिव बाबा है
1: जी।
0: हमेशा समझो बाप और दादा है, ये ब्रह्मा भी मुरली विचार सागर मथन करके ज्ञान सुना सकता है,
1: शिव परमात्मा
0: दादियां भी सब उनमें थोड़ी शिव बाबा आता है, विचार करके ज्ञान सुनाती थी मम्मा भी ऐसे ही।

0: सुनाती थी, बाबा का ज्ञान सुन के विचार सागर मंथन करके फिर सुनाती। तो ऐसे ही बाबा को समझो कि बाप और
1: कभी भी
0: दादा
1: संशय
0: दोनों।
1: नहीं,
0: हाँ,
1: कभी
0: तो
1: डाउट
0: इसमें
1: नहीं,
0: किसी में
1: संशय
0: किसी को डाउट नहीं आएगा।
1: ये भी उनका एक
0: अभी
1: और।
0: थोड़ा दिन पहले ही मुरली में था कि ये यज्ञ है, बाबा तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की बातें सारी सुनाता, लेकिन यज्ञ को चलाने के लिए, कारोबार के लिए, फील्ड में देखभाल करने वाला, उसके लिए बाबा ने मामा को निमित्त बनाया। वैसे तो मामा भी कन्या थी, उसमें कोई शिव बाबा नहीं आता है, लेकिन
1: ठीक,
0: ये एक कोई बाबा का दिया हुआ गिफ्ट कहें, वरदान कहें, ब्लेसिंग कहें, क्योंकि ब्लेसिंग, गिफ्ट, वरदान
1: उसमें तो
0: कभी
1: कितने
0: मांग कर नहीं मिलता है।
1: स्टूडेंट थे मामा जो
0: तो
1: बने
0: उस
1: इस
0: समय
1: पर
0: तो
1: विश्वविद्यालय में
0: यहाँ तो थोड़ा ही स्टाफ
1: उस
0: रहता
1: समय
0: था,
1: मन
0: हम जब आए तब 15-20 का स्टाफ था यहाँ बस, तो
1: जी,
0: छोटा घर था
1: फिर
0: थोड़े
1: भी
0: थे।
1: मम्मा को सिलेक्शन
0: लेकिन हाँ नहीं, मम्मा को तो बाबा ने पाकिस्तान से ही मुकरर किया था ना,
1: जी,
0: वहाँ तो 300 भाई बहन थे,
1: वहां
0: बहुत
1: से
0: बड़ा, वहाँ से ही ये
1: सिलेक्शन करें।
0: मम्मा को ये टाइटल मम्मा मिला है, तो इसी आधार से मिला है।
1: ये तो
0: एक
1: परमात्मा
0: बात,
1: को पता है
0: हाँ ये सब ड्रामा में फिक्स है,
1: कितने कन्या
0: कुदरती,
1: कितने
0: सब
1: माताएं
0: ये
1: बहन, उनका लौकिक
0: नेचुरली
1: ब्रह्मा बाबा का
0: रिपीट
1: लौकिक
0: होता रहता है।
1: लड़की भी थी
0: हाँ,
1: ब्रह्मा बाबा का,
0: कृष्ण लौकिक को अलग किसी को बाबा ने
1: नहीं
0: नहीं
1: बना,
0: बनाया,
1: फिर भी जो टॉपर है,
0: तो हाँ
1: जो
0: उसको
1: पढ़ाई में
0: बाबा
1: ज्ञान
0: को
1: योग
0: मालूम था, ज्ञान
1: जो
0: योग में
1: धारण में
0: सब।
1: जो फास्ट आगे गए तो उनको रखा है।
0: मैं एक बात बताऊं, क्लास के अंदर आप लोग मुरली में सुनते हैं याद प्यार, डेली मुरली में पढ़ते हैं सुनते हैं, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। तो उस समय सिस्टम था, बाबा और मम्मा जब एक साथ मधुबन में रहते थे तब एक सप्ताह बाबा याद प्यार देते थे। ये आज की किसी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को
1: जी
0: नहीं मालूम है, जो उस समय के होंगे उनको मालूम है बस, जिन्होंने बाबा मम्मा को एक साथ देखा है। और एक सप्ताह बाबा याद प्यार और एक सप्ताह मम्मा याद प्यार देती। तो बाबा का जब वीक पूरा हो जाता था संडे टू सैटरडे, तो जब बाबा रूम से आते थे क्लासरूम में, उस समय लच्छू दादी रास्ते में बाबा को रिमाइंड कर देती थी, बाबा आज से मम्मा का टर्न शुरू होगा। बाबा आके मुरली पूरी करते, अच्छा बस मुरली पूरी हुई, अच्छा हो, और
1: इसका
0: इशारा करते मम्मा,
1: आ जाता
0: तो इतना कहते ही मम्मा को तो मालूम होता है, मम्मा कहती हाँ बाबा। तो हम लोगों में क्या आदत होती है कि नहीं नहीं बाबा, या जो हमारे से बड़ा बैठा होगा साथ में, हम कहेंगे नहीं नहीं आप ही याद प्यार दे दो ना, आप ही कंटिन्यू करो ना, आप तो मेरे से बड़े हैं, हम आपके आगे क्या है, मेरे बोलने से क्या होगा, हम क्या याद प्यार, ऐसे ऐसे कहानियां बैठ के करेंगे। बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ रिगार्ड,
1: जो बड़े
0: ये भी
1: बोले
0: डिसरिगार्ड हो गया।
1: जिस
0: तो मम्मा क्या
1: मम्मा
0: करती थी, बाबा ने इशारा किया और मम्मा कहती यस बस, और कुछ नहीं,
1: आप ही
0: हाँ हूँ नो ना,
1: आप
0: कैसे
1: नहीं,
0: वैसे ऐसे वैसे नथिंग,
1: ओ
0: समझा, हाँ हाँ बाबा बस,
1: जो भी बोले
0: कुछ
1: बस
0: बोला बाबा ने,
1: बाबा
0: हाँ बस,
1: रिगार्ड,
0: उनके लिए जैसे कि भगवान डायरेक्ट बोल रहा है, हाँ करती
1: हाँ जी का
0: और
1: पाठ
0: याद प्यार देती और नमस्ते करती।
1: वैसा बहुत
0: तो
1: आंसर है
0: ये सब विशेषताएं मम्मा को आगे बढ़ाने में बहुत, क्या कहे, पीछे से कोई पुश करता है ना आगे बढ़ने के लिए, तो हिम्मत, उमंग, उत्साह, आगे परफेक्ट होने के
1: पालना।
0: लिए, पास विद ऑनर होने के लिए बहुत मदद किया है मम्मा को। और कुछ जो है नेचुरल गिफ्ट भी होती है,
1: और उनका
0: हाँ
1: विशेषता देखते हो, ये कर पाएगा कर पाएगी, उनको पता है,
0: जैसे
1: जैसे दादी प्रकाश मणि को नहीं दिए
0: कोई बच्चा आज 98-99% लाता है, तो कुछ उसकी
1: और
0: मेहनत है
1: कुछ
0: और कुछ
1: सपोर्टिंग।
0: उसके अंदर भरा हुआ संस्कार है जो उसको आगे बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। उसको कोई कहे तुम क्या करेगा, आज कॉलेज नहीं जाओ, एक दिन नहीं जाओ, 2 दिन नहीं जाओ, क्या
1: राइट
0: करे,
1: जी,
0: लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे जाना है। तो ऐसे करके मम्मा सबसे आगे गई,
1: ऐसे तो
0: नंबर वन में गई, समझा,
1: सॉरी,
0: ओम
1: इतना इतना
0: शांति।
1: चीज भाई साहब का पास है, इतना सागर का ज्ञान को हम 40 मिनट में कैसे समा पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट एंड स्वीट में दिए, जो आवश्यकता है वो दिए, बहुत अच्छा लगा। और हमारा श्रोता मित्र बार बार सुन रहे होंगे बाबा शब्द, माँ शब्द मामा शब्द और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्योंकि नानबी के जो ज्ञान में नहीं चलते ओम शांति को जानते नहीं तो उनको लिए मैं यही कहना चाहूँगा जैसे हमारा भाई साहब क्योंकि हमें पूरा बाबा ही हमारा परमात्मा हम प्यार से बाबा कहते इन गॉड फादर कहते तो हम पिता को बाबा कहते प्यार से भले हमारा बीके जो ज्ञान में चलते हैं उनको तो बाबा में बहुत लगन है कोई उससे दिल से हटा नहीं पाएगा कितने भी कोई मीडिया आए लेकिन बाबा शब्द आएगा ही क्योंकि बाबा मतलब हम प्यार से परमात्मा कहते हैं भगवान कहते ईश्वर कहते आला कहते तो हमारा श्रोता मित्र जो सुन रहे इस पूरे इस इंटरनेट का माध्यम से ऐप का माध्यम से FM का माध्यम से जो भी साधन मीडिया का सुन रहे सभी को आज का दिन में कुछ जो हमारा भाई बहन आपके पास रखे अपने विचार को उनका पद चिन्ह पर चल के आज यहाँ तक पहुँचे और करण करावन हर तो परमात्मा जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं श्री बाबा तो उनको भी धन्यवाद क्या कहते जाते जाते भाई साहब क्या कहना चाहेंगे क्या लगा आपको और आज आपको सुन रहे हैं सभी
0: हम सबको यही कहेंगे कि आज मामा को अव्यक्त हुए 61 ईयर्स हो गया और फिर भी हम सभी मामा को भूले नहीं हैं तो क्यों नहीं भूले इसीलिए क्योंकि आज हम उनके शरीर को नहीं लेकिन उनकी आत्मा में जो गुण थे जिसको हम सभी आज तक भी फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे ही हर एक भाई बहन बाबा के सभी बच्चे अपने में फॉलो करें और अपने जीवन को भी ऐसे ही जैसे आज 61st एनिवर्सरी मम्मा की हम मना रहे हैं ऐसे ही हमारे जाने के बाद में दुनिया हमको भी याद करे गुणों से याद करे हमारे शरीरों से हमको नहीं याद करे हमारे रूप से हमको याद नहीं करे लेकिन हमारे अंदर क्या गुण है क्या कर्म हमने किया है माँ बाप को हमने कैसे फॉलो किया है ऐसे आप सभी भी फॉलो करें यही शुभ भावना सभी के लिए है हमारी
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को इतने सुंदर में और एक अनुभव भी इतना साल का अनुभव किसी से मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं किया लेकिन आज पहला बार रेडियो कार्यक्रम में उनको स्वागत किया और भाई साहब का जो हांज का पार्ट हांज का इतने व्यस्तता का समय में भी अपना समय दिए ये हमारे लिए और हमारा श्रोता मित्र के लिए तो लॉटरी है मैंने ज्ञान का खुराक है क्योंकि ये ज्ञान हमेशा किसका पास नहीं है और परमात्मा से जो डायरेक्ट साकार पालना लिए हुए हैं ब्रह्मा बाबा जिसको आज फाउंडर कहते हैं ईश्वर विश्वविद्यालय 1936 से आज तक वो संस्था आज फलीभूत विशाल वटवृक्ष हो गया और उसका पालन हम तो 2002 में ईश्वर ज्ञान को लाए लेकिन आप तो कितने साल पहले 1950 तब उस समय तो आपको मिल गया था तो जो भी है समय अनुसार सबको मिला तो इस कार्यक्रम का माध्यम से रेडियो माध्यम से आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे और आपको जब मम्मा समान दिव्य गुण में भरपूर होना है तो जरूर नजदीक सेवा केंद्र जो है इस पर विश्वविद्यालय का ब्रांचेज जैसे हम ट्यूशन जाते हैं डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते तो आसपास जहाँ भी आपको मिलेगा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर जाएंगे निःशुल्क आपको ये ज्ञान मिलेगा ज्ञान मतलब समझ जो हमारा जीवन को अच्छा बना देता है भक्ति तो बहुत की है भक्ति का फल ज्ञान ज्ञान का मतलब समझ समझ का मतलब करना नहीं करना आपका हाथ में लेकिन हमें कोई उलाना ना दे जो हमें कोई बताया
0: नहीं
1: इसी हिसाब से आपका पास हम रखें कुछ भी इधर उधर होगा तो आप थोड़ा मेकअप कर देना हमें दीजिए इजाजत और भाई साहब को जमुना प्रसाद भाई साहब जो कि ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय का जैसे आज मैं सुन रहा था जो परमात्मा का ज्ञान को तो कौन कौन मम्मा जो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का अंग संग मैंने शरीर मैंने साकार रूप में व्यक्ति जो थे उस समय मिले सिर्फ तीन का नाम आया भाई साहब आपका नाम आया और शशि दीदी का सिल्लू बहन का नाम आया और कोई उठाने क्योंकि तब तो मुझे थोड़ा हमारा भी सौभाग्य होगा हम तो साकार में अफसोस तो नहीं कर रहे लेकिन उनका पालना आज भी हमें आकर्षित उनका चेहरा उनका व्यक्तित्व तो आज भी हमें बहुत आकर्षित करता है इसलिए तो हर विद्यालय में जहाँ शिक्षा अनुष्ठान में माँ सरस्वती का फोटो रखकर आज भी उनका महिमा गान करते तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए हमें दीजिए इजाजत फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अच्छा धन्यवाद

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ कार्यक्रम हमराही लेकर के। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। और कार्यक्रम हमराही के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम दिव्यांग साथियों की जिंदगी पर आधारित है और किस प्रकार उनको अपने सामाजिक विकास में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार और उन चुनौतियों से हमारे साथी पार पाते हैं, समाज का, परिवार का, उनके जीवन साथी को ढूंढने में क्या योगदान रहता है, तो यही सब जानने समझने का प्रयास हम इस कार्यक्रम

0: संस्था है, वैसे मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा हूँ, परंतु ये एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग जनों को उनकी क्षमताओं से अवगत कराता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर नए नए कुछ न कुछ, या जिसे ये कहूँ कि रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है। एक सुना होगा आपने, पाठ था हम लोगों के एमपी में उपमन्यु तीसरी या चौथी में
1: जी,
0: उसमें ये था कि वो के उसमें शुरू में लिखा था, बहुत समय बताऊंगा, कि प्राचीन काल में एक धौम्य नाम के महान ऋषि रहा करते थे जो अपने शिष्यों को पढ़ाई के साथ साथ में जीने की कला भी सिखलाते थे
1: जी।
0: तो ऐसे ही जीने की कला रिकॉर्डिंग क्लब भी हमारे दिव्यांग साथियों को सिखाता है। कंपटीशन के इस युग में एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ता और कंपटीशन करवाने का जो एक अनोखा रचनात्मक कार्य करता है, उसके लिए मैं पुनः हम दोनों, मैं और वाइफ की तरफ से संदीप सर का, रिकॉर्डिंग क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
1: जी जी जी, बहुत धन्यवाद कैलाश जी। हमारा प्रयास यही है और रेडियो मधुबन का इस के साथ मिलकर के हमारा यही प्रयास है कि हम हमारे दिव्यांग साथियों की आवाज को मुख्य धारा के लोगों तक लेकर के जाएं। तो हम चाहेंगे,
0: बहुत दिन से चाह रहे थे कि ये एक ऐसा प्रोग्राम शुरू हो जिससे एक दूसरे को सुनने, समझने और सीखने का एक मौका मिले। हमारे इंदौर में पहले एक हमारा ही कार्यक्रम चलता था जिसमें हमको भी मौका मिला था आकाशवाणी के माध्यम से, वो भी एक अनूठा प्रोग्राम था और ये आपने हाई लेवल पे जो चालू किया, इसके लिए पुनः बधाई के पात्र सब।
1: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी जिंदगी के बारे में जरा बताएं, आपकी शिक्षा वर्तमान में क्या कर रहे हैं और कौन सी दिव्यांगता से ग्रसित हैं आप?
0: जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैलाश मालवी इंदौर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पे एक श्रीखंडी गांव नाम का एक छोटा सा कस्बा है, मुश्किल से 100-200 घर होंगे वहाँ पे
1: जी।
0: तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 1978 में और 3 वर्ष की उम्र में मुझे चेचक हुआ, छोटी माता जिसको बोलते हैं
1: जी।
0: उसमें मेरे अलावा 2 मेरी काका की लड़कियां और 2 मेरी बुआ की लड़कियां, ऐसे 5 लोगों को हमको चेचक निकला और उसका जो भार पड़ा वो सारा भार मुझ पे पड़ गया और उन चारों बहनों को तो अच्छा हो गया और मैं बाद में डॉक्टरों के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि आप पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हो गए
1: जी।
0: तो ये सब चीज देखने के बाद में परिवार के लोग निरक्षर तो थे, पिताजी किसान थे तो कुछ समझ नहीं पाते थे। तो एक सर थे हमारे यहाँ, एक स्कूल चलता था हमारे यहाँ, एक चेतमल सर थे, तो वो स्कूल में पढ़ाते थे। वो हमारे जो प्रिंसिपल जो रिटायर्ड है आईपी पाटीदार साहब, उनके साथ में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे वो
1: जी।
0: तो उन्होंने ये कहा कि यार एक स्कूल है वहाँ पे इंदौर में, मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, उसमें इसको भर्ती करवा दो इस बच्चे को। अच्छा, उस बीच ये हुआ कि मेरी माँ का भी देहावसान हो गया था
1: डाइड
0: होने के बाद में।
1: अच्छा,
0: तो जी, तो उसके अलावा फिर मेरे जीजाजी थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, एमपीबी में थे, उनका एक भतीजा था मांगीलाल, तो वो उनके साथ में दिव्यांग साथी थे श्री आधार सिंह चौहान
1: जी,
0: वो गुजराती कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने अवगत कराया, बताया कि इस तरह से ब्लाइंड पढ़ते पढ़ाते हैं। तो जीजाजी ने मुझे 1984 में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में एडमिट करा दिया पहली कक्षा में
1: जी।
0: मुश्किल से 5-6 साल की उम्र रही होगी
1: जी।
0: और पढ़ते पढ़ते परिसर की कमी थी तो 1-1.5 साल बाद इंदौर में प्रकाश नगर स्थित नौलखा के पास में डॉक्टर हेलेन केलर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक स्कूल था, वहाँ उस परिसर में हमको शिफ्ट कर दिया। उस शिफ्ट के दौरान मैंने दूसरी पास करी और गर्मी की छुट्टी में मैं गया घर में अपने, 30 अप्रैल को पालक डे हुआ हमारा और हमें छुट्टी दे दी 2 महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टी, पहले 2 महीने की छुट्टी देते थे। तो उस बीच 3 मई को पूर्ण दृष्टिहीन तो था मैं, शनिवार का दिन था, सायं 5-5:30 बजी होगी तकरीबन, तो एक ऐसा कुछ मालिक का कर्म हुआ या विधि का विधान हुआ, वो उसकी वही जाने, आप हम तो नहीं समझ पाते पर क्या हुआ, कोई कुछ हम समझ नहीं पाए उस चीज को। और एक एक ऐसा मेरे जिंदगी में दौर आ गया कि कम से कम 25-30 फीट गहरा कुआ था,
1: ओहो,
0: उस कुएं में मैं गिर गया।
1: अरे बाप रे,
0: जब उस कुएं में गिरा तो सूखा कुआ था वो
1: जी।
0: तो उस कुएं में ऐसा गिरा कि मेरे आंखों में चोट आई, दांत टूट गए 3-4, होंठ में चोट आई, पेट में चोट आई। 1 महीने तक हमारे MYH हॉस्पिटल है इंदौर में, उसमें

0: एडमिट किया गया और साधन तो कुछ थे नहीं, बड़ी मुश्किल से किया। एक डॉक्टर एमवी शिरोडकर हमारे संस्थापक थे, जब वो उस समय वहाँ सर्विस करते थे ये MY हॉस्पिटल में
1: जी।
0: और एक डॉक्टर हमारे एक वार्डन थे HL खरे साहब, उन्होंने मुझे उस समय 5 बॉटल खून दिया। तो मुझे कोई पूछता है संदीप, ईमान से संदीप साहब मैं बताना चाहूंगा, ये मन की आवाज है, यदि मुझसे कोई पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 4 जुलाई से बताने से पहले मैं उससे यही बताता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 मई है। तो 3 मई का मुझे पुनः जन्म हुआ मेरा।
1: एक तरह से आपका पुनर्जन्म हुआ वो।
0: अच्छा, ये जो मेरे जी मेरे ये जो मेरा नाम जो आप कैलाश जान रहे ना, इसकी भी एक कहानी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसको भी सुनाऊं। ये मेरा नाम असली नाम नहीं है मेरा, ये दूसरे का नाम का उपयोग कर रहा हूँ मैं।
1: जी
0: नाम का भी क्या था, इसमें भी ऐसा था कि हम 5 भाई और 5 बहनें थी
1: जी।
0: तो उसमें जो कैलाश था एक भाई मेरा, मेरे से बड़ा, वो गांव की, जैसे मैं कुएं में गिरा और मैं बच गया
1: जी,
0: वो होदी में गिरा और वो डूब गया और मर गया।
1: ओ।
0: उसके बजाय मुझे नाम उसका कैलाश था, तो उसके नाम से मुझे बुलाते। मेरा तो शायद मोहन या और कुछ भी होगा, मैं इतना नहीं जान पा रहा हूँ, परिवार से चर्चा करना पड़ेगी। और उसका उसका नाम धारण किया है मैंने आज, तो वो मुझे मिल रहा है। तो ऐसी संघर्ष की और दुख भरी कहानी मेरी चलती रही, 8वीं तक मैं पढ़ता रहा डॉक्टर हेलन केलर दृष्टिहीन माध्यमिक विद्यालय में। और मैं मालवा का और इंदौर का इतना आदि था कि बाहर कहीं जाना नहीं चाहता था 8वीं के बाद में। हमारे पास कोई ये इंदौर में कोई ऐसी संस्थाएं भी नहीं थी 8वीं के बाद पढ़ने के लिए, तो मुझे मजबूरी में भोपाल जाना पड़ा 9वीं कक्षा पढ़ने के लिए। दृष्टिहीन कल्याण संघ 1250 शिवाजी नगर में स्थित है भोपाल में संस्था, वहां मुझे जाना पड़ा 9वीं में। परंतु वहां पे भी कुछ इस तरह से रहा कि वहां के पानी में थोड़ा कैल्शियम की कमी है, तो मुझे वो सूट नहीं हुआ और आए दिन मैं बीमार होता रहा। बीमार होने के साथ साथ मैं वहां 1 साल ही पढ़ पाया और वापस इंदौर आ गया। फिर मैंने बंगाली स्कूल में एडमिशन लिया 10वीं में, और 10वीं तक का स्कूल था वो, इसलिए मुझे 11वीं 12वीं नूतन स्कूल से पढ़ना पड़ी। और धीरे से फिर कॉलेज में आया आर्ट एंड कॉमर्स में, तो पढ़ाई में मेरा कोई ज्यादा विशेष मन नहीं लगता था, मेरी कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं थी और कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मुझे IAS अधिकारी बनना, मुझे तो एक रोजी रोटी मिल जाए, क्योंकि परिवार का कोई ऐसा इतना वो नहीं था, सब लोग घर में
1: मतलब बोला कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी
0: आपकी, उनका माहौल था। हाँ, और जो मैंने मांगा सच्ची श्रद्धा से मालिक से, वो मुझे मिल गया। मेरे घर में हमेशा शुरू से मैंने टेलीफोन के डिब्बे ही देखे, तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, क्योंकि भाई और मामा और भी भाई जितने परिवार सब लाइनमैन थे टेलीफोन डिपार्टमेंट में ही, तो मैं उससे टेलीफोन ऑपरेटर बन गया। और टेलीफोन ऑपरेटर की भी थोड़ी सी ऐसी कहानी है कि मैं करता रहा, पढ़ता रहा, ट्रेनिंग वगैरह करी और ट्राई करा। मैंने 97 में इंदौर भोपाल एक किया, राजधानी भोपाल है हमारे MP की, तो वल्लभ भवन में सचिवालय माना जाना एक पद सिलेंडर किया, उसका क्या बोलते हैं LDC का, और टेलीफोन ऑपरेटर का पद मांगा। इसमें भी हरिओम पंडित जी का बड़ा सहयोग रहा, मैं बड़ा एहसानबद्ध हूँ सबका, सबका ऋणियों क्या पता किसी का कब ऋण चुका पाऊँ नहीं चुका पाऊँ, परंतु एहसानबद्ध हूँ। उन्होंने भी मुझे सर्विस के दौरान बहुत योगदान रहा। तो 12 अक्टूबर 1999 को वाणिज्य कर विभाग, जिसको आज GST डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में
1: जी।
0: और फिर रोजी तो मिल गई पर रोटी नहीं मिली, तो रोटी के इसमें थोड़ा सा था कि यार कोई हमराही ऐसी मिले जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरा सर ओवर कॉन्फिडेंस था, नौकरी में तो नहीं था पर इसमें हमराही में ओवर कॉन्फिडेंस था, कोई अच्छी आंख वाली मिले, बढ़िया गाड़ी पे घुमाए ले चले थोड़ा बहुत इधर उधर, इस टाइप का था। तो सर उसमें क्या मालिक ने सुनी भी ना, तो 19 फरवरी 2000 को क्या हुआ कि मैं पहले ये कहा करता था राष्ट्रीय दृष्टि संघ को, हमारे MP वेलफेयर को, सबको कहा था कि यार हमारे भाइयों को शादियां करना रहती है, परिवार के लोग तो ध्यान देते नहीं है, आप लोग को ऐसे सम्मेलन वगैरह करो या कुछ करो। अच्छा, गांव के लोग क्या बोलते थे सर, मेरे मामा वगैरह सब बोलते थे यार हमने सुनी भाई वो स्कूल वाला सब तुमके पढ़ावेगा लिखावेगा साथ में फिर नौकरी भी देगा। मैंने कहा हाँ मामा, तो बोले नौकरी के साथ में फिर ब्याह भी बीच कराए। मैंने हाँ हाँ ब्याह भी बीच कराएगा, तुमके कोई चिंता फिक्र कहीं नहीं करने, सब ब्याह भी बीच कराएगा और नौकरी भी बीच देगा और पढ़ाएगा लिखाएगा,
1: हाँ, सारा काम कर देगा वो, चिंता ना करो,
0: सारा काम बीच करेगा, तुमके कोई कहीं नहीं करना है, सब बीच करेगा। तो संघ वालों ने सर कुछ सुनी नहीं, वो कुछ दृष्टिहीन कल्याण संघ भोपाल वालों को कुछ बात जम गई, वो कुछ लोग तैयार हो गए, तो उन्होंने 19 फरवरी 2000 को एक सम्मेलन कर डाला, परिचय सम्मेलन। परिचय सम्मेलन क्या, विवाह सम्मेलन हो गया, परिचय तो कुछ नहीं हुआ, विवाह सम्मेलन, क्योंकि वो भी बेचारे उत्साही लाल थे और हमको तो जरूरत थी सही। तो उसमें
1: यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा।
0: जी जी जी,
1: ये कहानी जो है वो तो सुननी है, क्योंकि कार्यक्रम भी का नाम भी वही है और उसी पर आधारित है, लेकिन एक बार बीच में हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा लीना जी से परिचय करवाया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बताएंगे ना, मैं 20 तारीख का, मैं 19 तारीख का बताऊं।
1: नहीं वो तो बता दो, लेकिन वो अपने बारे में भाई, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई क्या की है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मूल रूप से, जरा ये, और उनको कौन सी दिव्यांगता है, जरा ये हम एक बार जानना चाहेंगे। नमस्कार
2: जी सर, मैं विकलांग हूँ
1: जी,
2: पैर से।
1: अच्छा।
2: हाँ, ज्यादा विकलांगता नहीं है, हल्की सी मेरी है, मतलब पैर की जो एड़ी है ना
1: जी,
2: वो नहीं टिकते। हम क्या, दो बहन जुड़वा थी
1: जी जी जी,
2: ये मतलब हाँ, दो बहन जुड़वा हो गए थे, तो वो तो अच्छी है, उसको कोई परेशानी नहीं है
1: जी।
2: हाँ, तो मेरे को वो बचपन से मतलब ये पैर की परेशानी है
1: जी जी जी। अच्छा, और आप कहाँ से?
2: मेरे को चार बहन है, मैं उधर महाराष्ट्र तरफ हूँ, नागपुर तरफ
1: से है। ओके,
2: हाँ, चार बहन है, भाई है, मम्मी पापा है, पूरा परिवार है।
1: ये हमारा एक इत्तफाक है कि पिछले कार्यक्रम में भी जो हमारी मेहमान थी वो भी एक महाराष्ट्र से थी, और इस बार आप भी महाराष्ट्र से हैं जी। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ कैलाश सर, तो अब आप अपनी कहानी जारी रखे।
0: जी जी जी, तो सर क्या हुआ की 19 तारीख को मैं और मेरे को साथी लोग, मेरे बड़े भाई और एक भांजा जमाई, हम लोग सब गए और देखने के लिए कि कोई यार लड़की मिले ठीक ठाक, अच्छा व्यवस्थित देखे जरा।
1: भोपाल गए
0: आप? भोपाल हम लोग सब गए और बहुत सारे ब्लाइंड साथी लोग गए। तो उसमें 19 फरवरी को हम लोग गए अपने पैसेंजर ट्रेन से, और 20 को, हाँ 18 को गए होंगे, और 19 को बात हुई परिचय की, सबसे मिले जुले एक दूसरे से, कोई क्या मिले कोई कैसा मिले कुछ। मेरे का यार महाराष्ट्र से ये लोग कुछ लोग आए थे, तो दो चार लड़की आई थी, तो उसमें ये जो लीना जी, ये सबको थोड़ी अच्छी लग रही थी और समझ में आ रही थी, और मैं और किसी और को कहीं देख रहा था, और मेरे दिमाग में ये था अरे यार हिंदी आती नहीं, पढ़ाई का जो जगह है, मैं भी कम पढ़ी लिखा हूँ, और ये भी थोड़ी बहुत कम पढ़ी लिखी, तो दिक्कत पढ़ाई की नहीं है, दिक्कत बोलने की है,
1: दिक्कत समझने की है, भाषा समझने की है।
0: भाषा भी चलो समझ लेंगे, मेरे टीचर सारे मराठी थे, परंतु दूरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, क्योंकि मैं भोपाल से आगे कभी अकेला गया ही नहीं, तो नागपुर न यवतमाल न काचनगांव न हिंगन घाट ने सब महाराष्ट्र के दौरे कैसे करूंगा। पर वो भाई लोगों को कुछ ऐसा लगा कि नहीं भाई लड़की तो यही अच्छी है, इससे कर ले तो ज्यादा सही है।
1: नहीं लेकिन एक बात इसमें छूट गई कैलाश सर पीछे, आपने कहा कि भाई आप भी सपना तो ऐसा देख रहे थे कि कोई मतलब कटरीना कैफ और कोई दीपिका पादुकोण टाइप की मतलब मिले आपको,
0: देख लिया ना क्या था, एक जरा सा प्रॉब्लम थी केवल इसमें, वो तो सब थोड़ी सब इसके पहले और भी सब देख ली थी।
1: अच्छा।
0: पर उनको वेट नहीं हुआ।
1: अच्छा,
0: कुछ मेरे को वेट नहीं हुआ।
1: लीना मैडम कौन से नंबर की थी फिर?
0: अरे अब नंबर तो फिर अब लड़े झगड़े हो जाएंगे नंबर में, तो अब नंबर वन पे रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर
1: तीन चार कार्यक्रम रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
0: हाँ, फिर कड़ी चावल भी खाना है, दाल बाफले भी खाना, सब करना ही है, तो कैसे करेंगे।
1: चलिए क्या बताइए, आप आगे बताइए।
0: जी जी, तो सर हुआ क्या उसमें कि सब कुछ हो गया और तय हो गया, भाई लोग मानने लगे। मैंने कहा रुको सर, देखो सर मैं कल सीएम साहब आने वाले। अरे बोले हम के सीएम से कई कर लो, हम कह तू ब्याह करे तू रुखा। मैंने कहा यार ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यार, दादा ऐसा कोई करे? बोले हाँ अस्वस्थ है। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर और भी साथी लोग सब कहने लगे ठीक है यार, मैं कह विकलांग और दूर भी है, चलो विकलांग की दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा दूर है तो बोले सब हो जाएगा, कहाँ रोज रोज जाना है। तो सब हो गया सर, 20 फरवरी 2000 को परिणाम सूत्र में बन गए, या इसको ये कहे कि
1: मतलब चट मंगनी इसको पहुंचे और 20 को बंद भी गए, परिणाम सूत्र में ही डायरेक्ट
0: सीधे परिणाम सूत्र में बन गए। मैंने कहा ना वो विवाह सम्मेलन था, परिचय सम्मेलन नहीं था वो, तो परिणाम सूत्र में बन गए उसको। मैं ये कहूंगा कि चट मंगनी और पट ब्याह हो गया।
1: उस कार्यक्रम से पहले कभी सर लीना मैम के बारे में कहीं सुना था आपने या कुछ
0: नहीं? नहीं नहीं नहीं, अरे ना मैंने इनके बारे में कुछ सुना ना, इन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना, वो तो तुरंत सब
1: कुछ ऑन द स्पॉट
0: हो गया सर। हाँ अच्छा, ये लोग भी ना, तो मैंने महाराष्ट्र जाके कोई सर्वे किया कि उनका घर कैसा है, कहाँ खेत बाड़ी कितना, क्या बोल रहे, क्या बता रहे, क्या कर रहे, कोई कुछ नहीं ना, इन्होंने इंदौर आना वो समझा इनको, जो भी सब भरोसे पे खेल हो गया पूरा।
1: वाह बड़ी गजब, मतलब बहुत फास्ट जमाना, मतलब
0: बिल्कुल
1: 4G का जमाना आज है, 5G का जमाना, और आपने उस समय ही कर लिया ये सब काम।
0: अरे उस समय 5G 6G सब आ गया तो। अच्छा क्या था कि सब टेलीफोन ऑपरेटर था ना, तो सबके दिलों के तार से तार जोड़ने का काम करता था, तो वहां भी दिल के तार से तार जुड़ गया, और क्या हेलो हाय बाय वही सब हो गया।
1: आपके लिए पसंद किसने किया लीना मैम को?
0: भाई थे ना मेरे बड़े वाले भाई थे और भांजे थे।
1: अच्छा
0: और हम लोग थोड़ी बहुत देर बात कर रहे, तो क्योंकि इनको मराठी आती थी, एकदम हॉस्टल से आई थी शुरू से, तो ज्यादा कोई कुछ बोलो तो हाँ बस ये वाली बात होती थी, तो मैं ठीक है यार सब कुछ बोल के, आवाज अच्छी है, यार ठीक है आवाज भी अच्छी है, अब बोलेगा हाँ उसे आवाज क्या समझ पड़े, तो वो भी चलो ठीक है देखेंगे।
1: तो घर परिवार की तरफ से ये तय था, मतलब आपके घर वालों ने मान करके चल रहे थे कि भाई जो जिस संस्था में पढ़ाई की है वही सब कर देंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसके बारे में करने की।
0: हाँ वो तो उनको तो कुछ समझते थे, उनको क्या, और समझे भी तो उनको क्या, ठीक है हम कहाँ देखेंगे यार, ये सब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था पहले।
1: और आपको भी एहसास हो गया था कि भाई जो कुछ करना है मुझे ही करना है?
0: हाँ वो भाई तो एक उस हिसाब से फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो भी गए थे, पर वो बाकी हमारे साथी ब्लाइंड साथी लोग ज्यादा देख रहे थे उसमें, उनको ज्यादा इंटरेस्ट था इसीलिए उन लोगों ने, अच्छा उस समय 4-5 जोड़े बन गए थे और उनको ये सब इंटरेस्ट था, वो लोग सब कर रहे थे
1: जी।
0: तो ऐसे धीरे धीरे सब चलता रहा और फिर इंदौर आ गए, और इंदौर में आके किराए का मकान था, उस किराए के मकान में रहे तो बहुत संघर्ष किया, ऊपर रहते थे हम लोग तो नीचे से पानी लेके आना इनको थोड़े था प्रॉब्लम पैर में, फिर भी उसके बाद भी कोशिश करी कि नहीं भाई ठीक है, एकदम से महल तो मिलेगा नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा अपने मन से जो और किया है तो करना पड़ेगा, पर फिर मालिक का करम रहा अच्छा, अधिकारी और सब लोग खूब अच्छे थे, तो बहुत ही जल्दी हमको क्वार्टर भी मिल गया डिपार्टमेंट का, उस क्वार्टर में रहे और चलते चलते ऐसे जिंदगी चलती रही और एक दूसरे को सुनते रहे समझते रहे, होता रहा चलता रहा इस टाइप से।
1: तो ये तो आपका पक्ष हुआ एक तरह से। लीना मैम आपने क्या सोच करके वहां उस कार्यक्रम में आए थे, उस परिचय सम्मेलन में, या कोई लेकर के आया था आपको?
2: जी सर, वो मेरे गांव का है ना, एक अशोक था, मतलब भाई था मेरा वो, ये तो वो भी मतलब पार्सल ही था, उसको सब जानकारी थी, भोपाल में रहता था वो अशोक डॉक, तो फिर उसके थ्रू मेरे को ये पता लगा कि उसी ने बोला था कि बोली यही पे भोपाल में सम्मेलन हो रहा है, तो मम्मी पापा से उसने बात करी, फिर मम्मी पापा को लेके वो मैं आनंदवन में रहती थी, तो फिर वो वही पे मम्मी पापा को लेकर वो भैया आ गया, तो बोले ऐसे ऐसे बात है बोले, तो मैंने देखा भी था बोले लड़का, तो फिर ये इनसे थोड़ा परिचय था सही मालवी जी से, तो फिर इन्हीं को बोला था बोले अच्छा है बोले लड़का बोले सरकारी नौकरी वाला है सब कुछ है बोले, तो कर दो बोले यो, तो मेरे तो उसके थ्रू हो गई शादी अशोक भैया के थ्रू।
1: नहीं तो एक बात हाँ। बताओ आपको हाँ। तो आंखों की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पैर में थी थोड़ी सी
2: हाँ।
1: तो आपके मम्मी पापा ने वहीं पर मतलब नहीं ढूंढना चाहा कि भाई हम तो महाराष्ट्र में ही ढूंढेंगे, क्यों कहीं परिचय सम्मेलन में भेजे?
2: जी सर ये तो शादी तो मेरे मर्जी से हो गई, मम्मी पापा ने ऐसा कुछ मेरे से ज्यादा फोर्स नहीं करवाया, मैंने बोला था मम्मी पापा को, मैंने बोला मेरे को सरकारी वाला चाहिए, बोले ब्लाइंड रह जाए तो चल जाएगा मेरे को, मम्मी पापा ये ब्लाइंड लोग विकलांग लोग जानते नहीं थे ना, मेरे को भी हल्की परेशानी थी ज्यादा नहीं थी।
1: तो आप ब्लाइंड लोगों के बारे में कैसे जानते थे?
2: तो जी सर मेरे को है ना, मैं 2 साल नागपुर में रही हूँ हॉस्टल में, तो उसी भैया ने मेरे को भर्ती करवाया था अशोक दप ने हाँ, तो उसने मेरे को भर्ती करवाया, 2 साल में वही पे रही, फिर वो छोरियों के फिर एक दूसरे से जैसे जानकारी ले लेके फिर वो आंदोलन में रही, फिर वही से तो मेरी शादी हो गई हाँ, उसने मेरा सब कुछ करा है।
1: तो आपको मालवीय जी पसंद आए थे, आपको भी कोई और पसंद आया था?
2: नहीं नहीं यही पसंद आए थे हाँ, घर के लोग सब अच्छे थे, मतलब अशोक भैया भी वगैरह मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे, बोले जिसको पसंद आया तो बोले ये कर,
1: आपके घर वालों को फिर बताया अपने शादी के बाद कि भाई ऐसे ऐसे मेरी
2: मम्मी पापा आए थे ना भैया?
1: आए थे। अच्छा अच्छा
2: हाँ सब आए थे ना भैया, मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे ना शादी में।
1: किसी ने कोई विरोध नहीं किया मतलब?
2: नहीं नहीं नहीं किसी ने। इनके घर परिवार ने जैसे इनके तरफ से था ऐसा मेरे घर परिवार ने ऐसा कुछ विरोध वगैरह कुछ नहीं करा।
1: अच्छा
2: हाँ ये शादी तो मेरे मर्जी से हो गई।
1: हाँ मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया अच्छे से?
2: हाँ कारण बाहर में हॉस्टल में रहती थी तो सब जैसे एक दूसरे के इसके थ्रू पता लगता ही था कि भाई ये इसने सरकारी नौकरी से इसने ये करा उसने ये करा करके, तो थोड़ी बहुत अपने को भी बाहर निकली तो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई।
1: अच्छा आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं लीना मैम?
2: जी मैं हम दो बहन जुड़वाते सर, तो मैं है ना वो मतलब उसके साथ में छठी तक पढ़ी थी तो मैं वो पास हो गई। वो तो मेरी बहन है ना साथ वाली, वो बारहवीं तक पढ़ी है। वो उसके साथ।
1: अच्छा आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए मतलब कुल मिलाकर?
2: मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, वो पास हो गई थी, मैं फेल हो गई थी छठी पढ़कर आ गई थी, फिर इधर आठवीं करी है यहाँ के, ज्यादा पढ़ नहीं पाई मैं।
1: क्या बात है, मतलब आप लोगों की कहानी से दोनों की ये लग रहा है कि हाँ। समय पर एक तो इंसान को निर्णय ले लेना चाहिए और हाँ। एक एक स्थान पर आकर के संतुष्ट भी हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर
0: बहुत सारों को सर हमने देखा है सुना समझा है
1: जी।
0: कि 30 साल हो गए 35 साल हो गए शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रहा, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, लड़के को लड़की नहीं मिल रहा। उस हिसाब से हमारा जो आपने ये कहा कि समय पर सब हो गया ये बहुत बिल्कुल सही कहा, हम इससे बिल्कुल 101% सहमत है कि समय पर हर काम हमारा समय पर हुआ, सर्विस भी समय पे लगी, शादी भी समय पर हुई और बच्चे भी समय पे हुए।
1: ये बहुत जरूरी है
0: क्योंकि 20 फरवरी 2000 को विवाह सूत्र में बंधे परिणय सूत्र में और 14 मई 2001 को जो बड़ी वाली हमारी ख्याति जिसको बिल्लू बोलते हैं हम लोग, आप आती आती सबके इसमें बड़ी एक्सपर्ट है, दो बच्चे हैं हमारे, दोनों लड़कियां हैं, एक प्रज्ञा है वो 2007 में 6 साल के गैप में 2007 में प्रज्ञा नन्नी जिसको बोलते हैं 2007 में 30 अप्रैल को उसका जन्म हुआ। इसी दो लड़कियां हैं हमको और दोनों ही एक से बढ़कर एक है और पूरा ब्लाइंड समाज और सब लोग बिल्कुल खूब अच्छे से जानते पहचानते हैं और उनको भी ये एहसास है कि हमको और हमारे अलावा और हमारे दिव्यांग भाई है उनको क्या दिक्कत है, हमारे तो ठीक है अपनी जगह जो है वो करते ही हमेशा रोज, परंतु उसके अलावा दूसरे हमारे साथियों को उनको क्या दिक्कत, उनका भी ध्यान रखते है वो
1: बहुत cool।
0: इतनी होनहार दोनों बालिकाएं बीकॉम सेकेंड ईयर में है बड़ी वाली और छोटी वाली 8th में है अभी।
1: क्या बात है बहुत खूब। तो कैलाश सर मतलब मध्य प्रदेश की सभ्यता संस्कृति बोली सब कुछ अलग और मैडम जो है बिल्कुल महाराष्ट्रन ठेठ महाराष्ट्रन
0: बिल्कुल,
1: शुरू शुरू में कुछ समय तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कतें तो आई होंगी ना?
0: हाँ हुआ ना हुआ सर, उसमें क्या होता था कि ये एकदम हॉस्टल से आई थी, अच्छा काम के इसमें भी कोई हमको बताने में बिल्कुल ना इनको ना मेरे को किसी कहीं कोई कुछ नहीं क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जब जागो जब सवेरा, मैं तो ये समझता हूँ
1: बिल्कुल सही,
0: कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे मन में जहाँ चाह है वहाँ राह है तो करो तो कोई वो नहीं, क्योंकि घर में भी इतने बहुत कम उम्र में एकदम पहले की इसमें जैसे शादियां हो जाया करती है, मेरी उस समय मुश्किल से 22 साल की उम्र रही होगी और इनकी 17-18 के लगभग रही होगी, तो उस समय इतना परिपक्व इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने आपस में खूब एडजस्ट किया और बड़ा प्रेम पूर्वक खूब रहे करे और हर चीज को एडजस्ट किया मैनेज किया, हमने जो सीखा सिखाया देखा करा सब इन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से, और जो मेरा जो अंधेरा खास सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरा अंधेरा जीवन था उसको रोशन हो गया, ये बहुत बड़ी चीज थी कि जो जिस तरह से मैं चाहता था कि कोई ऐसी मिले, जब आपने बीच में शुरू में चर्चा हुआ था कि गाड़ी चलाए घुमाए फिर आई ये सब चीजें इनमें थी, गाड़िया बढ़िया अच्छे सफल ड्राइवर है अच्छे चलाती गाड़िया बिल्कुल, हमारे ऑफिस के ड्राइवर लोग लोहा मानते हैं कि बड़े बढ़िया चलाती, बच्चों को भी सिखा दिया, अब थोड़ा सा वो आलसीपन हो गया है बाकी पर शुरू में तो खूब जीवन की गाड़ी भी खूब चली और जो है क्या भौतिक गाड़ी वो भी खूब दौड़ी पटरी पे, खूब खूब अच्छे से चला, पूरा एंजॉय किया जीवन का और अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रही हमारी, कभी कोई शिकवा शिकायत एक दूसरे से, वो मेरी भाषा का थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि हमने ऐसा जादू चलाया मालवे का और ऐसे दाल बाफले दाल बाटी खाना खिलाना सिखाया समझाया।

0: कि अब ये आज 21 साल हो गए, स्थिति ये हो गई कि ये मराठी भूल गई। कभी कुछ होता तो इनके पापा बोलते हैं वो ये हिंदी बोलती है, वो मराठी बोलते तो बोल पोरगी नहीं मुलगी मराठी सांग मराठी, तो वो मुलगी वो मराठी भूल गई और अब हिंदी आ गई। तो इंदौर और मालवा ऐसा है कि अपने आप में सबको संभाल लेता है, कि भाषा में समझ में आ जाती थी कि मेरे टीचर जो थे सारे मराठी थे तो भाषा समझने में नहीं आती
1: वैसे
0: थी।
1: इंदौर में भी हमने सुना है ना कि काफी महाराष्ट्र लोग बसे हुए हैं ना।
0: हाँ महाराष्ट्र लोग बसे, और महाराष्ट्र की लड़कियां भी बहुत सारी शादी होकर हमारे यहाँ आई हुई है, तो सब आपस में सबकी फ्रेंडशिप हो गई है, सब घर परिवार की तरह रहते हैं, अच्छा है। और नहीं तो परिवार के लोगों को के तो दिमाग में क्या गया था मेरे, अरे यार लड़कियों को दिखता नहीं, और इससे लड़के से कुछ पूछो तो हाँ और हूँ में जवाब देती है, तो इसको दिख नहीं रहा, और कहीं ऐसी लड़की कहीं गूंगी या मुख बधिर तो नहीं लिया है, तो बाद में हमको वापस कुछ छोड़ छुट्टी करना पड़े, पर वो चुप्पी उप्पी में सब, और बहुत बढ़िया। अब तो तेज तर्रार बिल्कुल तीखी तीखी कटारी की तरह वो हो गई, और बढ़िया आनंद आ गया। जिंदगी अच्छी, सबकी कृपा दृष्टि से हमराही का काम खूब अच्छा चल रहा।
1: कुल मिलाकर के मतलब आप तो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं।
1: तो आपके मतलब आपने अपना जब आप जीवन साथी ढूंढ लिया, शादी हो गई, उसके बाद कभी ऐसा अवसर भी आया कि और भी अपने साथियों की मदद की हो आपने विवाह के मामले में?
0: हाँ सर, कोशिश तो की, पर योग सहयोग कुछ रहे ऐसे होता रहा चलता रहा, और एका दो ही हो पाए ऐसा कुछ ज्यादा, क्योंकि ये सब ऊपर से तय हो के आते, अपन लाख कितना भी कुछ कर लो उसमें तो अपन एक निमित्त मात्र होते हैं। एक चीज मेरी थोड़ी सी सर छूट रही थी, आपकी इजाजत यदि हो
1: हाँ बताइए बताइए बताइए।
0: रेडियो मधुबन की और हमराई की, कि जब सर्विस नहीं लगी थी ना हमारी, तो उस बीच एक आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी,
1: जी
0: तो हम लोगों ने एकदम तो नौकरी लग नहीं रही, पढ़ने के बाद में 2 साल लग गए मेहनत करते करते। तो उस बीच में क्या हुआ, हमने एक आर्केस्ट्रा फन म्यूजिक नाइट क्रम से एक आर्केस्ट्रा शुरू कर लिया।
1: अच्छा, अरे वाह
0: जी। तो उस आर्केस्ट्रा में मैं अनाउंसमेंट का काम करता था,
1: अच्छा
0: और अनाउंसमेंट के साथ साथ में जब कोई सिंगर यदि नहीं आया तो सिंगिंग का काम भी शुरू कर लेता था।
1: क्या बात है, मतलब आपको संगीत का भी शौक है।
0: हाँ संगीत में मैंने फोर्थ ईयर किया गायन में, इलाहाबाद प्रयाग समिति से
1: जी
0: फोर्थ ईयर किया, और बजाने जाने में तो कुछ ज्यादा विशेष वो नहीं हो पाया।
1: लीना जी
0: और
1: को कौन सा गाना सुनाया था आपने, बताइए।
0: अरे सालगिरह हम जब मनाते हैं तो मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा रहता हूँ, हमारी जब सालगिरह आती है अपने 20 फरवरी को, अब तो लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई तो कई ज्यादा आ जा नहीं पाते परीक्षाओं की वजह से, परंतु हमारे एक निमाड़ अंचल नेत्रहीन संघ है खंडवा में, वहाँ हम उन बच्चों के बीच में जाकर के एनिवर्सरी मनाते हैं, और बड़े एक दूसरे को खूब अच्छे गीत गाते सुनाते हैं, और केक वगैरह काटना, और पूरा ड्रेस रेस सब, और लगता है कि वापस डबल से पुनः विवाह हो रहा है, इस टाइप का ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। हमारे अवचे जी है, बड़ा उनका प्रेम मिलता है हमको, और
1: क्या बात
0: संस्था
1: है।
0: में हम जाते हैं और वहाँ हमेशा अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, और एक दूसरे को
1: कौन सा गीत गाते हैं आप, 2 लाइन गुनगुना के बताइए जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल 2 लाइन के 10 लाइन गा देंगे सर। हम तो हमको गाने गाने का भी शौक है, गाना सुनना सुनने का भी शौक है, और सुनाने का भी शौक है,
1: जी
0: और खाने का भी शौक है,
1: जी
0: दोनों
1: जी
0: दोनों तीनों सब सब शौक है, किसी में कम नहीं पड़ते।
1: जी
0: तो जो अनुमति हो जाए आपकी, किस हिसाब से क्या क्या सुना दिया जाए
1: बताइए, जो भी गाना लीना जी को पसंद हो आपका।
0: हाँ पर उनसे मत गवाना, नहीं तो फिर वो
1: नहीं नहीं आपसे ही गवाएंगे हम,
0: यूँ थोड़ा बहुत यूँ गा लेगी आर्केस्ट्रा वगैरह समझ, बाकी यूँ अभी थोड़ा सा
1: नहीं नहीं आपसे ही आपसे ही रिक्वेस्ट है।
0: और मैं अरे नहीं सर, आप तो निवेदन क्या, आप आदेश करिएगा, सपने में भी अपन शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सुनाता हूँ एक पगला कहीं फिल्म का गीत है, रफी साहब का। रफी साहब मुझे फिल्में सदाबहार गीत बहुत पसंद आते हैं, उसका स्थाई भी सुनाता हूँ, और एक तीसरा अंतरा जो खास जो मुझे पसंद आता है और सबको बिल्कुल अट्रैक्ट करता है वो भी सुनाऊंगा, और बाद में कभी इजाजत हो रहा कभी कुछ ऐसी होगी तो कॉलेज लाइफ लाइफ की भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे आपको, उसमें गाने और खाने में कोई शर्म नहीं, और अपने आप को बिल्कुल फक्र समझते हम। तो मैं शुरू करता हूँ।

0: यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं। मैं इसका तीसरा अंत सुना रहा हूँ जो मुझे ज्यादा पसंद आता है, बाकी दो
1: जी
0: अंतरे भी याद है पर अभी तीसरा ही सुना रहा हूँ मैं।
1: जी जी जी बिल्कुल।

0: क्या बात है, बहुत खूब सर। तो ये ऑर्केस्ट्रा जो आपने शुरू किया तो वो आज भी चल रहा है या बंद हो गया फिर अब?
1: सर वो हुआ उसमें ये कि सब लोग नौकरी धंधे में और ब्याह शादी में घर गृहस्थी में बस तो गए, परंतु जब जब भी ये ना यूं बिखर गए, पर जब जैसे कुछ जरूरत पड़ती है तभी हम हाल फिलहाल में पिछले टाइम में क्या 24 तारीख थी जनवरी में एक देवास में हम लोग ऑर्केस्ट्रा लेके गए थे, तो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है।
0: मतलब ये एक बात है, एक बात है सर, उस जमाने में मतलब आज के लगभग
1: सदाबहार में मजा आता है, अब तो क्या ट्रैक लगा के लोग शुरू जाते हैं, तो मुझे तो
0: आज के 20-25 साल
1: ट्रैक पे जाना नहीं आता मैं जी सर, मुझे नहीं आता।
0: आज के 20-25 साल पहले उस समय ऑर्केस्ट्रा बनाना और दृष्टिबाधितों को मिल करके मतलब जाना कार्यक्रमों में, ये भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात रही है।
1: हम लोग तो भोपाल, जावद, रतलाम, मंदसौर, नीमच सब दूर जाते थे और अच्छा सब गाते थे, और एक लड़का हमारे इसमें ऐसा था कि लड़के की आवाज में भी गाता था, लड़की की आवाज में भी गाता था। वो एक और उसका अद्भुत था, तो लोगों को बड़ा मजा आता था कि अरे यार ये बहुत अच्छा काम है।
0: वो किशोर कुमार था मतलब।
1: जी और विजयवर्गीय साहब थे हमारे, कैलाश विजयवर्गीय, उनका बड़ा आशीर्वाद था हम लोगों पे, वो भी कई बार हमारे साथ में गाते थे, अभी राष्ट्रीय महासचिव हुए।
0: आपकी कहानी सुन करके लग रहा है मतलब एक आम दृष्टिबाधित की कहानी जैसी हो सकती है।
1: ठीक
0: ठाक मतलब जो है पढ़ाई भी हो गई और समय पर
1: बिल्कुल
0: नौकरी लग गई, उसके बाद में विवाह भी हो गया टाइम पर।
1: बिल्कुल सब तो, सब काम हर चीज जो मैंने
0: समायोजन में भी दिक्कत नहीं आई, और ज्यादा आपने कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिशें जिंदगी से रखी नहीं।
1: नहीं मैंने ईश्वर से जो सच्चे श्रद्धा से मांगा वो मुझे मिल गया। मेरे पंडित जी कहते थे कि कैलाश भगवान भक्ति में तो वो शक्ति है जो किस्मत को बदल डालती है। तो मैंने 22 जून, बोले किसको आप आराध्य मानते हो, मैंने कहा शिव जी को यार, मेरे नाम के अनुसार मैं भले ही धारण करूं मेरे भाई का नाम, परंतु वही नाम मैं तो अब उसको असली समझूंगा, मैं उसको ही अपना आराध्य मानता हूं। तो बोले फिर उपवास रखना चालू करो, उनका मंडे का उपवास रखना चालू करा 22 जून से मैंने 99 से, तो मेरी पोस्ट बन गई और 25 जून को इंदौर में आ गई। इतना चमत्कार भोले का इतना आशीर्वाद रहा साहब, 25 जून को बन गई और 29 जून को इंदौर में वाणिज्यकर विभाग में पोस्ट बन के आ गई। तो ये भक्ति की शक्ति का है ऐसा भोला भंडारी है हमारा
0: जी। तो लीना मैम
2: जी सर,
0: कभी झगड़ा वगड़ा हुआ इन 20-21 सालों में कि नहीं?
2: जी सर हो जाता है थोड़ा बहुत।
0: तो किसकी आपकी तरफ से, आपकी तरफ से होता है कि मालवीय जी की तरफ से होता है?
2: नहीं कभी मेरे तरफ से भी हो जाता है, कभी इनके तरफ से भी हो जाता है।
1: सर मेरा वीक पॉइंट एक है, क्योंकि अपना अपना अपना जो वीक है वो स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चीज मैं समझता हूँ। तो मेरा एक थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि मेरे को अब तो खैर बहुत मैंने पेशेंस अपने आप को कर लिया, मैंने मन्नाडे का साहब का सुना कि कम खाओ और गम खाओ, तो मैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने लगा, पर मेरे को गुस्सा ज्यादा आता जल्दी, तो मैं कंप्रोमाइज मैं नहीं करता, हमेशा कंप्रोमाइज इनको ही करना पड़ता है, तो पर अब करने लगा हूं। अब जैसे जैसे वो हो रहा ना उम्र बढ़ रही, तो धीर और गंभीरता आने लगी है।
0: आपको नहीं लगता सर कि पति पत्नी के संबंधों में गुस्से का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए?
1: नहीं होना चाहिए ना, तो ये मेरी कमी है, मैं इसमें सुधार ला रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ, और हो जाएगा। आपको कोई अब धीरे धीरे बहुत लोग चीज को समझने लगे, और मुझे भी लगने लगा है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, हो जाएगा वो, क्योंकि अब मनुष्य है सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं सकता, क्यों पांच उंगलियां।
0: तो आपका सर जो गांव है जिस गांव के आप रहने वाले हैं वहां आप मैम को लेकर के जाना हो पाता है कभी कि नहीं?
1: अरे मैंने कहा ना कि हमारे पास गाड़ी थी, हम उस गाड़ी से बहुत हमने दौरे किए इस गांव के बहुत। और
0: आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था मतलब इनको देखने के बाद कि भाई ठीक है लड़की और सब संभाल रही है?
1: नहीं ठीक क्या है, थोड़ा सा मन में तो रहता है,
0: कुछ तो रहा होगा उनके भी मन में, थोड़ी उलझन तो रही होगी ना, उनको स्वीकार करने में दिक्कत तो आई होगी ना एकदम से मतलब?
1: नहीं नहीं उनको नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था ना मेरे लिए, है ना, ये जरूर किया पढ़ाई लिखाई तो कर भी उन्होंने, उसके लिए अपन ये नहीं कह सकते, परंतु उनको ये था कि बेचारे भोपाल क्या जाने कहां क्या का, पिताजी निरक्षर थे।
0: नहीं वो सब ठीक है, भोपाल तो हो गया चलिए, लेकिन अब जैसे अब आपके जीवन में मैम आ गई लीना मैम,
1: हाँ
0: तो एक बहू के रूप में जो एक होता है ना स्वीकार करना।
1: हाँ स्वीकार किया, करा स्वीकार उकार में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
0: अच्छा।
1: स्वीकार तो कर लिया। दूर में थोड़ा सा ये था कभी कभी कि यार हम ना तो हम जा पाते इनके इधर, ना वो कम से कम आ पाते, तो थोड़ा सा होता है जब समय हमको मिलता हम चल जाते।
0: तो आपके ससुराल आपका जाना कम हो पाता है मतलब?
1: हाँ हमारा कम हो पाता, उनका भी कम होता है, दूरी का है ना, तो जाते कभी कभी बीच बीच में, या फोन पे तो लगातार लगे ही रोज, बाकी मन होता कभी चल पड़ते।
0: अच्छा सर, बच्चे जब हुए तो फिर बच्चों के लालन पालन पे कोई दिक्कतें किस तरह की आपको आई?
1: नहीं दिक्कत ज्यादा तो नहीं आई, क्योंकि इनकी बहन जो जुड़वा थी उसका बड़ा उसमें वो सहयोग रहा। जब बड़ी वाली बिल्लू थी तो वो एक साल तक लगभग हमारे यहीं पे रही और दोनों को जुड़वा समझते थे और पता ही नहीं चलता कि लीना कौन और मीना कौन दोनों।
0: आपको तो पता चलता था ना?
1: अपने आवाज की दुनिया थी ना, नॉर्मलों की दुनिया उनकी आंखों की दुनिया रहती है, अपने आवाज की दुनिया रहती है, तो आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं।
0: मतलब बोला कि आप ये मानते हैं सर कि हमारे जीवन में, मतलब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में
1: जी,
0: बच्चों के लालन पालन में मतलब किसी और का साथ होना जरूरी है, क्या आप ये मानते हैं?
1: नहीं सर, हकीकत को मेरा फिर वही और कॉन्फिडेंस या जो होगा वो वाली बात आ जाएगी कि कहीं ना कहीं हम चीज को एक्सेप्ट, जो हो सकता है वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, उसको स्वीकार कर ले या कोशिश करें, कोशिश कर सकते हैं परंतु और कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आती है, पर हमारे साथ तो इसलिए नहीं आती थी कि इनको दिख रहा था, रही बात मेरी से तो मेरा तो इस मामला कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, इसलिए ज्यादा दिक्कत हम लोगों को नहीं है। परिवार के तो मेरी बहन थी तो फिर आने जाने वाले लगे रहते, आता जाता सब चलता रहा, कब तो छोटे हुए कब बड़े हुए पता ही नहीं चला, अब वो हमसे बड़े दिखते हैं।
2: कार चलाने लग गए बड़े वाले गुड़िया, कार ले ली, कार कार चलाने लग गए। बड़ी छोटी वाली भी चला लेती है, जुपिटर बड़ी वाली तो कार ही चला लेती।
1: अभी हम कोई एहसास नहीं होता कि अपनी जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं लगता, कि मालिक भले ही और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छा जाहे विधि रखे ना ताहे विधि रही है।
0: सीताराम सीताराम सीताराम कही है
1: जी जी। और अपने डॉक्टर हेलन केलर बोलती थी सर कि मैं अपने हैंडीकैप तो या अपनी विकलांगता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तो हम लोग भी उससे कोई निराश नहीं, स्वीकार करते और बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आज दिखता होता तो अब यहाँ तक पहुँचते या हम राजस्थान में हमारी बात हो पाती नहीं हो पाती। इंदौर भी हमारे नॉर्मल लोगों के लिए इंदौर बहुत बड़ी बात है, गांव वालों के लिए मुश्किल से मेरा गांव 20 किलोमीटर भी नहीं है, पर बहुत सारे लोग इंदौर नहीं आ पाते, इंदौर जानते नहीं क्या, उससे तो अपन बहुत अच्छे हैं।
0: फिर भोपाल भी नहीं जा पाते आप?
1: अरे वो तो सवाल ही नहीं था ना, भोपाल जाने का कहां, इंदौर नहीं तो फिर भोपाल कहां से। वो तो नॉर्मल होता ना तो बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाता, ना पढ़ना लिखना ना कोई कुछ नहीं, वही गाँव में बढ़िया जैसे हम 10 भाई बहन थे वैसे हमारे भी 8-10 बच्चे होते और बखर उखर घेरते रहते, हल चलाते रहते, दूध निकालते रहते, गाय भैंसों का बेचते रहते,
0: मतलब शिक्षा से दूर हो जाते कुलना के।
1: हाँ शिक्षा से इंदौर से कहीं तक कोई वास्ता ही नहीं ना, उस समय इतना सब कहाँ क्या था।
0: तो कहीं मतलब जो कार्यक्रमों में भी आप लोग जाते रहे होंगे उस समय शुरू शुरू में जब विवाह हुआ, तो क्या प्रतिक्रिया रहती थी समाज के लोगों की, आपके जो साथ के लोग थे जॉब में और जो लोग थे?
1: नहीं अच्छी रहती थी उन लोगों की प्रतिक्रिया, तो वो लोग भी समझते थे और बातचीत करते, मिलना जुलना एक दूसरे के आना जाना, और उनको भी प्रेरणा ही लेते थे, उनको भी लगता था कि अच्छा है, अच्छा ये भी सबको हेल्पफुल नेचर की है तो सबको गाइड करना, आना जाना, घूमना फिरना, मिलना मिलाना जुलाना। आजकल तो उस समय भी थोड़ा दौर चालू हो गया था बफेट का, तो बफेट में अपने साथियों को गाइड करना या कहीं पिकनिक पे चले गए तो वहाँ गाइड करना। अब बड़ी बड़ी दूर हम सब आए गए, घूमने फिरने का बड़ा शौक है हम लोगों को, तो कहीं भी मिस नहीं करते हैं वो, चाहे आपका रिकॉर्डिंग क्लब हो या हमारा कोई निमाड़ांचल नेत्रहीन संघ का कोई सेमिनार हो या रतलाम का कुछ हो, हर जगह बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
0: बहुत बहुत खूब,
1: बिल्कुल रात बेरात हो जैसा भी जो हो, मन में जो ठान लिया वो पूरा कर लेते हैं और किसी प्रकार का कोई वो तकलीफ ऐसा कुछ नहीं रहता।
0: कोई शिकायत सर जिंदगी से अभी तक?
1: जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा है,
0: सब कुछ ठीक हुआ,
1: सब कुछ ठीक हुआ, समय पर हुआ,
0: समय पर हुआ जी।
1: फिर रिपीट करें उस चीज को।
0: ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
1: हाँ, समय पर भी हुआ, जो सच्ची श्रद्धा से मांगा और जितनी मेहनत करी, मैंने कभी शिकायत नहीं करी मालिक से, मैं तो आईएएस बनना चाहता था और टेलीफोन ऑपरेटर बन के रह गया। आईएएस कैसे बनना चाहता था, शिकायत उसके लिए पढ़ाई करना थी, जो कि वो मन मन लगता ही था पढ़ाई में, अपना गाने गाने और खाने में लगता था और रोने में, शुरू में तो रोने में टाइम बीत गया मेरा बहुत दिन तक, परिवार को भूल ही नहीं पाया, बहने राखी बांधने आई, राखी नहीं बंधवाना, लड्डू नहीं खाना, तुम तो घर पे ले चलो, समय कट्ठी आत्मा करी बहनों ने सबने, तो आज यहाँ तक आपसे बात हो पा रही, नहीं तो कौन संदीप सर और कहाँ अजमेर ने कहाँ माउंट आबू कुछ नहीं समझ पड़ता।
2: माउंट आबू तो बहुत अच्छा लगा
0: जी, जी।
2: हाँ, दो बार पंजाब भी लाया घुमा के।
0: हाँ। जी, हमारा स्टूडियो भी है माउंट आबू में ही है ये। रेडियो मधुबन का हमारा स्टूडियो भी माउंट आबू में है।
2: बहुत अच्छा।
0: आज कैलाश सर अपने मतलब उस जमाने में भी दिक्कतें तो थी, लेकिन आज भी इतना विकसित समय होने के बाद भी आपको पता है ना कि अपने दृष्टिबाधित साथियों को, जीवन साथी को ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आती हैं।
1: हाँ सर,
0: क्या लगता है आप, क्या कारण देखते हैं इसको, इसके लिए मतलब?
1: जी सर, उस समय भी अब तो खैर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद भी क्या होता था कि नॉर्मल लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने।
0: हाँ, मतलब थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ दूं कि परिवार और समाज भी नहीं मतलब स्वीकार हाँ, कर पाता है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं करता, नहीं करता।
2: हाँ, सर, परिवार में तो बहुत ही परेशानी आती है, एकदम से नहीं ये करते,
1: एडजस्ट नहीं करते नहीं। और समझते भी नहीं।
2: हाँ।
1: ना अच्छा समझते तो हैं पर समझना नहीं चाहते, मैंने तो ये उसका अर्थ निकाला सर, समझते तो सब है पर समझना ही नहीं चाहते, उनका सोच क्या पता कहाँ तक जाता है।
0: नहीं तो अच्छा, उसके आपको क्या लगता है इसका कोई हल निकल सकता है क्या आपके हिसाब से?
1: उसका हल ये कि हमारे जो ये सेमिनार वगैरह चलते रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और नॉर्मल तो कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसकी कोई कमजोरी हो तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो नॉर्मल मेरे इसमें बहुत ऐसे ऐसे नॉर्मल वो ठीक है कि भाई बहुत कम इसमें दे देंगे, लो क्लास में दे देंगे कि भाई वो नशे वशे करता हुआ जो भी करता हुआ सब कुछ होगा सब चलेगा, पर यदि हमारा ब्लाइंड व्यक्ति बैंक में है या तहसीलदार है उसके लिए यदि कहेंगे तो के वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं अरे भाई दिखता नहीं है, क्योंकि वो भले एक खराब व्यक्ति को बैकवर्ड एरिया में दे देंगे वो चलेगा, और उनका सोच वहां तक जाता ही नहीं, वो जाना ही चाहते। ऐसा नहीं कि केवल गांव के लोग इसमें वो करते हैं, सिटी वाले इससे ज्यादा करते हैं, गांव के तो एक बार थोड़ा सा उनको समझाओ बुझाओ तो कुछ सोच सकते हैं इस विषय पर, परंतु सिटी वाले तो चाह करके भी नहीं वो करते, तो इसमें प्रॉब्लम तो है और ये हमेशा चलती रहेगी। इसको अपन कोशिश करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना आसान है सुलझना, ये तो हमको ही अपने आपस में, वो कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने, तो आपस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को करो, क्योंकि नॉर्मल समाज जब तक उसकी कोई कमी नहीं हो तब तक वो अपने को नहीं करता, क्योंकि हमने तो हर जगह सब देख सब समझ चुके हैं और अनुभव भी खूब है, इसलिए मैं कई बार बहुत इससे वो देता हूँ अपने अनुभव और बताता हूँ सम्मेलन में सब जगह कहता हूँ कि कोई परिचय सम्मेलन ऐसा आयोजित किया जाए कि उसमें परिचय हो, फिर उस बार 6 महीने बाद फिर विवाह सम्मेलन हो, तब थोड़ा सुधार आने लगा है और ये सब हो रहा है, हमारे ऐसा समय नहीं है।
0: तो दुनिया आपको कहेगी फिर कि यार खुद के टाइम पे तो आपने तुरंत विवाह सम्मेलन ही कर लिया और नहीं, हमें 6 महीने इंतजार करने के लिए कह रहे हो?
1: नहीं वो इसलिए कह रहे हैं कि वो समय जो था ना तो उस समय मन और इतना लोगों के मन में वो नहीं था, अब जो थोड़ा सा जैसा जैसा जितनी सुविधा जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की इतना खरेब और सब बहुत सारे केस सुनने में आते ना तो वो थोड़ा सा, क्योंकि एक दूसरे को सोचने समझने को हर व्यक्ति इतना भोला और सच्चा और इतना सीधा और सिंपल नहीं हो सकता ना, अब वो समय जितना एडवांस हो रहा उतना हर क्षेत्र में एडवांस होगा ना फिर व्यक्ति, ये भी देखे एकदम से भरोसा करना थोड़ा सा तो कुछ टाइम तो चाहिए, हर व्यक्ति हमारे महाराष्ट्र जैसा या इनके परिवार जैसा या हमारे या एक दो दूसरे जैसा वो पहले वाली स्थिति नहीं हो सकती ना, बदल गया था हर चीज, ईगो टकराते हैं फिर आपस में, ये भी देखे।
0: ठीक बात है, चलो बढ़िया है, कुल मिलाकर के ऐसे ही हंसते खेलते जीवन चलता रहना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आगे बढ़ता रहना चाहिए। लीना मैम
2: जी सर,
0: आप अब चूंकि कार्यक्रम के हम अंत में हैं बिल्कुल, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, आप अपने जिंदगी से, मालवीय जी के साथ आपने जो जीवन बिताया है उसके अनुभव से, कोई आपको कोई मतलब मन में ऐसी कोई बात हो जो कहना चाहते हो आज सबके सामने आप?
2: जी सर, अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा बढ़िया, ये ऐसा तो कोई नहीं है परेशानी वगैरह।
0: अच्छा,
2: हाँ सब अच्छा चल रहा है हमारा।
0: तो आपकी जो जुड़वा बहन थी उनका विवाह हुआ कि नहीं?
2: हाँ हो गया ना सर, उसका नागपुर में हो गया।
0: उनका नागपुर में हो गया, तो हाँ। उनके जीवन में और आपके जीवन में आपको कोई फर्क लगता है?
2: नहीं नहीं सर, कुछ भी फर्क नहीं
0: है ना। लोग मतलब जैसे आमतौर पर ये मानते हैं कि भाई ब्लाइंड व्यक्ति है, दिक्कतें आएंगी, आपको लगा कभी कि यार ब्लाइंड होने से दिक्कतें हैं मतलब इनके?
2: नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं लगता।
0: और कभी मालवीय जी को लगा आपके मतलब पैरों से विकलांग होने से उनको कोई दिक्कतें आई हो?
2: नहीं नहीं, उनको भी ऐसी कुछ परेशानी तो नहीं आई, हर जगह पे मतलब साथ में आते जाते, इनके गाँव में इधर उधर सब दूर हम दोनों ही घूमते थे ना गाड़ी से इधर उधर। वो तो आप लड़की है थोड़ी बड़ी हो गई, नहीं तो पहले हम ही घूमते थे
1: और सब ब्याह शादी
2: सब दूर आना जाना सब
1: कर, कुछ भी प्रोग्राम हो अच्छा बुरा सब में आना जाना, बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल, यानी पारिवारिक हो या सामाजिक हो या संस्थागत हो, सबसे बिल्कुल अपने आप को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि हम जुड़ेंगे तो हमसे लोग जुड़ेंगे।
0: कुल मिला के मतलब आप अपने जीवन के साथ परिवार को बढ़ाने के साथ साथ, अपने परिवार को संभालने के साथ साथ समाज को भी आप समय देते रहते हैं मतलब?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये बहुत अच्छी बात है। तो कैलाश सर, आप अपने दृष्टिबाधित साथियों को और समाज के मुख्य धारा के लोग हमारे इस रेडियो मधुबन पे इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: उनको मैसेज यही कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे जी।
0: जो लोग अपने जीवन, जो लोग अपने हमराही को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे?
1: उनको ये कि ये शादी एक खिलौना नहीं है, इसको बहुत सोच समझ के, एकदम इमोशनल या भावनात्मक तरीके से नहीं, उसको यथार्थ में जीने के हिसाब से 10 बार वही जो मैं 6 महीने वाली बात कर रहा था तो, और आपने मुझसे कहा था कि 6 महीने क्यों देना, 6 महीने इसलिए देना कि एक दूसरे को सोचने समझने का समय पर्याप्त मिले, ताकि बाद में कोई ऐसा तो नहीं आज शादी करी और कल डाइवोर्स हो गया।
0: ठीक बात।
1: तो उस हिसाब से ये यहाँ पे भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ भी मैं सम्मेलन में या कोई गेस्ट के तौर पे इनवाइट करता है, बुलाते हैं, बताते हैं कि आप अपने अनुभव क्या साझा करना चाहते हैं, तो मैं यही उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ कि अपन एक दूसरे को ईगो जो है वो पाल के नहीं रखना, और एक दूसरे को समझना हमेशा, भावना को समझना, भाई ठीक है वाइफ है तो उसको कमजोर नहीं दिखाना, या उसने उसको ईगो में नहीं दिखाना कि मैं अपनी, हमेशा दोनों का आपस में तालमेल बना के रखना सबसे बड़ी बात ये। और शादी जैसा जो है उसको पहले परिचय में और उसको सोचने समझने का, वो कम से कम नहीं ज्यादा तो 6 महीने तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और अपना बैंक बैलेंस और सब हर चीज को बना करके अपन उस लायक हो जाए, क्योंकि मुझे तो रोटी नहीं मिल रही थी 4 महीने में, मैंने जितना जो जल्दी किया उसको उतना जल्दी नहीं करना चाहिए, उस समय की मांग थी इस बार इस समय की अभी मांगनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का युग है, तो रिकॉर्डिंग क्लब उसमें भी कुछ कंपटीशन के कुछ एडवांस तरीके बता देगा कि रोटी कैसे बनाना, कैसे क्या करना, बहनों को हमारे तैयार कैसे करना, आपका मैं देखता हूँ सुनता समझता हूँ, मुझे मालूम है कि भाई और बहनों के लिए रिकॉर्डिंग क्लब और संदीप सर खूब तन मन धन से लगे रहते हैं और ऐसे ही लगे रहे, और रेडियो मधुबन के लिए जो हमराही के लिए हमको आपने चुना दोनों को, एक बार फिर मैं हृदय की अंतर गहराइयों से सहस्त्रों बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सर और लीना मैम, आपने आज समय दिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बना।
1: मैडम जो जी जी आप सर जो मैडम कह करके आप हमें शर्मिंदा करते हैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं और मन से मन के आपके हमारे सबके मिलन है ना, तो
0: देखिए 4 जुलाई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे बड़े हैं, 3 मई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे छोटे हो
1: फिर यहाँ इधर 78 और क्या जाता है संदीप सर का, क्या जाता है 78 और
0: 84
1: बचना कहीं किसी को कहीं कुछ नहीं है ना।
0: तो चलिए सर, फिर बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों से बातें करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हर एक का जीवन ऐसा ही खुशियों भरा, और जो है कहते हैं ना जिसको संतोषम परम सुखम, इसी भावना को लेकर के हम सब आगे बढ़ते रहे। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा हमराही कार्यक्रम। अब मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। तब तक आप सब क्या करें, कुछ नहीं, बस रेडियो मधुबन को सुनते रहें 24 घंटे सातों दिन, और सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें रेडियो मधुबन का प्ले स्टोर से, और ईमेल करें info@radiomadhuban.in पर, और कॉल करना चाहें तो 9414151415 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप हमसे कह सकते हैं। और देखिए, कोई भी विवाहित व्यक्ति जो दिव्यांग है, दोनों में से कोई भी किसी भी तरह की दिव्यांगता से अगर आप हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आप सबका भी, और आप सबको इंतजार रहेगा हमराही के अगले एपिसोड का। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: लाइफ इज अ जर्नी। द पाथ मे बी डिफिकल्ट। इफ द डिटरमिनेशन इज स्ट्रांग, देन द डेस्टिनेशन इज नॉट फार ऑफ।

ओम शांति। आज 25 जून 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सहज राजयोग। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप को याद करना है। कैसे करना है वो भी विधि बाबा बताते हैं कि स्वयं को आत्मनिश्चय कर बाप को बहुत प्यार से याद करना है। क्या होगा उस याद से? बाबा कहते एक तो आत्मा पावन होती जाएगी। ये मेहनत जितनी अभी करते जाएंगे तो यही मेहनत अंत में काम आएंगी। बाबा कहे इसी से तुम अपने आप को स्वर्ग की राजाई का तिलक देते हो, गारंटी करते हैं बाबा। और फिर ये याद आधा कल्प के लिए तुम्हें हर प्रकार के दुख दर्द रोने आदि से छुटकारा दे देंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे साजन को जरूर याद करो, बाप को याद करो। गीता में उसी को कहा गया है मन मना भव, या अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तो बाबा हम बच्चों को सहजता से वापस ले जाएंगे। बाबा कहते जब तुम याद करते हो तो बाप को मदद देते हो। इस दुनिया को परिवर्तन करने में जैसे भगवान को हम मदद दे रहे हैं, इसलिए जितना हो सके अपनी बुद्धि को बाबा में लगाते रहो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं है। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाप कहते मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए, अर्थात ये नशा चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकेंगे। मेहनत जो कुछ भी है वह यही है। इस ज्ञान मार्ग में मेहनत जो कुछ भी है याद की ही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, ये भी बाबा जानते हैं कि कई बच्चों से मेहनत पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद ही भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। जितना हम याद में रहते हैं जैसे भगवान को मदद मिलती जाती है। यह है बहुत बड़ी मेहनत, यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। घर जाने के लिए पावन बनना है, बाबा की याद में रहना है, ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर के बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग
कहां भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो, यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है, और कभी बाप आते ही नहीं है सारे कल्प में, और कभी तो बाप आते ही नहीं है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। सारी मुरली याद के ऊपर, रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है, इसलिए बाप कहते रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी, सारा मदार याद के ऊपर है। आत्मा के कितनी जंक उतरी है, बाप कहे ये याद पर ही तो सारा मदार है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए, नर से नारायण बनना है, यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो सोले कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। सोला कला संपूर्ण कैसे बनेंगे, बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला, बाप ही हमें श्रीमत देता है। बाप कहते गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां न कहां धोखा खाते रहेंगे, इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मनिश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं, अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे, कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देंगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी याद से ही तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया, बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। कितना भी दान पुण्यादि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता। ऐसी रिद्धि सिद्धि अंत में न बचा सकती है खुद को, न उन्नति करा सकती है। तो कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, बाबा कहते ये बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होता है, अशरीरी हो जाते हैं। नींद में कोई पाप नहीं होता है क्योंकि उस समय अशरीरी हो जाते हैं, जैसे शरीर से डिटैच। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते और पुराने पाप भी बहुत है। मेहनत करनी है याद की। यहां आते हो तो ये मेहनत करनी है, बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, फालतू संकल्पों को निकाल दो मन से, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं।
घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएंगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। बाबा कहते जो मेहनत नहीं करता अवश्य वो विघ्न रूप बनता है यज्ञ में। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। वर्षा देकर बाबा भी निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने अर्थात ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। लौकिक बाप के ख्यालात और बेहद बाप के ख्यालातों में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं, इतना जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांतिधाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो एलॉय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वो निकल आएगी, वो सारी एलॉय निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी दो कला कम हो जाती, गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से भी दो कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं, अंदर में याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वो निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो, क्या बोलो, ये अलफ को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है, बस बाबा को याद करे और कोई जस्ती टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है, यही बाबा की याद को अंदर में घोटना है। हम आत्मा है, गाते भी है ना तुलसी दास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है, तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते गोया राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे, राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा है शरीर नहीं, हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्म समझ, मां में कम याद करो, अपने को आत्म समझो और मां में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्म समझते हो परंतु बाप को याद नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेना है,
ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहां है भोगी। वहां है योगी, यहां है भोगी। पवित्र होते हैं योगी। वहां रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहां आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है, बाकी सारा टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाती है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी है फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसा नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, इससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। ब्रह्मा बाबा से ही इस समय स्वर्ग का वर्षा शिव बाबा देते हैं। बाबा समझ जाते हैं एक को भी निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ प्रभावित हुए हैं। तो बच्चे लिखते हैं बाबा को कैसी प्रदर्शनी की, इतने लोग आए, इतने प्रभावित हुए। तो बाबा कहते सिर्फ प्रभावित होते हैं, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने ये नहीं करते, सिर्फ कहते हैं। समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की। जो वीआईपी आते हैं बाबा कहते सिर्फ कहते हैं, समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वो नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने ये मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहां तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं, हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाबा कहते हैं ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं। इस बात की गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का भी हिसाब किताब चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति बताते हैं, यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है। कयामत का समय है, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं, सतयुग में मिलता सब कुछ है और दुख बिल्कुल नहीं है। तुमको तो भविष्य के इस जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग।
यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है, खुद समझना है फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एविजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं आया, बड़ी आयु होती है। बहुत दान पुण्य आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। दावा कहते हैं हॉस्पिटल बढ़ाते हैं तो आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं, जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हो। नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जाए। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वो मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं, इससे सरल सहज और क्या हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है। लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज का स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो सहनशील बच्चे हैं
वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।